0: ही कार्ल गुस्ताव फोर शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है उसके तहत कार्ल गुस्ताव फोर का जो लॉन्चर होगा उसका वजन 7 किलो से कम होना चाहिए। यह गौरतलब बात है कि इसके पहले का जो मार्क टू वेरिएंट था और मार्क थ्री वेरिएंट था उनका वजन 14 किलो और 10 किलो होता था। तो इन्फेंट्री ट्रूप्स को एक हैवी एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए अब जो नया वर्जन टाइप 4 बनेगा उसका वजन 7 किलो या कम होगा।
1: सेना के लिए 84 mm के हल्के रॉकेट लॉन्चर्स कार्ल गुस्ताव MK4 खरीद सिर्फ एक वेपन परचेज तक सीमित नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लॉन्चर, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, तकनीकी दस्तावेज और रखरखाव की पूरी व्यवस्था शामिल है। सेना के रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में बहुत सारी खास बातें जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि साब कंपनी इसे हरियाणा के झज्जर में बनाएगी, यानी कि ये पहली बार होगा कि स्वीडन के बाहर इसका प्लांट किसी और मुल्क में लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जब तमाम मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी तो हमें स्पेयर पार्ट्स या फिर दूसरी चीजों के लिए स्वीडन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी और मजबूत होता है। भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। वो सीमा पर हर तरह के इलाके में तैनात रहती हैं। पुराने हथियार भारी और कम प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे में MK4 हल्का होने की वजह से सैनिकों की गतिशीलता बढ़ेगी, खासतौर पर सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में जहां पर हर अतिरिक्त किलो वजन सैनिकों के लिए चुनौती होता है। कार्ल गुस्ताव MK4 का वजन लगभग 7 किलोग्राम है जो पुराने संस्करणों से हल्का है। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम है जिससे दुर्गम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पैदल सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं और मुश्किल इलाकों में लंबे समय तक आसानी से ऑपरेशन भी किया जा सकता है।
0: इसमें जो वॉरहेड लगाए जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने के लिए, एंटी टैंक वॉरहेड दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए, और एक एरिया वेपन जो कि हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड होगा, दुश्मन के जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं जो ओपन एरिया में डिप्लॉयड हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि यह जो नया वेपन होगा ये -20 डिग्री हिमालयन क्षेत्र में जैसे टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है और +50 डिग्री राजस्थान के डेजर्ट में जैसे टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है के रेंज में काम कर सके। इसका टेक्निकल तात्पर्य ये है कि -20 डिग्री में जो ट्यूब है वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, और +50 डिग्री में जो इसका लॉन्च ट्यूब है वो सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, रिजिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए।
1: अगर दुश्मन पहाड़ी बंकर में छिपा है, किसी इमारत के अंदर हो या फिर हल्के बख्तरबंद वाहन में हो या फिर सीमा पर मजबूत चौकी बना रखी हो, कार्ल गुस्ताव MK4 कम समय में ऐसे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। इससे पैदल सैनिकों को टैंक या तोपखाने के समर्थन का इंतजार हमेशा नहीं करना पड़ता।
0: युद्ध के दौरान जब हमारी टैंक दस्ते आगे बढ़ते हैं तो वो दुश्मन के जो एंटी टैंक कमांडोज हैं और दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उसकी जद्दोजहद में आ सकते हैं। ऐसे में टैंक फॉर्मेशन जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमेशा उनको इन्फेंट्री ट्रूप्स का सपोर्ट दिया जाता है, खास तौर से एक्सिस ऑफ एडवांस के बाएं फ्लैंक पर और एक्सिस ऑफ एडवांस के दाहिने फ्लैंक पर। इन इन्फेंट्री ट्रूप्स को जो हमारे इन्फेंट्री है जो कि टैंक को कवर दे रहे हैं, टैंक की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनका काम होता है कि दुश्मन ने अगर अपने एंटी टैंक दस्तों को दाएं या बाएं में एक जंगल के पीछे, एक खेत के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपा के रखा हुआ है, उसका क्लियरेंस करते जाएं ताकि हमारी टैंक फॉर्मेशन बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी नुकसान के मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, जिसे हम फॉर्म अप पॉइंट कहते हैं, FUP। क्योंकि टैंक फॉर्मेशन FUP पे पहुंचने के बाद ही जो असली टारगेट है उसके ऊपर अपना

0: दुश्मन का टैंक कंसंट्रेटेड एरिया होना हो सकता है, दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो सकता है।
1: पहले अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन खाल गुस्ताक MK-4 एक ही लॉन्चर से अलग अलग तरह की गोला बारूद दाग सकता है। एंटी टैंक गोले के तौर पर कालगुस्ताफ MK-4 में हीट 751 का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोला टेंडम यानी कि दोहरे वॉरहेड से लैस है। इसका पहला विस्फोट टैंक के बाहरी एक्सक्लूसिव रिएक्टिव आर्मर सुरक्षा को नष्ट करता है और दूसरा मुख्य धमाका टैंक के 500 mm मोटे स्टील कवच को चीरते हुए अंदर प्रहार करता है। कालगुस्ताफ MK-4 से एंटी स्ट्रक्चर और बंकर बस्टर गोले दागे जा सकते हैं। इसके लिए HEDP 502 और MT-756 गोले का इस्तेमाल होता है। HEDP 502 एक ड्यूअल पर्पस गोला है। इसमें इम्पैक्ट यानी टकराते ही फटना और डिले मोड यानी कि टारगेट से टकराने की थोड़ी देर बाद फटना दोनों होते हैं। डिले मोड में ये पहले कंक्रीट या फिर लकड़ी की दीवार को छेद कर अंदर घुसता है और फिर बंकर के भीतर विस्फोट करता है ताकि अंदर छिपे दुश्मनों का सफाया हो सके। बंकरों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। MT-756 से एक मल्टी टारगेट गोला भी दागा जा सकता है। ये कंक्रीट ईंट और मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए विशेष रूप से टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर है। कालगुस्ताफ MK-4 से एंटी पर्सनल गोले जैसे कि HE-441D और 441DRS भी दागे जा सकते हैं। गोले के भीतर करीब 800 छोटे स्टील के छर्रे होते हैं। गोले खुली जगह या फिर झाड़ियों में छिपे दुश्मन के पैदल सैनिकों और गैर बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकते हैं। युद्धभूमि में पैदल सैनिकों के लिए मूवमेंट बेहद जरूरी होता है और इसमें खतरा बहुत बड़ा होता है, लिहाजा दुश्मन की नजरों से बचने के लिए कालगुस्ताफ MK-4 के पास सपोर्ट और गाइडेड गोले भी हैं जो दुश्मन की आंखों के सामने धुएं की दीवार खड़ी कर सकते हैं। कालगुस्ताफ MK-4 धुआं फैलाने वाले गोला स्मोक 469C दाग सकता है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर है और ये युद्ध क्षेत्र में तुरंत भारी धुआं पैदा करता है ताकि सैनिक दुश्मन की नजरों से बचकर अपनी पोजीशन बदल सके। यानी एक ही हथियार से टैंक और बख्तरबंद वाहन पर हमला हो सकता है, बंकर और कंक्रीट को तबाह किया जा सकता है।
0: कालगुस्ताफ MK-4 के लॉन्चर से 1 मिनट में जरूरत पड़ने पर 6-6 मिसाइलों को दाग सकते हैं। इसके अलावा आर्मी ने अपने RFP में ये भी कहा है कि इसकी कैलेंडर लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिए, यानी बारिश आंधी तूफान रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद वहाँ 15 साल तक इफेक्टिव होना चाहिए। 1500 राउंड्स फायर करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि हर वेपन सिस्टम्स में टैंक तो तरंगबंद गाड़ियों का जो मेन मशीन गन है उनमें कुछ 100 या कुछ हजार राउंड फायर करने के बाद जो मेन बैरल है या कालगुस्ताफ में मेन ट्यूब है उसको चेंज करना पड़ता है। तो आर्मी ने अपने स्पेसिफिकेशन में लिखा कि 1500 राउंड तक इस कालगुस्ताफ MK-4 का जो ट्यूब है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसके दौरान ही उसका जो ट्यूब है वो आर्मी के जवान के शोल्डर पे ही फट गया।
1: कालगुस्ताफ MK-4 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है जो कि 1 मिनट में करीब 6 राउंड फायर कर सकता है। इसके प्रभावी मारक क्षमता की बात की जाए तो मूविंग टारगेट यानी कि चलते हुए वाहनों के खिलाफ करीब 350 से 400 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। वहीं स्थिर बख्तरबंद वाहनों या फिर टैंकों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। इमारतों और बंकरों के खिलाफ कालगुस्ताफ MK-4 की मारक क्षमता 700 से 1000 मीटर है। कालगुस्ताफ MK-4 को विशेष रूप से शहरी युद्ध और पैदल सैनिकों की मोबिलिटी को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है। भारतीय सेना की पैरा फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस के लिए कई बार दुश्मन के नजदीक जाकर भी हमला करना पड़ता है। स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए वो कई बार दुश्मन की सरहद में भी घुसते हैं, तो ऐसे में गुस्ताफ MK-4

0: उनके लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। दरअसल परिस्थितियों के लिहाज से हथियार कितना अत्याधुनिक है और उसका हर एक ग्राम मैटर करता है। तो स्थिति चाहे ऊंचाई वाले इलाकों की हो या फिर दूर दराज के इलाकों की, गुस्ताफ MK4 इनफोर्सेस के लिए सबसे बेस्ट हथियार साबित हो सकता है।
1: काल गुस्ताफ MK4 की लंबाई 1 मीटर से कम है, जिससे कमांडो इसे अपने पैराशूट हार्नेस या बैकअप के साथ आसानी से बांध सकते हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते समय या फिर पैराशूट से कूदते समय ये सैनिकों के मूवमेंट में बाधा नहीं बनेगा। पैरा SF अक्सर रात के अंधेरे में हमला करते हैं। MK4 का स्मार्ट फायर कंट्रोल डिवाइस FCD-558 थर्मल और नाइट विजन डिवाइस के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इससे कमांडोज बिना कोई रोशनी किए घने अंधेरे या फिर कोहरे में भी दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर तबाह कर सकते हैं।
0: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास दरअसल एक घातक प्लाटून भी होती है। इनमें शारीरिक रूप से सक्षम और स्मार्ट जवानों को भर्ती किया जाता है। वैसे इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। इनका सबसे बड़ा मकसद सीधे तौर पर यही होता है कि जब भी भारतीय सेना कहीं हमला के लिए जा रही है तो सबसे पहले यही प्लाटून आगे उस सेना का रास्ता क्लियर करती है। फिर चाहे बंकरों को नष्ट करना हो या फिर सेना के लिए रास्ता बनाना, यानी इस प्लाटून का कहां बहुत अहम हो जाता है रण क्षेत्र में।
1: फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मन की रक्षा पंक्ति को मिनटों में ध्वस्त करने के लिए घातक प्लाटून के जवान काल गुस्ताफ MK4 से HEDP-502 और MT-576 मल्टी टारगेट बंकर बस्टर गोलों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन का किला चुटकियों में ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर या उत्तर पूर्व में जब आतंकवादी किसी मजबूत घर या कंक्रीट की इमारत में छिप जाते हैं तो घातक प्लाटून को बुलाया जाता है। पहले भारी हथियारों को संकरी गलियों में ले जाना मुश्किल होता था, वहीं MK4 के हल्के वजन के कारण सैनिक इसे आसानी से संकीर्ण रास्तों पर ले जा सकेंगे और कमरे के अंदर से फायर करने वाले विशेष गोलों की मदद से बिना अपनी जान जोखिम में डाले इमारत को उड़ा देंगे।
2: किसी भी इन्फेंट्री असॉल्ट के दौरान इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स हैं या कमांडोज हैं, उनको या तो ऊंची ऊंची चोटियों पर जल्दी से जल्दी चढ़कर दुश्मन के ऊपर वार करना होता है, या खेतों में, मार्शी एरिया में, दलदल एरिया में, या रेगिस्तान, जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ पर सॉफ्ट सैंड पर द्रुत गति से आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में अगर एंटी टैंक लॉन्चर ट्यूब का वजन 14 किलो है या 10 किलो है तो फिर जवानों की मोबिलिटी में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी को ओवरकम करने के लिए अब यह तय किया गया है कि कार्ल गुस्ताव MK4 का जो लॉन्च ट्यूब होगा वो कॉम्प्लेक्स ग्लास फाइबर ट्यूब का बना होगा और टोटल वेपन सिस्टम का वजन 7 किलो से कम होगा, ताकि इन्फेंट्री का जो जवान है वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, समझिए उसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर, 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर पर हमला करना हो तो द्रुत गति से वो अपने पैरों से ऊपर चढ़कर द्रुत गति से इफेक्टिव फायर दुश्मन पर ला सके।
1: हथियारों की दुनिया में काल गुस्ताफ MK4 को सेना के बजट के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। एंटी टैंक मिसाइल से ये बेहद सस्ता है, जहां स्पाइक या फिर जेवलिन ATGMs की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, इसके उलट काल गुस्ताफ का एक रॉकेट शेल महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है। इसके टाइटेनियम लाइन बैरल की लाइफ 1500 राउंड है। इसका मतलब ये है कि ये सालों साल बिना खराब हुए हजारों गोले दाग सकता है, जिससे रखरखाव का खर्च बहुत कम हो जाता है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता आएगी। स्वीडन की कंपनी साब की ओर से झज्जर हरियाणा में लगाई गई 100% FDI फैक्ट्री के कारण भारत को अब लॉन्चर या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
2: कार्ल गुस्ताव MK4 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हरियाणा में हिसार के पास सेटअप किया जा रहा है। इसी के तहत यह भारत सरकार के लिए मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। यह बहुत हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वेपन सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि यह फाइबर ग्लास का बना होता है और एक ही ट्यूब को 15 साल तक और युद्ध की परिस्थिति में 1500 राउंड फायर करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रेवेन्यू फ्रेंडली यानी कम खर्चे वाला वेपन सिस्टम लॉन्ग रन में साबित होगा।
1: मौजूदा समय में कालगुस्ताफ सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। अलग अलग देश इसे अलग अलग नामों और रणनीतियों के साथ अपना रहे हैं। ब्रिटिश सेना इसे चार्ली जी कहती है, कैनेडियाई सैनिक इसे काल जी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सेना चार्ली गट्स एक कहती है, वहीं अमेरिका में इसे मॉज यानी मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम कहा जाता है। कालगुस्ताफ सिस्टम के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन काम एक है और वो है दुश्मन को बैकफुट पर धकेलना। भारतीय सेना ने कालगुस्ताफ को 1974 में अपनाना शुरू किया और 1976 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के साथ ये समझौता हुआ, जिसके बाद से अभी तक कालगुस्ताफ लगातार भारतीय सेना का एक बहुत भरोसेमंद साथी बना हुआ है। करगिल युद्ध के समय भारतीय सेना ने कालगुस्ताफ सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पहाड़ों की चट्टानों के बीच कंक्रीट और पत्थरों के मजबूत बंकर बना दिए थे, जहां पारंपरिक राइफलों और मशीन गनों की गोलियां बेअसर थी। भारतीय सैनिकों ने कालगुस्ताफ को अपने कंधों पर उठाकर 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके हाई एक्सप्लोसिव ड्यूअल पर्पस गोलों ने बंकरों की दीवारों को सीधे छेद कर उड़ा दिया, जिसने भारतीय इन्फेंट्री को चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराने में सबसे बड़ी मदद की।
0: पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अगर देखा जाए तो खास तौर पर कश्मीर घाटी में भारतीय सेना का सबसे मजबूत साथी है कालगुस्ताफ। दरअसल ये इस तरह का इलाका है जहां पर आतंकवादी कहीं भी आकर हमला करके उसके बाद झाड़ियों में या कंक्रीट में के बने कुछ मकानों में या फिर गुफाओं में अंदर जाके छिप जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर आतंकियों को काम तमाम करने के लिए सैनिकों को ठीक उनके पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये काम कालगुस्ताफ आसानी से कर देता है।
1: हथियारों की रीयूजेबिलिटी और वर्स्टेबिलिटी के कारण भारतीय सेना ने इसे अपनी अग्रिम सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बनाया। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीजफायर वॉयलेशन का जवाब देने और उनके अग्रिम बंकरों को तबाह करने के लिए कालगुस्ताफ सिस्टम का अक्सर इस्तेमाल होता है। वहीं LAC पर चीनी चौकियों के ठीक सामने भारतीय सेना की लगभग सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर कालगुस्ताफ के पुराने संस्करण MK2 और MK3 हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी अचानक बख्तरबंद घुसपैठ को रोका जा सके।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: देखिए 20 जुलाई से 7 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के डर्विन और टिंडल एयरबेस पर पिच ब्लैक 2026 एक्सरसाइज आयोजन किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में 19 से ज्यादा देशों की वायुसेनाओं के 100 से ज्यादा विमान और 2,500 से ज्यादा सैनिक शामिल होने जा रहे हैं। सभी देश मिलकर हवाई मिशन, ऑपरेशन की योजना, संचार और युद्ध जैसी स्थिति में साथ काम करने का अभ्यास करेंगे।
6: ऑस्ट्रेलिया में गर्जेगा राफेल, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में दिखेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। 19 देशों के पिच ब्लैक एक्सरसाइज के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपनी हवाई ताकत का दम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित होने वाले मेगा हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के जवान पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना इस युद्धाभ्यास में 4 राफेल, 2 C-17 ग्लोब मास्टर और 120 जाबाज सैनिकों के साथ शामिल हो रहा है। 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाले इस महायुद्धाभ्यास में दुनिया के 19 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का कड़ा अभ्यास करेंगे, जो वैश्विक सुरक्षा और तालमेल के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का मकसद दूसरे देशों की एयरफोर्स के साथ मिलकर अभ्यास करना, युद्ध जैसी स्थिति में बेहतर तालमेल बनाना और नए तरीके सीखना है। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स हर 2 साल पर यह अभ्यास आयोजित करती है। भारत पिछले कुछ सालों से दुनिया के बड़े सैन्य अभ्यासों में लगातार हिस्सा ले रहा है। इससे भारतीय वायुसेना को नई तकनीक, नए ऑपरेशन और दूसरे देशों के काम करने के तरीके को करीब से समझने का मौका मिलता है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल हवाई सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। पहले इसमें कम देश शामिल होते थे, लेकिन अब ये दुनिया के बड़े एयर कॉम्बैट अभ्यासों में गिना जाता है। इसमें लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, टैंकर विमान और हजारों सैन्यकर्मी हिस्सा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर 20 जुलाई से 17 अगस्त तक होने वाले पिच ब्लैक 2026 अभ्यास में 100 से ज्यादा विमान शामिल हो रहे हैं। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रेनिंग में 19 देशों की वायुसेनाएं आपस में मिलकर हवाई मिशन, ऑपरेशन की योजना, संचार और युद्ध जैसी स्थिति में साथ काम करने का अभ्यास करेंगे। इससे एक दूसरे के काम करने का तरीका समझने का मौका मिलेगा, साथ ही नई तकनीक और बेहतर तरीके भी सीखने को मिलेंगे। इस बार पिच ब्लैक अभ्यास में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के विमान शामिल होंगे। साथ ही न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, ब्रुनेई, मलेशिया, फिनलैंड और स्वीडन के सैनिक भी इस अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 के जरिए भारतीय वायुसेना को अपनी तैयारी को और मजबूत करने और परखने का मौका मिलेगा। राफेल के साथ इस अभ्यास में हिस्सा लेकर भारत दुनिया की बड़ी वायुसेनाओं के साथ तालमेल बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य के अभियानों के लिए खुद को और बेहतर तैयार कर सकेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
8: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
9: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा ग्रह आपको बुद्धि देता है और कौन सा ग्रह आपको डिग्री देता है? अगर शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, तो क्या है उन बाधाओं को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: इसके ऊपर उसके ऊपर गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर

प्रहा। सुनो, कथा किससे सुननी चाहिए? पहला लक्षण विरक्त होना चाहिए। विरक्त मतलब संसार में अनुरक्त ना हो। महाराज, ऐसा आदमी तो मिलना बड़ा कठिन है, ऐसे व्यास जी मिलना बड़े कठिन है। अरे भाई, अनुरक्त तो हो पर उसी में ना डूबे हो कि कथा की जगह वृथा सुनाए। ऐसे के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो वृथा नहीं कथा सुनाए उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। दूसरा लक्षण विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव कौन? जो श्री हरि का उपासक हो, ठाकुर जी का उपासक हो, या राम जी का उपासक हो, या घनश्याम का उपासक हो, जिनके माला हो, शिखा हो, तिलक चंदन हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। तीसरा लक्षण क्या? बोले विप्रो, विप्र भी होना चाहिए। विप्र मतलब जिसका 8 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, परंपरा का जो अनुसरण करता हो, गुरु ज्ञान जिसने प्राप्त किया हो, वर्ण परंपरा, वेद परंपरा का जिसको ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति के मुख से ही भगवान की कथा को सुननी चाहिए। चौथा लक्षण वेद शास्त्र विशुद्ध करता। भैया, ज्ञानी हो जो खुद नहीं पढ़ पाएगा, दूसरों को हलवा पढ़ा पाएगा क्या? वेद शास्त्र विशुद्ध हो, शुद्ध नहीं विशुद्ध। बोले और क्या लक्षण? बोले दृष्टांत कुशलो, समझाने में कुशल हो, दृष्टांत देकर समझा सके। ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। फिर क्या? धीरहा, धैर्यवान हो, बहुत चंचल ना हो, धैर्यवान होना चाहिए। हाँ, मतलब ठीक है पर बहुत धैर्य भी हो, गंभीर बात को गंभीरता से कहें, ऐसा धैर्यवान। धीरहा, ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। ये वक्ता के लक्षण है। वक्ता कार्योति निष्प्रहा। अब श्रोता के लक्षण सुनो। कपिल जी कहाँ है? सुनो ध्यान पूर्वक बैठकर। श्रोता कैसा होना चाहिए? तुम्हारे माता पिता भी सुन रहे हैं, सुनो जितने श्रोता हैं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा कैसी करवाओ? सुनो, जितनी क्षमता हो उतनी बड़ी। हाँ, जैसे विवाह में जितनी क्षमता होती उतना बढ़िया विवाह कराया जाता, कथा को भी वैसे ही करवाना चाहिए उत्सव के साथ। कथा कैसी करवाओ? सबको बुलाओ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबको आवाहन करो। कथा कैसी कराओ? जो कथा में आवे सब भगवान स्वरूप हैं। कथा कैसी करवाओ? एक जगह हमारी उत्तर प्रदेश में कथा हुई, जो यजमान हमारा बना, कथा का यजमान बना, उसने अपनी फोटो 5 फुट की लगवाई, हमारी बिल्कुल चिरैया बराबर, एक कोने में नाम लिखा था कथाव्यास बागेश्वर धाम सरकार। हमने जैसे ही शहर में प्रवेश किया, उसकी फोटो इतनी बड़ी बड़ी, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे, अरे भैया पूरे में चेला ही चेला चिपको, जजमा नहीं, हम कोने पे चिरैया बराबर, इतने से जैसे वो ट्विटर की चिरैया नहीं होता, उतने कोने पे चिपके। जैसे ही हम घर पहुंचे, चेला बोला गुरुजी आरती आरती आरती, आइए आइए गुरुजी, तैयारी ठीक है? उनका बेटा, तैयारी तो बहुत अच्छी है पर तुम्हें बैनर में हमारी फोटो नहीं लगानी थी। बोले क्यों? हमका बेटा, काहे को बेफिजूली में लगा दी, थोड़ा तुम और बड़ी लगा लेते, हाथ तुम्हारे फैल जाते, इतनी सी फोटो का है। मतलब हम फोटो को मरे नहीं जा रहे, कुछ चेला ऐसे होते हैं कि केवल चेला ही चेला दिखते, समझ गए ना? हाँ, कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है,
कथा भगवत दर्शन का विषय है। समझ गए? काय का विषय है? भगवान के दर्शन का विषय। कथा कैसी हो, प्रारंभ में कीर्तन हो और बाद में भी

श्रोता जो कथा सुने वो 7 दिन तक बैठ करके जो कथा सुने उसका आत्मसात भी करे, आत्मचिंतन करे। कथा सुनने के अधिकारी कौन है? सब, सबके लिए कथा है भैया। कथा के लिए कोई एक विशेष नहीं, सब कथा सुन सकते हैं। लेकिन भागवत जी में प्रथम स्कंद में एक जगह जरूर वर्णन दिया, वो बात हमको बहुत अच्छी लगी। बोले कथा का विशेष अधिकारी, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहि रहो रस कहा भुवि भावु कहा। बोले सुनो, कथा के सब अधिकारी हैं पर दो लोग विशेष कथा के अधिकारी। बोले कौन? जो भावुक है और जो रसिक है। रसिकों को आगे कथा में बैठना चाहिए, भावुक को आगे बैठना चाहिए। वर्तमान में तो फोटो वाले ज्यादा आगे बैठते। हाँ, हमने देखा है टीवी पे स्क्रीन जो लगी ना, आधे लोग वहीं देखते रहते, हमारी फोटो नहीं आई। हाँ, और जब तक कथा चले तब तक तो वो ऐसे बैठते जैसे पिट गए हो, कुछ भी बड़ी बात कह दो। लेकिन जैसे ही कैमरा उनके सामने पहुंचे, जैसे ही कैमरा सामने पहुंचे तुरंत ऐसे ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात प्रहलाद जी या मीराबाई बैठे। इतनी भक्ति, इतनी भक्ति। और फिर बाद में जाके काट के इंस्टाग्राम पे अलग चढ़ा, हो हो हो आज आज कथा में बड़ा आनंद आया। अरे टीवी की फोटो में आनंद आया कि कथा में आनंद आया? धन्य है भागवत की कथा। जो श्रोता भागवत जी की शरण में आ जाता वो ठाकुर जी की शरण में आ जाता। कल आपने महिमा तो सुनी भागवत जी की, अब आज सुनो भागवत की कथा करवाने से होता क्या है। भागवत जी के महत्व में वर्णन आया।

जते। सनत कुमार नारद जी को सुनाने लगे, नारद जी भागवत जी की कथा जिन्होंने सुनी उनका कल्याण हुआ। बोले महाराज कोई प्रमाण बताओ। बोले सुनो, एक बड़े ही विशुद्ध कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। उनकी जो पत्नी थी वो ठीक विपरीत थी। पंडित जी जितने सीधे थे ना, जितने धर्मात्मा थे, जितने पुण्यात्मा थे, कर्मकांडी, उनकी पत्नी उतनी ही उल्टी थी। उनका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो, धुंधली देवी। महाराज धुंधली देवी पंडित जी की पत्नी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई घर में नहीं घुसती थी। इतनी लड़ंकू, महा लड़ंकू। महाराज लड़ाई करें सो तो ठीक है, इतनी गाली एक श्वास में दे बे कि सामने मालो गाली की गिनती ना कर पावे कि कितनी दई। हाँ, और तो और दूसरी खूबी सुनो, जब वो लड़ाई करवे बाहर आवे तो पानी का मटका साथ में ले आवे। तो कोई पूछे कि ये क्या है? बोले पानी है। बोले पानी तो है, वो तो हमें दिख पड़ रहा, पर ये बाहर लेके क्यों आई हो? बोले बा, गाली बकेंगे तो गाली देंगे तो गला सूखेगा ना। तो किसी ने कहा गला सूखेगा तो अंदर जाके पानी पिया। बोले वाह, जब तक पानी पीने अंदर जाएंगे तब तक ये तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे। हाँ, इसलिए वो मटका साथ में लेके आवे। पंडित जी जितने सीधे, पंडितानी उतनी महाराज उल्टी। एक ही कमी थी इनके घर में। क्या? धन था, दौलत थी, पर संतान नहीं थी। और सुनो, पति बिन सुनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मांग ना भरी हो ना, सुंदर नहीं लगती, शोभा नहीं देती। किसी का महल कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितनी भी गाड़ियां हो, कितना भी बड़ा नाम हो, पर पुत्र ना हो ना तो घर किसी काम का नहीं भैया, वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। ब्राह्मण देवता का भाग्य बड़ा उल्टा था। एक तो संतान नहीं थी और भाग्य इतना विपरीत, यो जितनी भी गाय लेकर आवे तो वहां से तो गाय ठीक ठाक आवे, पर इनके घर में आती गाय बछड़े देना, बच्चे देना बंद कर दे, इतना भाग्य खराब। ये कोई पेड़ लगाए ना, इतना भाग्य खराब महाराज, ये कोई पेड़ लगावे तो फूल तो आवे पर फल ना आवे। एक दिन पंडित जी ने सोचा मर जाना ही अच्छा है, ऐसे जीवन क्या काम का, मर जाते हैं। जंगल चले गए, बन गए तो बन में मरने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, रोने लगे। हमारा पता नहीं कौन सा अपराध है, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया, कोई संतान ही नहीं हुई, क्या काम का ऐसा जीवन, मैं तो मर रहा हूं। ऐसा सोच ही रहे थे तब तक एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने रोता हुआ देखा, लगा कोई भगवान का भक्त है, भगवान की याद में रो रहा है। महात्मा नजदीक आ गए। क्या बात है ब्राह्मण देवता,

क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे घर पर, कोई संतान नहीं है इसलिए रो रहे हैं। महात्मा मनी मन सोचने लगे, अरे राम राम राम, हम तो सोच रहे थे कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा वन में, ये तो बेटा का भक्त निकला, पुत्र का भगत निकला, बेटा के लिए रो रहा है, राम राम राम राम राम। महात्मा ने उनके माथे को जरा पकड़ा, थोड़ा पड़ा, पंडित जी एक बात बोले। हाँ महाराज बोलो। पंडित जी एक जन्म तो एक जन्म, हमने आपके भाग को पढ़ लिया, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नवीचा नैवचा नैविचा, सात जन्म तक तुम्हारे भाग में कोई संतान नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी ने मस्तक लिया, जोर से पटक दिया महात्मा के चरण में। हे महाराज क्या कर रहे हो? अरे महात्मा पहले तो एक गुनाई दुख था, आपने ये बात बताकर हमारे दुख को सात गुना बढ़ा दिया, अब चिंता मत करो, हम अपने प्राण त्याग रहे, आप आत्महत्या भोगने को हमारी ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। महात्मा बोले, हे भगवान खाम खा कहां आफत में पड़ गए, हम अच्छे खासे जा रहे थे, कहां से इनके चक्कर में पड़ गए बेफिजूली में, अब बेफिजूली की आफत हो गई। अरे पंडित जी मरो मत, मरो मत, कोई उपाय बताओ। पंडित जी बोले, महाराज हमने सुना महात्माओं की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, आप तो कह दो बेटा होगा, ऐसा आशीर्वाद दो वरना हम प्राण त्याग रहे। महात्मा ने कहा, बता लो, फंस गए बेफिजूली में, ना कहे तो मर जाएगा और कहे तो भगवान को आफत। कोई बात नहीं, एक फल झोला से निकाला, बढ़िया फल हाथ में दे दिया, ले पंडित जी फल है फल, जाओ भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर इसी फल के प्रभाव से प्रतिफल में बेटा होगा। जय हो महाराज, जय हो जय हो। इतना कह के आ गए। पंडित जी जाने लगे, महाराज कोई नियम करना है, बस भजन करो नाम जप करो, पत्नी से कहना शांत रहे भजन करे, बढ़िया बेटा होगा, बढ़िया जो आज्ञा महाराज। अब पंडित जी घर आए, पत्नी बैठी थी बढ़िया धुंधली देवी, ए महाराज इतने दिन कहाँ गायब रहे स्वामी जी, अब कुछ ना पूछो, ये बातें बाद में बताएंगे, पर सुनो हम बड़ी खुशखबरी लेके आए। क्या खुशखबरी? ये लो महात्मा का दिया हुआ फल है देवी जी, खा लो, भगवान ने चाहा इसी फल के प्रभाव से बेटा होगा बेटा। अच्छा महाराज। हाँ इतना कह के पंडित जी गांव में बताने चले गए, गांव वालों को, चिंता ना करो, जो सुबह सुबह हमारा मुंह देखने से बचते हो ना, अब हमारे भी घर पे 9 महीने बाद में किलकारी गूंजने वाली है, बेटा होने वाला है। इधर धुंधली देवी पंडित जी की पत्नी फल लेके बैठी, खाई ना, इतने में पड़ोसन आ गई, अरे बहन क्या बात है, आज बड़ी चिंता में दिख रही है। बहन मैं का बताऊं, तू ठीक आ गई, ये हमारे पति देव ना हस्बैंड फल लेके आए, अब वो कह रहे थे ये खा लो बेटा होगा, तू बता खाऊं या ना खाऊं। पड़ोसन बोली, कैसी बात करती है, भगवान की कृपा की बात है, बड़ी अच्छी बात है, खा ले बेटा हो जाएगा, वंश चल जाएगा, पर कुछ दिक्कत है मुंह को। क्या? मैं सोच रही हूं मैं फल खाऊं और कहीं मैं गर्भवती हो गई तो बाद में मैं बद सुंदर दिखूंगी। पड़ोसन बोली, अरे बाबरी तू सुंदर बद सुंदर के चक्कर में पड़ी है, खा, ये सुंदरता के चक्कर में मत पड़, बेटा होगा वंश चलेगा। बहन एक बात और बता। हाँ मैंने सुना है जो गर्भवती हो जाती है वो दौड़ नहीं पाती। पड़ोसन बोली, तुझे कौन सा आर्मी की भर्ती होने करने जाना है जो दौड़ लगानी है, काय को बेबेजूली की बातें कर रही, खा ले। अरे महाराज, पड़ोसन बोली, अरी धुंधली बोली, अरी बहन मुझे एक संदेह है मन में, क्या कहीं मैंने फल खाया मैं गर्भवती हो गई फिर मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, कहीं घर में आग लगी सब तो भाग जाएंगे मैं जल के मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली, ये पक्का थोड़ी है आग लगे, तो धुंधली बोली, तू गारंटी लेके आग नहीं लगेगी। पड़ोसन ने कहा, कौन गारंटी ले, कहीं ये अपने हाथ से लगा ले, इसके दिमाग का पता थोड़ी है, खतरनाक है।
बोली बहन तू जान तेरा काम जाने, हम तो जे चले राम जी की जय, राम जी की। अब वो चली गई महाराज। लेकिन धुंधली की जो बहन थी भैया, उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी।

0: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा ग्रह आपको बुद्धि देता है? और कौन सा ग्रह आपको डिग्री देता है? अगर शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, तो क्या है उन बाधाओं को दूर करने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज पांचवा दिन, आज निभाई जाएगी हेरा पंचमी की परंपरा। अड़पा मंडपम में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के रेड अलर्ट, आज कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टी के आदेश। ऑस्ट्रेलिया में आज से एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, भारत के राफेल IL-78C-17 विमान होंगे शामिल, 7 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज। स्पेन बना फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया, स्पेन में जोरदार जश्न। स्पेन की जीत का भारत में भी मना जोरदार जश्न, केरलम हैदराबाद मुंबई से लेकर दिल्ली एनसीआर गुवाहाटी और अग्रतला में भी सड़कों पर खुशी से झूमते हुए दिखे फैंस। चाइना के शंघाई में दुनिया के पहले रोबोटिक घोड़े की नुमाइश, 1000 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है रोबोटिक घोड़ा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: प्रयागराज में गूंजा जय जगन्नाथ, इस्कॉन मंदिर ने निकाली भव्य रथ यात्रा। सिविल लाइंस की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते नजर आए, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। प्रयागराज में दिखा महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की भक्ति का अनोखा रंग। प्रयागराज में भव्य रथ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालुओं में भक्ति का माहौल। महाराष्ट्र के अकोला में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का मेला। जय जगन्नाथ की जय घोष से गूंजा अकोला, 31 फीट ऊंचे और 5 टन वजनी रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने भगवान से मांगी अच्छी बारिश की दुआ, किसानों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आधुनिक सुविधाओं से लैस 31 फीट ऊंचा रथ, रथ में फ्रंट व्हील ड्राइव, स्टेयरिंग, मैनुअल ब्रेक और एडजस्टेबल शिखर जैसी सुविधाएं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, भजन कीर्तन के साथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पूरी रथ यात्रा में अडपा बीजे की पवित्र रस्म की गई पूरी। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। देव विग्रहों को पारंपरिक और संगीतमय पहंडी जुलूस में रथों से उतारकर गर्भगृह तक ले जाया गया। भक्ति में डूबा पूरा मंदिर परिसर। अडपा मंडपम में भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, भक्तों ने लिया भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज पांचवा दिन। महाप्रभु बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में कर रहे हैं विश्राम। सात दिनों तक विश्राम के बाद 24 जुलाई को जगन्नाथ मंदिर में के लिए निकलेंगे भगवान। वापसी रथ यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। जूनागढ़ जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया। गिरनार यात्रा के लिए अनिवार्य होगा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन। QR कोड स्कैन कर होगी गिरनार यात्रा की एंट्री। पुरानी सीढ़ी और रोपवे से जाने वाले हर यात्री को कराना होगा इन आउट रजिस्ट्रेशन। 18 जुलाई से ट्रायल के तौर पर शुरू हुई नई व्यवस्था, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी रहेगी सुविधा। अमरनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर गिरनार में नई व्यवस्था, जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त पहल। रजिस्ट्रेशन से आपात स्थिति में यात्रियों की लोकेशन और संख्या का लगाया जा सकेगा पता, राहत बचाव अभियान भी होगा आसान। चारधाम यात्रा को मिलेगी रफ्तार, रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबी टनल तैयार। रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक जाम से मिलेगी तीर्थयात्रियों को मिलेगी राहत, अलकनंदा नदी पर बन रहे 200 मीटर लंबे डबल लेन पुल का काम भी लगभग पूरा। पुल का निर्माण 31 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद, इसके बाद किया जाएगा वाहनों का ट्रायल। लाखों श्रद्धालुओं के सफर को आसान बनाएगी नई परियोजना, टनल और पुल बनने से चारधाम यात्रियों की समय की होगी बचत। गुणवत्ता जांच के बाद शुरू होगा पुल पर यातायात, केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ेगी टनल। दिल्ली में मुग्धर मैन की अनोखी पहल, बच्चों को बांटे 4000 से ज्यादा मुग्धर। बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने की पहल, पहलवान हवा सिंह राणा पारंपरिक फिटनेस को दे रहे हैं बढ़ावा। ताऊ मुग्धर नाम से मशहूर है पहलवान हवा सिंह राणा, बच्चों को मोबाइल नहीं मुग्धर चलाओ मुहिम से जोड़ने की कोशिश। बच्चों को मुग्धर घुमाकर फिटनेस का पाठ पढ़ा रहे हैं पहलवान हवा सिंह राणा, बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है लक्ष्य। बच्चों के माता पिता की शिकायत ने दिखाया अनोखा रास्ता, पहलवान के पास 120 साल पुराना मुग्धर भी मौजूद। जलंधर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, डेरा सचखंड बल्ला में टेका माथा। पश्चिम बंगाल की पूर्वी बर्धमान में दूल्हे ने अपनी शादी खास अंदाज में बनाया इसको यादगार, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को बांटे हेलमेट। तनवीर ने सेव ड्राइव सेव लाइफ अभियान को शादी से जोड़ा, 25 बाइक सवारों को दिए हेलमेट। बिहार में 551 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन, बेगूसराय में बनेगा दिनकर विश्वविद्यालय। मदुरई में नशा मुक्ति का संदेश दिया गया, राज्य के मंत्री ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। देवभूमि उत्तराखंड में जारी बारिश का दौर, देहरादून में लोगों को गर्मी से मिली राहत। देहरादून में शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, मौसम विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। टिहरी में आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला। देहरादून में भारी बारिश के बाद सड़कों पर हुआ जलभराव, ट्रैफिक की धीमी हुई रफ्तार। देहरादून में जारी रहेगा बारिश का दौर, हरिद्वार और टिहरी में भी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, आईएमडी ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, चंबा में बंद रहेंगे स्कूल। चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, हाई अलर्ट पर रखा गया प्रशासन। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश। राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी राहत एजेंसियां तैयार, अलर्ट मोड में पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस सेवा। हिमाचल प्रदेश में लोगों से सावधानी बरतने की अपील, प्रशासन ने लोगों से की बेवजह यात्रा से बचने और नदियों और नालों से दूर रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जोरदार बारिश से बदले हालात, उफान पर नदियों का पानी। राजौरी के निचले इलाकों में भरा बारिश और नदी का पानी, बाढ़ जैसे हालात हुए। राहत और बचाव दल पूरी तरह अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को किया गया तैनात। भारतीय सेना ने राजौरी में तेजी से बाढ़ राहत अभियान चलाया, 11 नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित निकाला बाहर। राजौरी प्रशासन ने लोगों से की अपील, जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बड़ी खबर, खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा पर लगाई गई अस्थाई रोक। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए एक भी नया जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंप की ओर नहीं जाएगा, मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लिया है फैसला। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान अब तक लगभग 4 लाख यात्री कर चुके हैं दर्शन, 3 जुलाई से शुरू हुई थी पवित्र यात्रा। वैष्णो देवी की यात्रा को भी कुछ समय के लिए रोका गया, मौसम साफ होने पर ही लिया जाएगा अगला फैसला। जम्मू, उधमपुर और रामबन में ठहरे श्रद्धालुओं से प्रशासन ने अपील की किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। राजस्थान में कोटा के बॉयज हॉस्टल में घुसा 4 फीट का मगरमच्छ, मेस में मची अफरा तफरी। होटल प्रशासन ने वन विभाग को जानकारी दी, वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ा। अब आसमान से देखिए बिहार, पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद कई यात्रियों ने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पटना का हवाई भ्रमण किया, हेली सेवा को अनुभव को बताया शानदार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की अनोखी पहल, कुछ दिनों में अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हुई, मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया का करेंगे दौरा। भारत के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पनामा के विदेश मंत्री कई हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में सीईओ के लिए आवेदन की तारीख हुई खत्म, अब तक

0: में हुआ शुभारंभ। साइकिल रैली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिस्सा लिया, लोगों को अच्छी सेहत का संदेश दिया। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। पीवी सिंधु ने फाइनल में मेजबान जापान की स्टार खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराया, सीधे गेमों में 21-17 21-17 से मात दी। जापान ओपन का खिताबी मुकाबला 50 मिनट तक चला, सिंधु और अकाने यामागुची के बीच ये 30वां मुकाबला रहा। पीवी सिंधु के करियर का 19 महीने बाद सूखा खत्म हुआ, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का खिताब किया अपने नाम। महिला कुश्ती की बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवान काजल ने 76 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड, अंतिम पंघाल को 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक। करनाल का बेटा गंगा बना चैंपियन, अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जकार्ता में जीता गोल्ड मेडल। गंगा ने 55 किलोग्राम वजन कैटेगरी में जीता गोल्ड, दो दो यूथ चैंपियंस को मात दी। करनाल पहुंचने पर गंगा का हुआ जोरदार स्वागत, लोगों ने फूल बरसाकर खिलाई मिठाई। दिल्ली में होने वाली बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की तैयारियां तेज, खेल मंत्री मनसुख मांडवीय ने मैस्कॉट और एंथम का अनावरण किया। सत्रह से 23 अगस्त के बीच इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, 50 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में फिल्म रामायण का रेड कार्पेट इवेंट, कई सितारों ने शिरकत की। समारोह में रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने शिरकत की, फिल्म रामायण में निभा रहे हैं प्रभु राम और मां सीता का किरदार। रेड कार्पेट इवेंट में रणबीर कपूर ने छुए लेखक कुमार विश्वास के पैर, इवेंट में फिल्म के ट्रेलर की झलक भी दिखाई गई। फिल्म रामायण के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे ये एक्टर अरुण गोविल, फिल्म में निभा रहे हैं राजा दशरथ का किरदार। फिल्म रामायण का रेड कार्पेट इवेंट में करण जौहर, विवेक ओबेरॉय भी पहुंचे, एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और अक्षरा सिंह भी मौजूद रहीं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Test Fasio.
3: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
4: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
3: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
4: Remember, around here, we use the F Word, never the S Word.
2: The S Word, available now on TuneIn, wherever you get your podcasts, and on the S Word YouTube channel.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शिक्षा की, शिक्षा के ग्रहों की, और शिक्षा में अगर बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करने के उपायों की। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा में बाधा कब आती है, और अगर आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली में पांचवा भाव आपकी सोच का, आपकी बुद्धि का होता है, और ये शिक्षा का केंद्रीय भाव है। हालांकि बहुत सारे लोग चतुर्थ भाव को शिक्षा का भाव मानते हैं, लेकिन वास्तव में पंचम भाव शिक्षा का केंद्रीय भाव है। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव, फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस, शिक्षा के सहायक भाव हैं। सूर्य शिक्षा का मुख्य ग्रह है, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का नैसर्गिक रूप से होता है। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि को और बृहस्पति आपके ज्ञान को मजबूत करता है। इन सब स्थितियों को देख करके शिक्षा का ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्यतः पंचम भाव, बुध और सूर्य ये बड़े महत्वपूर्ण हैं आपकी शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए, और इनको देख करके एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में जाना जा सकता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद, तमाम कोशिश करने के बावजूद शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा में दिक्कत आती है। कब आती है? कुंडली में अगर चतुर्थ भाव खराब हो गया, या कुंडली में अगर पंचम भाव खराब हो गया, दोनों में से एक भी भाव अगर बिगड़ा तो शिक्षा में बाधा आएगी। हो सकता है कि आगे पूरी हो जाए, लेकिन इनिशियली, आरंभिक रूप से शिक्षा में बाधा आएगी। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, दूसरे भाव में पाप ग्रह आ जाएं, तो भी शिक्षा में बाधा आ सकती है, ये संभावना बनती है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, तब तो शिक्षा में बाधा जरूर आएगी, और शिक्षा एक लेवल पर जा करके रुक जाएगी। अगर बुध खराब हो गया, तब शिक्षा आपकी बीच में रुकेगी और आगे आरंभ नहीं हो पाएगी। कुंडली में अगर अग्नि तत्व मजबूत है, फायर के इलाके में ज्यादातर ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई करने में, और ऐसी स्थिति में शिक्षा में बाधा आएगी।
मूलांक 2, 6, 7 और 8 इन मूलांक वालों के शिक्षा में अक्सर बाधा आती है, अक्सर रुक रुक कर या टूट टूट कर इनकी पढ़ाई होती है, ऐसा देखा गया है। देखिए, शिक्षा में बाधा आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण है शिक्षा में बाधा आने के और उन बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या हैं, अब वो समझते हैं। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति शिक्षा बीच में छोड़ देता है या ज्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में नहीं पड़ता, जल्दी धन कमाने के चक्कर में पड़ता है और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। अगर कुंडली में बुध गड़बड़ हो गया तो शिक्षा में मन ही नहीं लगता, शिक्षा में एकाग्रता नहीं आती, व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, बार बार अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में, तरीकों में बदलाव करता रहता है लेकिन उसका मन नहीं लग पाता। अगर बृहस्पति गड़बड़ है कुंडली में तो आदमी पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन किसी न किसी कारण से डिग्री मिल पाने में, रिजल्ट मिल पाने में समस्या होती है, व्यक्ति के पास डिग्री नहीं आती। और बृहस्पति की वजह से पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बृहस्पति बार बार पढ़ाई में अड़चन पैदा करने का प्रयास करता है। अब अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा ठीक हो, ठीक तरीके से चले, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, नित्य प्रातः सूर्य देव को चढ़ाइएगा। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। सप्ताह में एक दिन किसी धार्मिक स्थान पर मंदिर में जा करके प्रार्थना जरूर करिएगा और अपने पढ़ने की जगह पर ढेर सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए। लाइट ज्यादा होनी चाहिए जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं। और सलाह लेकर एक माणिक्य या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। शिक्षा को बेहतर करने के मामले में सूर्य देव को जल अर्पित करने से और गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से आपको शीघ्र लाभ होगा। आप चाहें तो प्रातः काल सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं या सरस्वती वंदना या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता इस स्तुति को भी आप
पढ़ सकते हैं। अगर आप जीवन में ज्ञान चाहते हैं, अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनकी उपासना अगर आप पीले फूलों से करें तो आपको ज्ञान भी मिलेगा और जीवन में पवित्रता भी मिलेगी। कि अगर आपसे बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं और इसका नुकसान आपको होता है तो बचें कैसे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और एक लेब्राडोराइट नाम का रत्न लॉकेट में पेंडेंट में बनवाकर अपने गले में धारण करिए। दूसरों की ईर्ष्या से और दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज पांचवा दिन, आज निभाई जाएगी हेरा पंचमी की परंपरा, अड़पा मंडपम में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के रेड अलर्ट, आज कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टी के आदेश। ऑस्ट्रेलिया में आज से एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, भारत के राफेल IL-78C-17 विमान होंगे शामिल, 7 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज। स्पेन बना फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया, स्पेन में जोरदार जश्न। स्पेन की जीत का भारत में भी मना जोरदार जश्न, केरलम हैदराबाद मुंबई से लेकर दिल्ली NCR गुवाहाटी और अगरतला में भी सड़कों पर खुशी से झूमते हुए दिखे फैंस। चाइना के शंघाई में दुनिया के पहले रोबोटिक घोड़े की नुमाइश, 1000 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है रोबोटिक घोड़ा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज हम इस शो में जानेंगे कि आपकी शिक्षा में बाधा क्यों आती है और इस बाधा को दूर करने के महा उपाय क्या हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुडलक मंत्र क्या है।
1: अगर आप जीवन में ज्ञान चाहते हैं, अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनकी उपासना अगर आप पीले फूलों से करें तो आपको ज्ञान भी मिलेगा और जीवन में पवित्रता भी मिलेगी।
0: तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 20 जुलाई 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 7:09 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए आगे बढ़ेंगे शो में और सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि शिक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा में बाधा कब आती है और अगर आपकी एजुकेशन में शिक्षा में बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली में पांचवां भाव आपकी सोच का, आपकी बुद्धि का होता है और ये शिक्षा का केंद्रीय भाव है। हालांकि बहुत सारे लोग चतुर्थ भाव को शिक्षा का भाव मानते हैं, लेकिन वास्तव में पंचम भाव शिक्षा का केंद्रीय भाव है। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव, फोर्थ हाउस और सेकेंड हाउस, शिक्षा के सहायक भाव हैं। सूर्य शिक्षा का मुख्य ग्रह है क्योंकि पंचम भाव सूर्य का नैसर्गिक रूप से होता है। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि को और बृहस्पति आपके ज्ञान को मजबूत करता है। इन सब स्थितियों को देख करके शिक्षा का ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्यतः पंचम भाव, बुध और सूर्य ये बड़े महत्वपूर्ण हैं आपकी शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए और इनको देख करके एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में जाना जा सकता है।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में शांति बनाए रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और आप पंडित जी से जान लेते हैं कि शिक्षा में बाधाएं कब आती हैं।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद, तमाम कोशिश करने के बावजूद शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा में दिक्कत आती है। कब आती है? कुंडली में अगर चतुर्थ भाव खराब हो गया या कुंडली में अगर पंचम भाव खराब हो गया, दोनों में से एक भी भाव अगर बिगड़ा तो शिक्षा में बाधा आएगी। हो सकता है कि आगे पूरी हो जाए, लेकिन इनिशियली आरंभिक रूप से शिक्षा में बाधा आएगी। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, दूसरे भाव में पाप ग्रह आ जाएं, तो भी शिक्षा में बाधा आ सकती है, ये संभावना बनती है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, तब तो शिक्षा में बाधा जरूर आएगी और शिक्षा एक लेवल पर जा करके रुक जाएगी। अगर बुध खराब हो गया तब शिक्षा आपकी बीच में रुकेगी और आगे आरंभ नहीं हो पाएगी। कुंडली में अगर अग्नि तत्व मजबूत है, फायर के इलाके में ज्यादातर ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई करने में, और ऐसी स्थिति में शिक्षा में बाधा आएगी। मूलांक 2, 6, 7 और 8, इन मूलांक वालों के शिक्षा में अक्सर बाधा आती है, अक्सर रुक रुक कर या टूट टूट कर इनकी पढ़ाई होती है, ऐसा देखा गया है।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बनेंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। पंडित जी, आज का सबसे पहला सवाल किसका रहने वाला है?
1: जी, आज का पहला प्रश्न दीपक शर्मा जी ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 1978, जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान है खतौली, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। दीपक जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें भी आ रही हैं और बार बार लोगों से विवाद भी हो जा रहे हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो और बार बार लोगों से विवाद ना हो। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि नवंबर 2026 तक अभी शांति बनाए रखिए और नवंबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। नवंबर के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। और जहां तक स्वास्थ्य का मामला है, आपको ज्यादातर ध्यान देना है अपने डाइजेशन का, अपने पेट का, डाइजेशन का। अगर आप ध्यान रखें तो स्थितियां नियंत्रण में बनी रहेंगी। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के आपके दूसरे सवाल का, तो पंडित जी आज का दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
1: जी अगला प्रश्न हमें अनीता जी ने लिखा है और अनीता जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1982, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म का स्थान है धनबाद। मेल लिखती हैं रांची से। अनीता जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं और मैं अपने मायके में आ गई हूँ, क्या मेरा विवाह चल सकेगा, विवाह की स्थिति मेरी कैसी बन रही है? अनीता जी आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह के टूटने की या ब्रेक होने की कोई संभावना नहीं है, आपसी सुलह समझौते से ये स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और आगे आपका विवाह ठीक चलेगा। थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करिए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए तो स्थितियां बेहतर होंगी। अक्टूबर तक ऐसा लग रहा है कि ये मामला हल होगा और आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब पंडित जी से जानेंगे कि शिक्षा में जो बाधाएं आती हैं उसके कारण क्या हैं और उसके निवारण क्या हैं।
1: देखिए, शिक्षा में बाधा आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण है शिक्षा में बाधा आने के और उन बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या हैं, अब वो समझते हैं। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति शिक्षा बीच में छोड़ देता है या ज्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में नहीं पड़ता, जल्दी धन कमाने के चक्कर में पड़ता है और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। अगर कुंडली में बुध गड़बड़ हो गया तो शिक्षा में मन ही नहीं लगता, शिक्षा में एकाग्रता नहीं आती, व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, बार बार अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में, तरीकों में बदलाव करता रहता है लेकिन उसका मन नहीं लग पाता। अगर बृहस्पति गड़बड़ है कुंडली में तो आदमी पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन किसी न किसी कारण से डिग्री मिल पाने में, रिजल्ट मिल पाने में समस्या होती है, व्यक्ति के पास डिग्री नहीं आती। और बृहस्पति की वजह से पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बृहस्पति बार बार पढ़ाई में अड़चन पैदा करने का प्रयास करता है।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जानते हैं कि शिक्षा आपकी ठीक हो और इसके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए।
1: अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा ठीक हो, ठीक तरीके से चले, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, सादा जल प्लेन वाटर नित्य प्रातः सूर्य देव को चढ़ाइएगा। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। सप्ताह में एक दिन किसी धार्मिक स्थान पर मंदिर में जा करके प्रार्थना जरूर करिएगा और अपने पढ़ने की जगह पर ढेर सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए। लाइट ज्यादा होनी चाहिए जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं। और सलाह लेकर एक माणिक्य या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। शिक्षा को बेहतर करने के मामले में सूर्य देव को जल अर्पित करने से और गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से आपको शीघ्र लाभ होगा। आप चाहें तो प्रातः काल सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या सरस्वती वंदना, या कुंदेन दुतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, इस स्तुति को भी आप पढ़ सकते हैं।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक धन की प्राप्ति होगी, परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: समस्या हल होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारी मेल आईडी दी गई है, आप उस पर मेल करके पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी अगला प्रश्न विकास राज ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1994। जन्म का समय सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। विकास कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा या मुझे अपने किसी व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए? विकास आपकी कुंडली के हिसाब से आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना बनती है। आप प्रशासनिक सेवा में बेहतर नौकरी पा सकेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। और साल 2027 आपकी सफलता के लिए एक बेहतर साल दिख रहा है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। पंडित जी आज का चौथा सवाल किसका रहेगा?
0: जी आज का अंतिम प्रश्न मृणाल ने हमें लिखा है, और मृणाल हमें लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 1 अक्टूबर 1995। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है मुंबई। मृणाल कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मृणाल आपकी कुंडली में शादी का समय अभी शुरू नहीं हुआ है, विवाह की जो संभावनाएं बनती हैं वो साल 2027 के अप्रैल के बाद दिख रही हैं। अगले साल आपका विवाह होगा, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आने की संभावना बनती है। शीघ्र और बेहतर विवाह के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 20 जुलाई को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: 20 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कुछ बदलाव होगा और करियर बदलने के बाद पहले से बेहतर हो जाएगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। अविवाहितों के विवाह में इस साल विलंब होता दिख रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या दूसरे का जूठा भोजन करना उचित नहीं होता? देखिए, जब कोई व्यक्ति भोजन को स्पर्श करता है, खाता है, तो भोजन में उसके संस्कार आ जाते हैं। ऐसे में जब आप उसका जूठा भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर भी उसके संस्कार आ जाते हैं। इसलिए भूल कर भी किसी व्यक्ति का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। और जिसके बारे में जानते हों कि उस व्यक्ति का सही संस्कार नहीं है, उसका जूठा क्या सामान्य भोजन भी ग्रहण करने से बचना चाहिए।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि 20 जुलाई 2026 यानी सोमवार का शुभ पहर क्या है।
0: 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके ऊपर आया हुआ संकट टल जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 20 जुलाई सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जानने का कि आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को सामान्यतः किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है कन्या। इनको बृहस्पति और मंगल ग्रह का दान करना चाहिए। अगर ये बृहस्पति और मंगल ग्रह का दान करें तो जीवन की बाधाओं से इनको छुटकारा जल्दी मिलेगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या रहने वाला है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपसे बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं और इसका नुकसान आपको होता है तो बचें कैसे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और एक लेब्राडोराइट नाम का रत्न लॉकेट में पेंडेंट में बनवाकर अपने गले में धारण करिए। दूसरों की ईर्ष्या से और दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे।
1: और इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद
1: और गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
2: Smartless.
4: Hey, guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
5: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
2: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।

0: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: 20 जुलाई से 7 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और टिंडल एयरबेस पर पिच ब्लैक 2026 एक्सरसाइज आयोजित होने जा रही है। आपको बता दें इस युद्धाभ्यास में 19 से ज्यादा देशों की वायुसेनाओं के 100 से ज्यादा विमान और 2500 से ज्यादा सैनिक शामिल होंगे। सभी देश मिलकर हवाई मिशन, ऑपरेशन की योजना, संचार और युद्ध जैसी स्थिति में साथ काम करने का अभ्यास करेंगे।
9: ऑस्ट्रेलिया में गर्जेगा राफेल, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में दिखेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। 19 देशों के पिच ब्लैक एक्सरसाइज के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपनी हवाई ताकत का दम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित होने वाले मेगा हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के जवान पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना इस युद्धाभ्यास में 4 राफेल, 2 C-17 ग्लोब मास्टर और 120 जाबाज सैनिकों के साथ शामिल हो रहा है। 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाले इस महायुद्धाभ्यास में दुनिया के 19 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का कड़ा अभ्यास करेंगे, जो वैश्विक सुरक्षा और तालमेल के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का मकसद दूसरे देशों की एयरफोर्स के साथ मिलकर अभ्यास करना, युद्ध जैसी स्थिति में बेहतर तालमेल बनाना और नए तरीके सीखना है। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स हर 2 साल पर यह अभ्यास आयोजित करती है। भारत पिछले कुछ सालों से दुनिया के बड़े सैन्य अभ्यासों में लगातार हिस्सा ले रहा है। इससे भारतीय वायुसेना को नई तकनीक, नए ऑपरेशन और दूसरे देशों के काम करने के तरीके को करीब से समझने का मौका मिलता है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल हवाई सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। पहले इसमें कम देश शामिल होते थे, लेकिन अब ये दुनिया के बड़े एयर कॉम्बैट अभ्यासों में गिना जाता है। इसमें लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, टैंकर विमान और हजारों सैन्यकर्मी हिस्सा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर 20 जुलाई से 17 अगस्त तक होने वाले पिच ब्लैक 2026 अभ्यास में 100 से ज्यादा विमान शामिल हो रहे हैं। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रेनिंग में 19 देशों की वायुसेनाएं आपस में मिलकर हवाई मिशन, ऑपरेशन की योजना, संचार और युद्ध जैसी स्थिति में साथ काम करने का अभ्यास करेंगे। इससे एक दूसरे के काम करने का तरीका समझने का मौका मिलेगा, साथ ही नई तकनीक और बेहतर तरीके भी सीखने को मिलेंगे। इस बार पिच ब्लैक अभ्यास में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के विमान शामिल होंगे। साथ ही न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, ब्रुनेई, मलेशिया, फिनलैंड और स्वीडन के सैनिक भी इस अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 के जरिए भारतीय वायुसेना को अपनी तैयारी को और मजबूत करने और परखने का मौका मिलेगा। राफेल के साथ इस अभ्यास में हिस्सा लेकर भारत दुनिया की बड़ी वायुसेनाओं के साथ तालमेल बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य के अभियानों के लिए खुद को और बेहतर तैयार कर सकेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब बात करते हैं उड़न खटोले से जॉय राइड की। बिहार में पहली बार हेली टूरिज्म का आगाज हुआ है और इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों को राजधानी पटना में हेलीकॉप्टर से पटना दर्शन कराने से हुई है। सैर सपाटे के शौकीन लोगों में इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट।
10: खटोले ने भरी उड़ान और आसमान से हुआ पटना शहर का दीदार। ये तस्वीरें बिहार में हेली टूरिज्म सेवा की पहली उड़ान की है। इस सेवा के औपचारिक शुभारंभ के बाद कई यात्रियों ने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पटना की हवाई सैर की और एक नए अनुभव का आनंद लिया।
11: बहुत लाजवाब, मजा आ गया, एकदम दिल खुश हो गया। एरियल व्यू पटना का ऐसा लगा कि गदगद हो गया दिल। पटना एकदम अनोखा शहर है, खूबसूरत शहर है, देखने लायक शहर है।
12: गंगा उंगा सब देखा?
11: गंगा जी का भी दर्शन हुआ है और भी दिखा गए हैं, सोनपुर ब्रिज दिखा है, ये सब सब दिखा है।
13: गंगा नदी देखी, वो काफी खूबसूरत था। मतलब आप तो ऐसे जाके सामने से भी देख सकते हो, लेकिन जो आप ऊपर से देखोगे वो तो मतलब अनोखा था।
14: जी मैं फर्स्ट राइडर ही थी, सबसे पहली बुकिंग मैंने ही की थी।
15: सबसे पहला बुकिंग?
14: जी जी, सबसे पहली
15: बुकिंग था कि
14: हाँ, काफी ज्यादा मैं एक्साइटेड थी और मैं देखना चाह रही थी कि पटना लगता कैसा है ऊपर से।
15: तो कैसा लगा पटना?
14: काफी सुंदर लगा। और मुझे जो एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो गंगा नदी को देखना, काफी ज्यादा शांत नदी थी, बिल्कुल ऊपर से देखना काफी ही ज्यादा सुंदर था। हमने पटना जू भी देखा, लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो गंगा नदी।
10: पटना में हर शनिवार और रविवार को हेलीकॉप्टर से 10 मिनट की जॉय राइड कराने का इंतजाम किया गया है। इस खास योजना में सिर्फ 2100 रुपए में लोग हेलीकॉप्टर से पटना दर्शन कर सकते हैं। वहीं बिहार सरकार की ओर से राज्य के दूसरे पर्यटन स्थलों को भी हेलीकॉप्टर से सैर कराने की तैयारी की जा रही है।
16: अभी तो पटना है दर्शन, उसके बाद हम शुरू किए माँ मुंडेश्वरी भी, हम 6000 में ले जाने वाले हैं। हम वाल्मीकि नगर 5000 में ले जाने वाले हैं। हम 4000 में राजगीर ले जाने वाले हैं और इसको धीरे धीरे विस्तार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्ग, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं बिहार पर्यटन को उस ऊंचाई तक ले जाए कि दुनिया के लोग आकर के बिहार को देखे।
10: इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से पटना दर्शन करने वाले ये पहले यात्रियों को सरकार की ओर से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही फ्लाइंग की ट्रेनिंग ले रहे छात्रों को भी सर्टिफिकेट दिया गया। इस जॉय राइड को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है।
15: हेलीकॉप्टर पे चढ़ी, डर लगा?
14: नहीं, एक्साइटेड थे लेकिन मजा आया। तो डर आपको नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा।
15: डर नहीं लगा?
14: नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है उसमें। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको।
10: बिहार में हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत की घोषणा इसी महीने 13 तारीख को की गई थी। उसी दिन से हेलीकॉप्टर से पटना दर्शन के लिए बुकिंग भी खुल गई और अब ये योजना साकार हो चुकी है। तो उम्मीद है इस पहल से बिहार में पर्यटन को पंख भी लगेंगे। पटना से शुभम निराला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
17: क्या आपकी शिक्षा में बाधा आ रही है? बार बार प्रयास करने के बावजूद क्यों शिक्षा आपकी रुक जा रही है? शिक्षा में बाधा के क्या हैं कारण और क्या है ज्योतिष में उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
10: स्पेन बना फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप पर किया कब्जा। स्पेन में जोरदार जश्न। जीत का भारत में भी मना जोरदार जश्न। केरलम, हैदराबाद, मुंबई से लेकर दिल्ली NCR, गुवाहाटी और अगरतला में भी सड़कों पर खुशी से झूमते दिखे फैंस। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट, कई जगह स्कूलों की छुट्टी। ऑस्ट्रेलिया में आज से एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। भारत के राफेल IL-78 और साथ ही C-17 विमान होंगे शामिल। 7 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज। दिल्ली में आंदोलनकारियों के मार्च के मद्देनजर धारा 163 के साथ जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी। सेंट्रल सेक्रेटरिएट, मेट्रो का गेट बंद। संसद जाने वाले कई रास्तों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज 5वां दिन। आज निभाई जाएगी हेरा पंचमी की परंपरा। अड़पा मंडपम में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु।
9: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
10: हरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशु। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
10: शुभ समाचार की शुरुआत। लौट रही बरखा बहार के साथ होगी। देश में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है और आज से पूरे देश में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में बादलों ने डेरा जमा लिया है। पहाड़ी राज्यों में तो बरसात शुरू भी हो गई है और इधर मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना बने रहने का अनुमान जताया है। तो मॉनसूनी तस्वीरें भी आगे होंगी आपके सामने।
11: बात पूरी के जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की भी करेंगे। दरअसल आज इस उत्सव का पांचवा दिन है और इस उत्सव के तहत आज यहाँ हेरा पंचमी की सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाएगी, जिसमें माँ लक्ष्मी श्री मंदिर से पालकी पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर आएंगे और भगवान जगन्नाथ से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ अभी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में विराजमान है। इसके बारे में विस्तार से करेंगे आगे बात।
10: और साथ ही बात चारधाम यात्रा की भी होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों के सफर का अनुभव और बेहतर होने वाला है। चारधाम यात्रा को ज्यादा सुरक्षित सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग में टनल और पुल का निर्माण पूरा होने के करीब पहुंच गया है। इसके जरिए ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसका ट्रायल 31 अगस्त से शुरू होगा, तो इस पर भी आगे बात करेंगे।
11: तो वही फुटबॉल प्रेमियों को वर्ल्ड चैंपियन मिल गया है। फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद एक बार फिर से विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो एक्स्ट्रा टाइम में टोरेस के गोल की मदद से स्पेन ने फाइनल में जीत हासिल की। इसके बारे में आगे करेंगे विस्तार से बात।
10: इसके अलावा आपको एक अनोखा डिवाइस दिखाएंगे। इस डिवाइस को झारखंड के दो स्कूली बच्चों ने बनाया है। बोतल के आकार का दिखने वाला यह स्मार्ट डिवाइस उन लोगों के लिए बनाया गया जो अक्सर समय पर दवा लेना भूल जाते हैं। तो कैसे काम करता है ये डिवाइस, इस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
11: पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव के पांचवें दिन आज यहां पर हेरा पंचमी की परंपरा अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ निभाई जाएगी। वहीं अड़पा मंडपम में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंड रहे हैं।
10: प्रयागराज में इस्कॉन की 16वीं जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जहां भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखने के लिए भक्तों का मेला उमड़ गया। वहीं भगवान जगन्नाथ को 21,000 प्रकार के भोग अर्पित किए गए और साथ ही श्रद्धालुओं के बीच 10,000 लड्डुओं का वितरण किया गया।
11: तो महाराष्ट्र के अकोला शहर में पहली बार जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ऐतिहासिक और भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्य आकर्षण का केंद्र 31 फीट ऊंचा और 5 टन वजनी लोहे का रथ रहा, जिसे खींचने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई।
10: बेगूसराय में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस भव्य रथ यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु हरे कृष्णा हरे राम की धुन पर झूमते हुए शामिल हुए। रथ यात्रा के दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा कर भगवान जगन्नाथ का लोगों ने स्वागत कर आशीर्वाद लिया।
11: जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ी पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने ऑनलाइन प्रवेश निकास पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नजर रखना, सटीक वास्तविकता समय के रिकॉर्ड बनाए रखना और आपात स्थितियों का या फिर आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। तीर्थयात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अब कम से कम एक वैध सरकारी पहचान पत्र भी साथ रखना अनिवार्य है।
10: चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में रुद्रप्रयाग में एक महत्वपूर्ण परियोजना अंतिम चरण में है। ऋषिकेश बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके निर्माण से चारधाम यात्रा को रफ्तार मिलेगी।
11: तो वहीं दिल्ली में मुग्धर मैन की अनोखी पहल शुरू हुई है। दरअसल दिल्ली के मुग्धर मैन के नाम से मशहूर पूर्व पहलवान हवा सिंह राणा ने बच्चों को स्मार्टफोन की लत से बचाने के लिए अब तक 5,500 से अधिक मुफ्त मुग्धर बांटे हैं। उन्होंने मोबाइल नहीं मुग्धर चलाओ और हर घर मुग्धर स्वस्थ भारत के नारे के साथ इस स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत की है।
10: फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फुटबॉल का बादशाह बन चुका है और फाइनल में मेसी की अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। वहीं स्पेन की जीत पर देश दुनिया में फैंस ने जमकर जश्न मनाया, जहां लोगों ने सड़क पर उतरकर स्पेन की जीत पर जमकर आतिशबाजी की।
11: फिल्म रामायण की ग्रैंड प्रथम संकल्प और साथ ही रेड कार्पेट इवेंट का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। फिल्म के लॉन्च में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल समेत पूरी कास्ट भी शामिल हुई है। इस स्टार स्टेटस इवेंट में सितारों के साथ साथ अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुलप्रीत सिंह और कुणाल कपूर ने भी शिरकत की है। समारोह में फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और साथ ही शानदार भव्यता की झलक भी दिखाई गई।

0: चलिए शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं मौसम वाली गुड न्यूज के साथ। उत्तर भारत में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कहीं झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी है तो कहीं मौसम सुहावना हो गया है।
1: दरअसल दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ले ली है।
0: आपको बता दें देहरादून से लेकर केदारनाथ तक वादियां बारिश से सराबोर हैं, जबकि शिमला में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश जहां एक ओर गर्मी से राहत लेकर आई है, वहीं पहाड़ी राज्यों में यही बारिश चुनौती भी बन सकती है।
1: ऐसे में मौसम का आनंद जरूर लेना चाहिए, लेकिन सावधानी भी उतनी ही बरतनी चाहिए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना भी जताई है।
0: तो देखिए छह तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से बरखा बहार लौट रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिर चाहे दिल्ली हो या फिर कहीं और जगहें, लगातार यहां पर राहत की फुहारें बरस रही हैं और गर्मी से राहत लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रही है। किसानों के चेहरों पर खुशी लौटती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी राहत भरी खबर, गुड न्यूज निकल कर सामने आई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से झमाझम बारिश हुई है कई जगहों पर। हालांकि ट्रैफिक की स्थिति इसकी वजह से प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन किसानों के लिए ये एक अच्छी खबर है।
1: तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, देहरादून, केदारनाथ, हर जगह पर मौसम काफी खुशनुमा हो गया है और इसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी भी लगातार पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। तो मौसम का रुख पूरे देश में बदला है, राजधानी ही नहीं माया नगरी मुंबई की सुबह भी बादलों के साथ हुई है। दरअसल मरीन ड्राइव पर आसमान पूरी तरह से बादलों से ढका नजर आया और समुद्र किनारे ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बारिश के बीच लोग इस सुहाने मौसम का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई में दिन भर आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। तो मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, माया नगरी मुंबई में मौसम काफी ज्यादा खुशनुमा हो गया है और मौसम बदल गया है। ऐसे में मुंबईकरों के लिए राहत की खबर भी है, क्योंकि मुंबई में लगातार उमस भरी गर्मी का सामना वहां पर करना पड़ रहा था। ऐसे में खुशनुमा मौसम और उसका लुत्फ उठा रहे हैं मुंबई वासी। तो मुंबई में अब बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, मौसम बदल चुका है मुंबई में। हालांकि ट्रैफिक रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन बारिश का लुत्फ उठाने के लिए लगातार जो मरीन ड्राइव है उस पर मुंबई कर पहुंच रहे हैं और मौसम का खूब आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं।

0: तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ सा है। एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि बारिश की वजह से स्कूल और ऑफिस जाने वालों को थोड़ी दिक्कत भी हुई है,
1: लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों को गर्मी उमस से राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई तक ये राहत बनी रहेगी और अगले 3 से 4 दिन देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने का अनुमान भी है।
0: आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
1: तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, राजधानी को भी गर्मी उमस से राहत मिलने वाली।
0: तो वहीं दिल्ली में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। कई जगहों पर आज सुबह से बारिश हो रही है।
1: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी बारिश को लेकर अनुमान जारी किया गया है।
0: आपको बता दें, यूपी में आज भारी बारिश का अलर्ट है।
1: तो वहीं बिहार की बात करें तो वहां पर 24 जुलाई तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
0: मैदानों के साथ ही पहाड़ों पर भी मौसम लगातार बदला हुआ दिखाई दे रहा है।
1: वहीं पहाड़ों पर गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं चलेंगी, ऐसा माना जा रहा है।
0: जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है।
1: तो पहाड़ों पर 25 जुलाई तक बारिश का दौर फिलहाल जारी रहने वाला है। तो देश में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है। आज से पूरे देश में बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में तो बरसात शुरू भी हो गई है।
0: आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम अगले कुछ दिनों तक सुहावना रहने का अनुमान IMD की ओर से जताया गया है।

0: उत्तर भारत में भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि करीब करीब पूरे देश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है और मौसम विभाग का कहना है कि करीब करीब पूरे देश में मानसून के चलते झमाझम बारिश होगी और लोगों को राहत मिलेगी। राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली, हर जगह आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तेज बारिश, भूस्खलन, जलभराव और तेज हवाओं की संभावना है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील प्रशासन ने की है।
1: देर रात से लेकर 24 जुलाई तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके साथ में हमारे स्पेशली जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन का जो क्षेत्र है, सिरमौर का कुछ एक क्षेत्र है, साथ में जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, शिमला है, तो यहाँ पे भी हाई रेनफॉल देखने को मिलेगी। जो ये वेदर एक्टिविटी है 20 और 21 जुलाई को काफ़ी इंटेंस रहेगा। इसके चलते हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं 20 और 21 जुलाई को जहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ साथ एक दो स्थानों में एक्सट्रीम हैवी बारिश भी हो सकती है।
0: देश के कई इलाकों में बारिश की शुरुआत भी हो गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो रही है, हरियाणा के कई जिलों में गर्मी से राहत की शुरुआत हो गई है और मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के कारण अगले कुछ दिनों हरियाणा में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। इसरो के इनसेट 3DR सैटेलाइट ने भारत के ऊपर एक बड़ा बदलाव भी दिखाया है। पूरे देश के करीब 2/3 हिस्सों पर घने बादल छाए हुए हैं। कश्मीर से लेकर गंगा के मैदान तक, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्यों तक मॉनसून के बादल फैले हुए हैं। यही स्थिति बताती है कि मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इन बादलों के कारण कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। वैसे देश का करीब 2/3 हिस्सा बादलों की चादर में ढका है। सबसे घने बादल उत्तरी मैदान में है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल तक पूर्वोत्तर राज्य भी पूरी तरह बादलों से घिरे हुए हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप में अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण लंबी बादलों की पटरियां दिख रही हैं। मॉनसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत में सक्रिय है, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है या होने वाली है। अरब सागर से नमी वाली हवाएं पश्चिमी तट और मध्य भारत को प्रभावित कर रही हैं। बंगाल की खाड़ी अभी शांत है, लेकिन बदलाव हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। कभी कभी सूखा तो कभी अचानक भारी बारिश, ये स्थिति पूरे देश को प्रभावित कर रही है। उत्तरी और पूर्वी भारत में बारिश से राहत मिली है, तो अभी मैदानी इलाकों में राहत वाली बारिश का इंतजार हो रहा है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन कई इलाकों में बारिश थोड़ी चुनौतियां भी लेकर आई है, लेकिन राहत की खबर है कि इन इलाकों में हमारे जवान देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं।
3: दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अचानक से आई बाढ़ के बीच भारतीय सेना ने तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाया और 11 नागरिकों की जान बचाई है।
2: दरअसल तेज बारिश की वजह से उफनते हुए नाले में लोग फंस गए थे, जिसके बाद सेना की टीम बिना देर किए यहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो देखिए किस तरह से यहां पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 11 नागरिकों की जान बचाई गई है
3: और सेना की टीम बिना देर के मौके पर पहुंच गई, इसीलिए समय रहते हुए 11 नागरिकों को वहां से बचा लिया गया। कठिन परिस्थिति और तेज बहाव के बावजूद जवान ने राहत अभियान चलाया, सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।
2: तो वहीं बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।
3: और चलिए अब बात कर लेते हैं आस्था उत्सव की। दरअसल पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आज 5वां दिन है और इस उत्सव के तहत आज यहां पर हेरा पंचमी की सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाएगी।
2: आपको बता दें, इसमें मां लक्ष्मी श्री मंदिर से पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर आएंगी और भगवान जगन्नाथ से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगी। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विराजमान है।
4: अब रौनक गुंडीचा मंदिर में है, ये जन सैलाब वही उमड़ा है। जगत के नाथ इन दिनों यहीं पधारे हैं, आड़प मंदिर में विराजे हैं। रोज अनुष्ठान हो रहे हैं, नए नए भोग लग रहे हैं। आसमान भी मानो महाप्रभु के आगमन से खुश है, झूम कर बरस रहा है और भक्त उनके लिए तो मानो भगवान स्वयं उनके घर आतिथ्य स्वीकारने आए हैं। सो सब मंदिर की ओर चल पड़े हैं उनकी एक झलक पाने, उनका आशीर्वाद लेने। मौसम से भी शिकायत नहीं है, रेनकोट और छाता निकाल लाए हैं। सड़कों पर दूर दूर तक भक्तों की लंबी कतार है और उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए मंदिर के भीतर बाहर शहर के चौक चौराहों तक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
5: गुंडीचा टेम्पल में हमारा जो अरेंजमेंट है क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, बेसिकली इनसाइड टेम्पल का अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, एक आउटसाइड टेम्पल का अरेंजमेंट किया है एंड ट्रैफिक अरेंजमेंट किया हुआ है। इनसाइड टेम्पल हमने 8 सेक्टर में डिवीजन किया हुआ है टेम्पल के अंदर, जिसमें कि 3 कमांडेंट रैंक ऑफिसर्स शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर रहे हैं। वो लोग फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड एक नाइट शिफ्ट होता है। एंड उसमें हमारा डिप्लॉयमेंट टेम्पल का सेक्टर वाइज डिप्लॉयमेंट है, लोगों को बेसिकली डिसिप्लिन श्रृंखलित एंड टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लोइंग और प्रिवेंट जंपिंग फ्रॉम द बैरिकेड, वो सब करके हेल्प कर रहे हैं।
4: भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों के प्रवास में कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान यहाँ मंदिर परिसर में पितरों का पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विशेष महत्व है।
6: जगन्नाथ महाप्रभु जब यहाँ के रत्न सिंहासन में विराजमान करते हैं गुंडीचा वाड़ी में, तब यहाँ एक ब्राह्मण को, एक व्यक्ति को अगर भोजन करवा के दक्षिणा दिए तो वहाँ पे 1000 व्यक्ति को देने के बराबर फल मिलता है। यहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं दशरथ जी के लिए और गुंडीचा रानी के लिए और इंद्रदुम्न के लिए यहाँ पे श्राद्ध किए थे और यहाँ उनके याद में ये गुंडीचा मंदिर बनाकर यहाँ पे 9 दिन की यात्रा करते हैं और सारे जगत का कल्याण करते हैं।
4: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और आड़प दर्शन का आज 5वां दिन है और 5वें दिन यहाँ हीरा पंचमी की परंपरा निभाई जाती है, जिसकी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो पीछे माता लक्ष्मी अकेली रह जाती हैं। 5वें दिन देवी लक्ष्मी एक भव्य पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं और भगवान जगन्नाथ से अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। भगवान उन्हें जल्द वापस आने का आश्वासन देते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी का गुस्सा शांत नहीं होता। नाराजगी में माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के रथ यानी नंदीघोष के आगे का एक हिस्सा तोड़ देती हैं। इसके बाद भगवान उन्हें मनाते हैं और वे वापस अपने मुख्य मंदिर लौट जाती हैं। हीरा पंचमी की इस पूरी लीला को हीरा गोहा लीला भी कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का प्रवास कुछ ऐसा है मानो राज सिंहासन से उतर कर प्रजा के संग बैठ गए हों महाप्रभु। कहते हैं भगवान अपने भक्तों को मुख्य मंदिर की अपेक्षा गुंडीचा मंदिर में बेहद करीब से दर्शन देते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों की यात्रा का अनुभव और बेहतर होने वाला है। आपको बता दें चारधाम यात्रा को ज्यादा सुरक्षित सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग में टनल और पुल का निर्माण पूरा होने के करीब पहुंच चुका है।
3: इसके जरिए ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ा जा रहा है। अब तीर्थयात्रियों को जाम से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही सफर के समय में भी बचत होगी।

0: उत्तराखंड में चार धाम तीर्थयात्रियों का सफर और आसान होने वाला है। जल्द ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के रास्ते आपस में जुड़ने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के दुर्गम पहाड़ों में बनी ये 900 मीटर लंबी टनल चार धाम यात्रियों के लिए वरदान बनने जा रही है। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने की जिस परियोजना पर काम चल रहा है उसमें ये टनल इतिहास रचने जा रही है। दोनों हाईवे को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर पुल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 200 मीटर लंबा ये पुल अगस्त में पूरा हो जाएगा। पुल बनने के बाद चारधाम यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तक रुद्रप्रयाग बाजार में बद्रीनाथ हाईवे बेहद सकड़ा होने से आए दिन घंटों जाम लगता है, लेकिन अब टनल और पुल बनने के बाद तीर्थयात्री रुद्रप्रयाग बाजार से न होकर सीधे जवारी बाईपास होते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए आगे की यात्रा कर सकेंगे।
1: श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम को जाने वाली सड़कें हैं जो हाईवे वो आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं शहर के भीतर जो ट्रैफिक लगता है वो ट्रैफिक नहीं लगेगा। और चूंकि दोनों रोड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इनका आपस में जुड़ना काफी इम्पोर्टेंट होगा तीर्थयात्रियों के सुविधा के दृष्टिगत पर।
0: प्रशासन के मुताबिक 31 अगस्त से इस परियोजना का ट्रायल शुरू किया जाएगा। चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मॉनसून के दौरान परियोजना के पूरा होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तीर्थयात्रियों को जाम से छुटकारा मिलने के साथ ही सफर का समय भी बचेगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखें स्पेन बना फुटबॉल की दुनिया का नया बादशाह।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: क्या आपकी शिक्षा में बाधा आ रही है? बार बार प्रयास करने के बावजूद क्यों शिक्षा आपकी रुक जा रही है? शिक्षा में बाधा के क्या हैं कारण और क्या है ज्योतिष में उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
6: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
5: to live sports action.
7: To the near side corner, to wrap around, he scores!
5: And your favorite music.
8: You and I stargazing.
5: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
2: के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें
11: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: स्पेन बना फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। स्पेन में जोरदार जश्न।
17: स्पेन की जीत का भारत में भी मना जोरदार जश्न। केरलम, हैदराबाद, मुंबई से लेकर दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी और अगरतला में भी सड़कों पर खुशी से झूमते दिखे फैंस।
2: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट, कई जगह स्कूलों की छुट्टी।
17: रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
2: ऑस्ट्रेलिया में आज से एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, भारत के राफेल, IL-78, C-17 विमान होंगे शामिल। 7 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज।
17: दिल्ली के आंदोलनकारियों के मार्च के मद्देनजर धारा 163 के साथ जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी, सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो का गेट बंद, संसद जाने वाले कई रास्तों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: तो ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें, स्पेन ने जैसे ही अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप जीता, स्पेन की राजधानी खुशियों से झूम उठी। मैड्रिड की सड़कों पर हजारों की तादाद में फैंस ने जश्न मनाया।
1: आतिशबाजी भी की गई, रात भर ये जश्न जारी रहा। लाल और सुनहरे झंडे लहराते हुए स्पेनिश फैंस ने दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का जश्न मनाया। न्यूजर्सी में खेले गए इस महामुकाबले में फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल कर स्पेन को ये महाविजय दिलाई।
0: आपको बता दें, इस दौरान स्पेन के कोच लुइस डे ला फ्रुएंटो ने कहा कि अर्जेंटीना को हराने में उनकी टीम के खिलाड़ियों की टीम फर्स्ट फिलॉसफी ने अहम भूमिका निभाई है। तो किस तरह से यहाँ पर स्पेन की जीत का जश्न मना है, फैंस की खुशी यहाँ पर जाहिर तौर पर दिखाई देगी। और किस तरह से अर्जेंटीना को 1-0 से हराने के बाद फैंस ने सेलिब्रेट किया है, सड़कों पर नाचते गाते हुए दिखाई दिए हैं, देखिए।
2: मौका जीत का है, जश्न का है, जज्बातों में बह जाने का है। जिस ट्रॉफी को चूमने का सपना लिए सब जुटे थे, उसे आखिरकार चूम लेने का सुकून इन चेहरों पर साफ झलक रहा है। 16 साल लग गए वापस ट्रॉफी थामने में, लेकिन लौटे तो ऐसे जैसे फुटबॉल का ताज पहनने की ठान रखी हो। फीफा वर्ल्ड कप का पूरा मुकाबला देखिए, शान से ट्रॉफी उठाई है स्पेन ने। स्पेन ने इस बार अपने अभियान का आगाज केप वर्डे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से किया था। इसके बाद स्पेन ने लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और फिर सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया और अब फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर मेसी से फुटबॉल का ताज छीन लिया। इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ 1 गोल खाया और फिर फाइनल में भी उसकी किलाबंदी इतनी ताकतवर साबित हुई कि मेसी समेत अर्जेंटीना के तमाम सितारे गोल करना तो दूर, अटैक तक करने को तरस गए। उधर स्पेन लगातार आक्रामक होता जा रहा था। पहले और दूसरे हाफ में उसने कई शानदार अटैक भी किए, लेकिन हर बार अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव करते हुए नतीजे को एक्स्ट्रा टाइम तक धकेल दिया। लेकिन स्पेन तो मानो ट्रॉफी चूमने की जिद लेकर मुकाबले में उतरा था। वो एक लम्हा रोमांच से भर देने वाला था जब 106वें मिनट में टोरेस ने इस पावरफुल लेफ्ट फुटर के जरिए गोल कर सनसनी मचा दी। जीत के इस गोल के साथ ही स्पेन के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जश्न का माहौल मैदान के भीतर भी था और बाहर भी। खिलाड़ियों की तस्वीरें, बैनर, पोस्टर, स्पेन के झंडे, जिसके पास जो था उसी के साथ सड़कों पर उतर आए, नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: लॉर्ड्स में भारतीय टीम भले ही इंग्लैंड से तीसरा वनडे मैच हार गई, लेकिन रविवार का दिन रोहित शर्मा के लिए खास रहा। लॉर्ड्स के मैदान में उन्होंने शतक जड़कर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त किए।
1: और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपनी इस 138 रनों की आक्रामक पारी के जरिए आलोचकों को भी करारा जवाब दिया है।
2: महान खिलाड़ी आलोचनाओं का जवाब ऐसे ही देते हैं, जैसे रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से दिया है। रविवार को लॉर्ड्स के मैदान में एक इतिहास रचा गया। पहली बार किसी भारतीय क्रिकेटर ने लॉर्ड्स में वनडे मैच में सेंचुरी ठोकी, और ये कारनामा करने वाला कोई और नहीं, वो खिलाड़ी है जिसके बारे में कहा जाने लगा था कि बहुत जल्द वो भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। उन पर फॉर्म में न होने के आरोप लग रहे थे, उनके संन्यास की अटकलें लग रही थी।

0: रोहित शर्मा के शानदार वापसी पर पूरी भारतीय टीम ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। रोहित का शतक पूरा होने के बाद विराट कोहली ने उन्हें गले लगाया। दूसरी ओर ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर, केएल राहुल, कप्तान शुभमन गिल और अन्य खिलाड़ी हिटमैन के सम्मान में तालियां बजा रहे थे, क्योंकि रोहित का ये शतक सिर्फ आंकड़ा भर नहीं था, बल्कि अपनी इस पारी के जरिए उन्होंने न सिर्फ आलोचकों को करारा जवाब दिया बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। रोहित का ये इंग्लैंड में 8वां शतक रहा। ये इंग्लैंड में किसी भी बाहरी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा वनडे शतक है। साथ ही वनडे क्रिकेट में किसी भी देश में विदेशी बल्लेबाज के सर्वाधिक शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। उन्होंने क्विंटन डिकॉक, एबी डिविलियर्स, सईद अनवर और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। इन सब ने 7-7 शतक लगाए थे। अफवाहों का बाजार गर्म था कि वर्ल्ड कप 2027 की टीम से रोहित शर्मा आउट होंगे। सवाल उनके फॉर्म को लेकर भी उठ रहे थे, लेकिन तमाम दबावों और भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने मैदान पर अपने बल्ले से इन तमाम अटकलों का करारा जवाब दिया है। दबाव की इस घड़ी में भी उनके खेल पर कोई असर नहीं दिखा। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में बेहद आक्रामक तेवर दिखाए और एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें हिटमैन क्यों कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची को 21-17 से हराकर अपना पहला जापान ओपन खिताब जीता है और इस जीत के साथ सिंधु ने 19 महीने का खिताबी सूखा खत्म किया। दरअसल 31 साल की सिंधु के करियर का यह पहला सुपर 750 सीरीज खिताब है और साल 2019 में विश्व चैंपियन का खिताब जीतने के साथ साल बाद ही ये सिंधु की पहली बड़ी खिताबी जीत है।

0: भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो में इतिहास रच दिया। तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची को उन्हीं के घरेलू मैदान पर मात देना किसी अचरज से कम नहीं है, वो भी तब जब पिछले कई मुकाबले में यामागुची सिंधु को मात दे चुकी है। लेकिन इस खिताबी मुकाबले में पीवी सिंधु ने यामागुची को सीधे सेटों में 21-17 से मात दे दी और पिछले 19 महीने से चले आ रहे अपने खिताबी सूखे को भी खत्म किया। पीवी सिंधु इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है। इससे पहले किसी भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने ये खिताब नहीं जीता है। जापान ओपन की जीत सिंधु के 2019 के विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद की सबसे बड़ी जीत है। फाइनल मैच के दौरान पीवी सिंधु ने शुरू से ही कोर्ट पर अपना दबदबा बना रखा। उन्होंने शानदार ढंग से खेल को नियंत्रित किया और ताकत की जगह रणनीतिक खेल पर जोर दिया। जब भी यामागुची ने वापसी की कोशिश की, सिंधु ने कड़ा जवाब दिया। इस मैच के पहले सेट की शुरुआत में एक समय सिंधु 11-9 से पीछे थी, जिसके बाद उन्होंने शानदार तरीके से वापसी करने के साथ अकाने यामागुची को 21-17 के अंतर से पहले सेट में मात दी। इसके बाद दूसरे सेट की शुरुआत से ही सिंधु ने अकाने यामागुची को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखा, जिसमें यामागुची ने वापसी की कोशिश की, लेकिन सिंधु ने इस सेट को भी 21-17 के अंतर से अपने नाम करने के साथ 50 मिनट के अंदर मुकाबला खत्म करते हुए खिताब को अपने नाम कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जापान ओपन जीतने पर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वो इस जीत से उत्साहित हैं और आगे कई और टूर्नामेंट्स भी हैं। ये राहत की बात है कि लगभग 2 सालों के बाद जीत मिली है। सिंधु के मुताबिक इससे निश्चित रूप से उन्हें आने वाले मैचेस के लिए काफी आत्मविश्वास मिलेगा।
2: सो बेसिकली आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन व्हाट आई नीड टू डू बिकॉज यू नो आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट यू नो अबाउट द टूर्नामेंट्स अबाउट विंस यू नो व्हाई एम आई लूजिंग नॉट दैट बट मोर ऑफ व्हाट आई नीड टू डू एंड व्हाट मिस्टेक्स एम आई डूइंग आई हैव बीन वर्किंग ऑन दोज मिस्टेक्स सो दैट आई डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन सो आई वाज वर्किंग ऑन माई मिस्टेक्स एंड आई थिंक दैट वॉज द मेन थिंग देयर।
1: अब आगे बढ़ते हैं, नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण की बात करते हैं, जिसके पार्ट 1 के ट्रेलर की आधिकारिक रिलीज डेट सामने आ चुकी है। रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे, सनी देओल।

0: और साथ ही मल्टी स्टारर ये फिल्म मौजूदा साल की दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है।
1: आपको बता दें इससे पहले दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है और अब फिल्म के ट्रेलर दुनिया भर में 24 जुलाई को रिलीज होंगे।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन और आदर्शों की कहानी राम कथा रामायण, श्री रामचरित्र मानस में वर्णित महागाथा अब रामायण के रूप में बड़े पर्दे पर आने जा रही है। 4,000 करोड़ की मेगा फिल्म प्रोजेक्ट रामायण इसी साल दर्शकों के सामने आने वाली है, तो सबको इंतजार है कि आखिर ये फिल्म कैसी होगी और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने बरसों के बाद एक बार फिर से किस तरह रामायण की कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारी की गई है और अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इन सारे सवालों के जवाब उस ग्रैंड इवेंट में मिले जिसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जिसका नाम है प्रथम संकल्प।
1: तो मेरा हमेशा मन में ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ऐसी कौन सी कहानी है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास, जो हमारी है, जो जिस पे हमें गर्व हो, जब हम वो दुनिया के सामने पेश करें तो ऐसा लगे कि ये हमने हमारे पूरी जान, पूरी अपने शिद्दत से, पूरी अपनी डेडिकेशन से इसको बनाया है और ये हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं जैसे उन्होंने का शायद अपने कोई फिल्में की हों। और रामायण के अलावा और कोई ऐसा सब्जेक्ट का मुझे ध्यान नहीं हुआ और ये प्रण ले लिया मैंने उस दिन, ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी बात है, कि अगर बनाएंगे तो रामायण बनाएंगे और पूरे दिल से, पूरी जान लगा के।
0: ये तस्वीरें फिल्म रामायण के उसी ग्रैंड लॉन्च इवेंट की है जिसमें फिल्म रामायण के प्रमुख किरदार पब्लिक के सामने पहली बार एक साथ दिखे और बताया कि फिल्म में अपने रोल के बारे में वो क्या सोचते हैं। रणवीर कपूर, साई पल्लवी, अरुण गोविल, रवि दुबे, सनी देओल, यश, रकुल प्रीत, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर और अजंक्य देव सहित तमाम एक्टर इस खास इवेंट में शरीक हुए। तमाम किरदारों ने इस मौके पर बताया कि जो रोल उन्हें मिला उसे निभाना उनके लिए कितना अहम है।
2: सबसे पहले मैं अरुण जी से बात करना चाहूँगा। सर प्लीज बैठे रहिए। सर आपने इस जिम्मेदारी को सालों से इतनी खूबसूरती, सच्चाई और डिग्निटी से पेश किया है। आपका ये सफ़र मेरे जैसे एक्टर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर इंसान जिसने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, आपने उनको भरोसा और प्रेरणा दी है। जैसे आपने भगवान श्री राम को अपने अंदर उतारा है, अगर मैं इतना भी कर पाऊँ तो मेरे लिए मेरी मेहनत सफल रंग लाएगी।
0: राम कथा पर अभी तक जो भी फिल्में और सीरियल बने हैं उनमें राम भक्त हनुमान जी का किरदार बलिष्ठ और दमदार एक्टर निभाते रहे हैं। रामायण में भी ये रोल बॉलीवुड के ऐसे एक्टर को मिला जो ऑन स्क्रीन ताकतवर इमेज और शानदार डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ विनम्रता के लिए भी जाने जाते हैं। वो एक्टर हैं सनी देओल। सनी पाजी का क्या कहना है हनुमान जी के रोल के बारे में?
3: देखिए सच में बताऊं तो मैंने भी काम शुरू थोड़ा सा ही किया इस पिक्चर में। मुझे बहुत आगे बढ़ना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरह इसे निभा सकूं, क्योंकि हनुमान जी का कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं है, लेकिन मजा बहुत आएगा।
0: फिल्म के मेकर्स ने इस ग्रैंड इवेंट में एक्टर यश को सरप्राइज के रूप में पेश किया जो फिल्म में डबल रोल में है, यानी लंकापति रावण की भूमिका निभाने के साथ साथ वो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। इवेंट में मौजूद खास लोगों को पहली बार फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर दिखाया गया जो देश और दुनिया के सामने तो चंद मिनटों बाद ट्रेलर को भारतीय समय के हिसाब से 24 जुलाई को अमेरिका के सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन डिएगो के बाद मेकर्स की योजना रामायण की स्पेशल प्रीव्यू को सितंबर में होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाने की है। इससे पहले इसके धमाकेदार प्रमोशन की तैयारी भी है जिससे लगता है ये फिल्म पूरी दुनिया में कामयाबी का डंका बजाएगी। फिल्म रामायण 2 पार्ट में रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि इसका पहला भाग इस साल दिवाली पर और दूसरा भाग अगले साल दिवाली के अवसर पर ही रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कुछ टुडे।
4: तो आज से 7 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और टिंडल एयरबेस पर पिच ब्लैक 2026 एक्सरसाइज आयोजित होने जा रही है। इस युद्धाभ्यास में 19 से ज्यादा देशों की वायुसेनाओं के 100 से ज्यादा विमान और 2500 से ज्यादा सैनिक शामिल होंगे।
5: तो सभी देश मिलकर हवाई मिशन, ऑपरेशन की योजना, संचार और युद्ध जैसी स्थिति में साथ काम करने का अभ्यास भी करेंगे।
6: ऑस्ट्रेलिया में गरजेगा राफेल, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में दिखेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। 19 देशों के पिच ब्लैक एक्सरसाइज के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपनी हवाई ताकत का दम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित होने वाले मेगा हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के जवान पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना इस युद्धाभ्यास में 4 राफेल, 2 C-17 ग्लोब मास्टर और 120 जाबाज सैनिकों के साथ शामिल हो रहा है। दुनिया के 19 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का कड़ा अभ्यास करेंगे, जो वैश्विक सुरक्षा और तालमेल के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का मकसद दूसरे देशों की एयरफोर्स के साथ मिलकर अभ्यास करना, युद्ध जैसी स्थिति में बेहतर तालमेल बनाना और नए तरीके सीखना है। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स हर 2 साल पर यह अभ्यास आयोजित करती है। भारत पिछले कुछ सालों से दुनिया के बड़े सैन्य अभ्यासों में लगातार हिस्सा ले रहा है। इससे भारतीय वायुसेना को नई तकनीक, नए ऑपरेशन और दूसरे देशों के काम करने के तरीके को करीब से समझने का मौका मिलता है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल हवाई सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। पहले इसमें कम देश शामिल होते थे, लेकिन अब ये दुनिया के बड़े एयर कॉम्बैट अभ्यासों में गिना जाता है। इसमें लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, टैंकर विमान और हजारों सैन्य कर्मी हिस्सा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर 17 अगस्त तक होने वाले पिच ब्लैक 2026 अभ्यास में 100 से ज्यादा विमान शामिल हो रहे हैं। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रेनिंग में 19 देशों की वायुसेनाएं आपस में मिलकर हवाई मिशन, ऑपरेशन की योजना, संचार और युद्ध जैसी स्थिति में साथ काम करने का अभ्यास करेंगे। इससे एक दूसरे के काम करने का तरीका समझने का मौका मिलेगा, साथ ही नई तकनीक और बेहतर तरीके भी सीखने को मिलेंगे। इस बार पिच ब्लैक अभ्यास में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के विमान शामिल होंगे। साथ ही न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, ब्रुनेई, मलेशिया, फिनलैंड और स्वीडन के सैनिक भी इस अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 के जरिए भारतीय वायुसेना को अपनी तैयारी को और मजबूत करने और परखने का मौका मिलेगा। राफेल के साथ इस अभ्यास में हिस्सा लेकर भारत दुनिया की बड़ी वायुसेनाओं के साथ तालमेल बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य के अभियानों के लिए खुद को और बेहतर तैयार कर सकेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया इंस्टा स्टोरी का। आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए अम्रपाली गुप्ता की फनी इंस्टा स्टोरी।
7: पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या?
8: एक बार नहीं मानी?
7: हाँ, पति
8: और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। हाँ। ये हैं ब्रांडेड पत्नियाँ। आप लेकिन बहुत अच्छी हैं, अपने पति से खूब प्यार करती हो क्या?
7: हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ।
8: सही है, तो पति नहीं बोलते आई लव यू?
7: नहीं बोलते हो?
8: उनको आता ना होगा ना।
9: ससुराल वाले मुझे इच्छादारी नागिन कहते हैं दोस्तों। ससुर, मैं तो कहती हूँ भगवान जी सुन ले और मुझे सच में इच्छाधारी नागिन बना दे, फिर देखना मैं कैसे इनका बुरा हाल करती हूँ। एक एक को पूछ में लपेट लपेट के दूर फेंकूंगी, गले में चढ़ के लिपट जाऊंगी, सांस नहीं आने दूंगी, जीना दुश्वार।
5: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
4: देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
12: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
13: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
14: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
13: Big 12 Radio.
15: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
13: and
15: down.
13: And Talk Sports.
16: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
13: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
17: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
23: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
24: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
24: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: स्पेन बना फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। स्पेन में जोरदार जश्न। स्पेन की जीत का भारत में भी मना जोरदार जश्न। केरला में हैदराबाद, मुंबई से लेकर दिल्ली NCR, गुवाहाटी और अगरतला में भी सड़कों पर खुशी से झूमते हुए दिखे फैंस। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट, कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। ऑस्ट्रेलिया में आज से एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, भारत के राफेल, IL-78 और C-17 विमान होंगे शामिल, 7 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज। दिल्ली में आंदोलनकारियों के मार्च के मद्देनजर धारा 163 के साथ जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी, सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो का गेट बंद, संसद जाने वाले कई रास्तों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त।

बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शिक्षा की, शिक्षा के ग्रहों की, और शिक्षा में अगर बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करने के उपायों की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 7:09 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा में बाधा कब आती है, और अगर आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली में पांचवा भाव आपकी सोच का, आपकी बुद्धि का होता है, और ये शिक्षा का केंद्रीय भाव है। हालांकि बहुत सारे लोग चतुर्थ भाव को शिक्षा का भाव मानते हैं, लेकिन वास्तव में पंचम भाव शिक्षा का केंद्रीय भाव है। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव, फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस, शिक्षा के सहायक भाव हैं। सूर्य शिक्षा का मुख्य ग्रह है, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का नैसर्गिक रूप से होता है। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि को और बृहस्पति आपके ज्ञान को मजबूत करता है। इन सब स्थितियों को देख करके शिक्षा का ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्यतः पंचम भाव, बुध और सूर्य ये बड़े महत्वपूर्ण हैं आपकी शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए, और इनको देख करके एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में जाना जा सकता है। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में शांति बनाए रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद, तमाम कोशिश करने के बावजूद शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा में दिक्कत आती है। कब आती है? कुंडली में अगर चतुर्थ भाव खराब हो गया या कुंडली में अगर पंचम भाव खराब हो गया, दोनों में से एक भी भाव अगर बिगड़ा तो शिक्षा में बाधा आएगी। हो सकता है कि आगे पूरी हो जाए, लेकिन इनिशियली, आरंभिक रूप से शिक्षा में बाधा आएगी। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, दूसरे भाव में पाप ग्रह आ जाएं, तो भी शिक्षा में बाधा आ सकती है, ये संभावना बनती है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, तब तो शिक्षा में बाधा जरूर आएगी और शिक्षा एक लेवल पर जा करके रुक जाएगी। अगर बुध खराब हो गया तब शिक्षा आपकी बीच में रुकेगी और आगे आरंभ नहीं हो पाएगी। कुंडली में अगर अग्नि तत्व मजबूत है, फायर के इलाके में ज्यादातर ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई करने में, और ऐसी स्थिति में शिक्षा में बाधा आएगी। मूलांक 2, 6, 7 और 8, इन मूलांक वालों के शिक्षा में अक्सर बाधा आती है, अक्सर रुक रुक कर या टूट टूट कर इनकी पढ़ाई होती है, ऐसा देखा गया है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बनेंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें,
वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, शिक्षा में बाधा आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण है शिक्षा में बाधा आने के और उन बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या हैं, अब वो समझते हैं। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति शिक्षा बीच में छोड़ देता है या ज्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में नहीं पड़ता, जल्दी धन कमाने के चक्कर में पड़ता है और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। अगर कुंडली में बुध गड़बड़ हो गया तो शिक्षा में मन ही नहीं लगता, शिक्षा में एकाग्रता नहीं आती, व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, बार बार अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में, तरीकों में बदलाव करता रहता है लेकिन उसका मन नहीं लग पाता। अगर बृहस्पति गड़बड़ है कुंडली में तो आदमी पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन किसी न किसी कारण से डिग्री मिल पाने में, रिजल्ट मिल पाने में समस्या होती है, व्यक्ति के पास डिग्री नहीं आती। और बृहस्पति की वजह से पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बृहस्पति बार बार पढ़ाई में अड़चन पैदा करने का प्रयास करता है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक धन की प्राप्ति होगी, परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा ठीक हो, ठीक तरीके से चले, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे
उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, सादा जल प्लेन वाटर नित्य प्रातः सूर्य देव को चढ़ाइएगा। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। सप्ताह में एक दिन किसी धार्मिक स्थान पर मंदिर में जा करके प्रार्थना जरूर करिएगा और अपने पढ़ने की जगह पर ढेर सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए। लाइट ज्यादा होनी चाहिए जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं। और सलाह लेकर एक माणिक्य या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। शिक्षा को बेहतर करने के मामले में सूर्य देव को जल अर्पित करने से और गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से आपको शीघ्र लाभ होगा। आप चाहें तो प्रातः काल सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या सरस्वती वंदना या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता इस स्तुति को भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप जीवन में ज्ञान चाहते हैं, अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनकी उपासना अगर आप पीले फूलों से करें तो आपको ज्ञान भी मिलेगा और जीवन में पवित्रता भी मिलेगी। कि अगर आपसे बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं और इसका नुकसान आपको होता है तो बचें कैसे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और एक लेब्राडोराइट नाम का रत्न लॉकेट में पेंडेंट में बनवाकर अपने गले में धारण करिए। दूसरों की ईर्ष्या से और दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

रहा। सुनो, कथा किससे सुननी चाहिए? पहला लक्षण विरक्त होना चाहिए। विरक्त मतलब संसार में अनुरक्त ना हो। महाराज ऐसा आदमी तो मिलना बड़ा कठिन है, ऐसे व्यास जी मिलना बड़े कठिन है। अरे भाई अनुरक्त तो हो पर उसी में ना डूबे हो कि कथा की जगह वृथा सुना है। ऐसे के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो वृथा नहीं कथा सुनाए उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। दूसरा लक्षण विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव कौन? जो श्री हरि का उपासक हो, ठाकुर जी का उपासक हो, या राम जी का उपासक हो, या घनश्याम का उपासक हो, जिनके माला हो, शिखा हो, तिलक चंदन हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। तीसरा लक्षण क्या? बोले विप्रो, विप्र भी होना चाहिए। विप्र मतलब जिसका 8 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, परंपरा का जो अनुसरण करता हो, गुरु ज्ञान जिसने प्राप्त किया हो, वर्ण परंपरा वेद परंपरा का जिसको ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति के मुख से ही भगवान की कथा को सुननी चाहिए। चौथा लक्षण वेद शास्त्र विशुद्ध करता। भैया ज्ञानी हो, जो खुद नहीं पढ़ पाएगा दूसरों को हलवा पढ़ा पाएगा क्या? वेद शास्त्र विशुद्ध हो, शुद्ध नहीं विशुद्ध। बोले और क्या लक्षण? बोले दृष्टांत कुशलो, समझाने में कुशल हो, दृष्टांत देकर समझा सके, ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। फिर क्या? धीरहा, धैर्यवान हो, बहुत चंचल ना हो, धैर्यवान होना चाहिए। हाँ मतलब ठीक है पर बहुत धैर्य भी हो, गंभीर बात को गंभीरता से कहें, ऐसा धैर्यवान। धीरहा, ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। ये वक्ता के लक्षण है। वक्ता कार्योति निष्प्रहा। अब श्रोता के लक्षण सुनो। कपिल जी कहां है? सुनो ध्यान पूर्वक बैठकर। श्रोता कैसा होना चाहिए? तुम्हारे माता पिता भी सुन रहे हैं, सुनो जितने श्रोता हैं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा कैसी करवाओ? सुनो, जितनी क्षमता हो उतनी बड़ी। हाँ, जैसे विवाह में जितनी क्षमता होती उतना बढ़िया विवाह कराया जाता, कथा को भी वैसे ही करवाना चाहिए उत्सव के साथ। कथा कैसी करवाओ? सबको बुलाओ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबको आवाहन करो। कथा कैसी कराओ? जो कथा में आवे सब भगवान स्वरूप हैं। कथा कैसी करवाओ? एक जगह हमारी उत्तर प्रदेश में कथा हुई, जो यजमान हमारा बना, कथा का यजमान बना, उसने अपनी फोटो 5 फुट की लगवाई, हमारी बिल्कुल चिड़ैया बराबर, एक कोने में नाम लिखा था कथाव्यास बागेश्वर धाम सरकार। हमने जैसे ही शहर में प्रवेश किया उसकी फोटो इतनी बड़ी बड़ी, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे, अरे भैया पूरे में चेला ही चेला चिपको, जजमा नहीं, हम कोने पे चिरैया बराबर, इतने से जैसे वो ट्विटर की चिरैया नहीं होता, उतने कोने पे चिपके। जैसे ही हम घर पहुंचे चेला बोला गुरुजी आरती आरती आरती, आइए आइए गुरुजी, तैयारी ठीक है? हमका बेटा तैयारी तो बहुत अच्छी है पर तुम्हें बैनर में हमारी फोटो नहीं लगानी थी। बोले क्यों? हमका बेटा काहे को बेफिजूली में लगा दी, थोड़ा तुम और बड़ी लगा लेते हाथ तुम्हारे फैल जाते, इतनी सी फोटो काहे, मतलब हम फोटो को मरे नहीं जा रहे। कुछ चेला ऐसे होते हैं कि केवल चेला ही चेला दिखते, समझ गए ना? हाँ, कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है,
कथा भगवत दर्शन का विषय है। समझ गए? काय का विषय है? भगवान के दर्शन का विषय। कथा कैसी हो, प्रारंभ में कीर्तन हो और बाद में भी

श्रोता जो कथा सुने वो 7 दिन तक बैठ करके जो कथा सुने उसका आत्मसात भी करे, आत्मचिंतन करे। कथा सुनने के अधिकारी कौन है? सब, सबके लिए कथा है भैया। कथा के लिए कोई एक विशेष नहीं, सब कथा सुन सकते हैं। लेकिन भागवत जी में प्रथम स्कंद में एक जगह जरूर वर्णन दिया, वो बात हमको बहुत अच्छी लगी। बोले कथा का विशेष अधिकारी निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहि रहो रस कहा भुवि भावु कहा। बोले सुनो, कथा के सब अधिकारी हैं पर दो लोग विशेष कथा के अधिकारी। बोले कौन? जो भावुक हैं और जो रसिक हैं। रसिकों को आगे कथा में बैठना चाहिए, भावुकों आगे बैठना चाहिए। वर्तमान में तो फोटू वाले ज्यादा आगे बैठते हैं। हाँ, हमने देखा है टीवी पे स्क्रीन जो लगी ना, आधे लोग वहीं देखते रहते, हमारी फोटो नहीं आई। हाँ, और जब तक कथा चले तब तक तो वो ऐसे बैठते जैसे पिट गए हो, कुछ भी बड़ी बात कह दो। लेकिन जैसे ही कैमरा उनके सामने पहुंचे, जैसे ही कैमरा सामने पहुंचे तुरंत ऐसे ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात प्रहलाद जी या मीराबाई बैठे। इतनी भक्ति, इतनी भक्ति। और फिर बाद में जाके काट के इंस्टाग्राम पे अलग चढ़ा। हो हो हो, आज आज कथा में बड़ा आनंद आया। अरे टीवी की फोटो में आनंद आया कि कथा में आनंद आया? धन्य है भागवत की कथा। जो श्रोता भागवत जी की शरण में आ जाता वो ठाकुर जी की शरण में आ जाता। कल आपने महिमा तो सुनी भागवत जी की, अब आज सुनो भागवत की कथा करवाने से होता क्या है। भागवत जी के महात्म्य में वर्णन आया।

आयते। सनत कुमार नारद जी को सुनाने लगे। नारद जी, भागवत जी की कथा जिन्होंने सुनी उनका कल्याण हुआ। बोले महाराज कोई प्रमाण बताओ। बोले सुनो, एक बड़े ही विशुद्ध कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। उनकी जो पत्नी थी वो ठीक विपरीत थी। पंडित जी जितने सीधे थे ना, जितने धर्मात्मा थे, जितने पुण्यात्मा थे, कर्मकांडी, उनकी पत्नी उतनी ही उल्टी थी। उनका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो, धुंधली देवी। महाराज, धुंधली देवी पंडित जी की पत्नी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई घर में नहीं घुसती थी। इतनी लड़ंकू, महा लड़ंकू। महाराज लड़ाई करें सो तो ठीक है, इतनी गाली एक श्वास में दे बे कि सामने मालो गाली की गिनती ना कर पावे कि कितनी दई। हाँ, और तो और दूसरी खूबी सुनो, जब वो लड़ाई करवे बाहर आवे तो पानी का मटका साथ में ले आवे। तो कोई पूछे कि ये क्या है? बोले पानी है। बोले पानी तो है, वो तो हमें दिख पड़ रहा, पर ये बाहर लेके क्यों आई हो? बोले बा, गाली बकेंगे तो गाली देंगे तो गला सूखेगा ना। तो किसी ने कहा गला सूखेगा तो अंदर जाके पानी पिया। बोले वाह, जब तक पानी पीने अंदर जाएंगे तब तक ये तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे। हाँ, इसलिए वो मटका साथ में लेके आवे। पंडित जी जितने सीधे, पंडितानी उतनी महाराज उल्टी। एक ही कमी थी इनके घर में। क्या? धन था, दौलत थी, पर संतान नहीं थी। और सुनो, पति बिन सुनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मांग ना भरी हो ना, सुंदर नहीं लगती, शोभा नहीं देती। किसी का महल कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितनी भी गाड़ियां हो, कितना भी बड़ा नाम हो, पर पुत्र ना हो ना तो घर किसी काम का नहीं भैया, वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। ब्राह्मण देवता का भाग्य बड़ा उल्टा था। एक तो संतान नहीं थी और भाग्य इतना विपरीत, यो जितनी भी गाय लेकर आवे तो वहां से तो गाय ठीक ठाक आवे, पर इनके घर में आती गाय बछड़े देना, बच्चे देना बंद कर दे, इतना भाग्य खराब। ये कोई पेड़ लगाए ना, इतना भाग्य खराब महाराज, ये कोई पेड़ लगावे तो फूल तो आवे पर फल ना आवे। एक दिन पंडित जी ने सोचा मर जाना ही अच्छा है, ऐसे जीवन क्या काम का, मर जाते हैं। जंगल चले गए, बन गए तो बन में मरने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, रोने लगे। हमारा कौन सा अपराध है, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया, कोई संतान ही नहीं हुई, क्या काम का ऐसा जीवन, मैं तो मर रहा हूं। ऐसा सोच ही रहते तब तक एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने रोता हुआ देखा, लगा कोई भगवान का भक्त है, भगवान की याद में रो रहा है। महात्मा नजदीक आ गए। क्या बात है ब्राह्मण देवता,

क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है? महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे घर पर, कोई संतान नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। महात्मा मनी मन सोचने लगे, अरे राम राम राम, हम तो सोच रहे थे कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा अपन में, ये तो बेटा का भक्त निकला, पुत्र का भगत निकला, बेटा के लिए रो रहा है, राम राम राम राम राम। महात्मा ने उनके माथे को जरा पकड़ा, थोड़ा पड़ा, पंडित जी एक बात बोले। हाँ महाराज, बोलो। पंडित जी, एक जन्म तो एक जन्म, हमने आपके भाग को पढ़ लिया, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नवीचा नैवचा नैविचा, सात जन्म तक तुम्हारे भाग में कोई संतान नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी ने मस्तक लिया, जोर से पटक दिया महात्मा के चरण में। हे महाराज, क्या कर रहे हो? अरे महात्मा, पहले तो एक गुनाई दुख था, आपने ये बात बताकर हमारे दुख को सात गुना बढ़ा दिया। अब चिंता मत करो, हम अपने प्राण त्याग रहे, आप आत्महत्या भोगने को हमारी ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। महात्मा बोले, हे भगवान, खाम खां कहां आफत में पड़ गए, हम अच्छे खासे जा रहे थे, कहां से इनके चक्कर में पड़ गए, बेफिजूली में, अब बेफिजूली की आफत हो गई। अरे पंडित जी, मरो मत, मरो मत, कोई उपाय बताओ। पंडित जी बोले, महाराज, हमने सुना महात्माओं की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, आप तो कह दो बेटा होगा, ऐसा आशीर्वाद दो, वरना हम प्राण त्याग रहे। महात्मा ने कहा, बता लो, फंस गए बेफिजूली में, ना कहे तो मर जाएगा, और कहे तो भगवान को आफत। कोई बात नहीं, एक फल झोला से निकाला, बढ़िया फल हाथ में दे दिया, ले पंडित जी, फल है फल, जाओ, भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर इसी फल के प्रभाव से प्रतिफल में बेटा होगा। जय हो महाराज, जय हो, जय हो। इतना कह के आ गए। पंडित जी जाने लगे, महाराज कोई नियम करना है, बस भजन करो, नाम जप करो, पत्नी से कहना शांत रहे, भजन करे, बढ़िया बेटा होगा, बढ़िया, जो आज्ञा महाराज। अब पंडित जी घर आए, पत्नी बैठी थी बढ़िया धुंधली देवी। ए महाराज, इतने दिन कहाँ गायब रहे स्वामी जी? अब कुछ ना पूछो, ये बातें बाद में बताएंगे, पर सुनो, हम बड़ी खुशखबरी लेके आए। क्या खुशखबरी? ये लो, महात्मा का दिया हुआ फल है देवी जी, खा लो, भगवान ने चाहा इसी फल के प्रभाव से बेटा होगा, बेटा। अच्छा महाराज, हाँ। इतना कह के पंडित जी गांव में बताने चले गए, गांव वालों को, चिंता ना करो, जो सुबह सुबह हमारा मुंह देखने से बचते हो ना, अब हमारे भी घर पे 9 महीने बाद में किलकारी गूंजने वाली है, बेटा होने वाला है। इधर

बोली, अरे बहन मुझे एक संदेह है मन में, क्या कहीं मैंने फल खाया, मैं गर्भवती हो गई, फिर मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, कहीं घर में आग लगी, सब तो भाग जाएंगे, मैं जल के मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली, ये पक्का थोड़ी है आग लगे। तो धुंधली बोली, तू गारंटी लेके आग नहीं लगेगी। पड़ोसन ने कहा, कौन गारंटी ले, कहीं ये अपने हाथ से लगा ले, इसके दिमाग का पता थोड़ी है, खतरनाक है। बोली, बहन तू जान तेरा काम जाने, हम तो जे चले, राम जी की जय, राम जी की। अब वो चली गई महाराज। लेकिन धुंधली की जो बहन थी भैया, उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी।

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो

0: आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वही फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
20: Tune in to

0: about to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: दिल्ली में कई इलाकों में हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत, उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट, कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली में आंदोलनकारियों के मार्च के मद्देनजर धारा 163 के साथ जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी, आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन के गेट बंद, संसद जाने वाले कई रास्तों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, भगवान को लगाया गया मिठाई और फलों का भोग। स्पेन बना फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया, स्पेन में जोरदार जश्न। स्पेन की जीत का भारत में भी मना जोरदार जश्न, केरलम, हैदराबाद, मुंबई से लेकर दिल्ली NCR, गुवाहाटी और अगरतला में भी सड़कों पर खुशी से झूमते दिखे फैंस।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज 5वां दिन, आज निभाई जाएगी हेरा पंचमी की परंपरा।
8: ढोल मंजीरों और भजनों से भक्ति में हो गया है पूरा
7: माहौल। अड़पा मंडपम में दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, सुबह से दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। राजगढ़ छप्पन भोग के बाद निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत, रथ खींचने के लिए मची हो। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, भजन कीर्तन के साथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।

0: भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत। रथ यात्रा में भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। भगवान के रथ को खींचने के लिए मची होड़, हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते नजर आए। बेगूसराय में गूंजा जय जगन्नाथ, श्री राधा कुंज बिहारी मठ ने निकाली भव्य रथ यात्रा। बेगूसराय की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का मेला। जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंजा अकोला 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया, जमकर लगाए जय जगन्नाथ के जयकारे। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत। रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश हाई। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। प्रयागराज में गूंजा जय जगन्नाथ, इस्कॉन मंदिर ने निकाली भव्य रथ यात्रा। सिविल लाइंस की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया, रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश हाई। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। प्रयागराज में दिखा महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की भक्ति का अनोखा रंग, भव्य रथ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र के अकोला में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का मेला। जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंजा अकोला 31 फीट ऊंचे और 5 टन वजनी रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने भगवान से मांगी अच्छी बारिश की दुआ, किसानों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आधुनिक सुविधाओं से लैस 31 फीट ऊंचा रथ, रथ में फ्रंट व्हील ड्राइव, स्टेयरिंग, मैनुअल ब्रेक और एडजस्टेबल शिखर जैसी सुविधाएं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, भजन कीर्तन के साथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। पवित्र सावन मास की पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। पहली सोमवारी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस ने भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आगरमालवा के मां बगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा पाठ किया। मां बगलामुखी के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतार, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा पाठ किया। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भस्म आरती के दौरान महाकाल को भांग, चंदन और सिंदूर किया गया अर्पित, दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। जयपुर में मिस्टीन डीवा 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित, कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड फिनाले में देश भर की प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश चंद्र ने विजेताओं को सम्मानित किया। बारामूला में पहले महायज्ञ धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों के साथ मिलकर किया महायज्ञ, कई लोगों को सम्मानित किया। पटना में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने अपने बेटे के जन्मदिन पर महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, बेटा निशांत कुमार भी रहे मौजूद। स्पेन में जीत का मना जश्न, सड़क पर उतरकर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। मैड्रिड में फुटबॉल फैंस ने मनाया स्पेन की जीत का जोरदार जश्न, सड़कों पर उतरे लोग। भारत ने भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत का जश्न मनाया, तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर उतरे फैंस, जीत की खुशी में जमकर मनाया जश्न। स्पेन की जीत पर गोवा के पंजी में फैंस उत्साहित, देर रात तक कैफे में जीत का जश्न मनाते दिखे। मुंबई में भी स्पेन की जीत का जश्न मना, खुशी में झूमे फैंस, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बने सेलिब्रेशन का हिस्सा। कोलकाता में स्पेन के विश्व विजेता बनने पर फैंस के खिले चेहरे, अर्जेंटीना की हार पर फैंस की आंखें हुई नम। बेंगलुरु में स्पेन की जीत से गूंजा पूरा इलाका, फैंस ने नाच गाकर अपनी पसंदीदा टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। शिलोंग में स्पेन की जीत का फैंस ने जमकर जश्न मनाया, जीत पर जमकर डांस किया। गुवाहाटी में लोगों ने स्पेन की जीत का जश्न मनाया, लोगों ने जमकर डांस किया। अगरतला में भी स्पेन की जीत का मना जश्न, सड़क पर उतरकर लोगों ने लगाए स्पेन के जयकारे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
6: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
5: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
7: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली में कई इलाकों में हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत, उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट, कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी। दिल्ली में आंदोलनकारियों के मार्च के मद्देनजर धारा 163 के साथ जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी, आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन के गेट बंद, संसद जाने वाले कई रास्तों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी भारत के गौरव गीत की। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहानी वंदे मातरम की। वंदे मातरम की कहानी जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। 150 साल पुरानी इस रचना को 76 साल पहले राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, लेकिन अब इसे कानून के दायरे में लाया जा रहा है ताकि देश के इस गौरव गान का अपमान करने वालों को सजा मिल सके, लोग राष्ट्रगीत के महत्व और इसकी गंभीरता को समझ सके। इसलिए हमें वंदे मातरम की कहानी भी जाननी होगी कि कैसे ये गीत हमारा राष्ट्रगीत बना, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि राष्ट्रगीत का दर्जा दिए जाने के 76 सालों के बाद इस तरह की कानूनी कवच क्यों दिया जा रहा है वंदे मातरम को, ताकि कोई इसके अपमान के बारे में सोच ना सके। ये सब हम आपको आगे बताएंगे। राष्ट्रगीत घोषित किए जाने के बाद अब वंदे मातरम को कानूनी कवच देने की तैयारी हो रही है और इसके लिए सरकार एक बिल लाने जा रही है। ये बिल 1971 के उस कानून में संशोधन के लिए लाया जा रहा है जिसे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के सम्मान को कानून के दायरे में रखा गया है। अब राष्ट्रगीत को भी इसी में शामिल करने का प्रस्ताव है। और क्या खास बातें हैं इस कानून में और वंदे मातरम से जुड़े कौन से नियम हैं जो इसकी गरिमा बरकरार रखने के लिए जरूरी हैं, इनके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

पीढ़ी दर पीढ़ी, दशक दर दशक, भाव दर भाव, हृदय से हृदय तक, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र के आत्म गौरव का स्पंदन है। शब्द जो स्वतंत्रता संग्राम में रक्त रंजित आहुति की पुकार बने, जो भारत के स्वाभिमान की हुंकार बने, स्वराज आंदोलन में आशा का संचार बने।

एक राष्ट्र के रूप में भारतवासियों की सामूहिक चेतना को पोषते आए ये वो शब्द हैं जो मातृभूमि से अनंत और अगाध प्रेम के परिचायक हैं। हमारे वर्तमान के कानों में पड़ती ये ध्वनि कोई डेढ़ सदी का फासला तय करके हम तक आई है। 150 साल पहले हुगली किनारे रचे गए इस गीत की कहानी उतनी ही रोचक और असाधारण है जितना भव्य और अप्रतिम ये गीत है। वंदे मातरम गीत की उत्पत्ति पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है, जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आत्मा पर प्रहार कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय लोगों के हृदय में भारत माता के लिए देशभक्ति और प्रेम जगा रहा था। इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र भारतीय के स्वाभिमान पर चोट का उत्तर था। साल 1873 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ एक घटना हुई, जब उनके प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए भी एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल बफिंग ने उनके साथ हाथापाई की। इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम चंद्र को अपने देश में गुलामी का एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम गान की रचना का आधार बनी। 1875 में संस्कृत और बंगाली के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम चंद्र ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत माता को एक सजीव और एक माँ के रूप में दर्शाया गया है। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को शामिल किया गया और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया, जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की आवाज बन गया। ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7

0: अगस्त 1905 को किया गया था, जबकि 1907 में भारत का पहला झंडा भीकाजी कामा ने जर्मनी में फहराया, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। जिस उपन्यास आनंद मठ से ये गीत सामने आया, उसका मूल कथानक सन्यासियों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें संतान कहा जाता है, जिसका आशय बच्चे होता है, जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। वे मातृभूमि को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। उनकी भक्ति सिर्फ अपनी जन्मभूमि के लिए है। वंदे मातरम आनंद मठ के संतानों द्वारा गाया गया गीत है। ये राष्ट्रभक्ति के धर्म का प्रतीक था, लेकिन ब्रिटिश काल में जैसे जैसे समय बीता, राष्ट्रभक्ति के इस प्रतीक का विरोध भी हुआ। बंगाल के रंगपुर इलाके के एक स्कूल में 200 छात्रों पर वंदे मातरम गाने पर नवंबर 1905 में 5-5 रुपए का जुर्माना लगा, तो अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी शोलों में बदल गई। वंदे मातरम ब्रिटिश हुकूमत के विरोध का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम गाने को रोकने के लिए जगह जगह इंस्पेक्टर तैनात किए गए। महाराष्ट्र के धुलिया इलाके में नवंबर 1906 में हुई बड़ी सभा में वंदे मातरम के नारे लगे तो सरकार की नींव हिल गई। लोकमान्य तिलक को मांडले जेल भेजा गया। लोकमान्य तिलक को मांडले जेल भेजे जाने के दौरान भी सैकड़ों आंदोलनकारियों ने यही गीत गाया, तो पुलिस ने लाठी चार्ज और गिरफ्तारी की। 1905 में उत्तरी कोलकाता में मातृभूमि को एक मिशन और धार्मिक जुनून के तौर पर बढ़ावा देने के लिए एक वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय के सदस्य हर रविवार को वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरियां निकालते थे और मातृभूमि के समर्थन में लोगों से स्वैच्छिक दान भी लेते थे। इस संप्रदाय की प्रभात फेरियों में कभी कभी रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल होते थे। वंदे मातरम गीत से जुड़ी आजादी के संघर्ष की कई कहानियां हैं। आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम क्रांति की चिंगारी बना। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। इस गान का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि इस गीत की वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया।
1: 1882 में उन्होंने अपने उपन्यास के अंदर इसको स्थान दिया। आनंद मठ उस उपन्यास का नाम था, और उसके बाद फिर ये बंग भंग जो आंदोलन चला उसके अंदर राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक के तौर पे उभरा, और पूरे देश भर के अंदर जो राष्ट्रीयता से जुड़े लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उन सभी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के तौर पर स्वीकारा, और राष्ट्रभक्ति के आंदोलन में इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को एक भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के तौर पर स्वीकारा और बहुत श्रद्धा पूर्वक गाया। ये इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सफर है, जो कि 1870 से चल करके आज 150 वर्ष बाद 2025 में भी उसी तरह से लोग श्रद्धा भक्ति के साथ गा रहे हैं।
0: लेकिन देश आजाद होने से पहले ही वंदे मातरम और जनगण मन को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इस बढ़ते विवाद को हल करने के लिए 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस की एक समिति का गठन किया। समिति ने आपत्तियों पर विचार किया और ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे, जिनमें
2: और इसी के साथ जेएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
4: somebody save me,
3: to timeless favorites,
4: life is like a song,
3: and new discoveries.
4: And that's so much more than a history. Wake up!
3: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. You and me.

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: और चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर स्पेन ने इतिहास रच दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया और खिताब अपने नाम कर लिया। और इस रोमांचक खेल में ऐतिहासिक पल वो रहा जब एक्स्ट्रा टाइम में टोरेस के शानदार गोल ने स्पेन को विश्व चैंपियन बना दिया। इस जीत के साथ स्पेन ने 16 सालों के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल कर ली और मैदान पर जीत की खुशी थी तो वहीं दुनिया भर में फैंस के बीच जश्न का माहौल। इस दौरान भारत में फुटबॉल की दीवानगी भी खूब देखने को मिली। आपको बता दें, देश भर में स्पेन के समर्थक सड़कों पर उतर आए, हाथों में स्पेन के झंडे लिए, चेहरों पर टीम के रंग और जुबान पर जीत के नारे, हर तरफ सिर्फ फुटबॉल का जुनून नजर आया। कोलकाता में फुटबॉल फैंस ने स्पेन की जीत का जमकर जश्न मनाया। सड़कों पर यहां पर फैंस इकट्ठा हुए थे, उमड़े हुए थे, जीत का जश्न मना रहे थे और फैन जोन में बड़ी संख्या में लोग जुटे और टीम की जीत को सेलिब्रेट किया। पश्चिम बंगाल की फुटबॉल दीवानगी एक बार फिर से देखने को मिली। वहीं मुंबई में भी स्पेन की जीत का जश्न देखने को मिला। वहीं बात करें माया नगरी मुंबई की, तो यहां पर भी फैंस ने आतिशबाजी के साथ विश्व चैंपियन टीम को स्पेन को बधाई दी। फुटबॉल लवर्स ने देर रात तक जीत का जश्न मनाया। स्पेन की इस जीत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को जोड़ने वाला जुनून है। एक गोल ने इतिहास बदल दिया और करोड़ों फैंस को जश्न का मौका दे दिया। स्पेन ने जैसे ही अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप जीता, स्पेन की राजधानी खुशियों से झूम उठी। मैड्रिड की सड़कों पर हजारों की तादाद में फैंस ने जश्न मनाया आतिशबाजी की। रात भर ये जश्न जारी रहा। लाल और सुनहरे झंडे लहराते हुए स्पेनिश फैंस ने दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का जश्न मनाया। न्यू जर्सी में खेले गए इस महामुकाबले में फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल करके स्पेन को ये जीत दिलाई और इस दौरान स्पेन के कोच लुइस डे ला फ्रुएंटो ने कहा कि अर्जेंटीना को हराने में उनकी टीम के खिलाड़ियों की टीम फर्स्ट फिलॉसफी ने अहम भूमिका निभाई।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
9: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: Sage University, transforming your passion into profession.
12: पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब. सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें. रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा. अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर. लोगों से सावधानी बरतने की जा रही है अपील. दिल्ली में कई इलाकों में हुई बारिश. उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत. उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट. कई जगह स्कूलों में छुट्टी. दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा. भक्तों में दिखा गजब का उत्साह. भगवान को लगाया गया मिठाई और फलों का भोग. स्पेन बना फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन. फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल के बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप पर किया कब्जा. भारत में भी चर्चा.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
12: सच गए हैं खबरों के पेट. तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिंदे. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पाराशु. खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं. हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबर.
12: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज 5वां दिन. आज निभाई जाएगी हेरा पंचमी की परंपरा. अडपा मंडपम में दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु. सुबह से दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें. राजगढ़ 56 भोग के बाद निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा. भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु. भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत. व्रत खींचने के लिए लगी होड़. दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल. बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा. सड़क पर उमड़ा आस्था का मेला. जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंजा अकोला. 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु. बेगूसराय में गूंजा जय जगन्नाथ का नारा. श्री राधा कुंज बिहारी मठ ने निकाली भव्य रथ यात्रा. कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन. आगरमालवा के मां बगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब. बड़ी संख्या में लोगों ने किया पूजा पाठ. उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती. बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल. अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का मेला. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन. जयपुर में मिस टीन डीवा 2024 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया. कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

0: बारामूला में प्रथम महायज्ञ धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। एलजी मनोज सिन्हा हुए इसमें शामिल। पटना में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने अपने बेटे के जन्मदिन पर महावीर मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। बेटा निशांत कुमार भी साथ में रहे। स्पेन में जीत का मना जश्न। सड़क पर उतरकर लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। मैड्रिड में फुटबॉल फैंस ने मनाया स्पेन की जीत को लेकर जोरदार जश्न। सड़कों पर उतरे लोग। भारत में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत का जश्न मना। तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर उतरे फैंस, जीत की खुशी में जमकर मनाया जश्न। स्पेन की फतेह पर गोवा के पणजी में फैंस उत्साहित नजर आए। देर रात तक कैफे में जीत का जश्न मनाते नजर आए प्रशंसक। मुंबई में भी स्पेन की जीत का जश्न मना। खुशी में झूमे फैंस, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बने सेलिब्रेशन का हिस्सा। फिल्म रामायण में जटायु के किरदार में नजर आएंगे अनुपम खेर। रावण के साथ करेंगे युद्ध। 8 अगस्त को बेंगलुरु में होगा फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर। 26 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दो ओडिसी का बॉक्स ऑफिस पर उठा तूफान। तीसरे दिन भी डबल डिजिट में कमाई है। 60 करोड़ के पार हुआ इसका कलेक्शन। आप लोगों की तबीयत कैसी है? 60 साल के सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया बीमार होने की खबरें, इसका खंडन किया। तारक मेहता के निर्माता आसिफ मोदी मंदिर में पहुंचे। शिव पार्वती विवाह स्थल पर जाकर की विशेष पूजा अर्चना। पुत्र के विवाह के लिए पौराणिक स्थल भी देखा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। फीफा वर्ल्ड कप का नया चैंपियन बना स्पेन। अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। 16 साल बाद जीता खिताब।
2: दिल्ली में बरसे राहत के बादल। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। आज दिन भर रुक रुक कर हो सकती है बारिश।
0: राजधानी में सीजीपी के संसद मार्च के चलते बंद किए गए कई मेट्रो स्टेशन। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई।
2: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज पांचवा दिन। आज निभाई जाएगी हेरा पंचमी की परंपरा।
0: फिल्म बंटवारा 1947 का दूसरा टीजर आउट हुआ। दम एक्शन और इमोशन से भरे टीजर को मिल रहा है दर्शकों का भरपूर प्यार। 15 अगस्त को होगी रिलीज।
2: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म रामायण की। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण पार्ट 1 के ट्रेलर की आधिकारिक रिलीज डेट सामने आ गई है। रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे, सनी देओल और मल्टी स्टारर ये फिल्म मौजूदा साल की दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है।
0: इससे पहले दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर का भी बेसब्री से इंतजार है और अब फिल्म के ट्रेलर दुनिया भर में 24 जुलाई को रिलीज होगा।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन और आदर्शों की कहानी राम कथा रामायण, श्री रामचरितमानस में वर्णित महागाथा अब रामायण के रूप में बड़े पर्दे पर आने जा रही है। 4,000 करोड़ की मेगा फिल्म प्रोजेक्ट रामायण इसी साल दर्शकों के सामने आने वाली है, तो सबको इंतजार है कि आखिर ये फिल्म कैसी होगी और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने वर्षों के बाद एक बार फिर से किस तरह रामायण की कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारी की गई है और अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इन सारे सवालों के जवाब उस ग्रैंड इवेंट में मिले जिसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जिसका नाम है प्रथम संकल्प।
1: तो मेरा हमेशा मन में ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ऐसी कौन सी कहानी है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास, जो हमारी है, जो जिस पे हमें गर्व हो, जब हम वो दुनिया के सामने पेश करें तो ऐसा लगे कि ये हमने हमारे पूरी जान, पूरी अपने शिद्दत से, पूरी अपनी डेडिकेशन से इसको बनाया है और ये हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं जैसे उन्होंने शायद अपने कोई फिल्में की हों। और रामायण के अलावा और कोई ऐसा सब्जेक्ट का मुझे ध्यान नहीं हुआ और ये प्रण ले लिया मैंने उस दिन, ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी बात है, कि अगर बनाएंगे तो रामायण बनाएंगे और पूरे दिल से, पूरी जान लगा के।
0: ये तस्वीरें फिल्म रामायण के उसी ग्रैंड लॉन्च इवेंट की है जिसमें फिल्म रामायण के प्रमुख किरदार पब्लिक के सामने पहली बार एक साथ दिखे और बताया कि फिल्म में अपने रोल के बारे में वो क्या सोचते हैं। रणवीर कपूर, साई पल्लवी, अरुण गोविल, रवि दुबे, सनी देओल, यश, रकुल प्रीत, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर और अजंक्य देव सहित तमाम एक्टर इस खास इवेंट में शरीक हुए। तमाम किरदारों ने इस मौके पर बताया कि जो रोल उन्हें मिला उसे निभाना उनके लिए कितना अहम है।
2: सबसे पहले मैं अरुण जी से बात करना चाहूँगा। सर प्लीज बैठे रहिए। सर आपने इस जिम्मेदारी को सालों से इतनी खूबसूरती, सच्चाई और डिग्निटी से पेश किया है। आपका ये सफ़र मेरे जैसे एक्टर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर इंसान जिसने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, आपने उनको भरोसा और प्रेरणा दी है। जैसे आपने भगवान श्री राम को अपने अंदर उतारा है, अगर मैं इतना भी कर पाऊँ तो मेरे लिए मेरी मेहनत सफल रंग लाएगी। बचपन से सर भगवान श्री राम का आशीर्वाद, उनकी सीख और आपका चेहरा अपने दिल में रखकर बड़ा हुआ हूँ और उसके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट वी लव यू लाइक यू आर आवर ओन।
3: इट्स नॉट ईजी फॉर एक्टर्स टू गेट रोल्स लाइक दिस बिकॉज एक भगवान, एक गॉडेस को प्ले करने के लिए इतना एक ईजी काम नहीं होता है। एक टीम होनी चाहिए हु इज पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल इनटू मेकिंग इट द बेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट दे कैन प्रेजेंट टू द वर्ल्ड बिकॉज इट बिकम्स इतिहास, इट बिकम्स हिस्ट्री फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू थिंक गो बैक टू इन द फ्यूचर। सो ऐसे एक प्रोजेक्ट में मुझे चुनने के लिए थैंक यू सो मच। एंड व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग सीता माँ, आई डोंट थिंक आई चोज द रोल, आई थिंक आई वॉज ब्लेस्ड टू प्ले दिस रोल बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन गो आफ्टर and it is not something that you can write down on a piece of paper and say this is how I'm going to play. I would just sit and meditate and say Sitamma, you act through me, whatever comes through me is what you want for the film. And I was always keeping myself as pure as possible, at least in my thoughts, to keep it very neutral so that I have the best version of me presenting there. And us koshish mein mujhe laga ki main bahut kuch seekh liya.
4: Mere jeevan ka sabse bada saubhagya hai ye aur आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बिल्कुल सही बात कही कि श्री राम चुनते हैं और जब श्री राम चुनते हैं तो भाव भी वही देते हैं, साधन भी वही देते हैं, संसाधन भी वही देते हैं, हिम्मत भी वही दे देते हैं। श्री राम ने आदरणीय नमित जी को चुना, आदरणीय नितेश जी को चुना, मेरे भैया रणवीर भाई जो श्री राम का पात्र कर रहे हैं उनको चुना, माते साई को चुना माँ सीता के रोल के लिए। न जानी ये कैसे हो गया कि इतने बड़े नामों में, इतने बड़े मंच पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरे माता पिता आए हुए हैं यहाँ पे, ये शायद उनके अच्छे कर्म हैं, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं जो कि मेरा महासौभाग्य बन गए और यहाँ राम कथा में मैं आज श्री लक्ष्मण का पात्र निभा रहा हूँ।
0: राम कथा पर अभी तक जो भी फिल्में और सीरियल बने हैं उनमें राम भक्त हनुमान जी का किरदार बलिष्ठ और दमदार एक्टर निभाते रहे हैं। रामायण में भी ये रोल बॉलीवुड के ऐसे एक्टर को मिला जो ऑन स्क्रीन ताकतवर इमेज और शानदार डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ वे नर्मता के लिए भी जाने जाते हैं। वो एक्टर हैं सनी देओल। सनी पाजी का क्या कहना है हनुमान जी के रोल के बारे में?
5: देखिए, सच में बताऊं तो मैंने भी काम शुरू थोड़ा सा ही किया इस पिक्चर में। मुझे बहुत आगे बढ़ना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरह इसे निभा सकूं, क्योंकि हनुमान जी का कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा, बिकॉज वो नटखट हैं, इनोसेंट हैं, ताकतवर हैं और आप सबके प्यारे हैं और राम जी के भक्त हैं।
0: रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस फिल्म में दशरथ जी के रोल में है। श्री राम जी की भूमिका से उनके पिता राजा दशरथ तक के किरदार के सफर को उन्होंने कैसे पूरा किया, सुनिए उन्हीं की जुबानी।
6: राम जी की दुनिया है, अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगेगा, पहले भी अच्छा ही लगा था। अब एक दूसरे पात्र का अभिनय मैंने यहां किया है। उस पात्र को करते वक्त बार बार ये तो याद आती थी कि मेरे सामने जो पात्र उस समय था, जो समय है, उसने उस वक्त मैंने कैसे रिएक्ट किया था उस पात्र के परिधान में, ये बात हमेशा मेरे दिमाग में आती थी। मैं जब जब भी सेट पर होता था, जब भी कोई सीन होता था, राम मेरे सामने हो या ना हो, पर मैं अपने सामने जरूर होता था।
0: मेकर्स ने इस ग्रैंड इवेंट में एक्टर यश को सरप्राइज के रूप में पेश किया, जो फिल्म में डबल रोल में है, यानी लंकापति रावण की भूमिका निभाने के साथ साथ वो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है।
7: इस मुकाम तक आने के लिए ऑल क्रेडिट शुड गो टू नमित मल्होत्रा ही। उन्होंने मुझे इस पात्र निभाने का जो अवकाश दिया उसके लिए उसे धन्यवाद कहता हूँ। हिंदी सीखने का भी मौका मिला उसमें। या सो आई थिंक दिस इज इंडियाज ड्रीम। वी ऑल हैव कम टुगेदर, एवरीबडी इन दिस फिल्म हु हैज बीन पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज really come with one vision, one conviction to put our story to the global platform. So all of us are here keeping all our interest aside. We have only one interest, to tell Shri Ram's, Prabhu Shri Ram's story to the global audience and also to celebrate him in our country.
0: Shan, Gambhir aur dharm ke marg par chalne wale aadarsh vyaktitv Shri Ram, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का दूसरा नाम भाई लक्ष्मण, दिव्यता और पवित्रता से परिपूर्ण, त्याग और स्वाभिमान की आंतरिक शक्ति के प्रतीक सीता माता, परम राम भक्त महावीर हनुमान, अहंकार और क्रूरता के विकराल स्वरूप लंकापति रावण सहित राम कथा के तमाम किरदारों को इस नई फिल्म में नए रूप और अंदाज में पेश किया जा रहा है।
8: महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का वर्णन करते हुए उसे इतिहास बोला है। उन्होंने कहा इतिहास, दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो उन्होंने कहा था पूर्ववृत्तम कथा युक्तम, जैसे पहले हुआ है और जैसा मैं उसे कहानी के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, आप अपना जुडिशियसली आप डिसाइड करिएगा अपनी श्रद्धा के बेसिस पे क्या हुआ है और क्या मैं अपनी कहानी के बेसिस पे आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत बात कही उन्होंने और इसी को हमने अपना गोल्डन प्रिंसिपल माना सर। जो हुआ है उसको आप छेड़ नहीं सकते हैं, वो फैक्ट है आपके सामने। कथा युक्तम में अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वही कहानी हम आपको एक एकदम नए तरीके से दिखा सकते हैं विजुअली, बिकॉज दैट इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज एडवांस। तो आप देखेंगे वही रामायण जिससे आप वाकिफ हैं, परंतु आपको एक कंप्लीटली नया एक्सपीरियंस होगा। वाली और सुग्रीव कैसे दिखते थे, किष्किंधा कितनी खूबसूरत हो सकती है, हनुमान जी ने लंका को जाकर कैसे आग लगाई, ये सबको शायद आपने पहले कभी इस तरह से विजुलाइज नहीं किया होगा। अब जब वही बात जो आप जानते हैं उसको एकदम नए तरीके से आप पर्दे पर देखेंगे तो हो सकता है हमारा जो प्रयास रहा है वो सार्थक हो जाए।
0: इस इवेंट में योग गुरु रामदेव सहित कई साधु संत और दूसरी हस्तियां भी शरीक हुए। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये फिल्म नया इतिहास रचेगी।
9: मुझे लगता है जिस तरह से इस फिल्म के में पूरे प्राण फूके हैं, अपना सर्वस्व आहूत करके, यह फिल्म रामायण की पूरे विश्व में एक नया इतिहास बनाएगी, ऐसा विश्वास है इसमें। एक इतिहास।
10: जितने भी हमारे अभिनेता हैं, अभिनय तो आपने बहुत अच्छा किया। हमारे गुरुजी का एक वाक्य कहते हैं, अभिनय ऐसा करो कि आप उसको जी रहे हैं, और जियो ऐसा कि आप अभिनय कर रहे हैं। तो रणवीर जी, पल्लवी जी, रवि जी और हमारे बड़े बड़े महारथी हैं, आपसे तो क्या कहना है? तो कोशिश करना, अपने जीवन में कोई छोटी मोटी भूलें हों, राम का रामत्व तो हमारे आचरण में, हमारी मर्यादा में, जीवन में उतर जाए, बड़ा सुख मिलेगा। राम का रामत्व तो, सीता का सीता तत्व, हमारा लक्ष्मण तत्व, हनुमत तत्व, शिवत्व हमारे जीवन में उतर जाए, बस यही प्रभु से प्रार्थना।
0: इवेंट में मौजूद खास लोगों को पहली बार फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर दिखाया गया, जो देश और दुनिया के सामने तो चंद मिनटों बाद ट्रेलर को भारतीय समय के हिसाब से 24 जुलाई को अमेरिका के सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन डिएगो के बाद मेकर्स की योजना रामायण की स्पेशल प्रीव्यू को सितंबर में होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाने की है। इससे पहले इसके धमाकेदार प्रमोशन की तैयारी भी है, जिससे लगता है ये फिल्म पूरी दुनिया में कामयाबी का डंका बजाएगी। फिल्म रामायण दो पार्ट में रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि इसका पहला भाग इस साल दिवाली पर और दूसरा भाग अगले साल दिवाली के अवसर पर ही रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कुटिया टुडे।
11: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सलमान खान की, क्योंकि वो हमेशा अपने दमदार और पावरफुल लुक से फैंस को हैरान करते हैं। लेकिन बीते दिनों सलमान की कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसे देखकर सलमान खान की सेहत खराब होने की अफवाह तेजी से उड़ी है।
12: बिल्कुल, देखिए फैंस काफी हैरान थे इस खबर को सुनकर, लेकिन अब बीती रात को सलमान खान ने ही सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, साथ ही पूछा है आप लोगों की तबीयत कैसी है, क्या है सलमान खान के इस पोस्ट के मायने और क्या है वायरल तस्वीर का पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में।
13: रविवार आधी रात को सलमान खान ने एक के बाद एक पांच तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिनमें वो अलग अलग लुक में नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने हल्की दाढ़ी रखी है और काफी फिट, लेकिन पहले से थोड़े दुबले दिख रहे हैं। सारी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं, जिनमें सलमान ने तरह तरह के स्टाइलिश हैट पहने हुए हैं। एक में उन्होंने कावर लुक कैरी किया है। बावजूद इसके जारी तस्वीरों में उनका सादगी भरा अंदाज साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ ही सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, आप लोगों की तबीयत कैसी है। सलमान खान बेवजह कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करते, उनकी बातों में कोई ना कोई मतलब छिपा होता है, लिहाजा फैंस तरह तरह के कयास लगाने लगे। एक यूजर ने लिखा, आप ठीक है तो हम सब ठीक है सर। दूसरे यूजर ने लिखा, तुम हो तो मूवीज है, तुम नहीं तो सिनेमा खत्म। किसी और ने लिखा कि सर मैं आपको देखते ही ठीक हो जाता हूँ, लाइफ की प्रॉब्लम कम होती दिखती है। वह एक यूजर ने लिखा, भाई आपकी नई फोटोज ने तो डरा ही दिया था, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। माना जा रहा है कि सलमान खान ने उन तमाम लोगों को इशारों में जवाब दिया है जो उनकी हालिया तस्वीरें देखकर कमेंट कर रहे थे और उनकी सेहत पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल बीते दिनों एक पब्लिक इवेंट में सलमान खान की मौजूदगी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। सलमान मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की ओर से कराए गए एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अथॉरिटी के नए डेटा कलेक्शन आईटी सर्वर रूम का उद्घाटन किया। इस दौरान सलमान ने कई लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। इवेंट में सलमान ब्राउन रंग की लूज शर्ट और पैंट पहनकर पहुंचे थे। चेहरा मुरझाया सा लग रहा था, स्माइल गायब थी, थोड़े दुबले थोड़े कमजोर दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि सलमान पहले से ज्यादा पतले और थके नजर आ रहे हैं, शायद उम्र का असर है। सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं, ऐसे में उम्र का थोड़ा बहुत असर होना लाजमी है। मुमकिन है सलमान की तबीयत तब नासाज हो, लेकिन कमिटमेंट की वजह से वो इवेंट में आने से इनकार ना कर सके हो। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिटनेस फ्रीक सलमान इस उम्र में भी काफी फिट है। इसका सबूत उन्होंने कई तस्वीरों के साथ दे दिया है, साथ ही इन लोगों को जवाब भी दे दिया जो उनकी सेहत पर सवाल उठा रहे थे। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
11: सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बटवारा 1947 का नया टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में सनी देओल का हमेशा की तरह दमदार अंदाज दिखाई दे रहा है। करीब एक मिनट के इस टीजर में सनी देओल का किरदार डर और नफरत के ऊपर साहस चुनता है
14: और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। दरअसल देश के विभाजन पर बेस्ड इस फिल्म में बंटवारे का अनदेखा दर्द भी देखने को मिलेगा। फिल्म अब फिलहाल 14 अगस्त को रिलीज की जाएगी।
15: जीते जी मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा।
16: एक्शन और इमोशन, साहस और बलिदान, शुरुआत से आखिर तक रोमांच से भरा बंटवारा 1947 का ये टीजर देश के बंटवारे के उस दौर की कहानी को सामने लाता है जो खौफ और दहशत से भरी है। जुल्म सितम से भरे इस माहौल में एक शख्स ऐसा है जो बुझती हुई लौ के बीच उम्मीद बनकर खड़ा है, हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने परिवार की रक्षा के लिए डट कर खड़ा है। हमेशा की तरह सनी देओल का ये किरदार जोश और जुनून से भरा है।
15: जीते जी मरना नहीं चाहता।
16: बंटवारा 1947 का ये दूसरा टीजर है। करीब एक मिनट के इस टीजर में सनी देओल का किरदार डर और नफरत के ऊपर साहस चुनता है, एक ऐसा किरदार जो असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है। सनी देओल इस फिल्म में सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं और उनका इंटेंस अंदाज अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब दिख रहा है। टीजर में काफी इमोशनल सीन भी दिखाए गए हैं जो आपकी आंखों को नम कर सकते हैं। इमोशन के साथ टीजर में दमदार एक्शन भी देखने को मिलते हैं। इससे पहले बंटवारा 1947 का एक टीजर, मोशन पोस्टर, कैरेक्टर पोस्टर्स पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब तक रिलीज किए गए टीजर में बंटवारे के दौर की त्रासदी, साहस, बलिदान और इंसानी जज्बे की झलक देखने को मिलती है।
15: और कुर्बानियां देने के बाद
16: 1947 में भारत का विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन और त्रासदियों में से एक था। अब तक कई बॉलीवुड फिल्में इस विषय पर बन भी चुकी हैं। अलग अलग फिल्मकारों ने किसी न किसी किताब या उपन्यास को आधार बनाकर अपने अपने नजरिए से इस ऐतिहासिक त्रासदी को पर्दे पर उतारा है। इस बार निर्देशन की कमान संभाली है राजकुमार संतोषी ने और भारत पाक विभाजन के दौरान की एक अनोखी कहानी को लेकर सामने आए हैं। बंटवारा 1947 असगर वजाहत के विश्व प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जमियाई नई पर बेस्ड है। जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जमियाई नई एक पंजाबी कहावत है जिसका मतलब है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। बंटवारा 1947 के दोनों टीजर दमदार लगते हैं। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी जैसे मजे हुए कलाकार हैं। इंतजार अब ट्रेलर का है और 14 अगस्त का, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये फिल्म देश भर के सिनेमा घर में रिलीज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
15: लेकिन अफसोस, मुल्क का बंटवारा हो गया।
11: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मॉनसून की।

0: उत्तर भारत में मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कहीं पर झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी है तो कहीं पर मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस मिली है।
1: और देखिए, देहरादून से लेकर केदारनाथ तक वादियां बारिश से सराबोर हैं, जबकि शिमला में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश जहां एक और गर्मी से राहत लेकर आई है तो वहीं पहाड़ी राज्यों में यही बारिश चुनौती बनकर सामने आ रही है। ऐसे में मौसम का आनंद जरूर लीजिए लेकिन सावधानी भी उतनी ही बरतिए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना भी जताई है। और चलिए, बारिश की बात हो रही है तो इसके साथ जुड़े हुए चुनौतियों की बात भी कर लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं सैलाब के बीच में मिशन रेस्क्यू की तस्वीरें। मौसम सुहाना हुआ लेकिन कई इलाकों में बारिश थोड़ी सी चुनौती लेकर आई है, लेकिन राहत वाली खबर ये आई है कि इन इलाकों में हमारे जवान देवदूत बनकर पहुंच गए हैं।
0: दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अचानक से बाढ़ आई जिसके बीच भारतीय सेना ने तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाया और 11 नागरिकों की जान बचाई गई। तेज बारिश की वजह से उफनते नाले में लोग फंस गए थे, जिसके बाद सेना की टीम बिना देर किए मौके पर पहुंची। कठिन परिस्थितियों और तेज बहाव के बावजूद जवानों ने राहत अभियान चलाया और सभी फंसे हुए लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। तो राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए जिससे कि जनजीवन भी काफी हद तक प्रभावित हुआ। बाढ़ के पानी में कई सारे बेजुबान भी फंस गए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक गाय और भैंस बाढ़ के पानी में फंस गए।
1: इसके बाद देखिए, इनका रेस्क्यू किया गया। गांव वालों ने रस्सी के जरिए बेजुबानों का रेस्क्यू किया। कुछ लोग रस्सी का एक सिरा पकड़े हुए किनारे पर मौजूद है जबकि रस्सी का दूसरा सिरा लिए एक शख्स अपनी जान दांव पर लगाते हुए बेजुबानों के पास पहुंचता है। उनके गले में रस्सी बांध देता है जिसके बाद लोग रस्सी खींचकर उन्हें किनारे पर खींच लाते हैं।
0: चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए पूरी में रथ यात्रा के पांचवें दिन आज हीरा पंचमी की परंपरा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: To tackle those home projects, whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like yeah. Pop stars NSYNC and Britney Spears. Me, baby, one more time. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9:00।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, लोगों से सावधानी बरतने की जा रही है अपील। भारी बारिश के चलते आज दूसरे दिन भी स्थगित रही अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी जा रही। दिल्ली में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत, उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट, कई जगह स्कूलों की छुट्टी। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, भगवान को लगाया गया मिठाई और फलों का भोग। स्पेन बना फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप पर किया कब्जा, भारत में भी जश्न।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: चलिए बात आस्था और उत्सव की कर लेते हैं। पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आज पांचवा दिन है। इस उत्सव के तहत आज यहाँ हेरा पंचमी की सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई, जिसमें माँ लक्ष्मी श्री मंदिर से पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर आएंगी
2: और भगवान जगन्नाथ से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगी। तो भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अभी फिलहाल मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विराजमान है।
3: अब रौनक गुंडीचा मंदिर में है, ये जन सैलाब वहीं उमड़ा है। जगत के नाथ इन दिनों यहीं पधारे हैं, आड़प मंदिर में विराजे हैं। रोज अनुष्ठान हो रहे हैं, नए नए भोग लग रहे हैं। आसमान भी मानो महाप्रभु के आगमन से खुश है, झूम कर बरस रहा है और भक्त उनके लिए तो मानो भगवान स्वयं उनके घर आतिथ्य स्वीकारने आए हैं। सो सब मंदिर की ओर चल पड़े हैं, उनकी एक झलक पाने, उनका आशीर्वाद लेने। मौसम से भी शिकायत नहीं है, रेनकोट और छाता निकाल लाए हैं। सड़कों पर दूर दूर तक भक्तों की लंबी कतार है और उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए मंदिर के भीतर बाहर शहर के चौक चौराहों तक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
4: गुंडीचा टेंपल में हमारा जो अरेंजमेंट है क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, बेसिकली इनसाइड टेंपल का अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, एक आउटसाइड टेंपल का अरेंजमेंट किया है एंड ट्रैफिक अरेंजमेंट किया हुआ है। इनसाइड टेंपल हमने 8 सेक्टर में डिवीजन किया हुआ है टेंपल के अंदर, जिसमें कि 3 कमांडेंट रैंक ऑफिसर्स शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर रहे हैं। वो लोग फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड एक नाइट शिफ्ट होता है एंड उसमें हमारा डिप्लॉयमेंट टेंपल का सेक्टर वाइज डिप्लॉयमेंट है। लोगों को बेसिकली डिसिप्लिन श्रृंखलित एंड टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लोइंग और प्रिवेंट जंपिंग फ्रॉम द बैरिकेड, वो सब करके हेल्प कर रहे हैं।
3: भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों के प्रवास में कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान यहाँ मंदिर परिसर में पितरों का पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विशेष महत्व है।
5: जगन्नाथ महाप्रभु जब यहाँ के रत्न सिंहासन में विराजमान करते हैं गुंडीचा वाड़ी में, तब यहाँ एक ब्राह्मण को, एक व्यक्ति को अगर भोजन करवा के दक्षिणा दिए तो वहाँ पे 1000 व्यक्ति को देने के बराबर फल मिलता है। यहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं दशरथ जी के लिए और गुंडीचा रानी के लिए और इंद्रदुम्न के लिए उनका यहाँ पे श्राद्ध किए थे और यहाँ उनके याद में ये गुंडीचा मंदिर बनाकर यहाँ पे 9 दिन की यात्रा करते हैं और सारे जगत का कल्याण करते हैं।
3: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और आड़प दर्शन का आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन यहाँ हीरा पंचमी की परंपरा निभाई जाती है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो पीछे माता लक्ष्मी अकेली रह जाती है। पांचवें दिन देवी लक्ष्मी एक भव्य पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है और भगवान जगन्नाथ से अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं।

0: उत्तराखंड में चार धाम तीर्थयात्रियों का सफर और आसान होने वाला है। जल्द ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के रास्ते आपस में जुड़ने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के दुर्गम पहाड़ों में बनी ये 900 मीटर लंबी टनल चार धाम यात्रियों के लिए वरदान बनने जा रही है। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने की जिस परियोजना पर काम चल रहा है उसमें ये टनल इतिहास रचने जा रही है। दोनों हाईवे को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर पुल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 200 मीटर लंबा ये पुल अगस्त में पूरा हो जाएगा। पुल बनने के बाद चारधाम यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तक रुद्रप्रयाग बाजार में बद्रीनाथ हाईवे बेहद सकड़ा होने से आए दिन घंटों जाम लगता है, लेकिन अब टनल और पुल बनने के बाद तीर्थयात्री रुद्रप्रयाग बाजार से न होकर सीधे जवारी बाईपास होते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए आगे की यात्रा कर सकेंगे।
1: श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम को जाने वाली सड़कें हैं जो हाईवे वो आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं शहर के भीतर जो ट्रैफिक लगता है वो ट्रैफिक नहीं लगेगा। और चूंकि दोनों रोड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इनका आपस में जुड़ना काफी इम्पोर्टेंट होगा तीर्थयात्रियों के सुविधा के दृष्टिगत पर।
0: प्रशासन के मुताबिक 31 अगस्त से इस परियोजना का ट्रायल शुरू किया जाएगा। चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मॉनसून के दौरान परियोजना के पूरा होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तीर्थयात्रियों को जाम से छुटकारा मिलने के साथ ही सफर का समय भी बचेगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए आइए अब बात कर लेते हैं फुटबॉल के नए वर्ल्ड चैंपियन की।

0: फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर स्पेन ने इतिहास रच दिया। फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस रोमांचक खेल में ऐतिहासिक पल वो रहा जब एक्स्ट्रा टाइम में टॉरेस के शानदार गोल ने स्पेन को विश्व चैंपियन बना दिया। इस जीत के साथ ही स्पेन ने 16 साल के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल की। मैदान पर जीत की खुशी थी तो दुनिया भर में फैंस के बीच में जश्न का माहौल। इस दौरान भारत में फुटबॉल की दीवानगी खूब देखने को मिली। देश भर में स्पेन के समर्थक सड़कों पर उतर आए, हाथों में स्पेन के झंडे, चेहरे पर टीम के रंग और जुबान पर जीत के नारे। हर तरफ सिर्फ फुटबॉल का जुनून नजर आया। कोलकाता की तस्वीरें भी आई। फुटबॉल फैंस ने स्पेन की जीत का जश्न मनाया सड़कों पर, और फैन जोन में बड़ी संख्या में लोग जुटे और टीम की जीत को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल की फुटबॉल दीवानगी एक बार फिर से देखने को मिली। मुंबई में भी स्पेन की जीत का जश्न यूं ही देखने को मिला। माया नगरी में फैंस ने आतिशबाजी के साथ विश्व चैंपियन टीम को बधाई दी। फुटबॉल प्रेमियों ने देर रात तक जीत का जश्न मनाया। स्पेन की इस जीत ने फिर से साबित कर दिया कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को जोड़ने वाला जुनून है। एक गोल ने इतिहास बदल दिया और करोड़ों फैंस को जश्न का मौका दे दिया। देखिए, जीता है स्पेन और पूरा हिंदुस्तान झूमता हुआ नजर आया है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देश से आई हैं जहां पर लोग इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए और सड़कों पर नाचते गाते हुए और स्पेन के लिए सेलिब्रेट करते हुए देखे गए।
1: मौका जीत का है, जश्न का है, जज्बातों में बह जाने का है। जिस ट्रॉफी को चूमने का सपना लिए सब जुटे थे, उसे आखिरकार चूम लेने का सुकून इन चेहरों पर साफ झलक रहा है। 16 साल लग गए वापस ट्रॉफी थामने में, लेकिन लौटे तो ऐसे जैसे फुटबॉल का ताज पहनने की ठान रखी हो। फीफा वर्ल्ड कप का पूरा मुकाबला देखिए, शान से ट्रॉफी उठाई है स्पेन ने। स्पेन ने इस बार अपने अभियान का आगाज केप वर्डे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से किया था। इसके बाद स्पेन ने लगातार 6 मुकाबले जीत कर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और फिर सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया और अब फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर मेसी से फुटबॉल का ताज छीन लिया।

0: इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया और फिर फाइनल में भी उसकी किलाबंदी इतनी ताकतवर साबित हुई कि मेसी समेत अर्जेंटीना के तमाम सितारे गोल करना तो दूर, अटैक तक करने को तरस गए। उधर स्पेन लगातार आक्रामक होता जा रहा था। पहले और दूसरे हाफ में उसने कई शानदार अटैक भी किए, लेकिन हर बार अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव करते हुए नतीजे को एक्स्ट्रा टाइम तक धकेल दिया। लेकिन स्पेन तो मानो ट्रॉफी चूमने की जिद लेकर मुकाबले में उतरा था। वो एक लम्हा रोमांच से भर देने वाला था जब 106वें मिनट में टोरेस ने इस पावरफुल लेफ्ट फुटर के जरिए गोल कर सनसनी मचा दी। जीत के इस गोल के साथ ही स्पेन के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जश्न का माहौल मैदान के भीतर भी था और बाहर भी। खिलाड़ियों की तस्वीरें, बैनर, पोस्टर, स्पेन के झंडे, जिसके पास जो था उसी के साथ सड़कों पर उतर आए, नाच गाकर जीत का जश्न मनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: स्पेन ने जैसे ही अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप जीता, स्पेन की राजधानी खुशियों से झूम उठी। मैड्रिड की सड़कों पर हजारों की तादाद में फैंस ने जश्न मनाया, आतिशबाजी भी की। रात भर ये जश्न जारी रहा। लाल और सुनहरे झंडे लहराते हुए स्पेनिश फैंस ने दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का जश्न मनाया। तो न्यूजर्सी में खेले गए इस महामुकाबले में फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल कर स्पेन को ये महाविजय दिलाई। इस दौरान स्पेन के कोच लुइस डेला ने ये कहा है कि अर्जेंटीना को हराने में उनकी टीम के खिलाड़ियों की टीम फर्स्ट फिलॉसफी ने एक अहम भूमिका निभाई है। और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी डिवाइस के बारे में खबर, जिसे झारखंड के दो स्कूली बच्चों ने बनाया है। बोतल के आकार की दिखने वाली ये स्मार्ट डिवाइस उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अक्सर समय पर दवा लेना भूल जाते हैं।
10: देखिए पिल्स सिप नाम की ये स्मार्ट बोतल समय पर दवा नहीं लेने पर मरीज के साथ साथ परिवार वालों को भी मोबाइल पर तुरंत अलर्ट भेज देती है।
11: धनबाद में स्कूली छात्रों ने ऐसी स्मार्ट बोतल बनाई है जो दवा समय पर लेने के लिए मरीजों को अलर्ट करेगी। यानी जो लोग दवा समय पर लेना अक्सर भूल जाते हैं उनके लिए ये स्मार्ट डिवाइस बड़ी मददगार साबित हो सकते हैं। पिल्सिप नाम के इस स्मार्ट बोतल को डीएवी कोयला नगर में 10वीं क्लास के 2 छात्रों ने बनाया है। भले ही ये दिखने में एक सामान्य पानी की बोतल जैसी है, लेकिन इसकी तकनीक इसे खास बनाती है। बोतल में दवाओं को रखने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट दिए गए हैं। निर्धारित समय पर इसमें लगा अलार्म बजता है जो मरीज को दवा लेने की याद दिलाता है।
12: ये प्रोजेक्ट वर्क करता है कि जब मतलब इसमें टाइम शेड्यूल रहता है पेशेंट को कौन सा कब मेडिसिन लेना है, तो जब भी वो मेडिसिन उनका टाइम होगा तो ये उसमें टच सेंसर होंगे, तो उसमें वो टच करेंगे और वो मेडिसिन डिस्पेंसर जो होगा वो ओपन हो जाएगा सर्वो की तरह।
11: छात्रों का ये अनोखा इनोवेशन अब मरीजों की दवा भूलने की चिंता को खत्म कर सकता है। इस स्मार्ट डिवाइस की खास बात ये है कि मरीज को समय पर दवा लेने की याद तो दिलाती ही है, साथ ही दवा नहीं लेने पर परिजनों के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट भी भेजती है।
13: तो हम लोग ने एक कलर कोडेड सिस्टम बनाया है इसमें, जिसमें दवाइयों के रंगों के हिसाब से और उनके समय के हिसाब से वो पर्टिकुलर कंटेनर उसी पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होता है। अगर किसी को शाम में लाल कलर की दवाई लेनी है तो लाल कलर का कंटेनर शाम को ही खुलेगा और उस हिसाब से उस पे नोटिफिकेशन या बजर जाएगा।
11: छात्रों के सनों के डिजिटल आविष्कार से जहां मरीज के दवा लेने के शेड्यूल की निगरानी करना आसान होगा, वहीं लापरवाही की संभावना भी नहीं होगी। छात्रों ने सनों के इनोवेशन को पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है। ये तकनीक विशेष रूप से बुजुर्गों और लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीजों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। धन्यवाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
6: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन मंजूर, 4 से 60 साल वालों को लगेंगी 2 डोजेस, तो वहीं टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी जांच की आवश्यकता। पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश के चलते आज दूसरे दिन भी स्थगित रही अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। दिल्ली में कई इलाकों में हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत, उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट, कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ यात्रा, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, भगवान को लगाया गया मिठाई और फलों का भोग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज 5वां दिन, आज निभाई जाएगी हेरा पंचमी की परंपरा। अड़पा मंडपम में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, सुबह से दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। राजगढ़ छप्पन भोग के बाद निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत, रथ खींचने के लिए मची होड़। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, भजन कीर्तन के साथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।
4: यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से रथ को सुंदर खूबसूरत।
3: भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत, रथ यात्रा में भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। भगवान की रथ को खींचने के लिए मची होड़, हजारों भक्त भजन और कीर्तन कर नाचते गाते नजर आए।

बेगूसराय में गूंजा जय जगन्नाथ, श्री राधा कुंज बिहारी मठ ने निकाली भव्य रथ यात्रा। बेगूसराय की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का मेला।

जय जगन्नाथ की जय घोष से गूंजा अकोला। 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। करीब 10,000 श्रद्धालु ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया, जमकर लगाए जय जगन्नाथ की जयकारे। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत। रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश हाई। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य।

प्रयागराज में गूंजा जय जगन्नाथ, इस्कॉन मंदिर ने निकाली भव्य रथ यात्रा। सिविल लाइंस की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत, रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश हाई। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते नजर आए, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। प्रयागराज में दिखा महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की भक्ति का अनोखा रंग, भव्य रथ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र के अकोला में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का मेला। जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंजा अकोला, 31 फीट ऊंचे और 5 टन वजनी रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने भगवान से मांगी अच्छी बारिश की दुआ, किसानों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आधुनिक सुविधाओं से लैस 31 फीट ऊंचा रथ, रथ में फ्रंट व्हील ड्राइव, स्टेयरिंग, मैनुअल ब्रेक और एडजस्टेबल शिखर जैसी सुविधाएं। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, भजन कीर्तन के साथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। पवित्र सावन मास की पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। पहली सोमवारी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस ने भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष बैरिकेडिंग की। आगर मालवा की मां बगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा पाठ किया। मां बगलामुखी के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतार, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा पाठ किया। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

भस्म आरती के दौरान महाकाल को भांग चंदन और सिंदूर किया गया अर्पित। दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। चमोली में पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। शिवालयों में सुबह से जलाभिषेक के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। ऑस्ट्रेलिया में आज से एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। भारत समेत 19 देश होंगे शामिल। भारत के राफेल IL-78 C-17 विमान होंगे शामिल। 7 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज। 19 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का कड़ा अभ्यास करेंगे। जयपुर में मिस्टीन डीवा 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित। कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

0: ग्रैंड फिनाले में देश भर की प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश चंद्र ने विजेताओं को सम्मानित किया। बारामूला में पहले महायज्ञ धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों के साथ मिलकर किया महायज्ञ, कई लोगों को सम्मानित किया। पटना में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने अपने बेटे के जन्मदिन पर महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। बेटा निशांत कुमार भी मौजूद रहे। दिल्ली में मुग्धर मैन की अनोखी पहल, बच्चों को बांटे 4,000 से ज्यादा मुग्धर। बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने की पहल की गई। पहलवान हवा सिंह राणा पारंपरिक फिटनेस को दे रहे हैं बढ़ावा। ताऊ मुग्धर नाम से मशहूर हैं पहलवान हवा सिंह राणा। बच्चों को मोबाइल नहीं मुग्धर चलाओ मुहिम से जोड़ने की कोशिश। बच्चों को मुग्धर घुमाकर फिटनेस का पाठ पढ़ा रहे हैं पहलवान हवा सिंह राणा। बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है लक्ष्य। बच्चों के माता पिता की शिकायत ने दिखाया अनोखा रास्ता। पहलवान के पास 120 साल पुराना मुग्धर भी मौजूद। जलंधर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, डेरा सचखंड बल्ला में टेका मथा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में दूल्हे ने अपनी शादी में खास अंदाज में बनाया ऐसे यादगार। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को बांटे हेलमेट। तनवीर ने सेव ड्राइव सेव लाइफ अभियान को शादी से जोड़ा। 25 बाइक सवारों को हेलमेट दिए। बिहार में 551 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन। बेगूसराय में बनेगा विश्वविद्यालय। मदुरई में नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। राज्य के मंत्री ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। स्पेन में जीत का मना जश्न। सड़क पर उतरकर लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। मैड्रिड में फुटबॉल फैंस ने मनाया स्पेन की जीत का जोरदार जश्न। सड़कों पर उतरे लोग। भारत में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत का जश्न। तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर उतरे फैंस, जीत की खुशी में जमकर मनाया जश्न। स्पेन की फतह पर गोवा के पणजी में फैंस हुए उत्साहित। देर रात तक कैफे में जीत का जश्न मनाते नजर आए प्रशंसक। मुंबई में भी स्पेन की जीत की खुशी में झूमे फैंस। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बने सेलिब्रेशन का हिस्सा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची को 21-17 से हराकर अपना पहला जापान ओपन खिताब जीता और इस जीत के साथ सिंधु ने 19 महीने का खिताबी सूखा खत्म किया। 31 साल के सिंधु के करियर का ये पहला सुपर 750 सीरीज खिताब है। साल 2019 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने के साथ 7 साल बाद ये सिंधु की पहली बड़ी खिताबी विजय है।

0: भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो में इतिहास रच दिया। तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची को उन्हीं के घरेलू मैदान पर मात देना किसी अचरज से कम नहीं है, वो भी तब जब पिछले कई मुकाबले में यामागुची सिंधु को मात दे चुकी है। लेकिन इस खिताबी मुकाबले में पीवी सिंधु ने यामागुची को सीधे सेटों में 21-17, 21-17 से मात दे दी और पिछले 19 महीने से चले आ रहे अपने खिताबी सूखे को भी खत्म किया। पीवी सिंधु इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है। इससे पहले किसी भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने ये खिताब नहीं जीता है। जापान ओपन की जीत सिंधु के 2019 के विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद की सबसे बड़ी जीत है। फाइनल मैच के दौरान पीवी सिंधु ने शुरू से ही कोर्ट पर अपना दबदबा बना रखा। उन्होंने शानदार ढंग से खेल को नियंत्रित किया और ताकत की जगह रणनीतिक खेल पर जोर दिया। जब भी यामागुची ने वापसी की कोशिश की, सिंधु ने कड़ा जवाब दिया। इस मैच के पहले सेट की शुरुआत में एक समय सिंधु 11-9 से पीछे थी, जिसके बाद उन्होंने शानदार तरीके से वापसी करने के साथ अकाने यामागुची को 21-17 के अंतर से पहले सेट में मात दी। इसके बाद दूसरे सेट की शुरुआत से ही सिंधु ने अकाने यामागुची को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखा, जिसमें यामागुची ने वापसी की कोशिश की लेकिन सिंधु ने इस सेट को भी 21-17 के अंतर से अपने नाम करने के साथ 50 मिनट के अंदर मुकाबला खत्म करते हुए खिताब को अपने नाम कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: Hey, sports fans. TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
3: Swing and a foul out of play off to the left.
2: Big 12 Radio.
4: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found time.
2: Talk Sport.
5: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
2: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
8: भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन मंजूर. 4 से 60 साल वालों को लगेंगी दो डोज. टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी जांच की आवश्यकता. पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब. सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें. रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा. अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील. भारी बारिश के चलते आज दूसरे दिन भी स्थगित रही अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा. यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह. दिल्ली में कई इलाकों में हुई बारिश. उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत. उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट. कई जगह स्कूलों की छुट्टी.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
9: है. हर चाबी है जो हर ताले का दरवाजा खोल सकती है. तो आप भी मुस्कुराइए हमारे साथ, क्योंकि आज खोलेंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट का दरवाजा. गुड आफ्टरनून, नमस्कार. मैं हूं पारुल चौधरी. लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार. तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज का सिलसिला. कैसे? हमारी हेडलाइंस के साथ.
10: बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए. ईशा के लिए सूरज बनाएगा चाय. शुरू होगी ईशा सूरज की चाय वाली लव स्टोरी. गुरु से बेवफाई करेगी रूहानी, देगी गौतम का साथ. सतलुज और माही की शुरू होगी नोकझोंक. घर में शुरू होगा नया ड्रामा. होगी स्वाति और वृंदा की दोस्ती. स्वाति के घर आएगी वृंदा. माही की बढ़ेंगी नजदीकियां.

0: और लॉकअप में धीरज पर लगेंगे संगीन इल्जाम, शुरू होगा नया ड्रामा।
1: इसका मतलब ये होता है आज मैं शेर से जला लूं तो आप मुझे कह रहे हो कि ऐसे नहीं होता।
2: धीरज, डोंट इंक्लूड योरसेल्फ इन समथिंग व्हिच यू वर नॉट
1: अ पार्ट ऑफ। नो व्हाई, इफ आई एम सिटिंग देयर, देयर इज अ प्राइवेट कन्वर्सेशन, यू शुड हैव टोल्ड मी, आई वुड हैव लेफ्ट।
0: और कैसी तेरी दिल लगी के विश्वास संग करेंगे डे आउट, जानेंगे उनके बारे में कई बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: है जो बंद भविष्य का दरवाजा भी खोल सकती है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रूहानी। वैसे रूहानी बात तो सही है। देखिए, जो मेहनत कर सकता है वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। हो सकता है सक्सेस में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सक्सेस जरूर मिलती है। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको सीधा रूहानी के पास, इनके शो इस जुनूनी के सेट पर, और दिखाते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट।
1: गुरु और गौतम का टशन। रूहानी बनी बेरहम। गुरु की धोखेबाज पत्नी ने थामा गौतम का हाथ। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज नागेश्वर का गुस्सा चढ़ा हुआ है। असल में वो अपने बेटे गुरु को बचा नहीं पा रहे, क्योंकि गुरु को फांसी की सजा मिली है। ऐसे में वो परेशान हो ही रहे थे कि जले पर नमक छिड़कने पहुंच गई पुष्पी और ललिता बुआ, जो इन दिनों इस घर की मालकिन बनी बैठी है। और देखिए कैसे वो ताने पर ताने कस रहे हैं, और ये ताने कुसुम से बर्दाश्त नहीं हुए। और देखिए कैसे वो बंदूक लेकर पहुंच गई पुष्पी पर निशाना साधने, जिस पर पुष्पी और ललिता दोनों ही घबरा रही है। भाई गुरु की माँ तो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या करें, ललिता और पुष्पी की हरकतें ही ऐसी हैं। ऐसे में उन्हें गोलियां चलानी पड़ी। वो तो शुक्र है कि उनके बेटे और बहू ने उन्हें रोक लिया, वरना आज तो वो दोनों की जान ही लेकर रहती। इसी बीच ललिता वहाँ पर कुसुम को आकर बताती है कि उनकी गलती नहीं, बल्कि सारा किया धारा गौतम का है। इससे पहले कि बुआ जी कुछ और कहती, वहाँ पहुँच गई तेजस्वी, और देखिए कैसे उसने ललिता के गालों पर जड़ दिया जोरदार तमाचा।
2: मेरे भैया के टुकड़ों में पलती है ना, और उन्हीं के बारे में इतना अनाप शनाप बोल रही है।
3: बहुत ही डीप लेवल की प्लानिंग है। कुछ प्लानिंग्स के बारे में शायद मुझे भी नहीं पता, ऐसे मुझे लग रहा है। एंड तेजस्वी के लिए तो उनके भैया ही सब कुछ है, बट ऐसे जो भी गलत शादी हुई एंड आगे की जो भी ट्रैक चल रही हो, उसमें वही है कि आई थिंक भैया के इरादे थोड़े अलग लग रहे हैं। तो वो अभी धीरे धीरे वो आएंगे खुल के, आई गेस।
4: इरादे बहुत नेक है और बहुत ही सिंपल प्लान है, दोनों को अलग अलग करना है, और बस उसी इरादे पे हम चलते जा रहे हैं।
1: भाई तेजस्वी तो चालाक निकली। इस घर में आने का उसका एक ही मकसद है, और वो है नागेश्वर को अपने झांसे में लेना। तभी तो देखिए कैसे पैरों में गिरकर वो नागेश्वर से न सिर्फ अपने भाई के किए की माफी मांगती है, बल्कि अपने भाई के आगे इमोशनल अत्याचार भी करती है। ऐसे में दिखावा करते हुए गौतम को अपनी बहन की बात माननी पड़ती है, और गुरु के ऊपर लगे हुए कत्ल के इल्जाम को हटाना पड़ता है, जिसके चलते घर वाले गुरु का इंतजार करते हैं। और जैसे ही गुरु घर में आता है तो तेजस्वी जाकर उसके गले लग जाती है, हालांकि गुरु उसे झटक देता है।
5: नागेश्वर को तो लगता है कि भाई ये हमारा पक्ष ले रहे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये संदेह है कि वो कुछ नाटक कर रहे हैं दोनों भाई बहन मिलके। तो नीचे गिरती है, बोलती है मैं जान दे दूंगी, ये कर दूंगी अगर इस घर को कुछ हुआ तो। फिर समहाउ गौतम सिंह की जो भी चाल हो, वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम अपनी बहन पे मतलब बहन को दुखी नहीं देख सकते, तो हम गुरु को छोड़वा देते हैं। तो गुरु छूट के घर पे आता है।
1: भाई फिलहाल तो गुरु तेजस्वी से दो कदम दूर ही रहना पसंद करता है, और तो और अब वो अपने घर भी आ गया है। ऐसे में वो न सिर्फ अपनी माँ के गले मिलता है, बल्कि चाहता है कि वो अपनी कंपाउंडर से भी मिले। इससे पहले कि वो सबसे कंपाउंडर के बारे में जानता, वहाँ पर आ जाता है गौतम, और गौतम के पीछे पीछे आ जाती है रूहानी भी। पहनकर गले में गौतम का दिया हुआ हार। बस फिर क्या, ये देखकर तेजस्वी को मौका मिल जाता है सभी के सामने ये बताने का कि रूहानी ने गुरु को छोड़कर गौतम का हाथ पकड़ लिया है।
2: तो आखिरकार ये नर्स, आई मीन रूहानी, अपनी खुददारी का पर्दा हटाकर आपके दौलत के सामने झुकी गई है। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। कम से कम आपके पैसों के बहाने हमें इस नर्स का असली चेहरा तो देखने के लिए मिला। आई लाइक इट।
6: पैसे नहीं, मेरा प्यार रूहानी समझ आई बाबू कि उसकी जगह यहाँ है मेरे साथ। वो ये भी समझ गए कि उसके लिए कौन सही है और कौन
7: गलत। हर युग में तुम जैसा रावण पैदा होता है और हर बार किसी राम के हाथों मारा जाता है। मर्यादा लांघने वाले के साथ हर जन्म में उसका सर कटता है। हमारी कंपाउंडर की धड़कन सिर्फ हमारे लिए धड़कती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपाउंडर को ये हार पहनने पर मजबूर करने की? छोड़ेंगे नहीं तुमको।
1: अब गुरु तो गौतम को छोड़ने से रहा, वो तो शुक्र है कि गुरु के भाई और रूहानी ने गुरु को गौतम से दूर किया। ऐसे में गौतम गुरु पर अपना गुस्सा दिखा रहा है और गुरु फिर से भड़क रहा है। इससे पहले कि वो फिर से कोई ऐसा कदम उठाता, रूहानी खुद ही सामने आ जाती है और गौतम की कही बातों को कबूल कर लेती है। ये सुनकर गुरु भी हैरान है।
8: मर्जी है बेटी, मजबूरी नहीं, और यह हार मैंने खुद पहना है। गौतम सिंह ने मुझे मजबूर नहीं किया इसे पहनने।
7: मौत से नहीं डरते हैं, इस घिनौने आदमी का ये तो कौड़ी का तोहफा तुम्हारे गले में नहीं रहने देंगे। बेइज्जत नहीं होने देंगे हम तुमको।
8: गुरु, और हिम्मत कैसे हुई मुझे से छोड़ेगी?
7: तुम क्या बोल रही हो बाबा? उसमें तुम नाराज हो हमसे? हम तो बस तुम्हारे गले से ये हार निकालना चाहते हैं और कुछ नहीं।
8: ये हार मेरे गले में मुझसे जीने नहीं, तुम्हारे अहंकार ने डाला है।
4: मैं रूहानी के साथ कुछ गलत नहीं करता हूँ। आई एम वेरी यू क्या कहते हैं ऑब्सेसिव अबाउट हर। उसको मैं कुछ मतलब हाथ भी नहीं लगाता, मतलब ऐसा
3: बोला था कि रूहानी को कुछ नहीं होना।
4: उनके
3: उन्होंने बोला था रूहानी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप उस चीज का ख्याल रखना। तो इन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
4: हाँ, उनकी जिंदगी में मेरी वजह से काफी कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने खुद कोई गलती नहीं किया उनके साथ, कुछ नहीं किया मैंने। विलन, बिकॉज देखिए एक प्योर इमोशन होता है विलन का, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होती है। तो उसका बेचारे का पहले दिन से जो विलन का जो उद्देश्य होता है वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे आग लगानी है तो आग लगाऊंगा। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। तो यस, वो आपने बहुत अच्छा बोला, इमोशन बहुत प्योर होता है विलन का।
1: भाई, रूहानी के इस फैसले से न सिर्फ गुरु को झटका लगा है बल्कि घर वाले भी हैरान हो रहे हैं, और ललिता उन्हें तो बस मौका चाहिए रूहानी को चार बातें बोलने का। इसी बीच दादी भी आकर रूहानी को घर से बाहर जाने का आदेश देती है।
9: खुद के पाँव पालने में ही दिखते हैं नागे सर। ये लड़की जब पहली बार इस घर में आई थी ना, तभी हमने इसके लक्षण भाव किए थे। खैर, तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हमें इस फैसले से कोई एतराज नहीं। वैसे भी हमारा और तुम्हारा रिश्ता कभी था ही नहीं, तो जो तुमने फैसला लिया है बिल्कुल सही है। हाथ जोड़ते हैं, यहां से निकल जाओ, मुक्त करो हमें।
8: मिस्टर जी, बड़ी कोठी हमारी होगी।
7: बिल्कुल हमारी नहीं, तो और किसकी?
5: मतलब नागेश चौधरी तो परेशान है, लेकिन हकीकत ये लगती है कि वो एक सेक्रीफाइस कर रही है अपने प्यार के लिए, जो अभी तक हमें दिखाई दिया है कि गुरु को बचाने के लिए वो गौतम से की बात मानने को तैयार हो गई, और ये बात वो सामने कह भी रही है गुरु के, लेकिन गुरु के दिल पे क्या गुजर रही है ये गुरु ही जानता है।
1: भाई, रूहानी का सच तो सभी के सामने आया ही, साथ ही ये सच भी आ गया कि पुष्पी ने यह घर खरीदा नहीं बल्कि गौतम ने केयर टेकिंग के लिए दिया था। यानी अब गौतम रूहानी के साथ इसी घर में गुरु और पूरे परिवार के सामने रहेगा। देखना होगा कि कैसे अब गुरु रूहानी और गौतम को बर्दाश्त करेगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: कभी कभी हड़बड़ी में जब खोलना चाहते हैं ना हम कोई ताला, और बस किसी तरह वो चाबी कहीं अटक जाती है या सही चाबी नहीं लगती, आ जाता है हमारी जिंदगी में ड्रामा। वैसे इससे भी एक्साइटिंग ड्रामा आया है हमारी इस अगली कहानी में, जो लेकर आएगा आपकी जिंदगी में थ्रिल। अब देखिए, कहानी के जो लेखक होते हैं इनका तो यही काम होता है कि जैसे ही हो कहानी थोड़ी भी डल वैसे ही लेकर आए, उसमें एक ऐसा ट्विस्ट जो लेकर आए हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इस अगली कहानी की ओर।
10: माही और सतलुज की नोकझोंक। बच्चन परिवार का गोलमाल।
11: गंगा, अपना देवरा जो बिटवा है वो बहू को लेकर कब आ रहा है?
12: कल सुबह तक।
11: कल शाम को होगा रिसेप्शन। अरे ऐसे क्या घूर रहे हमको?
12: शाम तक सारी तैयारी कैसे करेंगे?
11: हमारा एक बच्चन एक दिन में पूरा शादी करके आ गया और हमारे तीन तीन बच्चन मिल करके तैयारी नहीं कर सकते एक दिन में? लानत है हम पर।
13: ये मैरिज सर्टिफिकेट है आप दोनों का। आप दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हो गए।
10: संगम के सामने आया सच
14: कि कोई नकली गुड्डे गुड़ियों वाली शादी नहीं थी, असली शादी है, रजिस्टर मैरिज।
10: कलर्स टीवी के सीरियल बरेली के बच्चन में आए दिन कोई ना कोई तमाशे होते ही रहते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पर देखिए कैसे सतलुज बिजी है अपनी बाइक ठीक करने में, तभी वहां पहुंच जाती है माही और ऐसे में शुरू हो जाती है माही और सतलुज के बीच ये खट्टी मीठी नोकझोंक और पूजा को लेकर भी हो गया है बवाल। भाई जहाँ एक गोलमाल खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। देखिए कैसे बेटों और पापा के बीच मस्ती शुरू हो चुकी है और इनका परिवार तो है ही ऐसा अजीबोगरीब, जहाँ एक दूसरे से इनके विचार बिल्कुल नहीं मिलते।
11: अभी के अभी होगा रिसेप्शन।
12: अरे आपको कितनी बार बोला है महाराज, बाथरूम में बैठकर ना पिया करिए, आपकी गैस और दारू आपका दिमाग एकदम खराब कर देती है।
11: हमको मत सिखाओ, हमको मालूम है। गंगा, अपना ड्राइवर आप जो बिटवा है वो बहू को लेकर कब आ रहा है?
12: कल सुबह तक।
11: कल शाम को होगा रिसेप्शन। अरे ऐसे क्या घूर रहे हमको?
12: शाम तक सारी तैयारी कैसे करेंगे?
11: हमारा एक बच्चन एक दिन में पूरा शादी करके आ गया और हमारे तीन तीन बच्चन मिल करके तैयारी नहीं कर सकते एक दिन में? लानत है हम पर।
12: कैसा है ना महाराज, आपको तो दो चढ़ाक सो जाना है, असल में सारी तैयारी तो हम लोग को करनी है ना। वैसे भी एक दिन की तैयारी में कोई पार्टी वाल्टी नहीं हो जाती है।
11: हाँ तुम हमको ज्ञान दे।
15: अरे अरे अरे अरे अरे
11: अरे अरे महाराज,
12: ए यार आप ना गिर पड़ गया, हमारे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ा कर दीजिएगा।
11: हटो छोड़ो। गंगा अब सुनो हमारी बात, जो काम तुम एक दिन में करोगे दस दिन में भी उतना ही कर पाओगे, जितना जल्दी हो जाए ठीक, क्योंकि मोहल्ले वाले जो है ना ये हमारे घर में घुस के गेम खेलेंगे और हमारा जीना हराम कर देंगे, इसलिए जो करना है अभी करो।
12: आपके लिए ना जैसा बोलना आसान है।
11: अरे तो बाप का काम होता है बोलना और बेटों का काम होता है करना, तो करो। बाकी हमने जो बोलना था बोल दिया, अब तुम्हारा मर्जी है क्या करना है, आपस में सलाह करो और करो।
16: इतनी अक्कल की बातें भी करते हैं महाराज,
12: लेकिन एक दिन में हम हॉल कहाँ से बुक करेंगे?
11: अरे क्या जरूरत है हॉल बॉल बुक करने की, यहाँ करो रिसेप्शन जो करना है, इतना बड़ा घर है। ये देखो तुम्हारी माँ हमारा ब्याह यहीं हुआ था इसी घर में। अरे जो करना फंक्शन यहाँ करो,

0: टिका है।
1: देख रहे हैं, बुखार उखार हो गया क्या आपको?
0: अरे पगला गया है का? देखो जितना ज्ञान हमारे पास था हमने दे दिया, अब तुम हमको खाना खिला दो, सुबह से कुछ नहीं खा।

0: चिंता ही नहीं है बाप का, जिएगा मरेगा। कहीं ऐसा ना हो साला कृष्णा की शादी का बैंड बाजा बजने से पहले हमरे लीवर का बैंड बाजा बज जाए। रोगे बैठ के एक दिन चला गया।
1: अब तो बस कार्ड छपना बाकी है।
2: अरे पर भैया इतनी जल्दबाजी में कैसे कार्ड छपवाएंगे, और अब इतने लोगों में बांटेंगे कैसे?
3: अरे भैया फोन पे मैसेज कर देंगे ना सबको।
0: अरे कोई जरूरत नहीं सब ड्रामा करने की, मोहल्ले में ढोल बजवा दो, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको जलना होगा जलेगा साला।
1: हम ना कृष्णा को फोन करके पूछ लेते हैं।
2: अरे पूछना का है, क्या उसकी परमिशन लेंगे अब हम बैठ के?
3: अरे भैया मैं तो कहता हूँ धूमधाम से बनाएंगे भैया, पूरा एक केक मंगवाएंगे और डीजे वाले का ना नंबर लेके।
2: केक में कुछ नहीं आएगा, केक बहुत महंगा होता है, ठीक है?
1: अरे केक मंगवा लेंगे, खुशी में हिसाब नहीं देखते सत्तू।
2: अरे तो भैया का पैसा पेड़ पे उगता है।
1: पैसा फिर भी आ जाएगा, लेकिन इस दिन दोबारा नहीं आएगा।
0: और हाँ, रिसेप्शन एकदम त्योहार के जैसा होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहना चाहिए, एकदम धूम धड़क्का।

0: इसी के साथ कहानी में आएगा नया ट्विस्ट, जहां संगम को पता चलेगी सच्चाई और कृष्णा का होगा हाल बेहाल।
1: ये मैरिज सर्टिफिकेट है आप दोनों का। आप दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हो गए हैं।
2: पति पत्नी हो गए।
3: झूठ बोला है तुमने हमें कि कोई नकली गुट्टे गुड़ियों वाली शादी नहीं थी, असली शादी है, रजिस्टर मैरिज। धोखा दिया है तुमने हमें। क्यों किया तुमने ऐसा कृष्णा?
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हो अकेले घर पर, आ गया आपका पार्सल जिससे कुरियर वाला बाहर रखकर चला गया। अब आप निकले घर से बाहर उस पार्सल को उठाने और पीछे से हो गया दरवाजा धाड़ से बंद। चाबी तो है अंदर। आ गया ना अब आपकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट। अब क्या करेंगे? वेल, अब तो चाबी वाले को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करें इन तमाम ट्विस्ट का जो आ पहुंचे हैं हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में। चलिए दिखा देते हैं आपको ये सारे ट्विस्ट, वो भी एक साथ।
5: सेमीफाइनल्स का सबसे मुश्किल इम्तिहान।
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में टूट गया है अनुपमा का सपना और हो गई है प्रेम और राही की जीत।
5: सेमीफाइनल्स का सबसे मुश्किल इम्तिहान।
6: अपने सपनों के हाशियाने के लिए मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना ही है।
7: टाइम अप। तो फाइनल्स में जाने वाली दूसरी टीम का नाम है अनुज कैफे।
8: अनुपमा जी का सफर यही खत्म होता है।
6: सब कुछ खत्म हो गया
0: भाई। ये तो कहानी का आने वाला ट्विस्ट है, लेकिन आज देखिए कैसे भाई श्रुति ने कर दी है प्रेम की बेइज्जती।
9: तुम जानते हो कि हमारे बिजनेस में, हमारे कैफे में कितना लॉस हो रहा है? जानते हो कि नहीं? तुम कितनी भी यूनिक डिशेस बना लो, यूनिक मेन्यू बना लो, पर क्या हो रहा है? सब लोग सामने वाले कैफे में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है, कंफर्ट फूड मिलता है वहां पर। प्रेम, अगर तुम ये कंपटीशन हार गए तो मुझे ना चाहते हुए भी इस कैफे को बंद करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी हार किसकी होगी? तुम्हारी। ये हमारी रियलिटी है आदू। सारे इन्वेस्टर्स मुझसे जवाब मांग रहे हैं और उनके पास मुझे देने के लिए कोई जवाब नहीं है।
0: जरूरत नहीं है श्रुति जी। लेकिन आज प्रेम भी शांत नहीं रहा। उसने भी श्रुति से कह दिया है कि कंपटीशन जीतने के बाद वो उसके सारे पैसे लौटाकर इस कैफे को अपने नाम कर लेगा। तो वही दूसरी तरफ भाई राही भी प्रेम की मजबूरियों को समझती है और देखिए तो कैसे भाई आज वो अपने प्रेम पर प्यार लुटा रही है।
10: अब तुम्हें भी कुछ कहना है?
6: हाँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं केक से पहले तुम्हें ना खा जाऊं।

0: अभी तक उनकी टीम पहुंच भी चुकी होगी।
1: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नई नायिका ईशान की गुमशुदगी से बेहद ही परेशान है और देखे कैसे उसके घर आकर चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है।
0: हो सकता है कि शायद अभी तक उनकी टीम पहुंच भी चुकी होगी और जांच पड़ताल चालू हो चुकी होगी। जैसे ही उनका कॉल आएगा तो शायद वो भी मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे।
2: बेटा आप मुझे साथ में लेकर चलना।
0: विष्णु दादा, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ अपने बारे में बताया, वो आपको लेकर जाएंगे नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। और वो जगह बहुत खतरे वाली जगह है, गुंडों का अड्डा है वहां।
2: इसका मतलब है गुंडों ने ईशान का अपहरण किया हुआ है।
0: शायद ऐसा हो सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन सब मामलों में इना इन्वॉल्व्ड है।
2: इना? मुझे शुरू से शक था कि इना ही होगी इसके पीछे। बेटा आप सबको अपनी तरह अच्छा समझते हैं, पर इना जो है ना, अपनी जलन की आग में जलकर राख हो रही है।
1: ऐसे में गुंडे भी ईशान की खूब पिटाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे तो नौनिका के नाम की धमकी भी दे रहे हैं।
3: देख, अपने 25 करोड़ हमें ट्रांसफर नहीं किए
4: तो दुनिया वाले रॉकस्टार ईशान को दोबारा नहीं देख पाएंगे।
5: डॉक्टर,
6: तुझे मरने से डर नहीं लगता?
5: तेरी प्रेमिका डॉक्टर
6: नौनिका, और अगर पिस्टल का निशाना उसके तरफ चला गया तो?
1: सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में भाई फिर एक बार अपराजिता के चलते रक्षित की कंपनी में हो गया है बवाल। असल में कंपनी के बेहद ही पुराने कॉन्ट्रैक्टर ने अपराजिता संग बदतमीजी की और उसने जब ये बात सभी के सामने बता दी तो देखिए कैसे हंगामा मच गया।
7: क्या हुआ मिस्टर मेहतानी जी?
8: बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो आपके कंपनी के साथ में काम करने का सोचा।
9: What?
8: मेहतानी ग्रुप ऐसी किसी कंपनी के साथ में काम करना पसंद नहीं करता जहां पर अपराजिता जैसे लोगों को नौकरी पर रखा जाता है। 20 करोड़ की डील कैंसिल, ये कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं होगा।
7: मिस्टर मेहतानी जी, क्या हो गया है? आप तो इतने अच्छे मूड में थे, फिर अचानक इसे क्या?
10: अचानक इन्हें ख्याल आया कि मुझे बाकी सारे काम छोड़ के इनकी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाना चाहिए ताकि मैं सारा वक्त इनके साथ गुजार सकूं। और इन्होंने निहायत ही घटिया बात की और इन्हें लगा कि मैंने मना कर दिया तो ये जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, इससे मैंने इन्हें थप्पड़ मार दिया।
8: व्हाट रविश, ये सब कुछ गलत है, कुछ भी बोले जा रही है।
11: मैं समझता नहीं, ये ऑफिस में
1: भाई इन सब हंगामों के बाद अपराजिता ने फैसला कर लिया है कि वो रक्षित की कंपनी में अब काम नहीं करेगी। लेकिन वही दूसरी ओर आने वाले वक्त में होने वाली है घर पर पूजा और ऐसे में रक्षित पूरी तरीके से अपराजिता का साथ दे रहे हैं। लेकिन ये बात रक्षित की मम्मी को पता चल गई है। अब इसके बाद देखना होगा क्या होगा असल बवाल।
12: मैंने कल पहाड़ी वाले मंदिर पे पूजा रखवाई है, तुझे आना पड़ेगा।
13: कल तो मालती आंटी ने अपने घर शिव पूजा के लिए बुलाया है।
12: पंडित जी बस मेरे बेटे थोड़ी देर में आते ही होंगे। देख, तेरे देखने के लिए कुछ भेजा है।
14: रक्षित मुझसे झूठ बोलकर अपराजिता के घर गया है।
15: अब तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट की चाबी से खोल रहे हैं एंटरटेनमेंट का दरवाजा कैसी तेरी दिल लगी के आकाश यानी विश्वास सराफ। हमारी टीम ने की है आज इनसे एक खास मुलाकात कर रहे हैं हम इनके साथ एक इंटरेस्टिंग डे आउट। तो कैसा है इनका घर, कैसे हैं ये ऑफ स्क्रीन, किस तरह रखते हैं ये अपने आप को फिट, हमने किया है इनके साथ घर से सेट तक का सफर। लेट्स चेक इट आउट।
16: विश्वास का स्वैगर, आकाश का अनोखा स्टाइल, नया सीरियल नया अंदाज।
1: और बेटिया में आज हम कर रहे हैं डे आउट विश्वास सराफ संग। आज हम जानेंगे विश्वास के बारे में कई बातें। आपको बता दे कि विश्वास को आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि उडारिया, जुनूनियत, संपूर्ण, और फिलहाल वो नजर आ रहे हैं दंगल टीवी के नए शो कैसी तेरी दिल लगी में, जिसमें वो निभा रहे हैं आकाश रायचंद का किरदार, जिसका टशन देखने लायक है। खैर, आज हम विश्वास संग एक दिन बिताने वाले हैं। उनका घर घूमेंगे, देखेंगे उनके फिटनेस का रूटीन, घर से सेट तक का सफर होगा, और साथ ही देखेंगे कैसे वो विश्वास से आकाश के किरदार में ढलते हैं। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत सीधे चल के विश्वास के पास। भाई, शूटिंग के चलते विश्वास के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपना मॉर्निंग रूटीन जरूर करते हैं, यानी कि लाइट सी एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं कि वो फिट रहने के लिए क्या कुछ करते हैं।
9: आज आपको मैं अपना थोड़ा सा रूटीन दिखा पाऊंगा, सो आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग ये चीज देख पाएंगे, एंड आई एम श्योर कि आपको ये अच्छा लगेगा कि मैं अपना डे कैसे स्टार्ट करता हूँ बेसिकली।
17: कैसी तेरी दिल लगी के आकाश बनकर आ रहे हो सबके सामने, और मुंबई में आपका कहेंगे मुंबई के लिए फर्स्ट शो, और इसके पहले जो शोज किए हैं वो चंडीगढ़ में किए हुए हैं, तो मुंबई कितना रास आ रहा है?
9: मुंबई अभी तक तो मुझे काफ़ी रास आ रहा है, बिकॉज जब से हमारा शूट स्टार्ट हुआ है तब से बारिश नहीं पड़ी है, दैट इज़ बेसिकली द बेस्ट पार्ट, बिकॉज हमारा शूट आउटडोर से ही स्टार्ट हुआ था, सो आई होप कि आगे भी रास आएगा। सो मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद मैं एम्प्टी स्टमक वॉक करता हूँ, बिकॉज आई लाइक माई मॉर्निंग्स टू बी अ लिटिल स्लोअर, एंड वॉक करने के बाद उसके बाद जो रूटीन रहेगा आपको दिखाते चलेंगे हम लोग।

0: हाँ थोड़ा सा लाइट सा वर्कआउट आज मैंने कहा कि कर लेते हैं थोड़ा सा। सो यूजुअली मेरा वर्कआउट जिम में होता है, बट आज मेरा जिम में जाने का मन नहीं था, इसलिए आई जस्ट सेड कि थोड़ा सा बाहर करके देखते हैं।
1: आपकी बारिश एंजॉय करते हुए?
0: करेक्ट, थोड़ी सी बारिश पड़ी है कल तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, दैट इज व्हाई आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सा नेचर में रह के करके देखा जाए वर्कआउट बेसिकली।
1: कितना ध्यान रख पाते हैं खुद का शूट के साथ साथ मैनेज करना? सुबह जैसे आज का ये सेशन है तो इसके बाद हमें शूट पे भी निकलना है, तो कितना सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, कैसा रहता है?
0: बेसिकली इट्स लाइक अगर मेरा कॉल टाइम सेट पे 9 बजे है तो मुझे एनी विच वे 7 बजे तो उठना ही पड़ता है, बिकॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम पवई टू मीरा रोड इट ऑलरेडी टेक्स 1 आवर। सो उसके अलावा अगर वर्कआउट करना है सुबह का और ये वॉक वगैरह सब ऐड करना है तो फिर आई हैव टू वेक अप अराउंड 6। उसके लिए जल्दी सोना भी पड़ता है, कई बार सेट से लेट आते आते आते, सो कई बार ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि ये चीज़ मैं ऐड कर पाऊँ, बिकॉज इसको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़।
1: डाइट पे कितना ध्यान रहता है, डाइट पे कितना ध्यान दे पाते हो?
0: डाइट पे ध्यान मैं दे पाता हूँ बिकॉज मोस्टली मैं टिफ़िन लेके जाता हूँ घर से अपना, एंड दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। रही बात फिर जो बीच में मंचिंग रहती है, दैट आई अवॉइड बिकॉज दैट एड्स अप सम एक्स्ट्रा कैलोरीज, सो आई डोंट वांट दैट बेसिकली।
1: सो चलिए, तो मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, अब चलते हैं घर आपके।
0: चलिए कम।
2: इनका वर्कआउट सेशन तो हो गया है पूरा, अब बारी इनके घर जाकर इनका होम स्वीट होम देखने की। देखेंगे आखिरकार कैसे विश्वास ने अपने आशियाने को सजाया है और कौन सा है उनका फेवरेट कॉर्नर।
0: सो चलिए गाइस, आज मैं आपको अपना थोड़ा सा होम टूर करा देता हूँ, इसके बाद हम फटाफट रेडी होके सेट के लिए निकल जाएंगे। कम।
2: तो भाई विश्वास अपना आशियाना दिखाने से पहले पहुंच गए हैं किचन में, क्योंकि इन्हें अपनी मॉर्निंग वाली कॉफी जो पीनी है, जिससे इनकी दिन की शुरुआत हो जाती है, और ये गर्मा गर्म कॉफी वो खुद बनाते भी है और अपने फेवरेट कॉर्नर पर जाकर इसका मजा भी उठाते हैं।
0: सो वेलकम टू माय हाउस। अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए बाकी सब लोग सो रहे हैं, वरना मैं आपको बाकी सबसे मिला था। सो अभी के लिए मैं आपको अपना रूटीन दिखाता हूँ। कम। सो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है विद अ कप ऑफ कॉफी आफ्टर माय रनिंग, सो लेट्स मेक इट।

So finally my first cup of coffee is ready. तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ स्पॉट जहां पर बैठ के मैं रोज अपनी कॉफी पीता हूँ. So guys, this is the spot जहां पर मेरी मॉर्निंग कॉफी मैं पीता हूँ अपनी सिस्टर के साथ. एंड दिस इज हाउ आई लाइक टू स्टार्ट माई डे.

मुझे इस बालकनी के बारे में ये पसंद है कि यहाँ का जो व्यू है सुबह सुबह, दैट इज रियली नाइस, बिकॉज आप यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे सामने स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं. एंड वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स यूज टू बी वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल सिंस आई वॉज अ चाइल्ड. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि यहाँ पे बच्चे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड ओवरऑल जो यहाँ का वाइब है सुबह सुबह, इट्स लाइक वेरी प्योर एंड रियली नाइस. नहीं ऑनेस्टली अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया कि मैं जाके खेल पाऊँ, बट आई रियली विश कि कभी ऐसा टाइम निकल पाए, बिकॉज स्कूल के बाद तो कोई लिंक रहा ही नहीं है स्पोर्ट्स के साथ. कभी होता है तो शूट में कोई आधा एक आधा सीन हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नेवर. ऐसा ही है लाइफ ऑफ एन एक्टर, आप हार्डली सेट के अलावा जिम पे जा पाएंगे बट खेलने तो नहीं.

सो इस बालकनी में कुछ मेरे प्लांट्स भी हैं जिनको मैं रोज वाटर करता हूँ, बट कल रात और आज सुबह भी थोड़ी बहुत बारिश पड़ी है, इसीलिए आई कंसिडर कि आज मैं स्किप कर सकता हूँ इसको, वरना मैं रोज करता हूँ।

0: तो अब मैं आपको मेरे घर का थोड़ा सा होम टूर देना चाहता हूँ. सो दिस एरिया, दिस इज द एरिया जहाँ पे हम अपना कंटेंट देखते हैं. एंड ये रहा मेरा टीवी एंड दिस इज द काउच एरिया. सो यूजुअली व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माय शूट, दिस इज वेयर आई चिल बिकॉज दिस हैज अ रिक्लाइनिंग थिंग. सो आई रियली हैव अ थिंग फॉर दिस रिक्लाइनर्स बिकॉज इस पे आते ही शाम को जब मैं थक हार के शूट से आता हूँ, चाहे कितने भी घंटे की शिफ्ट हो, तो इस मोड में आते ही आई जस्ट गेट वेरी रिलैक्स्ड. एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस प्लेस, अबाउट दिस कॉर्नर बेसिकली. एंड समटाइम्स व्हेन आई गेट चांस एंड टाइम, आई डू प्ले माई गिटार एज वेल, जो कि मुझे उतना ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता, बट जितना आता है आई रियली एंजॉय इट. सो लेट मी जस्ट शो यू.
1: तो भाई घर घूमते घूमते विश्वास ने बताया उनका एक और हिडन टैलेंट, जो कि है गिटार बजाना, जो वो काफी एंजॉय भी करते हैं. तो आइए देखते हैं इनका ये टैलेंट.

0: गया। तो आइए अब घूम लेते हैं बाकी का घर भी और देखते हैं कैसी है इनके घर की सजावट।
1: सो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पर हम सब लोग बैठकर अपना लंच डिनर, जिसको भी जब भी टाइम मिलता है, जब भी हम कोई एक मील साथ में खा पाते हैं, वो इस जगह पे खाते हैं। सो जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ दिस एरिया। या सो दिस इज दैट वेरी प्लेस जहाँ पर शांति से बैठ के वो एक मील हम खा पाते हैं जिसमें सब अवेलेबल होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस प्लेस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस ऑफ मी। फेवरेट जो एक फेवरेट कॉर्नर्स होते हैं ना घर में कुछ कुछ, जैसे वो रिक्लाइनर एरिया था, दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट काउंटर्स, फेवरेट कॉर्नर्स, एंड दिस अगेन इज अनदर फेवरेट कॉर्नर ऑफ माई। बिकॉज खाना खाते हुए कितनी मेमोरीज बनती हैं और कितनी सारी चीजें, कितनी बातें होती हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स आई रियली लव दिस प्लेस। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम। सो माई बेडरूम इज द प्लेस जहां पर मैं रेडी भी होता हूँ, सोता भी हूँ, एंड कभी कभी कुछ कुछ रीडिंग भी करता हूँ। सबसे पहले गणपति बप्पा को नमस्ते कर ले हम। सो वेलकम टू माई बेडरूम, जस्ट अ सेकंड, आई विल टर्न ऑन द लाइट्स। ये है मेरा बेडरूम, ये है जहाँ पे मैं अपनी नींद के 7-8 घंटे, कभी कभी 5 घंटे भी बिता पाता हूँ, एंड उसके बाद दिस इज वेयर आई लुक एट माई सेल्फ व्हेन आई गेट रेडी इन द मॉर्निंग बिफोर लिविंग फॉर द शूट। और इसके बाद अगर मैं इस रूम की बेस्ट चीज़ आपको दिखा पाऊँ तो ये हमारे बिल्कुल सामने है, जो कि है ये व्यू। द मोमेंट जब मैं ये कर्टन्स हटाता हूँ तो यहाँ से जो व्यू मुझे सुबह सुबह कभी कभी मिलता है, दिस डजेंट रियली समटाइम्स फील लाइक मुंबई। मतलब कभी कभी लगता है कि मैं मुंबई से कभी कहीं बाहर पे हूँ, कहीं हिमाचल साइड में हूँ। सो दिस इज वाई आई लव माई बेडरूम सो मच। और इसके अलावा कभी कभी अगर थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करना होता है, सो दिस इज माई सेटअप फॉर दैट। जो मेरा कुछ रील्स रहती हैं या फिर कुछ भी कंटेंट दैट आई मेक, तो आई प्रेफर टू एडिट ऑल ऑफ दैट बाय माई सेल्फ, बिकॉज ऑल्सो आई डिड माई डिग्री इन BSc फिल्म स्टडीज, मतलब आई एम अ फिल्म स्टूडेंट, सो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज मुझे है अबाउट डायरेक्शन, कैमरा एंड एडिटिंग एंड ऑल। सो थोड़ा सा इंक्लाइनेशन मेरा उधर का भी है, इसीलिए मैंने ये सेटअप रखा हुआ है। और ये छोटा सा बुकशेल्फ है जिसमें से कुछ कुछ बुक्स मैं कभी निकालता हूँ, कभी पढ़ता हूँ व्हेन आई एम फ्री, व्हेन आई गेट दैट टाइम। तो और इस स्पॉट पर बैठ के मैं वो किताब खोल के कभी कभी पढ़ने का प्रिविलेज मुझे मिलता है।
0: तो आपने इनका घर तो घूम लिया और देखिए कैसे अपने हैप्पी प्लेस में बैठकर विश्वास बता रहे हैं अपना करियर नामा।
1: द ईयर 2018 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। सो उस समय मेरा फर्स्ट ईयर था इन माय कॉलेज और मेरी डिग्री थी BSc फिल्म स्टडी, सो आई एम अ फिल्म स्टूडेंट एंड मेरा स्पेशलाइजेशन वॉज सिनेमाटोग्राफी। मतलब कि मैंने कैमरा की पढ़ाई करी है एंड कैमरा की पढ़ाई करके मैं अल्टीमेटली एक्टर बन गया हूँ। सो ये बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है। सो 2018 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसको एक नेशनल अवार्ड मिला था एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड। उसके बाद मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एज अ मेकर ऑल्सो, बट 2020 में आई फर्स्ट टाइम केम ऑन स्क्रीन विद द शो उडारिया। उसके बाद मैंने 3 और शोज करे हैं, जुनूनियत, बादल पे पाँव हैं एंड द प्रीवियस शो दैट आई डिड वाज स्टार प्लस का संपूर्णा। उसके बाद नाउ फाइनली आई एम इन मुंबई डूइंग दिस शो फॉर दंगल TV और शो का नाम है कैसी तेरी दिल लगी। सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये शो बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज सबकी जर्नी अलग होती है, मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी।
0: भाई अब बारी हो गई है सेट पर जाने की, इसीलिए जल्दी से विश्वास फ्रेशन अप होकर करेंगे सेट पर जाने की तैयारी।
1: आप लोगों से बात करते करते कब इतना टाइम हो गया मुझे पता नहीं लगा, एंड अब थोड़ा सा लेट हो जाएगा अगर मैं अभी रेडी नहीं हुआ तो जल्दी से मैं रेडी होता हूँ सेट पर जाने के लिए, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ चेंज करके, ठीक है। हम फाइनली रेडी हो चुके हैं सेट पर जाने के लिए। ये है मेरा आज का लुक, बिकॉज आई लाइक टू कीप इट कैजुअल व्हेनेवर आई गो टू द सेट। एंड जाने से पहले अपना छोटा सा बैग है, इसको पैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद सम एसेंशियल्स। सो दीज आर माई टू सुख दुख के साथी। लड़कों के लिए कहते हैं ना, मेकअप का जरूरत नहीं होता है उतना जितना हेयर स्टाइलिंग का जरूरत होता है। तो लड़कों के बाल सेट कर दो, आधा कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द गर्मी। तो हमारा जो बैग है वो पैक हो चुका है, सो लेट्स गो।
0: तो विश्वास का ये छोटा सा बैग तो पैक हो चुका है, अब बारी सेट की ओर निकलने की। लेकिन उससे पहले विश्वास भगवान जी की पूजा करते हैं, और देखिए आज तो उनकी नीज भी उन्हें मिल गई, और अपनी नीज से विश्वास काफी प्यार करते हैं। इसी के साथ सेट का सफर शुरू करने से पहले विश्वास ने अपने लिए झटपट से ओटमील बनाया और ब्रेकफास्ट कर निकल पड़े सेट की ओर।
1: तो सेट पे निकलने से पहले गणपति बप्पा, इनको इनकी पूजा, थोड़ी सी पूजा करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता बेसिकली। सो दिस इज

0: इज माय नीस हिनाया एंड अभी इसका स्कूल जाने का टाइम हो गया. आर यू नॉट गेटिंग लेट बाय द वे?
1: अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए सेट के लिए, बट निकलने से पहले ब्रेकफास्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि ब्रेकफास्ट करे बिना घर से निकलना इज नॉट गुड. सो फटाफट से अपना ओटमील तैयार करते हैं, उसके बाद खा के निकलते हैं विद इन 5 मिनट्स. सो मैंने अपना ओटमील तो तैयार कर लिया है, नाउ इट्स टाइम कि फटाफट से इसको बैठ के खा लिया जाए, बिकॉज सुबह का न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नेवर स्किप माई ब्रेकफास्ट, सो दैट्स वाई.

0: फिर से सेट तक का ये सफर तय कर कर विश्वास आखिरकार पहुंच गए हैं कैसी तेरी दिल लगी के सेट पर, जहां अब वो विश्वास से आकाश के किरदार में ढलेंगे। लेकिन उससे पहले विश्वास ने हमें मिलवाया अपने इस दोस्त कम भाई से।
1: तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे सेट पर। चलिए मैं आपको मेरा मेकअप रूम दिखाता हूँ। कम ये हमारी हेयर एंड मेकअप की टीम है, एक बारी हाय बोल दो। सो मेरा एक को एक्टर है जिसका कैरेक्टर नेम है सिद्धार्थ। ये उसका मेकअप रूम है। आई थिंक सिद्धार्थ इज हियर, कम। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सिद्धार्थ। एंड इसका रियल नेम है आसिफ, इस कैरेक्टर नेम है सिद्धार्थ। एंड ही इज प्लेइंग, हम दोनों का जो बॉन्ड है ना, दैट इज लाइक ही इज माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, अगर मैं एक लाइन में कह पाऊँ तो।
2: आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में सर?
3: आई वुड से इट्स मोर लाइक हैपनिंग कि मेरा सगा भाई मुझे मिल गया ऐसा। एंड हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी थ्रू आउट, अभी तक जितना भी हम लोगों ने मतलब अभी तक काम किया है। सो एंड वी हैव द सेम इक्वल रूट्स, वी बिलोंग टू Kashmir, so that is also something we're connected on screen as well. You will see it, and yeah.
1: चलिए अब हम चलते हैं मेरे मेकअप रूम में।
0: तो फाइनली हम पहुंच गए हैं विश्वास के मेकअप रूम में, जहां अब विश्वास आकाश कॉस्ट्यूम चेंज कर बन जाते हैं आकाश रायचंद।
1: मेरा वो समय है जब शॉर्ट नहीं हो रहा होता है और मुझे थोड़े से रेस्ट की जरूरत होती है, तब मैं यहाँ पर अपना टाइम बिताता हूँ, या फिर जब मुझे अपनी स्क्रिप्ट्स को रिहर्स करना होता है तब मैं यहाँ पर रहता हूँ। सो दिस इज द प्लेस आई स्पेंड माई टाइम इन। तो मेरा ऐसा रहता है कि आई डोंट रियली लाइक टू गेट माई मेकअप डन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जितना मेकअप कराता हूँ मेरा स्किन उतना ज़्यादा खराब रहता है। इसलिए आई प्रेफर इट कि जितना कम हो सके, जितना मिनिमल मेकअप हो उतना बेटर। सो अब वही जो मिनिमल मेकअप है वो करवाते हैं हम।

0: वी आर डन विद मेकअप आई थिंक है ना शिवा हो गया तो अब विल बी वेटिंग फॉर आवर कॉस्ट्यूम्स फॉर टुडे एंड कॉस्ट्यूम आने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ उस वक्त फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारा आज का पूरा लुक रहेगा तो हमारा आज का कॉस्ट्यूम भी आ चुका है आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का एक कुर्ता है और ये कुर्ता इसीलिए है क्योंकि हमारे घर पे आज कोई फंक्शन हो रहा है अब वो क्या फंक्शन हो रहा है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट लुक फॉर आकाश क्योंकि आकाश यूजुअली ऐसे कपड़े नहीं पहनता यूजुअली वो बिल्कुल ही सूटेड बूटेड एकदम स्वैग वाला बंदा है तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी एज वेल बाकी आपको कुछ भी जानना है स्टोरी के बारे में या फिर ये क्यों पहन रहा हूँ मैं इसके बारे में उसके लिए आप शो देखिए
1: दीवाना।

0: पहले आप मिले थे विश्वास सराफ से और अब आपके सामने हैं आकाश रायचंद। आकाश रायचंद इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अगर मैं उसकी एटीट्यूड के बारे में बात करूं तो उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ उन लोगों से फर्क पड़ता है जो उसके क्लोज वंस हैं, जो उसके फैमिली में आते हैं। और उसकी फैमिली बहुत ही छोटी सी है, उसकी एक अपनी बहन है, छोटी बहन जिसका नाम अधीरा है, और उसका दोस्त है जो बिल्कुल भाई जैसा है जिसका नाम सिद्धार्थ है। तो बस यही दो चार लोग हैं जो आकाश के बिल्कुल क्लोज वंस में आते हैं और उनके लिए वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। और बाकी दुनिया के लिए आकाश बहुत ही मुँहफट कह सकते हैं, बहुत ही अकड़ू कह सकते हैं, पर अपने प्यारे लोगों के लिए वो बहुत ही प्यारा।
1: तो अब विश्वास पूरी तरह से आकाश बन चुके हैं, ऐसे में देख लीजिए आकाश का ये स्वैगर। तो इस बात पर स्वैगर वाला डांस तो बनता ही है।

0: तो आकाश रायचंद अपनी कहानी लेकर आ चुका है, और जैसे कि आपने विश्वास सराफ को इतना प्यार दिया है इतने सालों से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आकाश रायचंद को भी आप उतना ही प्यार देंगे, और ये जो कहानी है हमारी आप इसको भी उतना ही प्यार देंगे। तो आई रियली होप कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस कहानी को, क्योंकि सबकी बहुत मेहनत लगी है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितनी भी डायरेक्शन टीम है, चाहे हमारी प्रोडक्शन टीम है, सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड आई जस्ट होप कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे रह पाए, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे सास बहू और बेटियां पे।
1: तो भाई हो जाइए तैयार दंगल टीवी के नए शो कैसी तेरी दिल लगी की ये दिलचस्प कहानी देखने के लिए, जिसमें है ड्रामा, ट्विस्ट और एंटरटेनमेंट भरपूर। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हम सबके फेवरेट दी वेरी हैंडसम एंड दी वेरी हैप्पी राजीव खंडेलवाल यहाँ कर रहे हैं हम सबका इंतजार। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इनके शो तुम हो ना के सेट पर, जहाँ ये खोल रहे हैं हमारे लिए एंटरटेनमेंट का दरवाजा, क्योंकि इस शो में भी है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग। तो क्या कुछ हुआ है इस वीकेंड तुम हो ना के इस मंच पर, लेट्स चेक इट आउट।
3: मेरा नाम बिलिंडा है, पर सभी मुझे कहते कि आपका नाम बिलिंडा से बेल इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार भारत को रिप्रेजेंट करता है। मेरा एनजीओ जो है, छोटा एनजीओ है, वहाँ पे अलग अलग राज्यों के बच्चे हैं, मैं उनका देखभाल करती हूँ, स्टडी से उन लोग का विकास करती हूँ और सही मार्ग दिखाती हूँ उन लोगों को कि एक अच्छा इंसान बनना चाहिए।
4: उस एनजीओ को शुरू करने का ख्याल कहाँ से आया?
3: जब मैं छोटी थी, माई डैडी पापा जो है बहुत जल्दी गुजर गए, हम 6 बच्चे थे और चाली में रहते थे, तो पता है कैसे है, ना सीधा खाना ना पीना ना कुछ नहीं, जो बाजू वाले देते थे वैसे। तो स्कूल का एजुकेशन हमें कॉन्वेंट में पढ़ाया, फीस कम रहती थी, ब्रेक का टाइम दूध और बिस्किट देते थे स्कूल में, घर पे लाकर फिर शाम को सब मिलकर खाते थे हम लोग ऐसे। तो इतना गरीब परिस्थिति थी कि ऑड जॉब्स कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक ही था कि बिलिंडा बड़ी होकर कुछ तो बनेगी, लेकिन ना ये भूख मिटाना चाहिए। तो वो मुझे बहुत लगा। फिर वहाँ पे एक अनयूज संडास था जो कोई यूज नहीं करते थे। सर जी, मैंने अपना खुद का पगार का थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर उस पे टाइल्स डाला, सीट जैसा बनाया बैठने के लिए, और चार्ट पेपर पे मैं आई खुद सीखी, आई नंबर सीखा, ये वो चार्ट्स बनाते थे। ये 2 बच्चे लोग ने और बच्चे लाने लगे। एक जो है, जब आपको किसको खींचना है ना सर, पेट जो है ना, भूखा पेट, वो एक वड़ा पाव दे या एक बिस्किट का पूड़ा देगा ना, बच्चे लोग जरूर आते हैं। तो वैसे बच्चे लोग आए, नज़दीकी म्युनिसिपैलिटी स्कूल था, वहाँ पे एडमिशन शुरू करवाया मैंने।
4: अभी कितने बच्चे हैं?
3: अभी हमारे पास 25 बच्चे हैं। भगवान की कृपा से हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं। वहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है,
4: ये बस मुझे लगा था कि आपके अपने बच्चे हैं वो। अच्छा, ये
3: सभी मेरे ही बच्चे हैं।
5: मैं एक स्कूल चलाती हूँ, वो स्कूल के ये बच्चे हैं। और जो हम स्कूल चलाते हैं वो स्कूल स्पेशल बच्चों की है। सो यहाँ पे सारे स्पेशल बच्चे हमारे साथ आए हैं, और इसीलिए शायद आप बोल सकते हो कि मेरे लिए ग्रेट इंडियन परिवार ये लोग हैं।
4: ये ख्याल आया कहाँ से?
5: आज से 15 साल पहले इतने ज़्यादा स्पेशल स्कूल भी नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। हमने सिर्फ 2 बच्चों से उस टाइम पे स्कूल खोला, वैसे करते करते आज हमने हजारों बच्चों को ट्रेनिंग दी है।

0: आज उसने आपको बोला कि वो हमें भगवान मानते हैं, बट सर हमारे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे फैमिली के लिए, ये बच्चे हमारे भगवान।
1: इतना मत पूछो किसी चाबी का हाल, क्योंकि ताला तो समझता है चाबी की हर चाल। ओ माय गॉड, क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर ईशा और सूरज की इस कहानी में? क्या आई है यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन जो लेकर आ रही है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस, या फिर ये सिचुएशन लेकर आएगी हमारे लिए कोई गुड न्यूज? देखिए, सवाल तो बहुत है हमारे पास, तो चलिए लेते हैं अपने हर सवाल का जवाब। लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और दिखाते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट।

टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है मौसम रोमांस का। भाई ईशा हो गई है तैयार अपने दफ्तर जाने के लिए। ऐसे में देखिए कैसे आज सूरज अपने हाथों से ईशा के लिए ये स्पेशल वाली चाय बना रहा है। परिवार के लिए ईशा और सूरज साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में जब सूरज ईशा के लिए चाय लेकर जाता है तो सारा परिवार और ये बच्चे मौजूद है। ऐसे में भला कैसे ईशा चाय पीने से मना कर देती, तो भाई सूरज के हाथों से बनाई हुई ये स्पेशल चाय वो पी ही लेती है। और ऐसे में बच्चे भी हो जाते हैं खुश, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ईशा सूरज का रिश्ता फिर से सुधर गया है और इनमें दोस्ती हो चुकी है।

0: इस सूरज की असली दीवानगी तो तब नजर आती है जब ईशा चाय पीकर चली तो जाती है, लेकिन जो चाय बचती है वो ईशा की झूठी चाय सूरज पी लेते हैं। ऐसे में देखने को मिलता है इन दोनों का प्यार। वैसे गलत फहमियों के चलते भले ही ये दूर है, लेकिन ईशा और सूरज एक दूसरे से प्यार बेहद करते हैं और आज ये साफ देखने को जाहिर है।
1: ईशा जी हैं, मतलब ईशा और सूरज के बीच में आपस में बात हुई है एक रात पहले कि हमारा जो भी झगड़ा है, मतलब कि पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, वो दोनों हम इसी कमरे के बीच में मतलब कि निपटा देंगे। फैमिली के सामने कुछ भी हो, हम पति पत्नी बनकर रहेंगे। अब ये इन दोनों की बात हो चुकी है। अब उसके बाद, उसके पहले एक्चुअली एक सीन ऐसा गया था काफ़ी दिन पहले कि सूरज जो है ईशा जी के लिए चाय बनाता है और ईशा जी वो चाय नहीं पीती क्योंकि ईशा जी को सच्चाई पता चल गई रहती है सूरज की। तो सूरज बोलता है ठीक है, मैं हमेशा हर दिन आपके लिए चाय बनाऊंगा और किसी न किसी दिन तो आप पियेंगी। एंड तो वो अब ये वो अगली सुबह है जहाँ बच्चों के सामने एंड पूरी फैमिली के सामने ये नहीं दिखाना है हमें कि हम एक दूसरे से झगड़ते हैं लड़ते हैं। तो सूरज चाय बना के ये लेकर आया है और ईशा जी अपने मतलब कि आईपीएस ऑफिस जाना चाह रही हैं ऑफिस, एंड सूरज चाय रखता है और सूरज बोलता है कि चाय पी लीजिए। अब ईशा जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि दुनिया की नज़र में हमें यही दिखाना है फैमिली वालों को कि वी आर हस्बैंड वाइफ। अब उस हस्बैंड वाइफ के बीच में ये चाय पीने और चाय रखने के बीच में कहीं ना कहीं सूरज और ईशा का जो रियल इमोशन है एक दूसरे के लिए वो भी निकल के आ रहा है, पति पत्नी वाला इमोशंस भी निकल के आ रहा है और इनडायरेक्टली नो टच वाली स्टोरी भी हमारी फॉलो हो रही है। तो ईशा जी चाय पी के जाती है और ईशा जी को आगे कैरी ऑन नहीं करना रहता है शायद से ज़्यादा क्योंकि इमोशनल हो जाएंगी। बाय बेटा, तो इमोशनल हो जाएंगी इसलिए वो चाय पीती हैं और उन्हें थोड़ा सा शुगर ज़्यादा लगता है तो वो बोलती है कि शक्कर कुछ ज़्यादा है, नेक्स्ट टाइम पी लूँगी पूरी चाय। तो सूरज वही चाय उठाता है, मतलब कि जहाँ से वो पी रहती है उनका लिपस्टिक लगा रहता है वहीं से चाय उठाता है और वो लिपस्टिक को टच करके चाय पीता है और इमोशन है।

0: का खट्टा मीठा रिश्ता तो चलता रहेगा। बात करें घर वालों की तो यहाँ देखिए कैसे बहुएं और सासू माँ बना रही हैं खाना और चल रही है सास बहू की ये नोक झोंक भी।
1: तारीफ क्या मन में पड़पड़ा रही है, मुझे सब सुनाई पड़ रहा है। तेरी मैं तारीफ नहीं करती हूँ और महारानी के हमेशा गुणगान करती हूँ, यही चल रहा ना तेरे मन में?
2: नहीं मम्मी जी।
1: हाँ तो गलत क्या है, है मेरी बहू इतनी प्यारी।
2: ऐसा कुछ भी नहीं है ताई माँ, बस आपको छेड़।
0: तभी वहाँ पहुँचते हैं पूरन जो लेकर आए हैं ताई जी के लिए ये मसाजर, जिसे देखकर ताई जी काफी खुश है और मोनिका को हो रही है जलन क्योंकि पूरन अपनी बीवी मोनिका के लिए कुछ नहीं लेकर आए हैं।
1: अरे कहाँ कहाँ ले जा रहे, अभी रोटियाँ बनानी बाकी है भाई।
3: वो मोनिका बना लेगी, आप चलिए मेरे साथ आइए। मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ?
1: क्या
4: मोनिका?
5: अरे वाह गर्दन मसाजर।
0: ताई जी मोनिका के पास आती हैं और उसे ये मसाजर देती हैं, जिससे मोनिका हो गई है काफी खुश। लेकिन ये मसाजर बन गया है आफत। देखिए कैसे मोनिका को लग रहे हैं झटके क्योंकि इसकी स्पीड हो गई है हाई और मोनिका का हाल बेहाल।

0: गाजर बन गया है आफत। और मोनिका देखिए कैसे पूरे घर में भाग रही है और उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं ताई जी, ईशा और पूरन। और फाइनली ईशा ये मसाजर निकालती है, लेकिन मोनिका की हालत तो काफी खराब हो गई है।
1: इसको से कमरे में लेके जाओ।
2: हाँ।
1: ठीक है ना, ज्यादा दिमाग मत चला, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
0: तो भाई ये मस्ती भरे पल तो चलते रहेंगे, अब देखना होगा सूरज और ईशा का ये रिश्ता कैसे सुधरता है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अब तो हम एंटरटेनमेंट की चाबी लगाकर खोल रहे हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ये अगला दरवाजा और लेकर चल रहे हैं आप सबको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर, जिसे संभाल कर रखा है हमने ओनली फॉर यू। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, क्या सब कुछ मैं ही बता दूंगी आपको? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर। गेट सेट गो।
0: स्वाति के घर आई वृंदा, फूटा स्वाति की मम्मी का गुस्सा।
4: बोलो आई कैसे तुम, जाओ यहाँ से।
0: दिखी स्वाति और वृंदा की दोस्ती।

0: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा और स्वाति की अच्छी दोस्ती हो चुकी है और ऐसे में वृंदा की तबीयत नाजुक है और स्वाति ने फैसला लिया है कि वो वृंदा को अपने घर पर रखेगी और देखिए कैसे वो उसे अपने घर ले आई है। लेकिन इससे पहले कि स्वाति आकर सबको ये बात बताती, वृंदा अकेले ही घर में एंटर कर जाती है और ऐसे में स्वाति की माँ का गुस्सा वृंदा पर फूटता है। वो उसे गरीब समझकर घर से बाहर निकलने को कहती है। तभी सही समय पर वहाँ स्वाति पहुँचती है जो बताती है कि वृंदा उसकी दोस्त है। हालांकि स्वाति की मम्मी को इस बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो दे देती है परमिशन वृंदा को स्टोर रूम में रखने की, क्योंकि वृंदा का हुलिया देखकर वृंदा स्वाति की माँ को उससे नफरत सी हो गई है।
1: सिक्योरिटी अंदर किसने आ दिया तुमको? हाँ हैदर।
2: यस मैम।
1: कौन है ये? तुम अंदर कैसे आए? कहाँ से आई हो तुम? समझ बोलती कैसे अंदर आई? तुम अंदर कैसे आई हो? खैराती बटी है यहाँ पर, बोलो आई कैसे तुम? जाओ यहाँ से।
3: स्वाति उसे अपने घर लेकर आ जाती है। तो घर आते ही हमारे घर में गृह प्रवेश हो रहा होता है। तो जैसे ही मैं घर में एंटर करती हूँ, मुझसे पहले अम्मू एंटर करती है और मेरी मम्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है, गीली मिट्टी ये सब लेकर आ गई है, गंदा कर दिया घर, पूजा हो रही है। तो मॉम के साथ मेरी बहुत सारी बहस होती है कि नहीं अम्मू यहीं रुकेगी। वो कहते हैं नहीं रुकेगी। फिर मम्मा मान जाती है, लेकिन सिर्फ स्टोर रूम में रुकने के लिए मानती है। वो ये नहीं बोलती कि तुम अच्छे से रूम में रुकवा सकती हो अम्मू को।
0: वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे वृंदा और स्वाति पहुंच गए हैं स्टोर रूम में, जिसकी हालत काफी खराब है। लेकिन इस कमरे को देखकर भी वृंदा काफी एक्साइटेड हो जाती है और ऐसे में स्वाति और वृंदा लेते हैं फैसला कि साथ मिलकर वो इस कमरे की सफाई करेंगे।
4: हाँ तो बहुत सारू छे दीदी, इतना बड़ा क्या करता है? मैं कर लूंगी,
5: कर लेंगे।

कमरे में आते ही वृंदा ने सबसे पहले दिया जलाया, क्योंकि वो अपने नई जिंदगी की शुरुआत जो करने जा रही है। जहां वृंदा पूजा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति को आता है संजय का कॉल और वृंदा के बारे में स्वाति संजय को बताती है। हालांकि वृंदा और स्वाति दोनों ही इस बात से अनजान है कि वृंदा का पति संजय है, तो वहीं स्वाति का मंगेतर भी कोई और नहीं बल्कि संजय ही है। ऐसे में अब जब इन तीनों का आमना सामना होगा, तब कहानी में कई बदलाव आएंगे।

0: स्टोर रूम का जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं वहाँ मिट्टी मिट्टी इतना गंद सब कुछ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है यार अम्मू कैसे रुकेगी यहाँ पे। बट वो कहती दीदी कोई बात नहीं मैं रुक जाऊँगी। तो हम मिलकर अम्मू और मैं पूरे स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे, उसको क्लीन करके उसको सेट कर रहे थे। मैं उसको अपना आधा बेड भी दे देती हूँ ताकि वो आराम से कंफर्टेबली सो पाए। और इसी दौरान मुझे संजू का कॉल आता है, मैं उससे बात कर रही होती हूँ और वो कहते हैं कि अम्मू से मुझे बात करवाओ, तो मैं वीडियो कॉल पे होती हूँ, तो मैं उसे करवाने ही वाली होती हूँ बट उसे छीके आ जाती है, तो थोड़ी सी एम्बेरस्ड हो जाती है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं हम बाद में बात कर लेंगे। अम्मू को कुछ आइडिया नहीं, अम्मू को लगता है कि मेरा फियांसे कोई और है और मुझे नहीं पता है कि उसका जो संजू है वो ये संजय है, तो हम दोनों को कुछ आइडिया नहीं है।
1: तो भाई फिलहाल तो वृंदा और स्वाति सहेलियां बन चुकी हैं, लेकिन सच सामने आने के बाद ये सहेलियां सौतन बनेंगी या इनके रिश्ते का क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
2: किसको ढूंढ रहे हो? वृंदा को ढूंढ रहा हूं, जिसका ये बैग है, शादी के जोड़े में आई थी वो।
3: ये अम्बे माँ, ये भले लोग नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों वृंदा को ढूंढ रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा।
1: मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हॉस्पिटल आ सकते हो क्या?
5: एक पेशेंट है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में,
4: ए बी नेगेटिव ब्लड चाहिए और
5: ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है।
4: ये वही लड़की जो मुझे उस दिन सुंदरपुर के मंदिर में मिली थी।
6: चाबी के आज तक कोई ताला नहीं बना है, इसका मतलब है कि बिना हल के भगवान जी ने आज तक कोई समस्या नहीं बनाई है। सो डोंट वरी बी हैप्पी। देखिए कभी कभी हम किसी सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाते, तो वी शुड जस्ट लेट गो, वेट एंड डू आवर बेस्ट। और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली खबर, जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट के बेस्ट रंग। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे सारी

0: शहर के लिए तड़पते माहिर।
1: कभी चुप चुपरा है, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफ है सुन।
0: माहिर को मिला शहर का साथ।
1: कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना।
0: शुरू हुई नई प्रेम कहानी।
1: रे मन मेरा माने ना मन मेरा।
0: कलर्स टीवी के सीरियल शहर में जब से माहिर शहर से मिले हैं, तब से वो अपना आपा खो बैठे हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए कैसे अकेले में दिख रही है उनके प्यार की तड़प। माहिर बहा रहे हैं आंसू और खुद को कोस रहे हैं, साथ ही ये माला भी तोड़ रहे हैं।
2: हिफाजत करते हमने बर्बाद कर दी।

0: ने कश्मीर में जो हमसे मिली बात, जो सवाल किया हमने, क्यों जवाब दिए हमने, उनसे बात करने नहीं चाहिए था, हमें उनके करीब आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, हम उनके करीब करते ना ही सब कुछ होता, ना वो यहाँ आती, नहीं जाना चाहिए था उनके पीछे।
1: क्या बोला, क्या चाहता है तू, क्या चाहता?
2: ये सारा नजारा दूर खड़ी शहर देखती है और वो आ जाती है माहिर का सहारा बनने के लिए। और देखिए शहर को देखते ही कैसे माहिर उससे गले लगकर फूट फूट कर रो रहे हैं और अपने दिल की बातें कह रहे हैं। ऐसे में

0: क्या जी मसला है? पहले हमें बस दिखाई देती थी, अब आवाज भी सुनाई दे रही है।
1: खोलिए दरवाजा। सुनिए, खोलिए दरवाजा।
0: मौला, ये कैसा धोखा हो रहा है हमारे साथ?
1: दरवाजा खोलिए, हम बाहर हैं।
0: सर सच में यहाँ है? वो हमारे जहन में नहीं है?
1: दरवाजा खोली तो सुनेंगे नहीं ना ऐसे।
0: ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये चीख क्यों रही है?
1: भाई इनके रोमांस पर अभी ब्रेक नहीं लगा है, घर जाते ही देखिए फिर एक बार दोनों टकराए।
0: अब पागल हो गई है?
1: तो दरवाजा क्यों बंद किया आपने?
0: अब सर,

0: और फिर दोनों की आंखें चार हुई और शुरू हो गया इनका रोमांस। भाई दोनों एक दूसरे से कितना भी दूर जा ले, लेकिन दिल में तो प्यार बेहद है, जो साफ देखने को जाहिर है।
1: आप बाहर क्या करी थी?
2: मैं सहेली के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, फिर हमें लगा कि एक सहेली अंदर छुपी है, इसलिए दरवाजा ठोक रहे थे।
1: ये क्या अजीब जवाब दे रही है? हम
2: अजीब सवाल करेंगे तो जवाब ही अजीब ही मिलेगा।
1: लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? याजी मंजिल में जहर।
2: हमें शौक नहीं है यहाँ पर आने का। डॉक्टर फरीद ने हमें कहा था कि हम यहाँ ठहरे ताकि देख सके कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, पर हम कब की निकल जाते हैं।

0: दूसरी तरफ हो गया गोलमाल, जहां बुआ जी पर गमले की मिट्टी गिर जाती है और वो भी जहर के हाथों। और जहर सिचुएशन को संभालने की कोशिश में लगी हुई है।
1: गोबर, अल्लाह, ये किसने हम पे फेंका? सामने आ, हम उसकी जान ले लेंगे। कौन है?
2: कसम से हमने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया ये।
3: बेबी जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वो एक कालीन उखड़ा हुआ था, इसलिए हम लड़खड़ा गए।
4: आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर।
0: तो भाई सहर और माहिर के दुश्मन कई हैं, लेकिन इनकी प्रेम कहानी और इनका प्यार कितना परवान चढ़ता है ये देखना होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अब तो एंटरटेनमेंट के

0: चाबी लगाकर खोल रहे हैं हम आपके लिए अगला एंटरटेनमेंट का दरवाजा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट। जी हाँ, दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें, क्योंकि जिस तरह हमारी लाइफ में होते हैं ना अलग अलग मोमेंट्स, एग्जैक्टली ऐसी ही होती है हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया। सही पहचाना आपने, रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: शेयर बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें, बात करते हैं लॉकअप सीजन 2 की। भाई खबरों की माने जल्दी होने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्री रिबेल किड यानी कि अपूर्वा की, जो शो में आते ही मचाएंगी तहलका। इसी के साथ देख लीजिए नए प्रोमोस, जहां होगा नया टास्क और साथ ही होगी शिल्पा और राम की लड़ाई।
2: मैम ऐसे मत करो प्लीज।
3: ये लो सब ले लो यार, सब ले लो, आ जाओ। टेक दिस ओवर।
4: गायब बस हो गया। शिफ्ट बस हो गया बस।
3: प्लीज ले लो, प्लीज ले लो।
4: क्यों कर रहे हो ऐसे?
3: ले लो, प्लीज ले। आपने छीना एक
4: खाना। छीना क्या? उधर जरा देखे तो सही।

0: तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी पहुंच गए हैं त्रियुंगी नारायण मंदिर अपने बेटे और बहू संग। नजर डाल लीजिए तुमसे तुम तक के इस नए प्रोमो पर, जहां मीरा के जाल में फंसेगा यशवर्धन और आर्या उठाएगा यशवर्धन पर हाथ।
1: क्या बदतमीजी है, हाउ डेयर यू, छोड़ो इसे, छोड़ो मेरा पल्लू, छोड़ो मेरा पल्लू, छोड़ो। दिस इज रिडिकुलस, ये सब क्या करने की कोशिश कर रहा था, किस आदमी है ये?
2: मैंने तो कुछ किया नहीं।

प्रोड्यूसर राजन शाही ने ये कंफर्म किया है कि वो जल्द लेकर आएंगे नया शो, जिसमें फिर एक बार नजर आएगी मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की जोड़ी। वही खबरें थी कि मोहसिन खान सीरियल अनुपमा में नजर आएंगे, लेकिन वो सीरियल में नजर नहीं आने वाले हैं, बल्कि राजन शाही ने खुद कंफर्म किया है कि मोहसिन और शिवांगी को वो एक नए शो में बतौर जोड़ी लेकर आएंगे। सलमान खान ने शेयर की है अपनी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स, साथ ही लिखा है ये कैप्शन, क्योंकि फैंस कर रहे थे सलमान की हेल्थ को लेकर काफी सवाल।

0: वाला है लास्ट शेफ्स का ग्रैंड फिनाले, जिसमें है कुकिंग, मस्ती और धमाल अनलिमिटेड। देख लीजिए इसकी खास झलक।
1: रोहित सर की पहली रसोई का।
2: अरे पागल है यार।
3: अरे यार, ये कहाँ फंसा दिया।
4: पहले गैस ऑन कर दो,
3: पहले बैटर बनेगा ना।
5: सर ने गन बना दी।
3: नहीं अभी एल है, तुम लोग की कुकिंग देखी है मैंने।
5: रोहित सर,
1: सर का ध्यान ही नहीं है।
5: थोड़ा सा देखिए, नजर डालिए गोविंदा के भांजे की तरफ।
3: डालनी है नजर तो गोविंदा पे ना डालू।
6: ये लॉफ्टर शेफ एक सर्कस है दीदी, और हम सब इस सर्कस के जोकर हैं।
7: क्या बात है।
6: ये देखो बाबू लोग, नॉर्मली सब्जियों को कीड़ा लगता है, ये पहली बार कीड़े को सब्जियां लगी हुई।
8: कृष्णा, दिस इज फॉर यू, आप मुझे माफ करोगे।
6: लव यू भौजी,
8: आई लव यू।
6: कल खेल में हम हो ना हो, दिल में ये सारे रहेंगे सदा।
0: विक्रम भट्ट लेकर आ रहे हैं 1920 हॉरर फ्रेंचाइज, जिसमें नजर आएंगे अहान शेट्टी, एक्ट्रेस कनिका मार पहुंच गई है माँ बगलामुखी के मंदिर लेने माता रानी का आशीर्वाद, जहां से उन्होंने शेयर किए हैं ये नजारे।

संतोष ने जीता है नेशनल फिल्म अवार्ड। ऐसे में इसकी खुशी मनाई गई फिल्म ओम के सेट पर, जहां धनुष है, ममूठी है और है धनुष की टीम। बीती शाम हुई फिल्म इक्का की सक्सेस पार्टी, जिसमें नजर आए सनी देओल, दिया मिर्जा, संजीदा शेख और बाकी के कलाकार, जिन्होंने अपनी जीत को किया सेलिब्रेट।

0: फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने पहुंचे एक्टर मोहनलाल, जहां से उन्होंने शेयर किया है ये वीडियो।
1: So enjoy the match. Thank you.

0: तो देखा आपने, आज एंटरटेनमेंट की इस चाबी से हमने खोला आपके लिए एंटरटेनमेंट का दरवाजा और करवा दिया आपको एंटरटेनमेंट की इस दुनिया का नॉनस्टॉप सफर। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपसे फिदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है.
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
9: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स.
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
11: भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन मंजूर. 4 से 60 वर्ष की उम्र वालों को लगेंगी 2 डोज. टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी की जांच की आवश्यकता. असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां. बाढ़ के हालात के बीच में NDRF, SDRF, सेना के जवान राहत सामग्री पहुंचाने और रेस्क्यू के काम में जुटे. पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब. सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें. रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा. लखनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर. लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई. भारी बारिश के चलते आज दूसरे दिन भी स्थगित रही अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई। दिल्ली में कई इलाकों में हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट, कई जगह स्कूलों की छुट्टी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
11: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज पांचवा दिन, आज निभाई जाएगी हीरा पंचमी की परंपरा। अड़पा मंडपम में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सुबह से दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार।
12: रामपुरी में
11: राजगढ़ छप्पन भोग के बाद निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत, रथ खींचने के लिए मची होड़। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, भजन कीर्तन के साथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर लिया भगवान का आशीर्वाद, रथ यात्रा में भक्तों ने दिखाया गजब का उत्साह। भगवान के रथ को खींचने के लिए मची होड़, हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते आगे बढ़ते चले। बेगूसराय में गूंजा जय जगन्नाथ, श्री राधा कुंज बिहारी मठ ने निकाली भव्य रथ यात्रा। बेगूसराय की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का मेला। जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ गूंजा कोला, 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी को खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया, जमकर लगाए जय जगन्नाथ के जयकार। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भगवान का स्वागत, रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते हुए नजर आए, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। प्रयागराज में गूंजा जय जगन्नाथ, इस्कॉन मंदिर में निकाली गई भव्य रथ यात्रा। सिविल लाइंस की सड़कें हुई भक्ति में, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर लिया भगवान का आशीर्वाद, रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते हुए नजर आए। प्रयागराज में दिखा महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की भक्ति का अनोखा रंग, भव्य रथ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र के अकोला में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का मेला। जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ गूंजा अकोला, 21 फीट ऊंचे और 5 टन वजनी रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने भगवान से मांगी अच्छी बारिश की दुआ, किसानों की खुशहाली के लिए प्रार्थना। आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस 31 फीट ऊंचा रथ, रथ में फ्रंट व्हील ड्राइव, स्टीयरिंग, मैनुअल ब्रेक और एडजस्टेबल शिखर जैसी सुविधाएं। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, भजन कीर्तन के साथ आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किए बाबा श्याम के दर्शन, देश की खुशहाली की कामना की। बागेश्वर में सावन के पहले सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक, जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। चमोली में पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। शिवालयों में सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी भक्तों की कतारें, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा परिसर। कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। पवित्र सावन माह की पहली सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पहली सोमवार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस ने भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की। आगरमालवा के मां बगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र पर उमड़ा आस्था का मेला। मां बगलामुखी के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतारें, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का भव्य श्रृंगार हुआ, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भस्म आरती के दौरान महाकाल को भांग चंदन सिंदूर किया गया अर्पित, दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतार। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। ऑस्ट्रेलिया में आज से एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, भारत समेत 19 देश होंगे इसमें शामिल। भारत के राफेल IL-78C-17 विमान होंगे शामिल, 7 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज। 19 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का करेंगे अभ्यास। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन मंजूर, 4 से 60 साल की उम्र वालों को लगेंगी 2 डोज, टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी की जांच की आवश्यकता। भारी बारिश के चलते आज स्थगित रही वैष्णो देवी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह। जयपुर में मिस टीन डीवा 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड फिनाले में देशभर की प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने विजेताओं को सम्मानित किया। बारामूला में प्रथम महायज्ञ धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, एलजी मनोज सिन्हा इसमें शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों के साथ मिलकर किया महायज्ञ, कई लोगों को सम्मानित किया। पटना में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने अपने बेटे के जन्मदिन पर महावीर मंदिर में की पूजा अर्चना, बेटा निशांत कुमार भी रहा साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
12: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, यह हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाइयों और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: क्या व्रत और उपवास रखकर मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कौन से व्रत और उपवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और व्रत उपवास रखने के नियम क्या हैं? जानिए व्रत और उपवास का महत्व सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन मंजूर, 4 से 60 साल की उम्र वालों को लगेंगी 2 डोज, टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी जांच की आवश्यकता। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच में एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना के जवान राहत सामग्री पहुंचाने और रेस्क्यू के काम में जुटे। पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम की यात्रा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। भारी बारिश के चलते आज दूसरे दिन भी स्थगित रही अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह दी गई। दिल्ली में कई इलाकों में हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट जारी, कई जगह स्कूलों में छुट्टी की गई।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। मानव सभ्यता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली शक्ति है अग्नि। अग्नि पंच महाभूतों में प्रमुख स्थान रखती है। सनातन धर्म के संस्कारों को पूर्ण बनाती है अग्नि। विवाह के मंडप से लेकर यज्ञों में पूर्ण आहूर्ति तक अग्नि प्रज्वलित होती रही है। भारत के सबसे बड़े पर्व दीपोत्सव से लेकर होलिका दहन तक अग्नि की शक्ति हम देखते आए हैं और आज हम जानेंगे कि अग्नि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। साथ ही जानेंगे कि अग्नि के प्रयोग का सही तरीका क्या है।

0: अग्नि, जिसे देवों से साक्षात्कार का माध्यम माना गया है। अग्नि को दिए के स्वरूप में प्रज्वलित करके ही हम ईश्वर से खुद को एकाकार कर पाते हैं। चाहे देवी हो, यज्ञ में आहुति, या फिर मंत्रों का करना हो आह्वान, सनातन संस्कृति में अग्नि से ही पूर्ण होते हैं सारे संस्कार। विज्ञान मानता है कि ये पृथ्वी कभी आग का गोला थी, जिसकी आंच जब ठंडी हुई तब सृष्टि में जीवन का अंकुर फूटा, मानव के अस्तित्व का शंखनाद हुआ। सनातन संस्कार कहते हैं कि अग्नि में अहंकार, पाप और बुराइयां जलकर मिट जाती हैं, चाहे वो अग्नि हवन कुंड की हो या फिर वो अग्नि ग्लानी या पश्चाताप की पीड़ा की हो। अग्नि सब कुछ पवित्र कर देती है।
1: अग्नि देवताओं और मनुष्य के बीच में जो सेतु है, जो उनके मिलन का एक रास्ता है, वो अग्नि है। और अग्नि जो है सबसे पवित्र मानी जाती है। देवताओं को यज्ञ में समिधा के माध्यम से जो है हवि अर्थात उनका भोग जो है प्रदान किया जाता है, वो देवताओं का मुख माना जाता है। और शास्त्रों में जब आप ऋग्वेद में इस विषय में देखेंगे तो वहाँ पर पुरुषोक्त में महापुरुष अर्थात विराट पुरुष की जो व्याख्या की गई है, उसके अनुसार जो है उस महान विराट पुरुष के मुख से जो है अग्नि का जो है कि प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात उत्पन्न हुए हैं।
0: पंच महाभूतों में से एक है अग्नि। माना जाता है कि बिना अग्नि के ना तो संहार हो सकता है और ना ही नव निर्माण। तभी तो जब शिव को क्रोध आता है तो तीसरे नेत्र से भस्म करती है अग्नि, और जब सृजन करते हैं तो वही अग्नि सृजनकारी शक्ति बन जाती है, जो कलाग्नि या रुद्राग्नि के रूप में अधर्म को जलाकर आत्मज्ञान का मार्ग खोलती है। माना जाता है कि नटराज रूप में उनके हाथ की अग्नि चेतना की शक्ति है, जो अज्ञानता को भस्म करती है। अनंत है अग्नि की महिमा। अग्नि जलाती है, अग्नि जीवन देती है। आज हम आपको अग्नि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताएंगे, साथ ही अग्नि से जुड़े वो महाप्रयोग बताएंगे जिन्हें करके आपके जीवन से समस्याओं का अंत हो सकता है।
1: जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो इसकी एक विशेष प्रकार की विधि होती है, विशेष प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और विशेष प्रकार के मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। और अग्नि कई प्रकार की अग्नि होती हैं और उन्हें उत्पन्न किया जाता है, इनका संयोजन भी होता है। अर्थात एक बार जैसे अग्निहोत्रों में होता है कि उनके यहाँ जो एक बार अग्नि उत्पन्न की जाती है, विवाह की अग्नि होती है, उस विवाह की अग्नि को विवाह के पश्चात ही लेकर के जब वधु के साथ घर आते हैं तो उस अग्नि को लेकर आते हैं और उसमें प्रतिदिन जो है हवन करते हैं और अंत तक, बल्कि इसको अंतिम समय तक जब तक उसमें महिला और पुरुष रहते हैं अर्थात दंपत्ति रहते हैं तब तक उसमें प्रतिदिन जो है हवन होता रहता है और अंत में उसी अग्नि से जब उनकी मृत्यु होती है तो उसी अग्नि में उनका जो है दाह संस्कार भी होता है। अर्थात अंतिम आहुति वह स्वयं की दे देते हैं, तो अग्निहोत्र इस प्रकार का भी जो है प्रयोजन करते हैं।
0: क्या है अग्नि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व? अग्नि ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का ऐसा संयोग है जिससे प्रकाश तथा ऊर्जा पैदा होती है। सृष्टि के पांच तत्वों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और विनाशकारी शक्ति अग्नि ही मानी जाती है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन और संहार दोनों नहीं हो सकते। धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ और अग्नि तथा स्वाहा के संयोग से उनके तीन संतान हुए। इस प्रकार कुल मिलाकर 49 प्रकार की अग्नि है। अग्निदेव की भौहें, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं, अंग स्थूल हैं और उदर लाल है। ये बकरे पर आरूढ़ है, अक्षम आला लिए हैं, इनकी 7 ज्वालाएं हैं और शक्ति को धारण करते हैं। अग्नि हर प्रकार के पाप को नाश करके समस्त चीजों को स्वीकार करती है। सनातन संस्कृति में अग्नि को देवता माना गया है और अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है, इसलिए घर का वास्तुशास्त्र भी आग्नेय कोण में सर्वोत्तम माना जाता है।
1: अग्नि के प्रयोग का जो सही तरीका है वो यही है कि इसको जो है अरण्यों के द्वारा उत्पन्न किया जाए और उसके पश्चात जो है इसका विधि विधान से पूजन करके फिर अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे अंदर शरीर में भी जो है वो जठराग्नि का बोला जाता है उसको, जिससे कि भोजन का पाचन होता है, वो अग्नि का भी प्रयोग हुआ है। और साथ ही साथ जो है हमारे घर में हम जो है सभी जग दिशाओं के अनंतर में जो है देखा जाता है जब, तो अग्निकोण के विषय में कहा जाता है कि अग्निकोण में ही जो है घर में चूल्हा अर्थात जो है किचन को बनाना चाहिए, रसोई घर बनाना चाहिए, और जो अपना पूर्व के तरफ पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसे जो है अग्निकोण के रूप में माना जाता है। तो अग्नि का बहुत ही विशेष महत्व है।
0: आहुति देते समय हम सभी अग्निदेव की पत्नी स्वाहा का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि स्वाहा की हमारी सभी कामना रूपी आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाती हैं। इसलिए स्वाहा कहने से अर्पित वस्तुएं देवताओं तक पहुंचती हैं। माना जाता है कि बिना अग्नि के कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं होता।
1: इसका हम सब के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अग्नि के माध्यम से हवन करके हमारे यहाँ तो यज्ञ की जो है आर्यों की पुरानी परंपरा है, सनातन धर्म की जो सबसे प्रमुख परंपरा है वो अग्निहोत्र है अर्थात यज्ञ है। बिना यज्ञ आज के समय में भी कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। शादी में भी जो सप्तपदी चली जाती है वो भी अग्नि के ही फेरे लिए जाते हैं और उन्हीं को साक्षी माना जाता है। तो अग्नि अति पवित्र है, ज्ञान का स्वरूप माना जाता है, ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है, और अंधकार को दूर करके जो है प्रकाश का स्वरूप माना जाता है। तो अग्नि सदैव पूर्वजी पूजित हैं और इन्हें ओम अग्नि इदम नमम इस प्रकार के मंत्र से इनका जो है पूजन करना चाहिए।
0: मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज हम अग्नि को कह सकते हैं। हम कह बिना अग्नि की जानकारी के हम सभी अपूर्ण होते। आगे हम आपको बताएंगे कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कैसे अग्नि का प्रयोग करें, साथ ही अग्नि के प्रयोग से जुड़ी सावधानियां जानेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: सनातन धर्म में पंच महाभूतों को देव स्वरूप में देखा जाता है। अग्नि का पूजन करते समय हम अग्नि देव का आह्वान करते हैं। चलिए आप जानते हैं कि विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति अग्नि के प्रयोग से कैसे की जा सकती है और अग्नि का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए।

0: ज्योतिष शास्त्र में अग्नि से जुड़े कई महाप्रयोग किए जाते हैं, चलिए जानते हैं।
1: अग्नि के विषय में जैसे कहा जाता है कि भाई अपनी मनोकामना के लिए, तो अग्नि का प्रयोग हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताया गया है और अग्नि का प्रयोग हमारे यहाँ जन्म से लेकर के अंतिम समय मृत्यु तक होता है। अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। जब जन्म होता है बालक का तब भी उत्सव मनाया जाता है, हवन इत्यादि होता है। और मैंने जैसा पहले ही बताया कि अग्नि जो है मनुष्य और देवताओं के बीच में संबंध स्थापित करने का सबसे प्रबल माध्यम है। जब हम उस अग्नि में स्वाहा बोल करके जो है इसमें अर्पित करते हैं, यहाँ तक कि इसमें दूध दही फल वस्त्र अनेक अनेक जो है प्रयोग होते हैं, अनेक अनेक प्रयोगों का अलग अलग जो है मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार से अग्नि में जो है आहुतियाँ दी जाती हैं।
0: अग्नि का विशेष मनोकामनाओं के लिए कैसे प्रयोग करें? संपन्नता और समृद्धि के लिए हवन की अग्नि में रोज प्रातः सुगंधित वस्तु की आहुति दें। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन की अग्नि में संध्या को हवन सामग्री डालें। संध्या काल में पूजा स्थान में दीप रूप में अग्नि के प्रयोग से आयु और एकाग्रता दोनों बढ़ती है। तुलसी के नीचे दीप रूप में अग्नि के प्रयोग से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। दर्पण के सक्षम अग्नि के प्रयोग से आर्थिक संकट दूर होते हैं। तो देखा आपने कितनी चमत्कारी है ये अग्नि। सूर्य के ताप में भी अग्नि है, जिसकी ऊष्मा से न सिर्फ मन एकाग्र होता है बल्कि शरीर की बीमारियां भी दूर होती हैं। चलिए आपको बताते हैं। माना जाता है कि जब हम हवन करते हैं तो इससे आसपास के वातावरण की नकारात्मकता का नाश हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अग्नि का सही प्रयोग कैसे किया जाए।
1: अग्निदेव की उपासना करने के लिए हमें उन्हें पहले उत्पन्न करना पड़ता है और अग्नि को स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात दो अरणियों यानी दो लकड़ियों को रगड़ने से अग्नि जो है स्वयं उत्पन्न होते हैं। और इसके जो उत्पन्न होने के पश्चात उनकी उपासना के लिए उनको जो है जैसे सभी देवताओं का छोटे प्रकार से बुद्धि से पूजन होता है, वैसे उनको जो है जल माला फूल इत्यादि अर्पित किया जाता है। उसके पश्चात उन्हें जो है घृत चावल काला तिल गुगुल इत्यादि का बना हुआ शाकला, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, वो उन्हें अर्पित किया जाता है।
0: अग्नि का सामान्य रूप से तीन तरीके से प्रयोग होता है, दीप में, चूल्हे में और हवन में। प्रार्थना के लिए दीप स्वरूप में अग्नि की उपासना की जाती है। संपन्नता समृद्धि और पोषण के लिए चूल्हे में अग्नि का प्रयोग होता है। देवी देवताओं की कृपा और सामाजिक कल्याण के लिए हवन स्वरूप में अग्नि की उपासना होती है। अग्नि प्रज्वलन के पूर्व उससे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रयोग कर लेने के बाद भी उसे प्रणाम करना चाहिए। बहुत ही पवित्र होती है ये अग्नि, तभी तो विवाह के समक्ष अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं। पूजा आरती यज्ञ और अनुष्ठान करने के बाद दीपक की दिव्य ऊर्जा की ऊष्मा हाथों से लेने की सनातनी परंपरा रही है। अग्नि से जुड़े कई महाप्रयोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते रहे हैं, क्योंकि पंच

0: का प्रयोग ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये इदम् नमः नमः, इस प्रकार के मंत्रों से जो है, छोटे मंत्रों से भी जो है अग्नि की पूजा की जाती है। और अग्नि का बड़ा ही विशेष महत्व हम सबके जीवन में है। बिना अग्नि के जो है किसी भी प्रकार के जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। देवता मनुष्य सभी के लिए जो है अग्नि का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है, पंचभूत जो बना हुआ है, आकाश वायु जल पृथ्वी तत्व, और उसमें एक सबसे विशेष तत्व है जो है अग्नि तत्व।
1: नवरात्र में देवी की उपासना 9 दिनों तक चलता रहता है। होलिका दहन के उपरांत बची जलती लकड़ी को घर लाने की परंपरा रही है, जिससे घर में समृद्धि आने की परंपरा है। लेकिन अग्नि के प्रयोग में सावधानी भी बरतना चाहिए। अग्नि के प्रयोग में की गई सावधानियां: अग्नि का अपमान ना करें, उसमें उल्टी सीधी चीजें ना डालें, अग्नि को पैरों से ना बुझाएं, जल या वायु का प्रयोग करें। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं तो घर में पवित्रता बनाए रखें, जहां तक हो सके बचना चाहिए। कहते हैं कि अग्नि का कभी अपमान ना करें, ना ही अग्नि के प्रयोग में लापरवाही करें, क्योंकि जो अग्नि जीवन देती है वो अग्नि भस्म भी कर सकती है।
2: आगर मालवा जिले में पचेटी माताजी का मंदिर देश भर में अपने पट्टे के लिए मशहूर है। यहाँ पर लोग सुख शांति, व्यापार, विवाह, नौकरी और साथ ही संतान सुख पाने के लिए माता रानी से पट्टा लेने आते हैं। आखिर क्या है माता का प्रसाद कहा जा रहा है ये पट्टा? माना जाता है कि ये पट्टा जिसे मिल जाता है, समझो उसके वारे न्यारे हो गए, उसकी कामना अवश्य पूर्ण होगी।
3: ये आस्था है जो कहती है कि आगर मालवा की पट्टे वाली माता के पास हर समस्या का समाधान है। ये भक्तों का माता रानी पर अटूट विश्वास है, जो कहता है कि चंडी और पार्वती के दो स्वरूपों में विराजी माता चटक गिराकर मनोकामना पूर्ति का वरदान देती हैं। चटक यानी फोड़ा हुआ नारियल, जिसे फोड़कर पुजारी माता रानी के गले या शरीर के किसी हिस्से पर लगाते हैं। अगर ये चटक गिर जाती है तो माना जाता है कि हर प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, और अगर ये चटक नहीं गिरती तो ये कामना पूर्ण नहीं होगी। हम भी इस अलौकिक आस्था से भरे इस दिव्य कहे जाने वाले मंदिर की पड़ताल के लिए निकल पड़े आगर मालवा से 15 किलोमीटर दूर पचेटी माता के दरबार में, जहां अनादिकाल से कामनाओं की पूर्ति करती आ रही हैं पट्टे वाली माता। आगर मालवा जिले में पचेटी माताजी का मंदिर देश भर में अपने पट्टे यानी गारंटी के लिए विख्यात हो चुका है। तभी तो यहाँ साल भर ही भक्तों की आस्था माता के दरबार से जुड़ी रहती है। ये भक्तों की पचेटी वाली इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था ही तो है, तभी तो उन्हें हर विपदा में माता अपने साथ खड़ी नजर आती हैं।
4: मैंने माताजी के यहाँ पे आया था, मैं कुछ महीने पहले मैंने माताजी से मांगा था कि मेरा मकान कंप्लीट हो जाए, माताजी अच्छा बन जाए, तो मैं यहाँ पर आके माताजी चोला चढ़ाऊंगा। तो माँ ने मेरी मुराद पूरी करी।
5: माता की शक्ति से प्रसन्न होके भक्त बहुत आते हैं यहाँ पर।
6: आपने भी मनोकामना मांगी है?
5: जी, मैंने भी मनोकामना मांगी और माता ने पूरी करी है। मेरी मनोकामना माता ने पूरी करी है और मैं माता का तब से ही भक्त हूँ। कम से कम मैं यहाँ पे 5 से 7 बार आ चुका हूँ उसके बाद से।
3: समस्या कोई भी हो, कामना कैसी भी हो, चाहे व्यापार में तरक्की चाहते हो या फिर नौकरी की हो चाहत, अगर नहीं हो पा रहा है किसी का विवाह या फिर हो संतान की हसरत, पट्टे वाली माता के पास भक्तों की हर पीड़ा के लिए मरहम है। माना जाता है कि माता रानी भक्तों के दामन में सदा ही खुशियों की सौगात डालती रही हैं।
7: मंदिर तो सब वही वर्षों पुराना है, अनादिकाल से है। यहाँ पे हर प्रकार की मन्नत पूरी होती है। माता जी के यहाँ पट्टा मिलता है, किसी भाई बहन को बच्चा बच्ची ना हो तो यहाँ से माँ बच्चा बच्ची देती हैं, किसी को नौकरी के लिए पट्टा मिलता है, शादी होती है वो भी आते हैं, किसी की शादी ना हो किसी कारण से वो टल गए हैं तो यहाँ से अगर जब पट्टा मिल गया तो शादी उसकी 100% होगी। अगर यहाँ से माँ का आशीर्वाद मिल गया तो शादी बिल्कुल होगा।
3: कहते हैं कि मंदिर के चारों तरफ 24 पिलर बने हैं और पूरा मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। यहाँ साल भर ही भक्तों की उम्मीद माता के दरबार में नतमस्तक होती है और मन्नत

0: पूरी होने या न होने का यहाँ साक्षात प्रमाण भी मिलता है। आप खुद सुनिए पुजारी की जुबानी, जो कहते हैं कि यहाँ माता भक्तों को देती है पट्टे रूपी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद।
1: माता जी के मुंह पे चट्टक चिपकाते हैं, अगर वहां से चट्टक गिर जाए आपके नीचे तो आपका काम सफल है, और अगर वहां पे चिपक गई हो तो फिर आपका काम ना होगा।
0: माना जाता है कि माता रानी की प्रतिमा यहाँ अनादिकाल से स्थापित है। माता की ये मूर्ति यहाँ स्वयंभू प्रकट हुई है। मूर्ति का आधा हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है और निचला हिस्सा कहाँ तक है इसके बारे में सटीकता से कुछ नहीं कहा जा सकता। गर्भगृह में माता जी की दो प्रतिमाएं एक साथ विराजित हैं। कहते हैं कि एक तरफ माँ चंडिका स्थापित है तो बगल में ही माँ पार्वती वरदान देती है।
1: मंदिर तो साफ माँ जमीन से अंदर से प्रकट हुई है, कोई बिठाई हुई मूर्ति नहीं है, अनादिकाल से है मूर्ति यही है, और आज तक इनकी मूर्ति का कोई को पता नहीं है कि इनका चरण कहाँ पे है। वैसे माता जी का, वैसे यूँ तो बाड़ी माता के नाम से बोलते हैं, लेकिन रोग इनका चंडिका का है, पार्वती रोग है।
0: माता के इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली तो यही है कि आखिर कैसे एक नारियल का प्रसाद भक्तों के लिए वरदान बन जाता है। माता रानी को बाड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पट्टा परंपरा देश भर में मशहूर हो रही है। भक्त नौकरी, विवाह और जमीन से पानी निकालने के लिए मिट्टी लाकर पट्टा लेते हैं और अपनी मुराद पूरी होने पर भी माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं।
1: पानी के लिए बहुत काफी लोग आते हैं और बहुत भीड़ लगती है। पानी के लिए साफ मिट्टी लानी पड़ती है, मिट्टी को दो चार जगह की मिट्टी लाओ, नंबर डाल लो उसमें, एक नंबर दो नंबर मिट्टी न डालने के बाद में वहाँ से पट्टा मिलता है कि भाई हमारे एक नंबर में हुआ या वो लगवाना है, तो आपको बोलना है कि माँ हमारे 300 से 400 फीट पे पानी पर्याप्त मिलना चाहिए, तो हमारा काम हो जाए, हमारा पट्टा दे देना। तो वहाँ से अगर पट्टा गिर जाए तो आपको 100% पानी मिलेगा।
0: तो है ना ये स्थान अद्भुत, जिस भरोसे को सदियों से पूर्णता का आकार दे रही है भक्तों की आस्था और सनातनी परंपराएं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: चलिए अब बात आस्था उत्सव की कर लेते हैं। पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आज पांचवां दिन है। इस उत्सव के तहत आज यहां हेरा पंचमी की सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाएगी, जिसमें मां लक्ष्मी श्री मंदिर से पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक आएंगी और भगवान जगन्नाथ से अपनी नाराजगी को जाहिर करेंगी। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विराजमान है।
9: अब रौनक गुंडीचा मंदिर में है। ये जन सैलाब वहीं उमड़ा है। जगत के नाथ इन दिनों यहीं पधारे हैं। आड़प मंदिर में विराजे हैं। रोज अनुष्ठान हो रहे हैं, नए नए भोग लग रहे हैं। आसमान भी मानो महाप्रभु के आगमन से खुश है, झूम कर बरस रहा है। और भक्त उनके लिए तो मानो भगवान स्वयं उनके घर आतिथ्य स्वीकारने आए हैं। सो सब मंदिर की ओर चल पड़े हैं, उनकी एक झलक पाने, उनका आशीर्वाद लेने। मौसम से भी शिकायत नहीं है, रेनकोट और छाता निकाल लाए हैं। सड़कों पर दूर दूर तक भक्तों की लंबी कतार है और उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए मंदिर के भीतर बाहर शहर के चौक चौराहों तक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
10: गुंडीचा टेंपल में हमारा जो अरेंजमेंट है, क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, बेसिकली इनसाइड टेंपल का अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, एक आउटसाइड टेंपल का अरेंजमेंट किया है, ट्रैफिक अरेंजमेंट किया हुआ है। इनसाइड टेंपल हमने 8 सेक्टर में डिवीजन किया हुआ है टेंपल के अंदर, जिसमें कि 3 कमांडेंट रैंक ऑफिसर्स शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर रहे हैं। वो लोग फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड एक नाइट शिफ्ट होता है। एंड उसमें हमारा डिप्लॉयमेंट टेंपल का सेक्टर वाइज डिप्लॉयमेंट है, लोगों को बेसिकली डिसिप्लिन श्रृंखलित एंड टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लोइंग और प्रिवेंट जंपिंग फ्रॉम द बैरिकेड, वो सब करके हेल्प कर रहे हैं।
9: भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों के प्रवास में कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान यहाँ मंदिर परिसर में पितरों का पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विशेष महत्व है।
11: जगन्नाथ महाप्रभु जब यहाँ के रत्न सिंहासन में विराजमान करते हैं गुंडीचा वाड़ी में, तब यहाँ एक ब्राह्मण को, एक व्यक्ति को अगर भोजन करवा के दक्षिणा दिए तो वहाँ पे 1000 व्यक्ति को देने के बराबर फल मिलता है। यहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं दशरथ जी के लिए और गुंडीचा रानी के लिए और इंद्रदुम्न के लिए यहाँ पे श्राद्ध किए थे, और यहाँ उनके याद में ये गुंडीचा मंदिर बनाकर यहाँ पे 9 दिन की यात्रा करते हैं और सारे जगत का कल्याण करते हैं।
9: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और आड़प दर्शन का आज पांचवा दिन है, और पांचवें दिन यहाँ हीरा पंचमी की परंपरा निभाई जाती है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, तो पीछे माता लक्ष्मी अकेली रह जाती है। पांचवें दिन देवी लक्ष्मी एक भव्य पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं और भगवान जगन्नाथ से अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। भगवान उन्हें जल्द वापस आने का आश्वासन देते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी का गुस्सा शांत नहीं होता। नाराजगी में माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के रथ यानी नंदीघोष के आगे का एक हिस्सा तोड़ देती है। इसके बाद भगवान उन्हें मनाते हैं और वे वापस अपने मुख्य मंदिर लौट जाती हैं। हीरा पंचमी की इस पूरी लीला को हीरा गोहा लीला भी कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का प्रवास कुछ ऐसा है मानो राज सिंहासन से उतरकर प्रजा के संग बैठ गए हों महाप्रभु। कहते हैं भगवान अपने भक्तों को मुख्य मंदिर की अपेक्षा गुंडीचा मंदिर में बेहद करीब से दर्शन देते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
3: भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, 4 साल से 60 वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज, टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी भी तरह की जांच की जरूरत। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच NDRF, SDRF और सेना के जवान मुस्तैद, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। भारी बारिश के चलते आज दूसरे दिन भी स्थगित रही अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। दिल्ली में कई इलाकों में हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का अलर्ट, कई जगहों पर स्कूल की छुट्टी।

0: ब्रेक के बाद लौटा मॉनसून। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावाजन। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। हालांकि नोएडा में बारिश नहीं हो रही है, दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है। हम अभी भी तरस रहे हैं बारिश को, क्योंकि यहां पर उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। बहरहाल आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। पूरे देश में मानसून की दोबारा से एक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन क्या इस बार मानसून नॉन स्टॉप बरसेगा? आगे मानसून कैसा रहने वाला है, क्या रंग दिखाएगा? हालांकि पहले मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि इस साल मानसून थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, ये अलनीनो की वजह से है। और इसी अलनीनो को लेकर कुछ बड़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं, कहीं ज्यादा गर्मी होगी तो कहीं ज्यादा बारिश आएगी। वैसे फिलहाल मानसून को संजीवनी मिल चुकी है, तो क्या गर्मी उमस की छुट्टी होने वाली है? भारत से जापान तक बादलों का समंदर आ रहा है। ब्रेक के बाद लौट आया है मानसून, आगे कैसा रहेगी मानसून की चाल? ऐसी तमाम सवालों का जवाब आज हम मौसम विशेषज्ञों और पर्यावरण विशेषज्ञों से जानेंगे। तो ब्रेक के बाद मानसून की एंट्री हो चुकी है। 6 से 7 दिन उत्तर पश्चिम पूर्व और पूर्वोत्तर में मानसून सक्रिय होगा। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। दरअसल 25 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में काफी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल तो पहाड़ों पर मौसम बदला हुआ नजर ही आ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश हो रही है। 23 जुलाई तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली में भी बारिश का अनुमान है। 22 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान, 25 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। और राजस्थान में तेज आंधी तूफान भी आ सकता है। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 22 जुलाई तक बारिश की संभावना यहां पर भी है। वहीं कोंकण, गोवा में भी पूरे हफ्ते बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में 25 तक बारिश की संभावना है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। और इस बीच असम, मेघालय में 25 जुलाई तक बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। 24 जुलाई तक अरब सागर में सोमालिया और ओमान के तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में भी श्रीलंका के 5 तट पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। भारत से लेकर जापान तक फिलहाल बादलों का ही डेरा है। 7000 किलोमीटर तक बादलों का पूरा समंदर एक तरीके से नजर आ रहा है। तो बादल ऐसे छाए हैं कि पुंछ, पटना और जोरहाट समेत हर जगह पर बादल बरस रहे हैं।
1: लगातार उमस और बढ़ती गर्मी के बाद एक बार फिर से मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादलों का डेरा जो है वो लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। एक बार फिर से मानसून की वापस से एंट्री हो गई, हम ये बोल सकते हैं?
2: जी देखिए, मानसून की अभी फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं, जिससे उत्तर पश्चिम भारत, उसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है। और हमारा अनुमान यही है, पूर्व अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की, तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर मुख्य रूप से मेघालय में और असम में भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। मेघालय में अत्यधिक भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। नागालैंड में कई दिनों से लगातार वर्षा चल रही है, आज भी वहाँ वेरी हैवी यानी बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है रेड अलर्ट साथ में। तो अब देखेंगे पूरे पूरे बेल्ट में जो है रेड अलर्ट की जो है चेतावनी जारी की गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: अच्छा, अगर मैं बाकी राज्यों की मैं बात करूँ तो वहां पर इस वक्त मानसून की क्या स्थिति बनी हुई, क्योंकि ये 2 महीने जो है वो मानसूनी बारिश जो है वो लगातार देखी जाती है, तो अभी क्या धीमी बारिश है या फिर वापस से एक बार जो रफ्तार है वो पकड़ सकती है?
2: देखिए, मानसून की जो वर्षा है वो बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो जिस क्षेत्र में अगर हम बात करें फेवरेबल मानसून की कंडीशन बन रही होती है, वहां पर वर्षा गतिविधि जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था जुलाई के पहले सप्ताह सप्ताह में जो पश्चिमी राज्य थे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, साथ साथ में मध्य भारत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में 9 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली थी। अभी जो है मानसून एक्टिव कंडीशन देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है, जिसकी वजह से काफी अच्छी वर्षा जो है इन सभी क्षेत्रों में जो देखने की संभावना है। दक्षिण भारत में हालांकि मानसून की जो कंडीशन है उसमें वर्षा अभी थोड़ी सी कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ओवरऑल हम देखेंगे सीजन वाइज तो 1 जून से 19 जुलाई यानी कल तक की जो वर्षा थी वो करीब करीब -24% जो है डेफिशिएंसी के साथ रिपोर्ट हुई है।
3: महाराष्ट्र गुजरात की अगर मैं बात करूं,
2: देखिए अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में भी, कोंकण में भी अगर हम देखेंगे तो अगले एक सप्ताह के दौरान जो है भारी वर्षा की चेतावनी जो कुछ स्थानों में जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र में भी जो घाट के क्षेत्र है वहां पर भी जारी की गई है। गुजरात रीजन में भी जो है अगले 3 दिनों के दौरान जो है भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। आज कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
3: और राजस्थान में,
2: राजस्थान में कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो रही, जरूर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई,
3: वहां पर बहुत कम बारिश जो है अभी तक देखी गई। अगर मैं राजस्थान की बात करूं,
2: देखिए राजस्थान में वैसे भी आप देखेंगे तो वहां की नॉर्मल कंडीशंस हैं, वहां पर वर्षा जो है बाकी क्षेत्रों के हिसाब से जो है कम ही देखी जाती है, तो उस हिसाब से हमें इस सिचुएशन समझने की जरूरत है।
3: तो रेड अलर्ट जो है आने वाले 2 से 3 दिन तक अभी इसी तरीके से रहे।
2: देखिए आज के लिए रेड अलर्ट है, पूरा जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद कल के लिए फिलहाल के लिए ऑरेंज अलर्ट रखा गया है, जहां जहां पर बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है, जहां पर अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी वहां पर रेड अलर्ट कंटिन्यू रहेगा।
3: लेकिन दिल्ली में बार बार उमस लोगों को बहुत परेशान कर रही है, हद से ज्यादा, लेकिन आज अभी बारिश अभी तक नहीं हुई है। मौसम जरूर बना हुआ है, बादल उस तरीके से देखे जा रहे हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो उमस की स्थिति है वो कम होगी या फिर अच्छी बारिश की वजह से, हवाओं की वजह से लोगों को राहत मिलेगी?
2: देखिए आज सुबह भी एक स्पेल जो है, अच्छा स्पेल जो है बारिश का देखने को मिला है दिल्ली में। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान सुबह 8:30 बजे तक जो है लाइट रेनफॉल एक्टिविटी जो है कई स्थानों पर देखने को मिली दिल्ली में। अनुमान यह है कि आज भी जो है मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है ज्यादातर क्षेत्रों में दिल्ली के, कल भी मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है और कुछ स्थानों पर हैवी रेनफॉल का भी अलर्ट जो दिल्ली के लिए जारी किया गया है। तो हम देखेंगे तो वर्षा गतिविधि बढ़ेगी, जब वर्षा गतिविधि बढ़ेगी तो साथ साथ में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट देखी जाएगी। कल 36 से 38 डिग्री के आसपास जो अधिकतम तापमान थे, हमारा अनुमान यह है कि 3-4 दिन के बाद में ये 32 डिग्री के आसपास आने की संभावना है।
0: तो उत्तर भारत में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, कहीं झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी है तो कहीं मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला है, राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है, कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, उमस से परेशान लोगों को राहत की सांस मिली है। देहरादून से लेकर केदारनाथ तक वादियां बारिश से सराबोर हैं, जबकि शिमला में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। बारिश जहां एक और गर्मी से राहत लेकर आई है, वहीं कई पहाड़ी राज्यों में ये चुनौती भी बनी है। ऐसे में मौसम का आनंद जरूर लीजिए लेकिन सावधानी बरतते हुए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना भी जताई है। वैसे ये भी बताते चलें कि इस वक्त मौसम से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि उत्तर भारत से जापान तक आसमान में बादलों का समंदर है और जिसकी वजह से भारत में, खासकर देश के उत्तर और मध्य हिस्से में जो मॉनसून मुरझा गया था वो एक बार फिर से जिंदा हो गया है। दरअसल जानकारों के मुताबिक 7 से 10 हजार किलोमीटर क्षेत्र तक बादलों का डेरा है, भारत से जापान तक विशाल बादल नजर आ रहे हैं। दरअसल ये भी बताते चले कि ये एक तरह की कुदरती घटना है और ये स्थिति तब बनती है जब अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं एक क्षेत्र में खास तौर पर मिलती हैं, घने बादलों का निर्माण होता है और इसी तरीके से, इसी वजह से भारत में मॉनसून जो है वो फिर से एक्टिव हो गया, जिसको हम कह रहे हैं कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से मॉनसून लौटा है। मॉनसून ट्रफ लाइन कम वायु दबाव की लंबी पट्टी है, आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो मॉनसून ट्रफ लाइन बारिश के लिए हाईवे की तरह काम करती है, बादलों का नया सेटअप मध्य और उत्तर भारत में बारिश की कमी पूरा करने में मददगार होगा। तो पूर्वी मध्य भारत में लो प्रेशर बन रहा है और मॉनसून की धुरी का पश्चिमी हिस्से के मैदानी इलाकों में एक तरीके से ये शिफ्ट हो गया। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि देश के 17 राज्यों में मॉनसून फिलहाल एक्टिव हो चुका है, और एक्टिव ही नहीं बल्कि पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर गुफरान बेग फाउंडर हैं सफर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट हैं और आनंद आर्य जी भी हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत डॉक्टर गुरुदत्त आप ही से करूंगी। परसों से लगातार फोन में वेदर वाली वेबसाइट देख रही हूँ इसी उम्मीद से कि बारिश और कब होगी। दिल्ली में तो बादल बरस चुके हैं, नोएडा की हालत बहुत बुरी है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि दिखा ये रहा है कि बारिश होगी, सुबह 9 बजे भी यही दिखा रहा था कि बारिश होगी और अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो यहां भी दिखा रहा है कि 5 बजे बारिश होगी। क्या उम्मीद लगाई जाए? दिल्ली में बादल बरस रहा है लेकिन नोएडा बिल्कुल सूखा पड़ा है।
4: देखिए, मानसून का पूरा जो चक्र है वो गड़बड़ा गया है और जहां पानी मिल रहा बहुत खुश नसीब वाला क्षेत्र है जहां पे वर्षा हो रही है। इस बार पूरे मानसून में आप देखेंगे कि जून में -40% वर्षा थी जो कि अभी भी -14% है और दो राज्य तो बहुत पिछड़े हैं, खासकर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में -24% और आंध्र प्रदेश में -35% कम वर्षा हुई है। और आप देखेंगे जो 4 महीने होते हैं जिसमें से जुलाई अगस्त हमारा पीक पीरियड होता है भारत में वर्षा के लिए, लेकिन जिस साइड से दौर देखा और अलिनो का साल है कि लगातार मौसम दौड़ी का, आप देखिए जुलाई में एकदम हिमालय की तराई में पहुंच गई है और अब धीरे धीरे सामान्य की ओर आ रही है। लेकिन सामान्य आने से ही वर्षा नहीं होती, जब तक कोई मौसमी सिस्टम इतने मजबूत ना बने बंगाली खाड़ी अरब सागर में जब तक भारत में बहुत अच्छी वर्षा नहीं होती। छुटपुट सिस्टम तो बनते रहे और बनने से देखिए आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली में वर्षा हो रही है, नोएडा में वर्षा नहीं हो रही, जहां जितना मिल रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन इस साल जो सुपर अलिनो का साल है सबको पता है कि प्रशांत महासागर का तापमान 0.5 से 0.9 और 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है जो कि अगस्त और सितंबर में हमारे देश में मानसून प्रभावित करेगा और इसका प्रभाव करीब फरवरी तक रहेगा। तो आप देखिए कि अभी नॉर्थ ईस्ट में और यहां से नॉर्थ वेस्ट में मानसून अभी सक्रिय है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 6-7 दिनों तक पश्चिमी मध्य और दक्षिण में मानसून बहुत कमजोर रहेगा। मानसून की द्रोणी का सामान आने से, छोटे मोटे सिस्टम बनने से थोड़ी बहुत वर्षा तो हो रही है, लेकिन भारत में इस समय कृषि का जो रकबा है और खासकर जो धान का क्षेत्र है सेंट्रल इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां धान बोई जाती है वहां स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोगों ने रोपा लगा दिया है क्योंकि तापमान भी सपोर्ट नहीं कर रहा। 37-36 डिग्री तापमान में आप धान कैसे आशा करेंगे कि बहुत अच्छी रहेगी? लोग पानी लगा के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन धान के लिए तो 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर नहीं गिर रहा। एक बौछार आ गई लंबी सी और आपने बड़ा कहा कि बहुत खुशनुमा माहौल है, बहुत खुशनुमा मौसम है, और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है।
0: बिल्कुल।
4: तो जो झड़ी वाली बात है, लगातार वर्षा वाली बात है, अभी हमसे बहुत दूर है। जहां वर्षा हो रही, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही, नॉर्थ ईस्ट में चाहे बिहार में हो, हिमालय की तराई में,
0: जी गुरुदत्त जी, ठीक है। और इसी का क्योंकि असर कितना कृषि पर हो रहा है, खासतौर पर धान की फसल पर, सुशील जी आपसे जानूंगी, लेकिन एक बार डॉक्टर गुफरान को ऐड कर लेते हैं। सर, दो चीजें, अब देखिए पिछली बार भी अगर देखा जाए, अभी अगर हम गुरुदत्त जी की बात को आगे बढ़ाते हैं, पिछले साल या पिछले कुछ सालों में हमने ऐसा देखा है, जुलाई, हालांकि इस बार तो देखिए 20 जुलाई आ गया, अभी तक बारिश का कहीं नामो निशान है नहीं, बादल जरूर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन जिसको हम अच्छी बारिश कहते हैं वो नहीं हुई है अभी दिल्ली एनसीआर की, खासतौर पर अगर मैं बात करूं, या आप राजस्थान या उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की बात कर लीजिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश के इलाकों की बात कर लीजिए। सर, अब दूसरी बात ये, क्या अभी सिलसिला शुरू होगा तो कब तक जा सकता है, क्योंकि आप ही लोग कह रहे हैं कि अलिनो का साल है, इस साल ये भी कहा गया कि 10% कम बारिश होगी, साथ ही साथ सर 7,000 से 10,000 किलोमीटर तक का जो वो बादलों का डेरा बना, जो कहा जा रहा है कि भारत से जापान तक एक विशाल कन्वर्जन जोन है, इसको भी जरा समझाइए, ये कितना ज्यादा सपोर्ट करेगा मानसून को, करेगा भी या नहीं करेगा, दोनों चीजें।
5: देखिए मैं शुरुआत इससे करता हूँ कि भारतवर्ष में जो मानसून आता है वो दो टाइप से आता है। एक जो कि सबसे ज्यादा वर्षा दे देता है जून जुलाई के अंदर, वो होता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। पिछले 100 साल में आई थिंक 5वां सबसे वीकेस्ट इंटेंसिटी थी उस मानसून की, उसकी वजह से आप देखिएगा कि सारे के सारे जो साउथ इंडिया के रीजन्स थे सब जगह वो बिल्कुल बारिश बहुत कम रही और सीधा जो है वो चला गया कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, और बहुत स्केटर्ड ये हुआ। अभी जो नई इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक 60% इंडिया के ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर कि मानसून की बारिश डिफिसिट थी, तो जिस मानसून के बनने के ऊपर, लो प्रेशर सिस्टम बनने के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे, वो तो वीकेस्ट निकल गया पिछले 100 साल में, 5वां नंबर, और उसी की रीजन है कि हमने जून में कोई वर्षा नहीं देखी और जुलाई की नहीं देखी। दूसरा जो लेट मानसून का जो ट्रफ आता है वो होता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, और जो आप मानसून रिवाइवल की जो बात कर रही हैं वो यही है कि वो रिवाइवल जो हुआ है वो बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ हुआ है। अगेन ये सिचुएशन होगी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे कि ऑलरेडी हमारी बारिश पहले पहुंची थी वहां पे बहुत ज्यादा सक्रिय रहेगा, लेकिन साउथ और वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर अगेन जो है वो थोड़ा वीक ही रहेगा, इसका भी जो रिवाइवल हुआ है उसके बाद भी। लेकिन हाँ, आपके नोएडा में बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली बहुत दूर नहीं है बारिश में, तो वो मेरे ख्याल से कल तक वहां पे बारिश होगी। लेकिन दो चीजें इसमें उभर के बहुत इस साल में जो यूनिक है, एक वो आई है कि जो आप बोल रही हैं कि बहुत बड़ा जापान से लेके वहां तक, वो अभी ये सुपर एल नीनो है। नॉर्मली एल नीनो का जो है डिफिसिट मानसून से जोड़ी जाती है, लेकिन इस बार जो सुपर एल नीनो का एक जो सिस्टम हुआ है वो ये हुआ है कि बहुत ज्यादा प्रशांत महासागर के अंदर गर्म हो गई है। गर्म होने की वजह से क्या हुआ है कि वहां से जो भाप उबलती है तो वो भाप निकल के और जो उसका मॉइस्चर है वो इस तरकीब से क्लाउड के रूप में फॉर्म होता है, और ये इसी साल का एक बहुत नया फिनोमिना है कि कुछ टाइम से ये भाप बन के ऊपर क्लाउडिंग वगैरह हो रहा था, धीरे धीरे ब्रेक होता था, बनता था, ब्रेक होता था, लेकिन इस बार पूरी तरह से छा गया है और वो पूरा ये टर्फ जो दिखने में आ रहा है। तो ये जो जिसको हम बोलते हैं कि रिवाइवल अभी ट्रिगरिंग इंटेंसिफाइंग द लो प्रेशर सिस्टम जो है वो मानसून ट्रफ टाइप का बन गया ये, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है ये पोरिंग होगी बारिश की उसकी। लेकिन एक जो सबसे खतरनाक चीज इसके अंदर देखी जाएगी वो ये है कि इस टाइप का जो कि अनयूजुअल मानसून का मूवमेंट होता है उसमें बहुत ही अनयूजुअल किस्म की बारिशें होती हैं। यानी कि आपने पिछली बार देखा मुंबई के अंदर बुरी तरह से बाढ़ आ गई, बहुत एरिया,
0: राजस्थान देख लीजिए सबसे बड़ा एग्जांपल,
5: एग्जांपल वही है कि और बिल्कुल आसपास के जो देखिए आप 200 किलोमीटर भी नहीं होगा वहां पे एकदम ड्राउट पड़ा हुआ है, बारिश की बूंद नहीं है, वही अभी भी होने वाला है। और मुझे थोड़ा सा ये डर लगता है कि अपने वहां पर जो उत्तराखंड और वो जो पूरी जहां पर की मतलब पूरे पहाड़ जो है मिट्टी के बने हुए हैं वहां पर फिर ना इतनी तेजी के साथ में बारिश हो जाए कि जिससे कि क्लाउड बस्ट टाइप की सिचुएशन आ जाए।
0: यानी सर आप ये कह रहे हैं कि इसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि बारिश होगी लेकिन अनइवन बारिश होगी, मतलब ये कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे किसी एरिया में ज्यादा। ये हमने पिछले साल राजस्थान में भी देखा था, बहुत से ऐसे एरिया थे जहां बाढ़ आ गई थी और बहुत से ऐसे एरियाज जहां पर सूखा, कोई सोच नहीं सकता कि रेगिस्तान जैसे इलाके में इस तरीके की बारिश हो सकती है। लौटूंगी सर सुशील जी, बिल्कुल सुशील जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, डॉक्टर गुरुदत्त ने जो बात रखी थी इसका सीधा असर कृषि पर, और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से किसान तो आज बादलों से ही लगाता है, लेकिन यहां पर डॉक्टर गुफरान भी यही बात कह रहे हैं कि अनइवन बारिश होगी, मतलब कुछ भी श्योर नहीं है, असर कितना हो सकता है, कहां कहां किस किस क्षेत्र में। सुशील जी
6: बिल्कुल, नवजोत जी आपने जो रेनफॉल वेरिएबिलिटी की बात कही इस पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि कहीं सूखा कहीं सैलाब, ये कैसी बेरुखी है, कुदरत के इन आंसुओं में इंसानी खता छुपी है। तो आपको मेरी लाइनों से शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सब कुछ इंसानी खता है, हम और आपकी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है उसी कारण आपके नोएडा में बारिश नहीं हो रही है और मैं इस समय काठमांडू में हूं तो यहाँ पर खूब बारिश हो रही है। तो यही है कि दुनिया के किसी हिस्सों में खूब बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर बारिश बिल्कुल कम हो पा रही है। तो ये एक प्रकार से जैसे आपने कहा कि इससे कृषि पर क्या फर्क पड़ने वाला है, मूल रूप से मैं बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूँ, वहां तो जो अभी मानसून के दौरान जो खेती किसानी में फसलें बोई जाती वो तो गर्मी की वजह से तबाह ही हो गई, तो किसान तो बहुत ही लाचार है, बहुत परेशान है। और यही कारण है कि देश में इस समय फिर से इन्वायरमेंटल लिटरेसी की बात उठने लगी है कि लोगों को इन्वायरमेंटल लिटरेसी दे के, हम साक्षरता दे के और उनको ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार रखें और साथ में उनको कुछ विकल्प भी मुहैया कराएं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें लगभग 18% हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर का है। अब देखिए 80% हमारा एग्रीकल्चर का हिस्सा है और 40% जो खेती है, विशेषकर बुंदेलखंड उसके आसपास के जो नॉर्दर्न एरिया वाला रीजन है, तो वो कहीं ना कहीं से मानसून पर आधारित उनका इरिगेशन सिस्टम, मतलब उनकी सिंचाई तभी हो पाएगी जब मानसून होगा, और जब मानसून ही बेवफा हो गया है तो अब ऐसी स्थिति में कहीं ज्यादा बारिश, कहीं सूखा वेदर वाली सिचुएशन में, तो सीधे सीधे किसान प्रभावित हो रहा है। और ऐसी स्थिति में मैं और आप अब कहते हैं ना कि हमें और आपको भविष्य में बड़ी परेशानी का सबब उठाना पड़ेगा। हाँ। और यही कारण है कि हमें और आपको अक्सर कहा जा रहा है कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जनरेशन डेट कैन डू समथिंग अबाउट इट। हम और आपको सोचना पड़ेगा कि हम पहली और अंतिम जनरेशन है जिसको हमें कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे, जिसके द्वारा शायद हम कुछ बेहतर कर पाने में सफल हों, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कम से कम खाद्य सुरक्षा के लिए तो कुछ दे सके उनके लिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में तो स्थितियां बड़ी ही गंभीर होने वाली है, अन्नदाता बहुत बेहाल है।
0: वो आप हम देख ही रहे हैं, देखिए सर कहां तो आंधी तूफान मई में शुरू होता था, जून में बरसात शुरू होती थी, आज 20 तारीख है, आज भी हम बादलों की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि बारिश हो भी रही है तो बहुत कम, बहुत ही कम। और इस बार तो कह लें कि अगर अलिनो का इफेक्ट भी है तो 10% कम बारिश वैसे ही अनुमान जताया जा रहा है। आनंद आरा जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्या स्थिति रह सकती है आगे और कितना असर इसका होगा देश पर?
7: देखिए देश के
0: जब हम देश की बात करते हैं तो इकोनॉमी सीधे सीधे जुड़ जाती है इसमें।
7: सीधा वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप
0: जी।
7: डॉक्टर बेग ने भी और डॉक्टर गुरुदत्त जी ने भी बड़ा साफ साफ बताया है कि किस तरह का है, पर एक चीज जो मैं आई थिंक वो अब ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे कि जो एक हमारा एक वेदर कंडीशन होती थी, एक एरिया होता था जहां से 300, 400, 500 किलोमीटर तक एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा प्रेशर, एक जैसा सी ये सब होती थी। अब हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और उसकी वजह से जो हीट आइलैंड्स बच गए हैं, तो जो हमारा एक पुराना सिस्टम था जिसके बेसिस पे हम आज भी बात करते हैं वो बदल चुका है, और उसको अमल में लाने के लिए उसके ऊपर ध्यान रख के अब हमारे को आगे की प्रणाली का तैयार करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे कहा, 2-3 दफा कह चुका हूं, जो जलवायु परिवर्तन होना था वो हो चुका है और इस समय जलवायु की जो सारी प्रणाली है वो ध्वस्त हो चुकी है। अब इसके लिए बहुत सारे हमें स्टेप्स उठाने हैं और उसके लिए हर तरह का काम करना है। और जैसे अब हम देख रहे हैं, अभी डॉक्टर बेग ने कहा कि वहाँ पे बहुत बारिश हो सकती है हमारे हिल एरिया में, जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड तक, ये एरिया अगर यहाँ पे जितनी भी त्रासदी होगी मेरे हिसाब से वो मैन मेड है, वो हमने क्रिएट करी है। ये सारे पहाड़ एक तरह से इको सेंसिटिव जोन में आने चाहिए और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन और पेड़ कटाई पे बिल्कुल एक तरह से बैन लग लेना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले भी पूछा था,
0: ठीक है,
7: पर अनफॉर्चुनेटली हम उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर उसके लिए हमें ध्यान देना होगा। और इसके लिए एक बेस लाइन तो बनानी पड़ेगी न्यू नॉर्मल डिसाइड करके कि हमें क्या करना है, और उसकी वजह से जैसे आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको उसमें हमें बुनियादी बदलाव लाना होगा, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे, जब जैसे देखिए अब बहुत सा इसराइल है, इसराइल में 75% एरिया डेजर्ट है, पर जितना वो बनाते हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए और जितना वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं वो विश्वसनीय नहीं है जब तक कि आपको पूरा उसके बारे में पता ना हो।
0: बिल्कुल,
7: आप वहां देखे जाके तेल अवीव एयरपोर्ट पे देखिए कितने जंबो जेट्स कार्गो के तैयार हैं मटेरियल को ले जाने के लिए। वो क्यों है? क्योंकि उनको अपनी जितना पूरा उनका क्लाइमेटिक कंडीशन थी और जितना उनको उसको साइंटिफिकली उन्होंने उसको मॉनिटर करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज करी है, वहां पे ग्रीन हाउसेस आ गए हैं, वहां पे ड्रिप इरिगेशन हो रही है, और ऐसा नहीं है कि हम इस देश में ये काम नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वही है कि कदम उठाने की जरूरत है, ब्रेक लेना उससे पहले जल्दी से, जिसका जिक्र आपने किया था सर आनंद जी, आपने कहा था कि डॉक्टर गुफरान या गुरुदत्त जी दोनों में से कोई एक इसका जवाब दे सकता है। डॉक्टर गुफरान जल्दी से जवाब इसका रख दीजिए। सही बात है कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब 400-500 किलोमीटर तक बिल्कुल सेम टेम्परेचर रहा करता था, और आप अंदाजा लगा सकते थे, बहुत सारी चीजें आप उस हिसाब से निर्भर भी होती थी, खासतौर पर अगर हम खेती की बात करें, लेकिन अब फिलहाल ऐसा नहीं है।
5: मानसून की बारिश उसी को डिफाइन की जाती है। मानसून का, बारिश का और दूसरी बारिश में फर्क इतना ही था कि एक मूसलाधार एक टाइप की बिना किसी हवा चले पचासों सैकड़ों किलोमीटर तक जो है एक जैसी ही हवा बारिश हो रही है, इसीलिए पूरा देश के अंदर एक हिसाब से मानसून होता था, एक समय आता था जुलाई में और बराबर बारिश, और उसी हिसाब से सारे खेत के अंदर मॉइस्चर बनता था, गीले होते थे और फसलें बहुत अच्छी हुआ करती थी। यही जो रीजन है, यही क्लाइमेट चेंज ने एक अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है कि यूनिफॉर्म हम अब मौसम को भी नहीं रहने देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यही आप जैसा जिक्र भी कर रहे थे और गुरुदत्त जी भी, कि कट्स एंड पीसेस में कहीं कहीं कहीं ज्यादा बारिश हो रही है और कहीं बहुत कम। जैसा शुरुआत मैंने की थी कि सुबह से बादलों का डेरा है, दिल्ली में बादल बरस रहे हैं, हम ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन यहां पर फिलहाल बादल नहीं बरस रहे हैं। यही से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप रहिए हमारे साथ।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये मॉनसून भी कह रहा है कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्योंकि ब्रेक के बाद एक बार फिर से मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन कुछ एक ऐसे संशय जो कि क्लियर करना बात करना जरूरी है। 20 जुलाई है लेकिन फिर भी उतना सक्रिय नहीं है। हालांकि एल नीनो इफेक्ट कहा जा रहा है पूरे देश में, एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है कि इस बार 10% कम बारिश होगी, जो हुई भी है, जिसका डेटा मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि कहां कहां किस किस एरिया में कितनी कम बारिश हुई। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले डॉक्टर गुफरान आपके पास आना चाहूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम ये लाइन लिख रहे थे आज की ब्रेक के बाद मॉनसून फिर से लौटा, उसका एक बड़ा कारण सर ये भी कहा जा रहा था कि जो कन्वर्जन जोन है वो एक्टिव हुआ है, जो हम कह रहे हैं कि 7,000 से 10,000 किलोमीटर यानी भारत से लेकर जापान तक, जो एक तरीके से मॉनसून के लिए ट्रफ लाइन का काम करता है, यानी कि ट्रफ लाइन काफी सक्रिय हो गई। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ये लाइन क्या होती है, कन्वर्जन जोन क्या है, भारत में क्या इक्वली बारिश हो सकती है, ये दौर कितने दिन तक चल सकता है?
1: ये देखिए मैं बहुत संभल से बता दूं, नॉर्मली जो मानसून का जो सीजन होता है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ जो कन्वर्जन जोन उस पर आऊंगा मैं दोनों को कंपेरिजन करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि दक्षिणी पश्चिम मानसून होता है वो एक तरह से फ्लो होता है और वो कन्वर्जेंस बनता है कहीं आन के बहुत छोटे से एरिया के अंदर और बारिश होती है और वो पूरे इंडिया में फैल जाता है और इसलिए लगातार एक जैसी बारिश होती है। फिर थोड़ा सा मिड जैसे ही आप मानसून में आते हैं तो बे ऑफ बंगाल की तरफ की आती है, तो ये दो स्ट्रीम होती है नॉर्मली कि एक स्ट्रीम जो कि पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून बन के आई उसने पूरी जगह से फैल लिया लेकिन बहुत सीमित पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रही। एक ये स्ट्रीम आती है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आती है जो कि इधर साउथ ईस्ट की तरफ से आती है, तो ये दो स्ट्रीम होती हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो स्ट्रीम आती थी जो कि दक्षिणी पश्चिम की तरफ से आती थी वो स्ट्रीम तो करीब करीब एकदम बहुत वीक हो गई है, तो करीब नहीं के बराबर है। अभी जो नई स्ट्रीम आई है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से आई है लेकिन एल नीनो के चलते और जिस तरकीब से वो समुद्र उबल रहा है, यही कहना चाहिए, जिसका टेम्परेचर सुपर एलिनो हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ है वो भाप सी जो बनी है तो उसकी वजह से स्ट्रीम चारों तरफ से आ गई है, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, ऊपर से, नीचे से, जहां जहां समुद्र का चीजें मिली वहां से स्ट्रीम। तो दो स्ट्रीम एक साथ आने की जगह मल्टीपल स्ट्रीम एक साथ विंड्स की आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं तो लो प्रेशर एरिया बनना ही था, तो सारी स्ट्रीम जो है जब वो लो प्रेशर एरिया में, जिसको हम बोलते हैं जहां पर कि प्रेशर एरिया समानांतर हो जाता है, जहां पे ये सब चीजें मिल जाती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रफ, तो वहां ट्रफ बोले तो एक मतलब ये इस तरकीब का है कि जैसे एक पूरा प्लेन एरिया बन गया, एक जैसा एरिया बन गया, तो जब चारों तरफ से जो विंड सब जगह से आ रही थी वो जाके मिली इंस्टीट ऑफ दो स्ट्रीम, जबकि दसियों स्ट्रीम एक साथ मिल गई तो वो बहुत बड़ा घेरा बन गया। और यही एक अनयूजुअल है कि जब एक छोटा एरिया बनता है उसमें लो प्रेशर एरिया बनता है तो धीरे धीरे इक्वल वेटेज के साथ से, इक्वल विंड के साथ से, इक्वल स्पीड के साथ में बारिश होती है, लेकिन जब बहुत बड़ा एरिया बनता है, ये वैसे ही है जैसे कि बहुत बड़ा गुब्बारा जब होता है तो आप उसके अंदर जो कहीं भी छेद कर दो तो यहां पे मोटा बहुत ज्यादा हवा निकलेगी, यहां से कम निकलेगी, उसी तरकीब से जो ट्रफ बना है सब जगह से विंड्स आने की वजह से और बहुत बड़े एरिया में बना है, यही एक अनिश्चितता की स्थिति लाता है कि कहीं पे बिल्कुल जो है अगर फ्लो आ गया तो बारिश वहां पूरी तरह से इतनी पोर होगी कि वहां पर जो है क्लाउड बस जैसी सिचुएशन आ जाएगी, कहीं पे अगर वहां से निकल गया वो फ्लो और लो प्रेशर कहीं और बना, तो ये डिफरेंस हुआ है दोनों में। पहले सीमित क्षेत्र में बहुत कम जो फ्लो की विंड्स होती थी वो मिलती थी, ट्रफ बनाती थी, इक्वल स्पीड से बारिश होती थी। अब क्योंकि एलनीनो के चलते और सुपर एलनीनो के चलते बहुत तेजी के साथ में प्रशांत महासागर गर्म हुआ है, चारों तरफ से भाप बन गई थी, भाप बनने के कारण से जो ट्रफ का एरिया है वो बहुत बढ़ गया है, स्ट्रीम चारों तरफ से आ रही है, हाँ। और उसकी वजह से बहुत बड़ा गुब्बारा जो कि जापान से लेकर वहां तक बना है इंस्टीट्यूट ऑफ भारत के ऊपर, तो वो अनिश्चितता उसके बढ़ गई कि कहां कौन सी चीज फूट जाएगा वो गुब्बारा, तो वहां पर वो बुरी तरह से बारिश लाएगा और जहां नहीं है वहां पे सूखा,
0: वहां हो सकता है सूखा भी और वहां पर लोग तरसे भी। और अब वापस उसी बात को लेकर आता है, ठीक है मैं लौटती हूँ अब सुशील जी आपके पास आऊंगी, जिससे हम शुरुआत भी कर रहे थे। बहुत अच्छे से गुफरान जी ने समझा दिया कि ये क्या है ये टर्फ और कहां पर ये असर डाल सकता है? बहुत से इलाके ऐसे हैं जो सूखे से भी प्रभावित हो सकते हैं। सर, अगर पूरे देश की बात हम कर लें तो यहां पर देखिए, पूर्व और उत्तर पूर्व की बात करें तो -36 मतलब कि 36% कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम में बात करें तो 19% कम हुई है, मध्य भारत में 13% कम हुई है और दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें तो 26% कम बारिश, और ओवरऑल अगर अभी देखा जाए 23% कम बारिश इस साल भारत में अभी तक हुई है और इसके बाद भी अनसर्टेनिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
2: बिल्कुल नवजोत जी, इस समय मौसम की चरम परिस्थितियां चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही हो, कहीं पर बारिश हो रही है वहां उतनी बारिश नहीं होती थी, और हम कह सकते हैं कि आवर वर्ल्ड इज रीचिंग द टिपिंग पॉइंट बियॉन्ड विच क्लाइमेट चेंज में बिकम इरिवर्सिबल। अब क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट हैं वो हमें और आपको सीधे सीधे दिखाई देने लगे हैं। अब इसीलिए इट इज द टाइम ऑफ द आवर टू डिकोड द इंडियन चेंजिंग मानसून पैटर्न। अब ये तो वैज्ञानिकों को काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं और उसके पीछे के क्या क्या कारक हैं, जिसमें कि बहुत सारे कारक सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए। लेकिन हम और आप लोग छोटे छोटे बदलाव ला के, छोटे छोटे प्रयास करके, जैसे पूरी दुनिया में मानसून का जो बारिश का पैटर्न एक सा नहीं रहता है, कहीं बहुत कम बारिश होती, कहीं नदियों की उस प्रकार से सुलभ नहीं है, जैसे मान लीजिए सिंगापुर में उतना नहीं है मीठे पानी की नदियां, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तब भी वो पानी को बचाती हैं जो भी बारिश होती है। तो हमें अब सकारात्मक चीजों की तरफ जाना पड़ेगा कि जो हमारे सरकार के या जो गैर सरकारी संस्थानों के जो अभियान चल रहे हैं, जैसे मेरा गांव मेरा पानी एक अभियान है, या फिर बारिश के पानी को बचाने के लिए एक अभियान रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या उत्तर प्रदेश सरकार ने भूगर्भ जल को संचय करने और बढ़ाने का अभी 3 दिन पहले एक अभियान शुरू किया है, इसके अलावा जल संचय और जल भागीदारी, कई सारी राज्य सरकारों ने अमृत सरोवर जो खेतों में लोगों को सब्सिडी दी और उनको प्रोत्साहित किया कि जो बारिश का जो बहुमूल्य पानी गिरे, ये इस प्रेशियस वाटर को, पोर्टेबल वाटर की एक एक बूंद को कैच कर लो, इसको कैच कर लो, ऐसे ही जहां भी बारिश हो वहां पर उसको कैच कर लो। और मैं तो ज्यादा दूर क्यों जाऊं, आप नोएडा में हैं, दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी एक बहुत शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने दिल्ली के अंतर्गत आने वाले सीएम श्री स्कूल हैं जो उनमें 75 सीएमसी स्कूल में उन्होंने सोक पिट और पानी को बचाने के लिए जो हमारी परंपरागत तकनीक होती थी और मॉडर्न तकनीक को मिला के कुछ ऐसे वहां नवाचार के लिए प्रेरित किया स्कूलों को कि वो भविष्य में ऐसे देश के अलग अलग स्कूलों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। जैसे मैं कुछ आंकड़े बताऊं, जैसे दिल्ली में 775 मिलीमीटर बारिश होती है। अब अगर हम देखें को, अगर मेरा आपका घर 2500 स्क्वायर फीट का है, 2500 स्क्वायर फीट की अगर छत है, तो इससे पूरी बारिश जो होती है मानसून के दौरान आमतौर पर, तो उससे हर साल हम करीब 2,00,000 लीटर बारिश का पानी को हम संचय कर सकते, बचा सकते, उसको कैद कर सकते, और उससे 5 लोगों के परिवार का पूरे साल का पानी का बजट उसको मिल सकता है, चल सकता है। तो ये लोगों को, अब हमें आपको मौसम की चरम परिस्थितियों के अनुसार जीवन में बदलाव लाते हुए जीने के तरीके सिखाने की जरूरत पड़ रही है कि अब देखिए, अब जो कुछ भी है उसमें हमें कैसे एक एक प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से बचाना है। और साथ में जैसे किसान हैं, पहले खेत में पानी भर देते थे, तो अब ड्रिप इरीगेशन या टपक सिंचाई या माइक्रो इरीगेशन इसके माध्यम से भी वो अपनी फसलों को सींच सकते हैं, जिससे पानी को बचाया जा सकता है भविष्य में, जो भी पानी उनके अमृत सरोवर में जमा हो जाएगा बारिश के दौरान उसको वो साल भर ड्रिप इरीगेशन या इस प्रकार के जो नवाचार हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं। साथ में वैज्ञानिक भी अब लेफ्ट टू लैंड जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की पहल है और मिशन लाइफ के अंतर्गत कई सारे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, आम लोगों में, तो अब वैज्ञानिक भी जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की लगभग 38 लेबोरेटरी हैं, DIDO की लेबोरेटरी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लेबोरेटरी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वो वैज्ञानिक भी मिलके ऐसी फसलें, ऐसे ड्रॉट रजिस्टेंट उन्होंने सीड तैयार किए हैं कि भविष्य में हम देखेंगे कि हमारे किसानों की काफी हद तक ये जो बारिश से संबंधित, जो मानसून के बारिश पर आधारित, जो उनकी खेती संबंधी जो परेशानी है, कुछ हद तक सॉल्व हो पाने में शायद सहायक हो पाएगी।
0: आनंद जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात सुशील जी ने वाटर कंजर्वेशन की कही कि बारिश के पानी को सहेज कर रखना चाहिए। सर, अभी तक इसको अगर हम कहा जाए कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की जहां तक बात आती है, ठीक है, किसानों को आप एजुकेट करते हैं, किसान जाके इस बारे में और ज्यादा नॉलेज भी लेते हैं, क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि आम आदमी को भी इसके लिए एजुकेट किया जाए, हर किसी को, स्टूडेंट्स के लिए ये एक बाकायदा सब्जेक्ट होना चाहिए, हाउ टू सेव योर एनवायरमेंट?
3: बिल्कुल होना चाहिए। और जहां तक कि मेरा सवाल है, मैंने कई दफा काफी सारे स्कूल्स में लेक्चर्स दिए हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, और वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि भाई उनको सवाल ही नहीं ख़त्म होते बच्चों के। तो ये एजुकेशन तो होनी है, और इसके इसका कोई दो राय नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ों पे हमको बिल्कुल किसी तरह का जो हमारे करिकुलम है उसके अंदर वो है, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो एनवायरनमेंट तो एक तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 तक, मेरे हिसाब से, जैसा आपने कहा। और उसके अलावा सरकार को एक और चीज़ करनी चाहिए, जो अभी द्विवेदी जी कह रहे थे, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब आप 45% के

0: ऊपर ही खेती डिपेंडेंट होती है, वो एक उस पे जा सकती है। और ये काम हमें जब तक हम 25-30% बरसात को कंट्रोल नहीं कर, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, हम ये कर नहीं पाएंगे। तो इसको करने, और इसमें जितनी भी कनाल सिस्टम्स बने वो कच्चे बनने चाहिए, सीमेंटेड नहीं होने चाहिए, जिससे जो पानी है नीचे परकुलेट करे और जो हमारे एक्वीफर्स हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर है एक तरह से, वो सारा का सारा रिचार्ज होता रहे। और इसी के लिए कोई आज 15 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को लड़ाई करते हुए, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, कि वेटलैंड्स को हम क्यों नहीं बचा रहे। नए नए सरोवर तो बनाएंगे पर क्यों, जब हमारे पास 8 लाख के करीब वेटलैंड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो पहले सबसे पहले उनको हमें प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है। और जैसा कि द्विवेदी जी ने भी कहा कि एक हेक्टेयर में आप 30 लाख लीटर पानी आपका अंडरग्राउंड रिचार्ज हो सकता है।
1: जी
0: अब इमेजिन कर लीजिए कितना बड़ा रिसोर्स है, अगर इसको फाइनेंशियल टर्म्स में करूं तो ये बैठता है कोई 67 लाख करोड़ रुपए हर साल। इमेजिन करिए इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना कुछ हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: और इसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है, अभी आज की डेट में भी हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको ठीक से करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ये काम, दो काम तो हमें करने ही पड़ेंगे कि जो बरसात आ रही है उसका 15-20-25 से 25-30% हमें उसका पानी अब्जॉर्ब करना है।
1: जी
0: अब वो आप वेटलैंड के थ्रू कर सकते हैं, आप नहर बना के कर सकते हैं, आप डैम मैनेजमेंट से कर सकते हैं, आज की डेट में बहुत सारी चीजें हो सकती है। और जो आपका बेसिक सवाल था, इसके बारे में हर हर सिटीजन, जो हमारा नागरिक है, उसको यह पता होना चाहिए कि बिना पर्यावरण के जिंदगी है ही नहीं।
1: बिल्कुल अपनी तरफ से ही शुरुआत करनी होगी। डॉक्टर गुफरान, अब आपके पास आना चाहूंगी। सर, जब हम मलिनों के इफेक्ट की बात करते हैं, हम केवल भारत ही नहीं, अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए, इक्वेडोर, पेरू, मैक्सिको और यूरोप में भी क्या स्थिति हो रही है वो भी हम देख रहे हैं। क्या ये सब मलिनों का इफेक्ट है?
2: देखिए, ये एक चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जब साउथ एशियन रीजन के अंदर ये एलिनो, जो कि एक खराब स्थिति मानी जाती है, यानी कि डेफिसिट मानसून होता है, अमेरिका और उस साइड के कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो एक अच्छी चीज मानी जाती है। वहां पर जो है ज्यादा बारिश, ज्यादा एक्सट्रीम, लेकिन एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे डिफिसिट रेनफॉल से जोड़ा जाता है, वहां से एक्सेस रेनफॉल पे जोड़ा जाता है, तो उल्टा हिसाब है कि यहाँ से जो गर्म हवाएं वो हवाएं इधर चलती हैं, इधर की तरफ आती है, मॉइस्चर बनता है और डेफिसिट होता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जैसा आपने बोला कि टोटल ओवरऑल रेनफॉल जो है अपने इंडिया में करीब 870 mm के आसपास होता है, 870-880,
1: हाँ,
2: 23% अभी भी डिफिसिट है।
1: कम है।
2: लेकिन एक और जो है, जनता आपको न्यूज़पेपर सब जगह पढ़ रही है कि 60% डिस्ट्रिक्ट में डिफिसिट रेनफॉल है, तो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई 23 सही है या 60% सही है, दोनों सही है। अब आप ये देखिएगा, जब एवरेज आप लेंगे तो कहां पर एक्सेस, जहां बहुत ज्यादा बारिश हो गई है उसका, और जहां बारिश नहीं हुई है सबका पूरा एवरेज होके 23% होगा, कहीं पर बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल 5 टाइम्स ज्यादा हो गई, तो एवरेज निकल के आपको 23% ही दिखेगा। लेकिन अगर आप और ढीले में जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे डिटेल में कि 60% डिस्ट्रिक्ट अभी भी इंडिया की जो है वो डेफिसिट है। तो वो समय अभी चला गया जबकि भारत मौसम विज्ञान का जो संस्था है वो दिया करती थी ओवरऑल परसेंटेज में कि इतना डेफिसिट है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहा। जबकि ये जब एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, अभी हमको बहुत शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट करना है, जो कि इस बार आई थिंक जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उनके मॉडल्स ने और IMD ने शुरुआत करी है, हम लोगों को वो देखना पड़ेगा और उससे हमारी जो दुविधा है और उससे हमारी जो है वो पूरी तरह से क्लियर होके आएगी, ना कि ओवरऑल एवरेज को निकाला जाए।
1: कुछ ऐसे अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें सर, जिसका जिक्र हम लगातार कर ही रहे, देखिए आपने भी बताया कि बहुत से इलाके, जहां मैदानी इलाकों को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, अब वहां की तो तस्वीरें भी आ रही कि किस हद तक बारिश हो रही है, और बहुत समय से पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें वहां पर भी अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन वहीं अगर हम बात मैदानी इलाकों की करें वहां अभी भी मॉनसून का इंतजार हो रहा है।
2: दोनों का एवरेज ले लिया, बिल्कुल नॉर्मल रेनफॉल हो गया, ये एक दुविधा होती है।

0: जो कि हम इल्यूजन में रहते हैं कि अरे भाई हमारा तो बिल्कुल नॉर्मल रेनफॉल है, नॉर्मल रेनफॉल नहीं है, यहाँ पे भी मुसीबत वहां पे भी मुसीबत, वहां एक्सेस हुआ यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं।
1: वही बात है।
0: और
1: और
0: यही
1: हाँ हाँ सर, अपनी बात
0: तो
1: पूरी
0: यही
1: कीजिए।
0: यही यही कारण है कि अभी जो मुझे सबसे ज्यादा उसमें लग रही है कि अभी जो नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जो दूसरा आया है बे ऑफ बंगाल की तरफ से, वहां पे हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल का बताया गया है। और अभी जैसे कि हमारे पैनलिस्ट दूसरे ने बताया कि वहां पर जो भी अभी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी एक्टिविटी चल रही है उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर के अंदर, अगर वहां पर वही स्थिति बनी रही तो पिछले कई सालों में हमने बहुत दुविधा देखी है केदारनाथ और उस साइड में, लेकिन ऐसी सिचुएशन ना आए मेरा तो यही
1: बिल्कुल। तो
0: प्रार्थना रहे
1: ये
0: कि
1: जो आप बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि अब ये मॉनसून के लिए संजीवनी हो सकता है आगे?
0: मौसम के लिए संजीवनी हो सकता है, ये ओवरऑल एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, लेकिन अगर ये संजीवनी इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर इतना ज्यादा रेनफॉल हो गया कि वो क्लाउड ब्रेक टाइप हो गया, तो वो संजीवनी जो है फिर
1: यानी अभी भी अनएक्सपेक्टेड है। हम कह सकते हैं कि बारिश तो
0: अनएक्सपेक्टेड बड़ा
1: होगी,
0: मामला।
1: लेकिन क्या वाकई इवन बारिश होगी या वही अनइवन पैचेस में होगी, इसके बारे
0: बस
1: में कुछ
0: बस
1: नहीं कहा जा सकता। इफेक्ट चाहे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर ले, जिसका असर बिल्कुल अलनीनो पर पड़ा है, और सुपर अलनीनो के दौर से तो हम गुजर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: क्या व्रत और उपवास रखकर मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कौन से व्रत और उपवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और व्रत उपवास रखने के नियम क्या हैं? जानिए व्रत और उपवास का महत्व सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
2: Where did you see all this?
1: Online at APGE.com.
2: Watson, you're always so plugged in.
3: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
4: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
5: La Que Buena.
4: ESPN Radio.
6: We know LeBron has to be the best player on the planet to get
4: The Daily.
7: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: Today.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद एक बार फिर से विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। एक्स्ट्रा टाइम में टॉरेस ने गोल की मदद से स्पेन ने फाइनल में जीत हासिल की।
13: मौका जीत का है, जश्न का है, जज्बातों में बह जाने का है। जिस ट्रॉफी को चूमने का सपना लिए सब जुटे थे, उसे आखिरकार चूम लेने का सुकून इन चेहरों पर साफ झलक रहा है। 16 साल लग गए वापस ट्रॉफी थामने में, लेकिन लौटे तो ऐसे जैसे फुटबॉल का ताज पहनने की ठान रखी हो। फीफा वर्ल्ड कप का पूरा मुकाबला देखिए, शान से ट्रॉफी उठाई है स्पेन ने। स्पेन ने इस बार अपने अभियान का आगाज केप वर्डे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से किया था। इसके बाद स्पेन ने लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और फिर सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया और अब फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर मेसी से फुटबॉल का ताज छीन लिया। इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया और फिर फाइनल में भी उसकी किलाबंदी इतनी ताकतवर साबित हुई कि मेसी समेत अर्जेंटीना के तमाम सितारे गोल करना तो दूर, अटैक तक करने को तरस गए। उधर स्पेन लगातार आक्रामक होता जा रहा था। पहले और दूसरे हाफ में उसने कई शानदार अटैक भी किए, लेकिन हर बार अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव करते हुए नतीजे को एक्स्ट्रा टाइम तक धकेल दिया। लेकिन स्पेन तो मानो ट्रॉफी चूमने की जिद लेकर मुकाबले में उतरा था। वो एक लम्हा रोमांच से भर देने वाला था जब 106वें मिनट में टोरेस ने इस पावरफुल लेफ्ट फुटर के जरिए गोल कर सनसनी मचा दी। जीत के इस गोल के साथ ही स्पेन के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जश्न का माहौल मैदान के भीतर भी था और बाहर भी। खिलाड़ियों की तस्वीरें, बैनर, पोस्टर, स्पेन के झंडे जिसके पास जो था उसी के साथ सड़कों पर उतर आए, नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या व्रत और उपवास रखकर मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कौन से व्रत और उपवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और व्रत उपवास रखने के नियम क्या हैं? जानिए व्रत और उपवास का महत्व सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। मानसूनी बयार और फुहारों के बीच जारी है पुरी की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा। श्री मंदिर से भाई बहन के साथ निकले महाप्रभु अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां पर आज निभाई जाने वाली हेरा पंचमी क्या है, क्यों मनाई जाती है, रथ यात्रा कैसे कई और पहलुओं और उसकी रौनक भी आपको दिखाएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, केवल ओडिशा के पुरी ही नहीं बल्कि दिल्ली समेत देश के कई और शहरों में भी पुरी जैसी ही भव्य रथ यात्रा निकाली गई है। भक्तिभाव और उल्लास के बीच भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकली है, तो आज धर्म आस्था और संस्कृति की चाशनी में डूबी इन रथ यात्राओं की छटा आपको दिखाएंगे।
3: नमस्कार, महेश गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। देश में दोबारा से मॉनसून एक्टिव हो गया है, तो बारिश का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली NCR में बादलों की आवाजाही ही लगी है, लेकिन और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वी आर गेटिंग इम्पेशेंट। अब देश के ज्यादातर हिस्सों में आज से 24-25 जुलाई तक बारिश वाला मौसम रहने के आसार हैं, तो गुड न्यूज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आपको अब दिखती रहेंगी।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। 23 जुलाई को रिलीज हो रही जना नायकम की एडवांस बुकिंग का क्रेज ऐसा है कि फिल्म की प्रीमियम टिकट का रेट 2,500 रुपए तक पहुंच चुका है। तो वहीं हॉलीवुड फिल्म द ओडिसी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कैसा धमाल मचा रही है, इनकी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
4: पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच NDRF, SDRF और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारी बारिश के चलते आज दूसरे दिन भी स्थगित रही अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह। पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।

0: चाय पर चर्चा की शुरुआत जय जगन्नाथ के साथ। जी हाँ, आपको जैसा कि पता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पुरी में इस वक्त जगन्नाथ रथ यात्रा पहुंचा हुआ है। कहाँ? गुंडिचा मंदिर, मौसी के घर यहाँ पर, और इसलिए जन सैलाब पूरा का पूरा मौसी के घर पर ही वहां पहुंचा हुआ है। माता लक्ष्मी वहां पहुंची हुई है। आपको बता दें कि जगत के नाथ इस वक्त चूंकि वहां पधारे हैं और रोज वहां अनुष्ठान हो रहे हैं, नए नए भोग लगाए जा रहे हैं। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि रथ यात्रा में कई परंपराएं निभाई जाती है और आज जो परंपरा निभाई जा रही है वो है हेरा पंचमी की। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी देखिए जुड़ी हुई है। हमारे सनातन में जितने भी कहानियां हैं, जितने भी देखिए इस तरह के जो उत्सव मनाए जाते हैं, इसमें न सिर्फ हम सिर्फ उत्सव मनाते हैं शगुफ्ता, बल्कि इन सब के पीछे इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो आज के जेंजी भी आप भी जानना चाहेंगे। नहीं
1: बिल्कुल,
0: आपको इंटरेस्ट है हेरा पंचमी क्या है जानने का?
1: मुझे तो जितनी भी ऐसी चीजें होती है मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है। प्लस उसका नाम इतना अलग है कि आप सोचेंगे ना कि उसकी परंपरा क्या रही होगी, इतने समय से चली आ रही है। और फिर ये जो त्योहार की तरह इसे मनाया जाता है जहां पर रथ यात्रा निकलती है, अभी इनफैक्ट हमारे आसपास के मंदिरों में भी रथ यात्रा निकल रही थी, तो हम वो कनेक्ट कर सकते हैं इमोशन।
2: नहीं वो देखिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आजकल ना हर जगह पर, दिल्ली नोएडा में भी, क्योंकि लोग पूरे देश से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। इनफैक्ट मैंने भी कल देखा, हमारी सोसाइटी में भी कल रथ यात्रा निकली थी, तो लोग एक तरीके से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं।
3: आजकल की जनरेशन के लिए मुझे लगता है ये जानना और समझना ज्यादा जरूरी है कि क्या चीजें,
2: जैसे हम देखते हैं दुर्गा पूजा भी यहाँ होती है, हर एक फेस्टिवल आजकल
3: यहाँ पर आपको मिल जाए। वैसे रंग अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो आपको आई थिंक सैड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी वैसे रंग आपको दिख जाएंगे।
0: और वैसे रंग अगर आप यहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं तो जीएनटी पर आ जाइए, गुड न्यूज टुडे आपको सारे रंग बताता है पूरी कहानी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ। तो हेरा पंचमी है शगुफ्ता, आगे बताइए आज क्या क्या लोगों को जानने को मिलेगा।
1: बिल्कुल, देखिए एक तो मौसी के घर जाके इतनी सेवा हो रही है भगवान की, निकलने का नहीं ले रहे हैं, तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। अभी भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में रुके हुए हैं। ऐसे में हेरा पंचमी परंपरा के तहत ही मां लक्ष्मी श्री मंदिर से पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर आती हैं और भगवान जगन्नाथ से अपनी नाराजगी बयां करती हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हेरा पंचमी की परंपरा निभाने के पीछे की ये कहानी क्या है।

0: भक्ति का समागम, उत्सव का उल्लास और महाप्रभु से मिलने का सौभाग्य। पुरी में इन दिनों आस्था का महापर्व भक्ति से सराबोर रंगों से खिल उठा है। हर तरफ भगवान जगन्नाथ के जयकारे हैं। देश और दुनिया से लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों से भगवान के महामिलन के पर्व में अब भक्तों का अद्भुत उत्साह दिख रहा है। रथ यात्रा का आज पांचवा दिन है। पिछले पांच दिनों से भगवान गुंडीचा मंदिर में विराजमान है। श्री मंदिर से बाहर निकलकर भगवान खुद भक्तों के बीच पहुंचते हैं। रथ यात्रा के इस पर्व का हर एक दिन भगवान जगन्नाथ के प्रति अनंत आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसमें से भी पांचवा दिन खास महत्व रखता है। पांचवें दिन यहाँ हेरा पंचमी की परंपरा निभाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं, तो पीछे माता लक्ष्मी अकेली रह जाती हैं। देवी लक्ष्मी को मुख्य श्री मंदिर से भव्य जुलूस और गाजे बाजे के साथ पालकी में बिठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। देवी लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ से अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं। भगवान उन्हें जल्द वापस आने का आश्वासन देते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी का गुस्सा शांत नहीं होता। नाराजगी में माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के रथ यानी नंदी घोष के आगे का एक हिस्सा तोड़ देती है। इसके बाद भगवान उन्हें मनाते हैं और वे वापस अपने मुख्य मंदिर लौट जाती हैं। हेरा पंचमी की इसी लीला को हेरा गोहा लीला भी कहा जाता है। हेरा पंचमी एक ऐसा उत्सव है जहां प्रेम, नाराजगी और मनुहार का अद्भुत संगम होता है, जिसे देखने दूर दूर से भक्त दौड़े चले आते हैं। ये परंपरा भक्तों को भगवान के मानवीय रिश्तों से जोड़ती है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम और नाराजगी की एक मनमोहक गाथा है। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का प्रवास कुछ ऐसा है मानो राजा सिंहासन से उतरकर प्रजा के संग बैठ गए हों। कहते हैं भगवान अपने भक्तों को मुख्य मंदिर की अपेक्षा गुंडीचा मंदिर में बेहद करीब से दर्शन देते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में इस वक्त उत्साह का माहौल है, आस्था चरम पर है और श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। हर किसी की मनोकामना है कि बस किसी तरह भगवान के दर्शन हो जाए, और इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम कर रखे हैं ताकि किसी भी भक्त को भगवान से मिलने में कोई दिक्कत ना हो।
1: टेंपल का सेक्टर वाइज डेवलपमेंट है, लोगों को बेसिकली डिसिप्लिन श्रृंखलित एंड टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लोइंग और प्रिवेंट जंपिंग फ्रॉम द बैरिकेड, वो सब करके हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली वी हैव ब्रीफ्ड आवर पुलिसमैन टू फैसिलिटेट द दर्शन, डिवोटी को अच्छा बिहेव करके उनको एक धाड़ी में जो है क्यू में करके एक श्रृंखलित दर्शन करने के लिए उनको ब्रीफिंग किया गया है। एंड अभी श्रृंखलित दर्शन महाप्रभु का चल रहा है आडप मंडप में। ट्रैफिक अरेंजमेंट जो फ्रॉम भुवनेश्वर साइड, फ्रॉम ब्रह्मगिरी साइड, फ्रॉम कोणार्क साइड जो सिटी में एंटर कर रहा है, उसका ट्रैफिक के लिए हमने मालतीपाटपुर देन तालाबनिया एंड समांग एरिया में हमने ट्रैफिक का जो डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस किया हुआ है वहाँ रख के भक्त लोग आके गुंडीचा टेम्पल पे दर्शन कर सकते हैं।
0: फिलहाल भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी के घर प्रवास कर रहे हैं। यहाँ वो 7 दिनों तक रहेंगे और इन 7 दिनों के प्रवास के दौरान कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में पितरों का पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाने का विशेष महत्व है।
2: ये जो आड़प मंडप है, जगन्नाथ महाप्रभु जब यहाँ के रत्न सिंहासन में विराजमान करते हैं गुंडीचा वाड़ी में, तब यहाँ एक ब्राह्मण को, एक व्यक्ति को अगर भोजन करवा के दक्षिणा दिए तो वहाँ पे 1000 व्यक्ति को देने के बराबर फल मिलता है। यहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं दशरथ जी के लिए और गुंडीचा रानी के लिए और इंद्रदुम्न के लिए यहाँ पे श्राद्ध किए थे, और यहाँ उनके याद में ये गुंडीचा मंदिर बनाकर यहाँ पे 9 दिन की यात्रा करते हैं और सारे जगत का कल्याण करते हैं।
0: पांचवें दिन से ही एक और परंपरा की शुरुआत होती है, इसे दक्षिण मोड़ा कहते हैं। इस प्रक्रिया में वापसी यात्रा के लिए रथों को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ा जाता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हालांकि तस्वीरें हम पुरी की दिखा रहे हैं, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि रथ यात्रा आजकल हर जगह पर निकलती है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन टेम्पल में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। भगवान के रथ को मंदिर परिसर के चारों तरफ घुमाया गया और इस दौरान हर जगह पर भक्तों ने रथ यात्रा का स्वागत किया। भगवान को मिठाइयों और फलों का भोग लगाया गया। रथ यात्रा के साथ भक्त भजन कीर्तन करते नजर आए।

0: जमुना यात्रा जारी है और इस तरीके आज जमुना यात्रा के चौथे दिन आइकॉन मंदिर में भी रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्त जो है वो यहाँ पर खींच रहे हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रथ यात्रा यहाँ पर शुरू हो गई है और देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। आज जगन्नाथ रथ यात्रा का चौथा दिन है और चौथे दिन ईस्ट ऑफ कैलाश में ये यात्रा निकाली गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है और रथ को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रथ को सुंदर खूबसूरत सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देखेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बता दें आज जगन्नाथ रथ यात्रा का चौथा दिन है और चौथे दिन बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आइकॉन मंदिर में शामिल हो रहे हैं जगन्नाथ यात्रा में। आप देख सकते हैं जो यात्रा है वो चल चुकी है और लोग जो रथ को खींच रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी खींचा जा रहा है और लोग रथ यात्रा चल रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भगवान के रथ को लोग खींच रहे हैं और रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं रथ यात्रा चल रही है और भक्त जो हैं वो बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो रहे हैं। ये जो रथ यात्रा है वो आपका आइकॉन मंदिर के कैंपस में निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो शामिल हो रही हैं। रथ यात्रा पूरा मंदिर कैंपस में निकाली जा रही है और नाचते झूमते भक्त जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं और उत्साहपूर्वक इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं।
1: देखिए, दिल्ली के साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा देश के दूसरे शहरों में भी बड़े भक्ति भाव के साथ निकाली गई। यहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने रास्ते भर झाड़ू लगाते हुए पीछे चल रहे महाप्रभु के रथ को खींचा और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मांगा।
2: बिल्कुल, आपको बता दें कि इन शहरों में भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने, उनका आशीर्वाद लेने सड़कों पर दूर दूर तक भक्तों की लंबी कतार देखी गई। दिल में बसी यही इच्छा कि महाप्रभु उनके हर कष्ट और पीड़ा को हर लें।
3: पूरे देश में जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक बिखरी हुई है। ऐसे में सामूहिकता में चलते, झूमते, नाचते, गाते श्रद्धालु भी उसी रथ यात्रा का हिस्सा बने हैं, जिसमें महाप्रभु अपने भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ सजे धजे रथ पर विराजमान हैं। तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की है, जहां खिलचीपुर नगर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा पूरे श्रद्धा, उत्साह और भक्तिभाव के बीच निकाली गयी। रंग बिरंगे फूलों और झालरों से सजाए गए रथ को खींचने, उसे छूने भर की होड़ हर किसी आस्थावान की रही। रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को 56 भोग भी अर्पित किया गया। उनकी पूजा अर्चना की गई और रथ के आगे झाड़ू लगाकर फिर रथ को खींचा गया। ये रथ यात्रा शहर में जहाँ जहाँ से निकली, श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए झूमते हुए आगे बढ़ते रहे। जगह जगह रथ यात्रा का फूल बरसाकर भी स्वागत हुआ। जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम बिहार के मुजफ्फरपुर में भी नजर आई। आस्था और भक्ति का अनोखा संगम मुजफ्फरपुर की इस रथ यात्रा में भी साफ झलका। स्कॉन टेम्पल की ओर से निकाली गई महाप्रभु की ये यात्रा पूरी भव्यता दिए हुए थी। करीब 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जब विराजमान हुए तो हरे कृष्ण हरे राम के जय घोष के बीच करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। कोलकाता और पटना से मंगाए गए हाइड्रोलिक रथ को रंग बिरंगे फूलों से सजाकर इन पर भगवान को विराजित कराया गया। वहीं इस ऐतिहासिक रथ यात्रा में सामूहिकता का संदेश देने पहुंचे लोगों की आस्था और उनकी भक्ति का कोई ओर छोर ही नहीं था। बिहार के बेगूसराय में भी लोग बाग भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के रंगों में रंगे दिखे। हजारों की संख्या में यहां महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर झूमते हुए रथ यात्रा का हिस्सा बने। ये भव्य रथ यात्रा शहर के महिला कॉलेज रोड स्थित सरयू सदन से शुरू हुई। महाप्रभु की इस रथ यात्रा का जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। इसी दौरान संकीर्तन मंडली भी रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण रही, जिसने पारंपरिक वाद्य यंत्र मृदंग और झांझ की धाप पर पूरे शहर को गुंजायमान कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में तो पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यहां भी आस्था संस्कृति और परंपरा की जो अद्भुत तस्वीर उभरी वो देखते ही बन रही थी। यहां 31 फीट ऊंचे और करीब 5 टन वजनी रथ पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा विराजमान हुए तो हजारों श्रद्धालुओं के हरे कृष्ण जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो उठा। इस रथ में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक शिल्प कला का अद्भुत मेल रखा गया, यानी फ्रंट व्हील ड्राइव, स्टीयरिंग, मैनुअल ब्रेक और एडजस्टेबल शिखर जैसी आधुनिक तकनीक के साथ जब रथ को सजाया संवारा गया तो रथ खींचने आए आस्थावानों ने अकोला में भी एक नई परंपरा की शुरुआत की। फिलहाल तो देश के इन शहरों से आई ये खूबसूरत और भक्तिमय तस्वीरें पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा का ही एहसास दे रही हैं। धर्म और संस्कृति के रंगों से सराबोर ये तस्वीरें दर्शाने के लिए काफी हैं कि पुरी की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा अब पूरे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी बन रही है। अकोला से धनंजय साबले, बेगूसराय से सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा और राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। बरसात का मौसम है, ऐसे में यात्रियों को पूरी देखभाल के साथ यात्रा करने की हिदायत दी जा रही है ताकि उनकी यात्रा का अनुभव अच्छा रहे। लेकिन ऐसे में एक विकल्प भी बस तैयार होने को है जिसके जरिए खास तौर से चारधाम यात्रा यात्रियों के लिए और ज्यादा सुरक्षित और सुगम बन सके।
4: दरअसल रुद्रप्रयाग जिले में टनल और पुल बनाने का काम पूरा होने की बेहद करीब पहुंच गया है, जिसके जरिए ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ा जा रहा है। यानी कि अब उम्मीद है कि तीर्थ यात्रियों को जाम से छुटकारा तो मिलेगा, साथ ही साथ सफर भी समय से पहले पूरा होगा।

0: उत्तराखंड में चारधाम तीर्थयात्रियों का सफर और आसान होने वाला है। जल्द ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के रास्ते आपस में जुड़ने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के दुर्गम पहाड़ों में बनी ये 900 मीटर लंबी टनल चारधाम यात्रियों के लिए वरदान बनने जा रही है। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने की जिस परियोजना पर काम चल रहा है उसमें ये टनल इतिहास रचने जा रही है। दोनों हाईवे को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर पुल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 200 मीटर लंबा ये पुल अगस्त में पूरा हो जाएगा। पुल बनने के बाद चारधाम यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तक रुद्रप्रयाग बाजार में बद्रीनाथ हाईवे बेहद सकड़ा होने से आए दिन घंटों जाम लगता है, लेकिन अब टनल और पुल बनने के बाद तीर्थयात्री रुद्रप्रयाग बाजार से न होकर सीधे जवारी बाईपास होते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए आगे की यात्रा कर सकेंगे।
1: श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम को जाने वाली सड़कें हैं जो हाईवे वो आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं शहर के भीतर जो ट्रैफिक लगता है वो ट्रैफिक नहीं लगेगा। और चूंकि दोनों रोड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इनका आपस में जुड़ना काफी इम्पोर्टेंट होगा तीर्थयात्रियों के सुविधा के दृष्टिगत पर।
0: प्रशासन के मुताबिक 31 अगस्त से इस परियोजना का ट्रायल शुरू किया जाएगा। चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मॉनसून के दौरान परियोजना के पूरा होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तीर्थयात्रियों को जाम से छुटकारा मिलने के साथ ही सफर का समय भी बचेगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: थोड़ा हटके खबर है, एक शख्स का तोता खो गया था, वापस मिल गया, लेकिन उसे 40,000 रुपए देने पड़े।
3: फिरौती तोते की
4: किडनैपिंग हुई, मतलब इंसान की किडनैपिंग तो हमने सुनी देखी और मतलब फिल्मों में भी हमने देखी इतनी कहानियां, लेकिन तोते की किडनैपिंग सुनी है आप लोगों ने?
3: मुझे तो नहीं जानना उस तोते में इतना क्या खास था
5: कि उसके लिए पालतू होता था उसका।
3: पहली बार ऐसा सुना है ना इंसानों की, तो कोई
4: नहीं, मान लीजिए आपका कोई पेट हो वो आपका बहुत प्यारा हो सकता है, तो अगर उसको कोई चुरा ले तो फिर आप तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो खबर आई है ये उसी से जुड़ी हुई है, जिस तोते आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे, उस तोते का नाम दरअसल माऊ है जो बीते 6 दिन से लापता था। ये देखिए यही है वो माऊ जिसकी तलाशी के लिए होर्डिंग लगाई गई थी और खोजने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी तोते के मालिक सुनील कुमार ने किया था। उन्होंने बताया कि इनाम पाने के लिए कई लोगों ने अपने अपने तोते के वीडियो भी भेजे थे, लेकिन रविवार को कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक अनजान शख्स ने फोन करके कहा कि माऊ उसके पास है, अगर उसे वापस लेना है तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। उस शख्स ने वीडियो कॉल कर माऊ को दिखाया और फिर एक तय जगह पर 40,000 रुपए लेकर आने को कहा। उस शख्स ने इस बारे में किसी से कुछ ना कहने की भी धमकी दी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने देखा होगा गुंडे बदमाशों को अगर वो किसी को किडनैप करते हैं और जो जो गाइडलाइंस देते हैं, ठीक इस तोते के लिए वही सब हुआ। तो तोते के मालिक ने उस शख्स को 40,000 रुपए दिए। जब वो तोता लौट कर आया तो उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। बहरहाल तोते को वापस पाकर तोते का मालिक बेहद खुश है, परिवार के लोग भी खुश हैं।
6: अच्छा बोल के दिखा दो।
7: तो मैंने देखा और मैंने इसकी पहचान करी कि ये हमारा ही माऊ। फिर उन्होंने हमें इंडस्ट्रियल एरिया में बुलाया, हम वहीं पे गए जो उन्होंने लोकेशन दी, वहां पे उन्होंने इनाम की धनराशि हमसे ली। गिनने के बाद में उन्होंने हमारा माऊ हमें दे दिया। वो एक इतनी छोटे पिंजरे में था जो शायद ही ढंग से घूम भी नहीं पा रहा। जब हम वहां से उसे लेके आए, हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए, हमने डॉक्टर से इसका कुछ चेकअप कराया। डॉक्टर ने बताया कि इसके पैर काफी कमजोर हो चुके हैं और इसकी गर्दन भी थोड़ी सी सूखी हुई है, तो शायद ही हफ्ते 15 दिन में सही हो पाएगा।
2: तो देखिए अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, आगे देखिए दोबारा आते हुए मॉनसून की तस्वीरें।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports. This is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
18: पुरी में हीरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज। भारी बारिश के चलते आज दूसरे दिन भी स्थगित रही अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह। पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतारें। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, 4 साल से 60 साल की उम्र वालों को लगेंगी 2 डोज, टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
4: आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया भाई, जिसका इंतजार था वो फिर से हो गया है। पूरे देश में देखिए बारिश का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो गया। आसमान में बादलों का डेरा नजर आ रहा है, मैदानी इलाकों में कहीं कहीं छिटपुट बरसात भी हो रही है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में तो तेज बारिश का दौर चल रहा है।
2: और देखिए दिल्ली एनसीआर में भी मौसम अगले कुछ दिनों तक बारिश की वजह से सुहावना रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जबकि पूरे देश में 24-25 जुलाई तक बारिश वाला मौसम रहने का अनुमान है। केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा भी बारिश की वजह से स्थगित कर दी गई है।

0: झमाझम बारिश की मेहरबानी देश के कई इलाकों में हो रही है। दिल्ली NCR में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है, तो मैदानी राज्यों के कई इलाकों में मानसूनी वर्षा बड़ी राहत लेकर आई है, जबकि पहाड़ी राज्यों में लगातार बरसात हो रही है। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोर शोर से बदरा बरस रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर भारत में मानसूनी बारिश से ठंड का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। चंडीगढ़ में बारिश राहत बनकर आई है। सुबह से हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली है। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। सुबह हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहां बारिश का इंतजार ही हो रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 20 जुलाई से मौसम बदलेगा और बारिश देखने को मिलेगी, जो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली NCR के आसमान में बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कभी भी वो बरस सकते हैं। मंगलवार और बुधवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
1: आज भी जो है मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है ज्यादातर क्षेत्रों में दिल्ली के, कल भी मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है और कुछ स्थानों पर हैवी रेनफॉल का भी अलर्ट जो दिल्ली के लिए जारी किया गया है। तो हम देखेंगे तो वर्षा गतिविधि बढ़ेगी, जब वर्षा गतिविधि बढ़ेगी तो साथ साथ में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट देखी जाएगी। कल 36 से 38 डिग्री के आसपास जो अधिकतम तापमान थे, हमारा अनुमान ये कि 3-4 दिन के बाद में ये 32 डिग्री के आसपास आने की संभावना है, जो सामान्य से कम हो जाएंगे।
0: जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल में जमकर बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की एक्टिविटी बढ़ने से बारिश का सिलसिला 24 से 25 जुलाई तक यूं ही जारी रहेगा।
1: मानसून की अभी फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं, जिससे उत्तर पश्चिम भारत, उसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है। और हमारा अनुमान यही है, पूर्व अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप में भी रेड अलर्ट जो है।
0: दरअसल मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया था कि मॉनसून एक बार फिर से 20 जुलाई के आसपास सक्रिय होगा और संभावना है कि 25 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। 23 जुलाई तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में बारिश होगी। 22 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान और 25 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई तक बारिश की उम्मीद है और गोवा में पूरे हफ्ते बारिश का दौर दिखेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में 25 जुलाई तक बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। असम, मेघालय में 25 जुलाई तक बारिश हो सकती है।
1: देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर मुख्य रूप से मेघालय में और असम में भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। मेघालय में अत्यधिक भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। नागालैंड में कई दिनों से लगातार वर्षा चल रही है, आज भी वहाँ वेरी हैवी यानी बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है रेड अलर्ट साथ में। तो अब देखेंगे पूरे बेल्ट में जो है रेड अलर्ट की जो है चेतावनी जारी की गई है।
0: देश के 60-70% इलाकों में बादलों ने डेरा जमा लिया है, इसीलिए उम्मीद यही है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक देश के तकरीबन हर इलाके में झमाझम बारिश हो सकती है, क्योंकि एक बार फिर से देश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून सक्रिय हो चुका है। और मौसम विभाग का कहना है कि देश उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो कहीं राहत तो कहीं आफत। जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां तेज बारिश के बाद आए सैलाब में कई जिंदगियां फंस गई, लेकिन सेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
3: वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी और बारिश होने की संभावना है, लिहाजा लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। देखिए कैसे उफान में जिंदगियों का रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है।
4: उफनते सैलाब के बीच फंसे लोगों के लिए देवदूत बन गए सेना के जवान। मोर्चे पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले जवानों ने कुदरत की आपदा के बीच जिंदगी की जंग जीतने में भी शानदार कामयाबी हासिल कर ली। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की हैं। यहां पर भारी बारिश और बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण पैदा हालात में आर्मी की व्हाइट नाइट कॉप्स के जवानों ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 बच्चों सहित 12 लोगों की जान बचाई। सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर 2 अलग-अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक बचाव अभियान चुरुंग गांव के पास उपनते नाले में चलाया गया, जहां पर 5 बच्चों सहित 9 लोग फंसे हुए थे। पानी की तेज धार और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच रेस्क्यू टीमें तेजी से मौके पर पहुंची और आफत में फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। वहीं इंजीनियर रेजिमेंट के जवानों ने नौशहरा में तवी नदी के बीच टीले पर फंसे 2 युवकों को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश के बाद इलाके में तमाम नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे हालात में इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की भी जान बचाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन लोग अपनी जान पर खेलकर इन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटे नजर आए। राहत टीमें तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन आम लोग भी खुद हालात से निपटने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हैं।
5: बहुत सारी मेहनत के बाद इनिशियली हम यहाँ पे जो हमारे लोकल यूथ है वो पहुंचे रेस्क्यू के लिए। उन्होंने लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया, उन्होंने यहाँ पे जो लाइव स्टॉक था उसको रेस्क्यू किया, लेकिन अब आ रही अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे SHO साहब यहाँ पे हैं ऑन स्पॉट। फायर सर्विस आई है अपना इक्विपमेंट लेके, सो देट वाटर लॉजिंग बाहर निकाल सकेंगे।
4: जम्मू कश्मीर में राजौरी, पुंछ और गुरेज सहित कई इलाकों में बारिश और सैलाब का खासा नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और लोगों की मदद के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि बारिश और बादल फटने से अचानक बाढ़ आने पर प्रभावित इलाकों में तत्काल तेजी से सहायता पहुंचाई जा सके।
6: जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से इस समय अगर हम देखें तो इस कार्य में जुटा हुआ है कि लोग जो है कहीं फंसे ना, क्योंकि कई इलाकों से खबरें आई थी कि लोग बाढ़ के पानी में फंसे थे। इसलिए भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, NDRF, SDRF, उनकी टीम्स अलग अलग स्थानों पर है। खासतौर पर जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ पर टीम्स तैनात कर दी गई है, ताकि अगर कोई बड़ी स्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके। तो टीम्स हर जगह पर रवाना गई है, प्रभावित क्षेत्रों में इस समय टीम्स हैं, और यही प्राथमिकता है कि जो लोग इस समय बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए।
4: मौसम के बदले रुख का असर राजधानी श्रीनगर तक देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने इलाके में अभी और बारिश की संभावना जताई है, लिहाजा लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।
7: मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी, और खास तौर से जो कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले हैं वो उफान पे हैं। जहलम नदी के पानी का स्तर भी लगातार सुबह से ही बढ़ रहा है। फिलहाल लोगों को चौकस रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कुछ घंटे के बारिश के भीतर ही श्रीनगर शहर में कई जगहों पर वाटर लॉगिंग के चलते आवाजाही पर भी असर पड़ा है।
4: इस बीच जम्मू कश्मीर में मौसम के हाल को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। बालटाल और पहलगाम दोनों ही रूट से श्री अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोकी गई है।
8: एहतियात बरतने के लिए, और यहाँ ये लगता है कि वहाँ पानी ज्यादा हो सकता है या लोगों की जान का खतरा हो सकता है, सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए।
4: तीर्थयात्रियों को उम्मीद है कि जल्दी ही मौसम साफ होगा और माता के दर्शन की उनकी मुराद पूरी होगी।
9: 2-3 दिन लगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, और बारिश की भी संभावना ज्यादा है। यहाँ पे जल्द से जल्द दर्शन करने का सुविधा प्राप्त हो, माता रानी से ही उम्मीद है कि जल्द बुलाएं दर्शन करने के लिए।
10: इंतजार कर रहे हैं कि कुछ खुल जाए, मौसम खुले, परमिशन मिल जाए जाने की, यही है, उम्मीद में है, बस लगे पड़े हैं।
4: जम्मू कश्मीर के कटरा में हजारों यात्री मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में भी तीर्थयात्रियों को कुदरत की मेहरबानी का इंतजार है, जबकि बाकी इलाकों में आम बाशिंदों को बारिश रुकने के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने की आस है। अखनूर से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देहरादून में भी लगातार बारिश से कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां संतला देवी मंदिर के पास अचानक पानी बढ़ने से 7 लोग पानी की तेज धार के बीच फंस गए। आसपास के लोगों ने इन लोगों को फंसे होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस और SDRF की टीम फौरन हरकत में आई और एक ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
11: काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने इस टापू पर फंसे सभी 7 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। रेस्क्यू में बचाए गए लोगों को टीम ने सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। कुछ इलाकों में पानी सामान्य स्तर से काफी ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को तेज बहाव वाली जगहों पर न जाने की हिदायत दी।
2: ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के इस बार आपको बताएंगे क्यों तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की जननायकन का टिकट बिक रहा है 2,500 रुपए में।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: Your attention, please. College has been out of reach for too many for too long, but talent is everywhere. Opportunity isn't. WGU changes that. We're an online nonprofit university built for working adults, caregivers, first-generation students, and anyone overlooked by traditional colleges. And with low tuition and millions in need-based scholarships awarded each year, WGU makes college possible. This is education without limits. Accessible, affordable, and built for all. Learn more at wgu.edu.
14: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
15: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
14: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
11: पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: क्या व्रत और उपवास रखकर मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कौन से व्रत और उपवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और व्रत उपवास रखने के नियम क्या हैं? जानिए व्रत और उपवास का महत्व सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एक बार फिर से अपनी फिल्म जननायकम को लेकर चर्चा में है, जो कि 7 महीने देरी के बाद थिएटर्स में 23 जुलाई को आ रही है। एच विनोद के डायरेक्शन में बनी ये तमिल फिल्म एक्शन थ्रिलर थलपति विजय की राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, जिसके चलते उनके फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं।
3: बिल्कुल, देखिए फिल्म की रिलीज को लेकर हुई इस भारी देरी के चलते दर्शकों के बीच में काफी बेताबी देखी जा सकती है और इसकी मिसाल नजर आई फिल्म के एडवांस बुकिंग में, जो शुरू हो गई है। खास बात यह है कि देश में चुनिंदा जगहों पर फिल्म की प्रीमियर टिकट की कीमत 2500 रुपए तक पहुंच गई, लेकिन जननायकन को लेकर लोगों का क्रेज साफ देखा जा सकता है।
2: सात महीने की देरी सही, लेकिन अब थलपति विजय की फिल्म जननायकम फुल फॉर्म में रिलीज के लिए तैयार है।
4: लोग उसे बुलाते हैं थलपति, उसे टच मत करना, तुझे काट डालेगा।
2: तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय की एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म बताई जा रही, लिहाजा विजय के फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं।

0: विजय अपनी आखिरी फिल्म जनता को एक गिफ्ट के रूप में सौंपना चाहते थे, लेकिन सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन का पेच ऐसा अटका कि फैंस को महीनों तक मायूस होना पड़ा।
1: लोगों की भलाई के लिए मेरे काम में टांग मत अड़ाना।
0: कहा गया कि इस फिल्म से विजय को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। जनायकन में कुछ सीन्स पर आपत्ति भी उठी। कहा यह भी गया कि इनसे भारतीय सेना और सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण माना गया जिससे सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट को कई महीनों तक टाले रखा। हाल ही में जननायकन को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास किया है, जिसके बाद इसके रिलीज का रास्ता साफ हो सका।
2: I am.
0: Bureau report, good news.
2: Coming.
3: क्रिस्टोफर नोलन की नई बेहतरीन फिल्म द ओडिसी ने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है। जहां दर्शक इसके शानदार विजुअल्स और इमोशनल कहानी की तारीफ कर रहे हैं, तो फिल्म द ओडिसी की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 17 जुलाई को ओपनिंग भी काफी जबरदस्त रही।
4: और बिल्कुल देखिए, वहीं रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे तक तो द ओडिसी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर डाला। खबरों के मुताबिक ये फिल्म 61 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर साल 2026 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड फिल्म बन गई है।
5: सिनेमाई पर्दे पर अभी बस 3 दिन ही तो बीते हैं। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी धमाल मचा रही है। वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी इस एपिक फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। 17 जुलाई को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज हुई द ओडिसी को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छा खासा रिस्पांस मिला, जिसकी बदौलत द ओडिसी की शुरुआत काफी शानदार रही और ये लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं रिलीज के बाद लगातार तीनों दिन मैट डेमन स्टारर द ओडिसी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखा है। तीसरे दिन यानी पहले रविवार को द ओडिसी ने 21 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन करते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ये फिल्म भारत में क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। वहीं इससे पहले 17 जुलाई को द ओडिसी ने 17 करोड़ 40 लाख के साथ ओपनिंग की, 18 जुलाई को 22 करोड़ का कलेक्शन, तो रविवार को 55% ऑक्यूपेंसी के साथ 21 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन कर सबको चौंका दिया। इसी के साथ फिल्म ने भारत में 61 करोड़ 30 लाख का नेट कलेक्शन और 73 करोड़ 19 लाख का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। यही नहीं, द ओडिसी साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली हॉलीवुड फिल्म भी बन गई है। इससे पहले ओपेनहाइमर ने 14 करोड़ 50 लाख के साथ ओपनिंग की थी। फिल्म में मैट डेमन के अलावा टॉम हॉलैंड, एनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन और जेंडिया के रोल को भी भारतीय ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। अपनी बेहतरीन स्टारकास्ट की बदौलत ही द ओडिसी का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल ऐसे वक्त में जारी है जब बड़े पर्दे पर अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4, आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर अल्फा और हॉलीवुड हॉरर फिल्म एविल डेड बर्न जैसी फिल्में दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं। बावजूद इसके द ओडिसी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल अपनी पकड़ बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चाय पर चर्चा में फिलहाल एक ब्रेक, अब रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कस

0: करते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देखिए, सलमान खान हमेशा अपने दमदार और पावरफुल लुक की वजह से फैंस के बीच में चर्चित रहते हैं, लेकिन बीते दिनों सलमान की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए जिसे देखकर सलमान खान की सेहत खराब होने की एक अफवाह फिर से उड़ी।
2: अब बीती रात को सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की, साथ ही साथ पूछा कि आप लोगों की तबीयत कैसी है, क्या है सलमान के इस पोस्ट के मायने और क्या है वायरल तस्वीर का सच, आपको बताते हैं।
3: रविवार आधी रात को सलमान खान ने एक के बाद एक पांच तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिनमें वो अलग अलग लुक में नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने हल्की दाढ़ी रखी है और काफी फिट, लेकिन पहले से थोड़े दुबले दिख रहे हैं। सारी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं, जिनमें सलमान ने तरह तरह के स्टाइलिश हैट पहने हुए हैं। एक में उन्होंने कावर लुक कैरी किया है, बावजूद इसके जारी तस्वीरों में उनका सादगी भरा अंदाज साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ ही सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, आप लोगों की तबीयत कैसी है। सलमान खान बेवजह कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करते, उनकी बातों में कोई ना कोई मतलब छिपा होता है, लिहाजा फैंस तरह तरह के कयास लगाने लगे। एक यूजर ने लिखा, आप ठीक है तो हम सब ठीक है सर। दूसरे यूजर ने लिखा, तुम हो तो मूवीज है, तुम नहीं तो सिनेमा खत्म। किसी और ने लिखा कि सर मैं आपको देखते ही ठीक हो जाता हूँ, लाइफ की प्रॉब्लम कम होती दिखती है। वह एक यूजर ने लिखा, भाई आपकी नई फोटोज ने तो डरा ही दिया था, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। माना जा रहा है कि सलमान खान ने उन तमाम लोगों को इशारों में जवाब दिया है जो उनकी हालिया तस्वीरें देखकर कमेंट कर रहे थे और उनकी सेहत पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल बीते दिनों एक पब्लिक इवेंट में सलमान खान की मौजूदगी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। सलमान मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की ओर से कराए गए एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अथॉरिटी के नए डेटा कलेक्शन आईटी सर्वर रूम का उद्घाटन किया। इस दौरान सलमान ने कई लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। इवेंट में सलमान ब्राउन रंग की लूज शर्ट और पैंट पहनकर पहुंचे थे, चेहरा मुरझाया सा लग रहा था, स्माइल गायब थी, थोड़े दुबले थोड़े कमजोर दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि सलमान पहले से ज्यादा पतले और थके नजर आ रहे हैं, शायद उम्र का असर है। सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं, ऐसे में उम्र का थोड़ा बहुत असर होना लाजमी है। मुमकिन है सलमान की तबीयत तब नासाज हो, लेकिन कमिटमेंट की वजह से वो इवेंट में आने से इनकार ना कर सके हो। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिटनेस फ्रीक सलमान इस उम्र में भी काफी फिट है। इसका सबूत उन्होंने कई तस्वीरों के साथ दे दिया है, साथ ही इन लोगों को जवाब भी दे दिया जो उनकी सेहत पर सवाल उठा रहे थे। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
5: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
4: to live sports action.
6: To the near side corner, to wrap around, he scores!
4: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: क्या व्रत और उपवास रखकर मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कौन से व्रत और उपवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और व्रत उपवास रखने के नियम क्या हैं? जानिए व्रत और उपवास का महत्व सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
1: पुरी में हेरा पंचमी के पावन मौके पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच में NDRF, SDRF और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल की उम्र वालों को लगेंगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: किस्सा शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पहले कदम की। कहते हैं हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, एक कदम सैकड़ों और फिर हजारों में बदलकर मंजिल तक का सफर तय करते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है वो पहला कदम। आज दिन है उसी पहले कदम को सेलिब्रेट करने का। एक कदम जो 57 साल पहले आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद पर रखा था, और दूसरा कदम स्पेस में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर रॉकेट का। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये दोनों तस्वीरें एक लंबे सफर के पहले कदम को सेलिब्रेट करती हैं। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची थी। सोवियत संघ अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक और पहले इंसान यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर बढ़त बना चुका था। तब इसके जवाब में अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजने के महत्वाकांक्षी प्लान का आगाज किया और शुरुआत हुई अपोलो मिशन की। इसी के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स वाले अपोलो 11 मिशन को रवाना किया गया था, जो 4 दिन की यात्रा के बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। चांद पर उतरने का अंतिम चरण बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक था। लैंडिंग के समय यान का कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था और ईंधन भी तेजी से कम हो रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने सूझबूझ दिखाते हुए यान को चांद की सतह पर लैंड करवाया और मिशन कंट्रोल को संदेश भेजा, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल इज लैंडेड। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल भरी सतह पर अपना बायां पैर रखा और इतिहास रच दिया। इस मौके पर उनके कहे शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। अब वैसी ही एक विशाल छलांग भारत ने भी लगाई है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट ने मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी। आइए पहले आपको दिखाते हैं आखिर विक्रम 1 ने हमारी उम्मीदों को लेकर किस तरह अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और क्यों ये मिशन भारत की स्पेस जर्नी में एक माइलस्टोन साबित हुआ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something?
3: Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी है। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
4: My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh.
5: एक विक्रम वो जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और एक विक्रम ये जो अंतरिक्ष के आंगन का नवजात है, लेकिन कभी जो भारत के एक विक्रम ने कहा था वो आज दूसरे विक्रम ने सच कर दिखाया है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी क्षमता, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है विक्रम 1 ने। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के शुभ आगमन का प्रतीक बन गया है।
6: देखिए ये मिशन आगमन है, अब आगमन को तो और आगे बढ़ते ही जाना है।

0: लिफ्टऑफ।
1: देश में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट भी वो जिसे नाम मिला है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर।
2: विक्रम बनने
1: इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया।
0: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch.
1: विक्रम 1 की लॉन्चिंग का समय 18 जुलाई सुबह 11:30 पर तय था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग की गई।
3: लगभग 16 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं, और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी और लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो यह एक बहुत ही स्वर्ण अवसर है भारत की स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में।
1: इसके लिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। श्री हरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक इस लॉन्चिंग के इंतजार में थे। आखिरकार फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ और सफलता पूर्वक विक्रम 1 की लॉन्चिंग हो गई। कंट्रोल रूम से लेकर व्यूइंग गैलरी तक सभी के चेहरे खिल उठे। सालों की मेहनत को मुकाम मिल रहा था। स्काई रूट के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था।
0: पेलोड फेयरिंग, वी हैव सक्सेसफुल पेलोड।
4: दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्री हरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है।
1: विक्रम 1 लॉन्चिंग का एक एक चरण पूरा करता जा रहा था। हर दहलीज लांघने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी।
0: 50 किलोमीटर
4: और यहां पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है।
5: दिस इज क्वाइट अ मेजर अचीवमेंट फॉर द नेशन विद द व्हीकल सक्सेसफुली सेपरेटिंग स्टेज 1 एंड द इग्निशन ऑफ स्टेज 2 एज वेल।
1: कुछ ही मिनट्स में विक्रम 1 आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कार्मन लाइन को पार कर गया। धरती और स्पेस के बीच की यह काल्पनिक रेखा अंतरिक्ष की दहलीज मानी जाती है। कार्मन लाइन लांघने के साथ ही विक्रम 1 अंतरिक्ष में दाखिल हो गया।
5: एंड वी हैव रीच स्पेस गाइस,
0: कांग्रेचुलेशन, विक्रम 1 इज इन स्पेस।
4: हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है।
0: And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation.
1: अगर विक्रम 1 अंतरिक्ष की ऊंचाई पर पहुंच रहा था तो यूं समझिए कि श्री हरिकोटा के स्टेशन पर जोश, खुशी और उत्साह भी लगभग उसी ऊंचाई को छू रहा था। देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था। स्काई रूट के लिए ये उपलब्धि अभूतपूर्व थी। गर्व और खुशी के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने स्काई रूट कंपनी के सीईओ और सीओओ समेत पूरी टीम को फोन करके शुभकामना संदेश दिया।
6: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी, और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था।
1: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था और अब विक्रम 1 धरती के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। विक्रम 1 ने लॉन्च से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए और करीब 450 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।
7: ये जो विक्रम वन था ये केवल 350 kg ये एलईओ में यानी के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डाल सकता था। अभी जो विक्रम इसके बाद जो आएगा विक्रम टू वो थोड़ा ज्यादा होगा और फिर विक्रम थ्री में और ज्यादा होगा। तो ये धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और ये पूरा जो था ये इसरो ने स्काई रूट को हैंड होल्ड किया है, उनको टेक्नोलॉजी दिया है, हैंड होल्ड मतलब उनको गाइड किया है।
1: प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम वन रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मो सर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलोरास भी इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। ये माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की छोटी छोटी छवियां उकेरी गई हैं। जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए, इनका मकसद नई तकनीक को परखना, स्पेस ट्रेवल को सुरक्षित बनाना और आने वाले मिशंस को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम 1 स्काई रूट के 3 डेवलपमेंटल मिशंस में पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काई रूट के युवा इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
8: The space sector reform what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
1: ये अपने आप में बेहद अहम है कि ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है और इसे पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया।
7: अगर आप देखें कि अमेरिका में अभी स्पेसएक्स है जो प्राइवेट कंपनी है, बोइंग है अगेन प्राइवेट कंपनी, ब्लू ऑरिजिन, ऐसे कई ऐसे वो हैं और पूरे यूरोप में भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं। तो हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो एकदम सही है और इसी मार्ग पे हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि इसरो हैंड होल्ड नहीं करेगा, अपना डेटा नहीं देगा। लेकिन अभी एकदम बदल गया है, अभी इसरो ऐसे स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड कर रहा है।
1: आपको बता दें कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ ही पीएम मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी भेजा गया है जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित हैं। मातृभूमि का जयघोष करते ये शब्द भी भारतवासियों की असीम उम्मीदों की तरह आज अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये जयघोष कर रहे हैं कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां प्राइवेट कंपनी के रॉकेट अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: और चलिए अब आपको विक्रम 1 के बारे में बताते हैं, आखिर क्यों इस रॉकेट की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और क्या खासियत है इस रॉकेट की, उसे समझिए जरा। विक्रम 1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना ये हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है जिससे इसकी ईंधन दक्षता काफी बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी इसमें दिया गया है। अब इसके बाद देखिए बारी आती है इसको समझने की। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे तीन बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा होता है। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं। ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। यहां लिक्विड मॉड्यूल काम आता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम भी करता है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्टकार्ड भेजा जिस पर वंदे मातरम लिखा गया। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के बाद पीएम ने स्काई रूट की टीम को बधाई देने के लिए फोन किया तो कंपनी के सीईओ ने उन्हें ये बात बताई और तब ये भेद खुला कि आखिर क्यों अंतरिक्ष में भेजे जा रहे उस पोस्टकार्ड पर पीएम ने वंदे मातरम ही लिखा था।
10: आपका कार्ड जो आप भेजे थे that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit.
6: लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देती, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से, और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी
9: तो वंदे मातरम क्यों लिखा था प्रधानमंत्री ने, उसके दो कारण प्रधानमंत्री ने आपको बताए। अब आपको समझाते हैं विक्रम 1 और विक्रम एस में डिफरेंस क्या है, उस अंतर को आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, विशेषता मिशन का प्रकार है सब ऑर्बिटल, विक्रम एस होता है और विक्रम 1 जो है वो ऑर्बिटल होता है। ये मुख्य अंतर आपको समझा रहे हैं विक्रम एस और विक्रम 1 में। अधिकतम ऊंचाई जो होती है विक्रम एस की वो होती है 89.5 किलोमीटर और विक्रम 1 की जो ऊंचाई होती है वो होती है 450 किलोमीटर। ये बेसिक अंतर जो है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। इसके बाद केवल टेस्ट पेलोड के तौर पर इसको जाना जाता है, ये इसकी खास विशेषता है। पेलोड क्षमता कितनी होती है वो आपको समझा रहे हैं। 350 किलोग्राम तक की इसकी क्षमता होती है। सिंगल स्टेज मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका सिंगल स्टेज होता है। तीन सॉलिड स्टेज प्लस लिक्विड मॉड्यूल इसकी ये विशेषता होती है। इसके अलावा विक्रम एस और विक्रम 1 में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लीजिए। विक्रम एस जो है वो रेगुलर कंपोजिट के तौर पर काम करता है, मटेरियल जो होता है उसमें रेगुलर कंपोजिट होता है, और जो विक्रम 1 होता है उसमें कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये है इन दोनों में विशेष अंतर।

0: वो साल था 2020 का, जब भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले थे। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में उभरने लगे थे। इस घटना को 6 साल गुजर चुके हैं और भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में लगभग 400 स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो अपने अपने लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते आज भारत की स्पेस इकोनॉमी 8.4 बिलियन यानी लगभग 800 करोड़ की हो चुकी है। स्पेस स्टार्टअप्स की इस बाढ़ के बीच हाल के सालों में बुलबुले की तरह बेहद तेजी से एक नाम उभरा है, स्काई रूट एरोस्पेस। अपने नाम जैसा ही काम ये स्पेस स्टार्टअप पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। अंतरिक्ष के आंगन में भारत की जड़े जमाने के मिशन में स्काई रूट एरोस्पेस अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कंपनी की टकसाल से निकला है भारत का नायाब रॉकेट विक्रम 1।
1: श्रीहरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशंस लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है। स्काई रूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया।
0: स्काईरूट की शुरुआत करीब 8 साल पहले 2018 में हुई थी। स्काईरूट की स्थापना इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नागा भरत डाका और पवन कुमार चंदना ने मिलकर की थी। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण करना रहा, ताकि दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड और बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशंस दिए जा सके। हाल ही में ये कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी, यानी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया था।
2: Globally, very few companies are able to achieve it. So I think doing it from India, we're very proud, and it's a great milestone for Skyroot, for India, and also for globally as well, because the world requires more access to space.
0: चूंकि डॉक्टर सारा भाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी, इसलिए स्काईरूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। साल 2022 में लॉन्च किया गया पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S भी इसी सम्मान श्रृंखला का हिस्सा था। 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट के सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S ने श्रीहरिकोटा से अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रम-S रॉकेट ने 85.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर ये बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया।
3: And in India, we have good space access solution capacity already developed by ISRO. But the commercial market of launch captured by Indian launch vehicles is very less. And now, with that objective, like now that we have good manufacturing ecosystem that can manufacture aerospace grade rockets, what private companies like us bring to the table is the design engineering and the system engineering capability, where we can build end-to-end systems and develop. So India is also well known for affordable space missions, and that cost effectiveness naturally translates to the private sector in India. So successfully building a reliable rocket from India will naturally place us as an affordable launch solution from India to the world.
0: इसके बाद अब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत के स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और नई तकनीक की शानदार मिसाल बन गया है। लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। दरअसल भारत में अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन रही हैं। इसके कई फायदे हैं। स्काईरूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बेहद सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड लॉन्चिंग विकल्प मिलेंगे। इससे देश की स्पेस इकोनॉमी और मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
4: ये जो स्पेस इकोनॉमी है और जहां तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन जैसे मैंने कहा बढ़ रहा है. जहां तक स्पेस इकोनॉमी है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए. भारत का जो योगदान है इसमें 2 या 3%. अभी ये तो ठीक नहीं क्योंकि हमारा इसरो इतना काम कर रहा है, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम मंगलयान अभी यहाँ पर चंद्रयान, फिर अभी हम स्पेस स्टेशन डालेंगे स्पेस पे, तो हम इतने आगे बढ़ रहे हैं. तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, जो मोदी जी और उनके गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना.
0: बता दें कि भारत ने भले ही अंतरिक्ष में प्राइवेट उड़ान का माइलस्टोन अब हासिल किया है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया की कई कंपनियां इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं. खासतौर पर अमेरिका में स्पेसएक्स, ब्लू ऑरिजिन और रॉकेट लैब जैसी दिग्गज प्राइवेट स्पेस कंपनियां स्पेस ट्रेवल में नए युग की शुरुआत काफी पहले कर चुकी हैं. यहाँ तक कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स तो अब दुनिया को भविष्य में स्पेस टूरिज्म का सपना भी दिखा रही है.
4: चीन कुछ 70-80 फ्लाइट्स यानी के लॉन्चेस वो करता है एक साल में, और अमेरिका तो इनके प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो स्पेसएक्स और बोइंग और ये सब करते हैं 190-180 हर साल में. और हमारे यहाँ पर इतने सारे नहीं होते, कुछ 4 या 5 होते हैं, 4-5 भी नहीं होते. हमारा अभी जो विजन है वो तो 13 सैटेलाइट्स का था इस साल में, अभी तक देखिए 1 या 2 ही हुए हैं. तो कोई नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमें और भागना पड़ेगा.
0: भले ही रास्ता लंबा है, लेकिन भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी अब उम्मीदों को पंख लगा रही है. विक्रम 1 का लॉन्च इस कामयाबी की ओर भारत का पहला कदम माना जा सकता है.
1: विक्रम 1 के ऑर्बिटल लॉन्च के साथ सिर्फ भारत में स्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन नहीं हुआ, बल्कि एक विश्वास का आगमन हुआ है कि भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान भी गढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा. कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, श्रीहरिकोटा.
5: और चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही. देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे.

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: हाथ में बैनर मार्च करती सेना, इनसाइड स्टोरी क्या। अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का लेटेस्ट वीडियो। इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके के वीडियो का सच। संस्कार हो तो ऐसे। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टेहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिल गई मंजूरी। 4 साल से 60 वर्ष की उम्र वालों को लगेंगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
10: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का 5वां दिन गुंडीचा मंदिर में निभाई गई हेरा पंचमी की परंपरा। पुरी में अड़प्पा मंडपम में दर्शन करने के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। सुबह से ही दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। यात्रा के साथ था पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। आस्था और भक्ति में सरोवर नजर आए श्रद्धालु। पुरी में हेरा पंचमी का विशेष महत्व। पौराणिक मान्यता है कि लक्ष्मी ने क्रोधित होकर महाप्रभु के रथ पर किया था प्रहार। पुरी में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। गर्मी से राहत करने के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत किया। रथ यात्रा में भक्तों में देखा खजब का उत्साह। भगवान के रथ को खींचने के लिए मची होड़। हजारों भक्त भजन कीर्तन करके नाचते गाते हुए नजर आए। बेगूसराय में गुंजा जय जगन्नाथ। श्री राधा कुंज बिहारी मठ ने निकाली भव्य रथ यात्रा। बेगूसराय की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालु ने खींचा भगवान का रथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। जय जगन्नाथ के जयघोष के साथ गुंजामान हुआ कोला, 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया, जमकर लगाया जय जगन्नाथ के जयकारे। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत किया, रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश आया। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते झूमते हुए नजर आए, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। श्रावण के पहले सोमवार पर टेहरी के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। बिलेश्वर महादेव, बूढ़ा केदारनाथ, उणेश्वर, सत्येश्वर और नीलेश्वर मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। श्रद्धालुओं ने गंगा जल, दुग्ध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। प्रथम केदार में आने जाने वाले बेलेश्वर महादेव धाम में हजारों भक्तों ने शिरकत की, मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। पहाड़ में 16 जुलाई से मैदानी क्षेत्रों में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावण मास, 11 अगस्त को कांवड़िए करेंगे भगवान शिव का जलाभिषेक। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किए बाबा श्याम के दर्शन। बागेश्वर में सावन के पहले सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, जलाभिषेक भी किया, जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। चमोली में पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। शिवालयों में सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें, हर हर महादेव के जयकारों की गुंजामान हुआ परिसर। कोलकाता में भूतनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। पवित्र सावन मास की पहली सोमवती बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक किया। पहली सोमवारी पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, मंदिर प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस का पहरा। आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर में भी गुप्त नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मां बगलामुखी के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भस्म आरती के दौरान महाकाल को भांग, चंदन और सिंदूर का किया गया अर्पित, दर्शन के लिए सुबह से लंबी कतार। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए जय श्री राम की जयकारे। ऑस्ट्रेलिया में आज से एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, भारत समेत 19 देश शामिल। भारत के राफेल, IL-78 और C-17 विमान हुए शामिल, 7 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज। 19 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने की करेंगे अभ्यास। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन मंजूर, 4 से 60 वर्ष की उम्र वालों को लगेगी दो डोज, टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी प्रकार की कोई जांच। भारी बारिश के चलते आज स्थगित रही वैष्णो देवी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह। जयपुर में मिस टीन डीवा 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड फिनाले में देश भर की प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का दीदार किया। बारामूला में प्रथम महायुद्ध का धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों के साथ मिलकर महायज्ञ किया, कई लोगों को सम्मानित भी किया। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे के जन्मदिन पर महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, बेटा निशांत कुमार भी मौजूद रहे। दिल्ली में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए काले बादल, गर्मी से लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई जगह स्कूलों में छुट्टी। उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते आज फिर से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, भक्तों को मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड में भारी बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, कई घाट पानी में डूबे। असम के जोरहाट में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, भोगदोई नदी का बढ़ा जलस्तर। भोगदोई नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हुए, निचले इलाकों में प्रशासन ने बढ़ाई गश्त। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह हुई जबरदस्त बारिश। गुवाहाटी में भी जमकर बरसे बदरा, कई इलाकों में झमाझम बारिश। राजौरी में भारी बारिश, सड़कों पर जल जमाव। देहरादून के मालदेवता इलाके में भारी भूस्खलन, कई इलाकों में सड़कें बंद। सड़कों से मलबा हटाने में जुटा हुआ है प्रशासन, जेसीबी से लगातार हटाया जा रहा है मलबा। पटना में भारी बारिश से एनएमसीएच अस्पताल में घुस गया पानी, मरीजों की बढ़ी परेशानी। एनएमसीएच अस्पताल के कई विभाग जलमग्न हुए, ऑर्थो विभाग में दिखा सांप। मोतिहारी में नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़, कई इलाकों में पानी ही पानी। नेपाल से पानी छोड़े जाने पर कई नदियों का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। संत कबीर नगर में भारी बारिश के चलते गिरा बाबा बैजूनाथ मंदिर का दीवार, बड़ा हादसा टला। श्रीनगर में सुबह सुबह जबरदस्त बारिश हुई, सड़कों पर जल जमाव। श्रीनगर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बन गया पानी, रिहायशी इलाकों और दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी। रियासी में भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में भर गया पानी। राजौरी में भारी बारिश के चलते नदी में फंसे मवेशी, लोगों ने मवेशियों को बाहर निकाला। प्रशासन ने लोगों से नदी में नहीं जाने की अपील की, बाढ़ वाले इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा। असम के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, शिवसागर जोरहाट और चराई देव बाढ़ से प्रभावित। असम में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, कई इलाके पानी में डूब गए। असम में बाढ़ से कई सड़कें और तटबंधन को पहुंचा नुकसान, कई गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। फिरोजाबाद में भारी बारिश से मेडिकल कॉलेज परिसर में भर गया पानी, मरीजों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, कई कारें पानी में जलमग्न, स्कूलों को किया गया बंद। फिल्म रामायण में जटायु के किरदार

0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: देखिए सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का नया टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में सनी देओल का हमेशा की तरह दमदार अंदाज दिखाई दे रहा है। करीब एक मिनट का ये टीजर है जो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। इस टीजर में सनी देओल का किरदार डर और नफरत के ऊपर साहस चुनता हुआ नजर आता है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। देश के विभाजन पर बेस्ड इस फिल्म में बंटवारे का अनदेखा दर्द देखने को मिलेगा। फिल्म इस साल 14 अगस्त को रिलीज हो रही है।
6: मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा।
7: एक्शन और इमोशन, साहस और बलिदान, शुरुआत से आखिर तक रोमांच से भरा बंटवारा 1947 का ये टीजर देश के बंटवारे के उस दौर की कहानी को सामने लाता है जो खौफ और दहशत से भरी है। जुल्मों सितम से भरे इस माहौल में एक शख्स ऐसा है जो बुझती हुई लौ के बीच उम्मीद बनकर खड़ा है। हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने परिवार की रक्षा के लिए डट कर खड़ा है। हमेशा की तरह सनी देओल का ये किरदार जोश और जुनून से भरा है।
6: जीते जी मरना नहीं चाहता।
7: बंटवारा 1947 का ये दूसरा टीजर है। करीब एक मिनट के इस टीजर में सनी देओल का किरदार डर और नफरत के ऊपर साहस चुनता है। एक ऐसा किरदार जो असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है। सनी देओल इस फिल्म में सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं और उनका इंटेंस अंदाज अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब दिख रहा है। टीजर में काफी इमोशनल सीन भी दिखाए गए हैं जो आपकी आंखों को नम कर सकते हैं। इमोशन के साथ टीजर में दमदार एक्शन भी देखने को मिलते हैं। इससे पहले बंटवारा 1947 का एक टीजर मोशन पोस्टर कैरेक्टर पोस्टर्स पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब तक रिलीज किए गए टीजर में बंटवारे के दौर की त्रासदी, साहस, बलिदान और इंसानी जज्बे की झलक देखने को मिलती है।
8: बड़े संघर्ष और
0: कुर्बानियां देने के बाद
7: 1947 में भारत का विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन और त्रासदियों में से एक था। अब तक कई बॉलीवुड फिल्में इस विषय पर बन भी चुकी है। अलग अलग फिल्मकारों ने किसी न किसी किताब या उपन्यास को आधार बनाकर अपने अपने नजरिए से इस ऐतिहासिक त्रासदी को पर्दे पर उतारा है। इस बार निर्देशन की कमान संभाली है राजकुमार संतोषी ने और भारत पाक विभाजन के दौरान की एक अनोखी कहानी को लेकर सामने आए हैं। बंटवारा 1947 असगर वजाहत के विश्व प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जमियाई नई पर बेस्ड है। जिस लाहौर नई वेख्या ओ जमियाई नई एक पंजाबी कहावत है जिसका मतलब है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। बंटवारा 1947 के दोनों टीजर दमदार लगते हैं। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी जैसे मझे हुए कलाकार हैं। इंतजार अब ट्रेलर का है और 14 अगस्त का, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये फिल्म देश भर के सिनेमा घर में रिलीज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: लेकिन अफसोस, मुल्क का बंटवारा।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: क्या व्रत और उपवास रखकर मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कौन से व्रत और उपवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और व्रत उपवास रखने के नियम क्या हैं? जानिए व्रत और उपवास का महत्व सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
10: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
12: पुरी में हीरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
12: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उल्लास चरम पर है। उड़ीसा से लेकर दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और देश के कई राज्यों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है रथ यात्रा में भक्ति और परंपरा के रंग। आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों की गूंज, हरि नाम का कीर्तन, फूलों की वर्षा और जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ रथ यात्रा महोत्सव मना रहे हैं।

0: ये आस्था, ये विश्वास है और ये आराध्य के स्वागत का उत्साह है और ये उत्सव है महाप्रभु के नगर भ्रमण का, भक्त और भगवान के मिलन का और उत्सव जहां रथ के साथ साथ आस्था भी आगे बढ़ती है और हर दिल से एक ही जय घोष निकलता है, जय जगन्नाथ।
1: हरे हरे हरे कृष्णा।
0: देश भर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं सड़कें भक्ति के रंग में रंगी हैं, कहीं मंदिरों में एक ही जय घोष सुनाई दे रहा है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। राजधानी दिल्ली में भी जगन्नाथ रथ यात्रा अपने चरम पर है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा उत्साह और उमंग के साथ निकाली गई, जिसमें भक्त नाचते गाते हुए उत्साह के साथ शामिल हुए। रथ यात्रा मंदिर परिसर के चारों तरफ घुमाई गई, जहां जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया और भगवान को अलग अलग मिठाइयां और फलों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों के बीच बांटा गया। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की तर्ज पर पूरे श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव के साथ निकाली गई।
2: जैसे पुरी में जो भगवान जगन्नाथ जी की भव्य दिव्य रथ यात्रा निकाली, उसी तर्ज पर खिलचीपुर नगर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता की यात्रा, माता सुभद्रा की यात्रा निकल रही है। सभी भक्त बड़े उत्साह से झूमते गाते नृत्य करते और भगवान का कीर्तन करते, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए सब लोग नगर में भ्रमण कर रहे हैं और भगवान की भव्य रथ यात्रा निकाल रहे हैं।
0: यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महंत 108 सोहन दास जी के आश्रम स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान की महाआरती कर श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया गया।
3: जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, इसमें श्रीमती राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में भगवान को मिले थे, तो उन्होंने भगवान को जब द्वारका वेश में देखा तो वो लोग बहुत दुखी हो गए, तो वो चाहते थे कि भगवान को खींच के वृंदावन लेके जाएं। तो उसका जो भाव है, हम जगन्नाथ जी को द्वारका से वृंदावन लेके जा रहे हैं और इस प्रकार से भगवान बड़ी बड़ी आंखों से सभी को अपनी कृपा देते हैं। जो भगवान की बड़ी आंखें हैं और जो उनके हाथ ऐसे हैं, उसके वो भगवान अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं और जो लोग मंदिर में नहीं आते उनको भी कृपा देना चाहते हैं भगवान। जो लोग घर पे बैठे हैं, आलसी हैं, सालों साल नहीं आते मंदिर, तो भगवान एक बार जाते हैं उनको मिलने के लिए और देखने के लिए।
0: बिहार के बेगूसराय में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरे कृष्णा हरे राम की धुन पर झूमते हुए शामिल हुए। रथ यात्रा के दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा हुई और भगवान जगन्नाथ का लोगों ने भव्य स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया।
4: धरती बेगूसराय जिला क्रांति, जितना क्रांतिकारी धरती है उतने धार्मिक धरती भी है। पिछले साल से ज्यादा जनसंख्या में इस बार जनता इसमें भीड़ उभरी है। सभी को लगता है कि नहीं, अपन हम भी कुछ समय निकाल करके पुण्य का भागी बने।
0: जाहिर है देश भर में रथ यात्रा महोत्सव के रंग बिखरे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक महाप्रभु की नगरी पुरी में है, जहां लाखों श्रद्धालु महाप्रभु के दर्शन पाकर धन्य हो रहे हैं। आज पुरी में सदियों पुरानी और बेहद खास हेरा पंचमी की परंपरा निभाई गई। इस अनूठे अनुष्ठान में माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से मिलने गुड़ीचा मंदिर पहुँचती है और रूठी हुई देवी लक्ष्मी तथा महाप्रभु जगन्नाथ के इस दिव्य मिलन की झलक देखने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। दिल्ली से आशुतोष कुमार, अकोला से धनंजय साबले, बेगूसराय से सौरभ कुमार और राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: पहाड़ों में आपको बता दें सावन की शुरुआत मैदानी इलाकों से करीब 15 दिन पहले हो जाती है और यही वजह है कि जब उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सावन शुरू होने का इंतजार होता है तब तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शिव शक्ति का उत्सव शुरू हो चुका होता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है देवभूमि में सावन की शुरुआत में आस्था का सैलाब। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सौर महीने की परंपरा का पालन किया जाता है, इसी वजह से पहाड़ों में सावन का महीना पहले शुरू हो जाता है जिसका आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके अलावा चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में रुद्रप्रयाग में बन रही 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है।

0: पहाड़ों पर सावन की खूबसूरत शुरुआत हो गई है और सावन के पहले सोमवार पर आस्था भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह की पहली किरण के साथ ही शिवालयों के द्वार भक्तों के लिए खुल गए और मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतार लग गई। सावन के पहले सोमवार पर देवभूमि उत्तराखंड में एक और शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में भगवान का जलाभिषेक करने पहुंचे।
1: पहाड़ों में आज सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में चमोली जनपद के जो पंच केदार है, चाहे बद्रीनाथ धाम में आदि केदार हो या फिर तमाम कल्पेश्वर महादेव के साथ इस समय जो जोशी मठ का ज्योतेश्वर महादेव है, जहाँ पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को दिव्य ज्योति ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पे ये कल्प जो अमर कल्प वृक्ष है, कहते हैं 2500 वर्षों से यहाँ पे ये अमर कल्प वृक्ष मौजूद है। और इस मंदिर के इस ठीक इसी के नीचे यहाँ पे ज्योतेश्वर महादेव, जिसकी आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पे स्थापना की थी, यहाँ पे श्रद्धालुओं की सुबह से भीड़ लगी है, तड़के सुबह से।
0: दूसरी ओर चारधाम यात्रा को और सुगम बनाने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना ने भी नई मंजिल हासिल कर ली। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए बनाई जा रही लगभग 900 मीटर लंबी टनल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का अंतिम चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। टनल को दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर डबल लेन मोटर पुल बनाया जा रहा है। पुल का निर्माण अंतिम चरण में है और इसे 31 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल तैयार होने के बाद उस पर वाहनों का ट्रायल किया जाएगा और अगर ट्रायल सफल रहता है तो जल्द ही इस मार्ग को आम लोगों और चारधाम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा।
2: 31 अगस्त के बाद इस पुल पर वाहनों का ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद पुल और टनल से वाहनों की प्रॉपर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं यह 900 मीटर लंबी टनल केदारनाथ एवं बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई है। टनल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और टनल के भीतर से वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है।
0: दरअसल रुद्रप्रयाग बाजार से गुजरने वाला बद्रीनाथ हाईवे काफी सकरा है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा सीजन में यहां अक्सर कई कई घंटों तक लंबा जाम लग जाता है। तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब 900 मीटर लंबी टनल और अलकनंदा नदी पर बन रहा डबल लेन मोटर पुल इस समस्या का स्थायी समाधान बनकर सामने आ रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग बाजार से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, वे जवारी बाईपास के रास्ते सीधे अपनी यात्रा की ओर बढ़ सकेंगे।
3: ये दोनों हाईवे श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम को जाने वाली सड़कें हैं, जो हाईवे वो आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं शहर के भीतर जो ट्रैफिक लगता है वो ट्रैफिक नहीं लगेगा। और चूंकि दोनों रोड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इनका आपस में जुड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा तीर्थ यात्रियों के सुविधा के दृष्टिकोण में।
0: खास बात है कि इस नए वैकल्पिक मार्ग के शुरू होने से न केवल रुद्रप्रयाग शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि चारधाम यात्रियों का सफर भी अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। यात्रा में लगने वाले समस्या की बचत होगी, ईंधन की खपत कम होगी और जाम में घंटों फंसने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।
2: टनल एवं पुल के बन जाने के बाद जो चार धाम की तीर्थ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री हैं, उन्हें रुद्रप्रयाग बाजार में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय लोग भी जो बाजार में जाम लगता था उससे परेशान नहीं होंगे।
0: जाहिर है ये टनल और पुल सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि चारधाम यात्रा को नई रफ्तार देने और रुद्रप्रयाग की वर्षों पुरानी जाम की समस्या का समाधान साबित होगा। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के 63 वर्षीय सुशीला देवी ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है। सुशीला की पांचवी के बाद पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन जिंदगी के 5 दशक गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर से किताबें उठाई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की 10वीं की परीक्षा में 79.6% अंक हासिल कर प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। 63 की उम्र में पास की 10वीं की परीक्षा। महेंद्रगढ़ जिले के गांव देवनगर निवासी 63 वर्षीय सुशीला देवी आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। बचपन में परिवार की सामाजिक सोच के कारण उनकी पढ़ाई पांचवी कक्षा के बाद रुक गई थी, लेकिन पढ़ने का जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। शादी के बाद भी वो नियमित रूप से अखबार पढ़ती रहीं और ज्ञान अर्जित करती रहीं। एक दिन बेटे विष्णु ने मां की पढ़ाई के प्रति रुचि को गंभीरता से लिया और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS से 10वीं का फॉर्म भरवा दिया। शुरुआत में 10वीं स्तर का मैथ, साइंस और अंग्रेजी का पाठ्यक्रम कठिन लगा, लेकिन बेटे बेटियों और पति के सहयोग से उन्होंने हार नहीं मानी। रोजाना 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर परीक्षा की तैयारी की। अप्रैल 2026 में आयोजित परीक्षा का परिणाम आया तो सुशीला देवी ने 79.6% अंक हासिल कर प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजी में 89, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 88, गणित में 78, पेंटिंग में 76 और हिंदी में 67 अंक प्राप्त किए। उनकी इस सफलता से पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
5: मैंने ऐसी जरूरत पड़ी कि जैसे भी गांव में सरपंची लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ी और पढ़ाई में तो फर्क है, पर फिर भी पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी पढ़ सकता है। जिसमें दिमाग होता है वो कभी भी शिक्षा कर पास कर सकता है।
6: अम्मा जी, आप कितने पढ़े लिखे थे पहले?
5: पहले तो मैं भाई 5 थी। जैसे मैं वजीफा में भी जाती, नाहड़ भी, क्वारड़ भी और झज्जर भी 2-3 दफा गई। ठीक है, पढ़ाई में बिल्कुल होशियार थी, पढ़ने की मेरी रुचि भी थी और विष्णु ने आके मेरी इंदसी कराई।
6: विष्णु आपका बेटा है?
5: विष्णु हाँ, मेरा बेटा है।
6: तो बेटे ने तैयारी करवाया?
5: बेटे ने तैयारी करवाई।
6: तो माँ जी कितने घंटे पढ़ते थे?
5: भाई कभी 2 कभी 4 ऐसे ही टाइम लगता था, जभी पढ़ती थी।
6: लेकिन माँ जी आपके टाइम में जो पढ़ाई थी, आप उस टाइम आपका मैथ अलग होता था, आपका जो मैथ है या फिर इंग्लिश है या जो भी है हिंदी है, काफी अंतर है, तो नहीं लगा कि आपको पढ़ाई बड़ी कठिनाई आई होगी?
5: भाई कठिनाई तो आती है, पढ़ने वाले को कठिनाई नहीं आती, टाइम लगता जब ही पढ़ लेती थी।
4: हमारे देश में दवा समय पर नहीं लेने की समस्या लाखों मरीजों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है, खासकर के बुजुर्ग और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीज अक्सर दवा लेना भूल जाते हैं। इसी समस्या का समाधान निकाला है धनबाद के DAV कोयला नगर के छात्रों ने। इन स्टूडेंट्स ने पिलसिप नाम की एक स्मार्ट बोतल विकसित की है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है पिलसिप से अब दवा भूलने की चिंता खत्म। ये स्मार्ट डिवाइस मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाती है और दवा नहीं लेने पर परिजनों के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट भेजती है। छात्रों ने इस अनोखे इनोवेशन को पेटेंट कराने के लिए भी आवेदन किया।
7: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। इन बीमारियों में उपचार की सफलता मरीज द्वारा निर्धारित समय पर दवा लेने पर निर्भर करती है। दवा लेना भूल जाने से स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में इस समस्या को हल करने के लिए DAV पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद के छात्रों ने पिलसिप स्मार्ट बोतल विकसित की है। इन छात्रों ने पिलसिप नाम से स्मार्ट मेडिसिन रिमाइंडर एवं डिस्पेंसर प्रणाली बनाई है। यह प्रणाली कम लागत, सरल संचालन और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन की गई है। यह स्मार्ट डिवाइस मरीजों को समय पर दवा लेने की याद दिलाती है।
8: यह प्रोजेक्ट वर्क करता है कि जब मतलब इसमें टाइम शेड्यूल रहता है पेशेंट को कौन सा मेडिसिन लेना है, तो जब भी वो मेडिसिन उनका टाइम होगा तो ये उसमें टच सेंसर होंगे, तो उसमें वो टच करेंगे और वो मेडिसिन डिस्पेंसर जो होगा वो ओपन हो जाएगा सर्वो की तरफ, और फिर जब मेडिसिन ले लेंगे तो उसमें दोबारा टच करेंगे तो वो मेडिसिन डिस्पेंसर क्लोज हो जाएगा। अगर पेशेंट ने मेडिसिन लेना अपना अगर भूल गया तो ये बजर बज होने लगेगा, इसमें एक बजर लगा हुआ है, बज होने लगेगा और उस बावजूद भी उसमें अगर मेडिसिन नहीं लिया तो केयर ट्रैकर के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, उसमें इनका नंबर दिया हुआ रहेगा।
7: पिल सिर्फ देखने में एक सामान्य पानी की बोतल जैसी है, लेकिन इसकी तकनीक इसे खास बनाती है। बोतल में दवाओं को रखने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट दिए गए हैं। ये कंपार्टमेंट कलर कोडेड होते हैं, यानी हर कंपार्टमेंट अलग रंगों से बना होता है। समय पर दवा लेने के लिए निर्धारित समय पर इसमें लगा अलार्म बजता है, जो मरीज को दवा लेने की याद दिलाता है। लेकिन अगर कोई समय पर दवा लेना भूल जाए तो ये तुरंत उनके परिजनों को मोबाइल पर SMS अलर्ट भेज देती है।
9: मैं और मेरे साथी जब भी किसी रिलेटिव या अपने घर में भी नोटिस करते थे, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें दवाई लेने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती थी और वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। तो जब भी अगर वो दवाई लेना चाहते थे तो अगर वो व्यक्ति उस घर में नहीं है या फिर वो उनका ध्यान नहीं दे पा रहा उस वक्त, तो उन्हें दवाई लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो हम लोग ने एक कलर कोडेड सिस्टम बनाया है इसमें, जिसमें दवाइयों के रंगों के हिसाब से और उनके समय के हिसाब से वो पर्टिकुलर कंटेनर उसी पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होता है। अगर किसी को शाम में लाल कलर की दवाई लेनी है तो लाल कलर का कंटेनर शाम को ही खुलेगा और उस हिसाब से उस पर नोटिफिकेशन या बजर जाएगा।
7: छात्रों का कहना है कि ये तकनीक विशेष रूप से बुजुर्गों और लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीजों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। छात्रों ने इस स्मार्ट हेल्थ डिवाइस को पेटेंट के लिए भी भेजा है। उनका मानना है कि आगे चलकर इसमें और आधुनिक फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जिससे मरीजों की दवा लेने की आदत बेहतर होगी और स्वास्थ्य सेवाएं भी अधिक स्मार्ट और प्रभावी बन सकेंगी।
10: जी, हम लोग इसके मॉडल पेटेंट के लिए हम लोग अप्लाई किए, तो संभावना है कि जल्द से जल्द हमें पेटेंट इसके लिए मिल जाएगी।
11: खासियत
10: यह है कि हर किसी के पास अभी समय नहीं रहता है कि अलग से मेडिसिन किट लेके चले वो, और हम लोग उसको वाटर बोतल के साथ इसको कॉम्पैक्ट किए हुए था कि उसमें आपको वाटर बोतल तो हर आदमी कैरी करता है, वाटर बोतल में ही हम लोग मेडिसिन को पिल्स को उसमें रहेगा और टाइम टू टाइम वो आपको नोटिफाई करेगा कि तो समय में कौन सा मेडिसिन आपको लेना है।
7: आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है दवाइयों को समय पर न लेने की समस्या, लेकिन इस स्मार्ट डिवाइस से मरीजों की नियमित दवा लेने की समस्या का समाधान हो जाता है और उनकी निगरानी करना आसान हो जाता है और साथ में लापरवाही की संभावना भी कम हो जाती है। सिथुक मोदक, धनबाद, गुड न्यूज टुडे।
4: पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक दूल्हे ने एक अनोखी पहल पेश की। दूल्हे तनवीर अंसारी ने सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को सड़क पर निकलकर हेलमेट बांटा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। हेलमेट से दूल्हे ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। सिर पर साफा बांधे और शेरवानी पहने दूल्हे तनवीर अंसारी ने अपने शादी के दिन एक अनोखा काम किया। अपनी शादी की रस्मों के बीच उन्हें बीच में छोड़कर तनवीर अपने दोस्तों के साथ सड़क पर निकल गए। यहाँ पर उन्होंने बाइक सवारों के बीच जागरूकता फैलाने की एक नई पहल की। यहाँ पर सड़कों पर जो बाइक सवार बिना हेलमेट के चल रहे थे, वहां पर उन्होंने उन बाइक सवारों को हेलमेट पहनाया और उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और उन्हें बताया कि बिना हेलमेट सड़कों पर गाड़ी चलाना बेहद असुरक्षित है। तनवीर की इस पहल का स्थानीय लोगों ने खूब स्वागत किया। दूल्हे तनवीर अंसारी पूर्वी वर्धमान जिले के बतार इलाके के एरुआड़ गांव के रहने वाले हैं और उनकी शादी रविवार को मंगलकोट के परेश ग्राम की रहने वाली प्रिया चौधरी के साथ होने वाली थी। इस मौके पर दूल्हे तनवीर अंसारी ने कुछ अनोखा काम करके समाज सेवा में हिस्सा लेने की पहल की। उन्होंने बाइक चलाने वालों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अभियान को बढ़ावा देने के साथ साथ कई बिना हेलमेट राहगीरों को नए हेलमेट बांटे। उन्होंने अपनी शादी के मौके पर 25 हेलमेट बांटे और इसके अलावा वन सप्ताह के उपलक्ष्य में लगभग 100 पौधे लगाए गए और वंचित छात्रों को किताबें, नोटबुक और पेन वितरित किया। आगरा में 6 दिन से लापता पालतू तोता माऊ आखिरकार अपने परिवार के पास लौट गया है। पालतू तोते माऊ की तलाश में परिवार ने पूरे शहर में होर्डिंग लगवाए थे और उसे खोज कर लाने वाले के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर दावा किया कि माऊ उनके पास है। इसके बाद उन्होंने 50,000 रुपए दिए और माओं को वापस अपने साथ ले आया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है 6 दिन बाद लौटा परिवार का लाडला तोता। देखिए, आगरा में रहने वाले इनकम टैक्स के एक वकील सुनील सिंह से जुड़ी एक कहानी है। दरअसल सुनील सिंह का पालतू तोता माऊ पिछले दिनों खो गया था, जिसके बाद पूरा परिवार माऊ की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। इसके बाद सुनील सिंह ने ऐलान किया कि जो भी उनके तोते को ढूंढेगा वो उसे 50,000 रुपए इनाम देंगे। ऐसे में रविवार को सुबह उन्हें एक अज्ञात कॉल आया। पहले उन्हें शक हुआ, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉल पर तोता देखने के लिए कहा। वीडियो कॉल में माऊ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। इसके बाद वो शास्त्रीपुरम इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे, जहां चेहरे पर कपड़ा बांधे एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए लेकर माऊ उन्हें सौंप दिया। माऊ के घर लौटते ही पूरा परिवार भावुक हो गया। घर लौटने के बाद माऊ अपनी मालकिन ममता सिंह के कंधे पर बैठ गया। वो एक एक कर परिवार के सभी सदस्यों के नाम पुकारता है। इस मौके पर परिवार ने उसकी पसंद का देसी घी का डोसा और फल खिलाकर उसका स्वागत किया।
12: मेरे पास एक सज्जन आते हैं, वो इसका वीडियो अपने मोबाइल में लेके आते हैं और दिखाते हैं, तो मैंने इसकी पहचान कर ली और वीडियो कॉल से इसकी बात कराते हैं अपने ही फोन से। जो मैंने देखा और मैंने इसकी पहचान करी कि ये हमारा ही माऊ। फिर उन्होंने हमें इंडस्ट्रियल एरिया में बुलाया, हम वहीं पे गए जो उन्होंने लोकेशन दी थी। वहाँ पे उन्होंने इनाम की धनराशि हमसे ली। गिनने के बाद में उन्होंने हमारा माऊ हमें दे दिया। वो एक इतनी छोटे पिंजरे में था जो शायद ही ढंग से घूम भी नहीं पा रहा। जब हम वहाँ से उसे लेके आए, हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए, हमने डॉक्टर से इसका चेकअप कराया। डॉक्टर ने बताया कि इसके पैर काफी कमजोर हो चुके हैं और इसकी गर्दन भी थोड़ी सी सूखी हुई है, तो शायद ही 15 दिन में सही हो पाएगा। परिवार पूरा खुश है एकदम, क्योंकि पहले जैसी खुशियां वापस आ गई हैं, क्योंकि हमारे जो परिवार के सदस्य था ये वापस हमें मिल चुका।
4: अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गंगा का डंका बज रहा है। इस चैंपियनशिप में करनाल के रहने वाले गंगा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दो दो यूथ वर्ल्ड चैंपियन को हराकर गंगा ने 55 किलोग्राम वजन कैटेगरी में गोल्ड जीता है। गंगा का करनाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज, अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में गंगा का कमाल है। दरअसल करनाल के गंगा चौहान ने अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वो 55 किलोग्राम वजन कैटेगरी में खेलते हैं। ये चैंपियनशिप इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई थी, जहां पर पूरे एशियन कंट्री के खिलाड़ी पहुंचे हुए थे। गंगा ने सेमीफाइनल में जापान के यूथ वर्ल्ड चैंपियन रह चुके खिलाड़ी और फाइनल में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया। वो भी एक समय में यूथ वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। गंगा ने बॉक्सिंग की शुरुआत करनाल के कर्ण स्टेडियम से बचपन में की। उसके कई साल बाद प्रैक्टिस करने के बाद JSW से अपनी ट्रेनिंग लेनी शुरू की और उसके बाद कई नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। गंगा ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा और अब गंगा ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। गंगा अपने बड़े चचेरे भाई और बॉक्सर निशांत देव को आइडल मानते हैं। निशांत ओलंपिक भी खेल चुके हैं, वहीं गंगा का सपना ओलंपिक में मेडल जीतना है।
13: एशियन बॉक्सिंग की ट्रायल्स हुई थी पटियाला में, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं एक महीने से इंडिया कैंप में ही था, तो उसके बाद हम इंडोनेशिया जकार्ता गए। 3 तारीख को वहाँ पर पहुँचे, 3 से 17 तारीख की वापसी थी हमारी। तो वहाँ पे हमारा कंपटीशन था जकार्ता इंडोनेशिया में। मेरी 4 बाउट हुई है और सेमीफाइनल और फाइनल मेरी दोनों यूथ वर्ल्ड चैम्पियंस के साथ हुई थी, एक जापान के साथ और कजाकिस्तान के साथ। तो अच्छी, बहुत सारी फाइटें अच्छी गई, कोई प्रेशर नहीं था, बस मैं अपना गेम खेला और जीता।
4: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
15: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
16: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
17: I think we still can win the World Cup. Squad.
16: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
4: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: में बैनर मार्च करती सेना, इनसाइड स्टोरी क्या। अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का लेटेस्ट वीडियो। इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके के वीडियो का सच। संस्कार हो तो ऐसे। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पूरी मेहरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई घटना पुरानी बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये जो बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का यही लेटेस्ट वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका होने से इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवान हाथ में बैनर लिए हुए कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का लेटेस्ट वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
6: अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि चीन की सेना ने भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। वीडियो में किसी पहाड़ी रास्ते पर हथियारबंद सैनिकों को देखा जा रहा है। कुछ सैनिकों के हाथों में बैनर और झंडे भी देखने को मिल रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 60 किलोमीटर अंदर कब्जा कर लिया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवानों को देखा जा सकता है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें एक बैनर नजर आया, इसमें नेपाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अगर वीडियो चीनी सेना का है तो फिर इसमें नेपाली भाषा में लिखा हुआ बैनर क्यों नजर आ रहा है, ये हमें थोड़ा अटपटा लगा। इसके अलावा सेना के जवानों के साथ कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वीडियो अगर घुसपैठ का है तो फिर इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वायरल हो रहा वीडियो चीनी घुसपैठ का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर चीनी घुसपैठ के साथ जोड़ते हुए वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है इस वीडियो में जानिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई, वीडियो का सच झूठ जानने के लिए इसकी तहकीकात में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम नेपाल

0: भी देखने को मिले। यहाँ नेपाल की भाषा में दी गई जानकारी को हमने ट्रांसलेट किया। इससे पता चला कि ये तस्वीर गोरखा जितगड़ी यात्रा की है। जितगड़ी में बैसाख 7 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1872 में नेपाल से हारने के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की याद में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल के एक दूसरे न्यूज पोर्टल में भी इस वीडियो से संबंधित खबर देखने को मिली। इसमें वीडियो की कीफ्रेम का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक नेपाली सेना की ऐतिहासिक एकीकरण यात्रा गोरखा दरबार से जीतगढ़ी तक शुरू हो गई है। रुद्रध्वज गण के गणपति विरोध रिजाल ने बताया कि ये यात्रा बैसाख की 6 तारीख को जितगढ़ी पहुंचेगी और अगले दिन जीत के जश्न में शामिल होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई लड़ाई में मिली जीत को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। एक और न्यूज पोर्टल में भी इस बारे में खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें भी से नेपाली सेना की यात्रा की तस्वीर बताया गया है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि ये वीडियो नेपाली सेना का है जो गोरखा से जितगढ़ी एक समारोह में शामिल होने जा रही थी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो पोस्ट कर दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर चुकी है। सरकार और सेना की तरफ से इसके दावे का खंडन किया गया है। भारतीय सेना के मुताबिक हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट देखी जिनमें आरोप लगाया गया है कि हाल ही में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं। ये रिपोर्ट गलत है, इनका कोई आधार नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन दावों को खारिज कर दिया कि चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों की ओर से सीमा पार करने की घटनाएं होती रही हैं, क्योंकि सीमा स्पष्ट रूप से तय नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजिजू ने साफ कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। सीमा तय न होने की वजह से दोनों तरफ से सीमा पार करने की घटनाएं होती रहती हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो नेपाल का है। वहां नेपाली सेना ने गोरखा से जितगढ़ी तक समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से चीन की किसी भी घुसपैठ से इनकार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी में अचानक धमाका होता है, उसे चला रहा युवक उछलकर दूर कहीं गिर जाता है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
0: इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने और धमाके की खबर अक्सर सामने आती रहती है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 66 में एक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने से एक इमारत में आग लग गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों स्कूटर ब्लास्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक चलते हुए स्कूटर में जोरदार धमाका होता है और इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटर की सीट निकलकर अलग हो जाती है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि चलती ईवी स्कूटी की बैटरी में धमाका, चालक कई फीट दूर जा गिरा। चलती हुई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक तेज धमाका होने के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया। हादसे में चालक सड़क किनारे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत चालक की मदद की। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका होने के बाद सवार आदमी हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटी की सीट निकलकर अलग हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि वीडियो भारत का नहीं है। इसके अलावा वायरल वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखने पर इसमें ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। धमाका होने से पहले ही धमाके जैसी रोशनी नजर आने लगती है और स्क्रीन पर पीला रंग नजर आता है। धमाके के बाद आदमी की बॉडी हवा में अजीब सी दिखाई देती है, मानो उसके शरीर को धमाके से नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगले ही पल बॉडी बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही है। धमाके के बाद स्कूटर अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे घूमता हुआ नजर आता है, जो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा था। धमाके के वक्त स्कूटी की सीट हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद अचानक से पेड़ों के बीच से सामने आ जाती है। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर ये दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है, ये वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो से जुड़ी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूटी में धमाका होने से कुछ सेकंड पहले ही इस पर सवार आदमी अपनी सीट से ऊपर उठ जाता है, लिहाजा ऐसे में हमने वीडियो को हाई मॉडरेशन टूल की मदद से सर्च किया। इस टूल ने फोटो के करीब 62% तक AI से बने होने की संभावना जताई। इस टूल ने सिडांस 2 की मदद से वीडियो के बने होने के संकेत दिए। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वीडियो के कई की फ्रेम निकाले और उन्हें दूसरे AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से सर्च किया। हमने साइट इंजन की मदद से की फ्रेम को सर्च किया। इस टूल ने 99% तक की फ्रेम के AI की मदद से बने होने की संभावना जताई। AI डिटेक्शन टूल अनडिटेक्टेबल ने भी की फ्रेम को AI की मदद से बना हुआ बताया। सर्च के दौरान हमें वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 10 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो को व्यंग के उद्देश्य से शेयर किया गया। इस अकाउंट को खंगालने पर हमने पाया कि इसके बायो में बताया गया है कि इस पेज पर AI और VFX से जुड़े वीडियोस शेयर किए जाते हैं। यहाँ वायरल वीडियो से मिलते जुलते ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें गाड़ियों में धमाका होते और लोगों को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। साफ है इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके का वीडियो फर्जी है। असल में वायरल हो रहे इस वीडियो को AI की मदद से ही बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start

0: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची

0: खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: आ गए सैलाब से बचाने वाले देवदूत। बद्री केदार यात्रा का सुगम हाईवे तैयार। विघ्नहर्ता के स्वागत में सज गया बाजार। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
3: सोशल मीडिया पर ये प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाई बहन के स्नेह से भरा ये मासूम पल लोगों को अपना बचपन याद दिला रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में एक स्कूल का सीन दिखाई देता है। लंच ब्रेक के दौरान कुछ छोटे छोटे बच्चे जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर बड़े आराम से खाना खाने में लगे हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसी बीच कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो जाता है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में एक भाई बहन भी बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन बहन अपने छोटे भाई का जिस तरह से ध्यान रखती है वो हर किसी को भावुक कर देता है। पहले वो खुद अपने टिफिन से एक निवाला खाती है और फिर उसी हाथ से अपने छोटे भाई को प्यार से खाना खिलाती है। भाई भी बड़े आराम से अपनी बहन के हाथ से खाना खाता रहता है। दोनों के चेहरे पर मासूमियत साफ नजर आती है और यही मासूम रिश्ता लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता, ना किसी तरह की स्क्रिप्ट नजर आती है और ना ही कैमरे के लिए कोई दिखावा। ऐसा लगता है जैसे स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया हो। शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को आसानी से जोड़ पा रहे हैं। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा देता है। वो खुद के लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर शिकन नहीं आने देता। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के संघर्षों को समझते हैं और उन्हें कोई खूबसूरत तोहफा देते हैं, तो वो पल बेहद खास बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी ने अपने पिता को उनके 50वें जन्मदिन पर एक चमचमाती बाइक गिफ्ट की है। इस प्यारे सरप्राइज को देखकर पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए और वीडियो देखने वाले लाखों लोग भी भावुक हो गए। अचानक मिले सरप्राइज से पिता इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया, जिसने इस पूरे प्लान को अंजाम देने में बहन की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर जुड़ी अपनी बेटी से बात की और खुशी के आंसू बहाते हुए उसे इस शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद किया।
4: हैप्पी बर्थडे डैडी।
3: सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोस खूब पसंद किए जाते हैं जो ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने दिव्यांग कुत्ते की मदद कर लोगों की खूब तारीफ बटोरी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। इसी दौरान एक दिव्यांग कुत्ता सड़क पार करने की कोशिश करता है, लेकिन भारी ट्रैफिक की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तभी वहाँ मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की नज़र उस कुत्ते पे पड़ती है। वो बिना देर किए सड़क के बीच पहुँच जाता है और आने वाली गाड़ियों को रोकने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड्स में वाहन रुक जाते हैं और पुलिस कर्मी कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराने में मदद करता है। इसके बाद कुत्ता आराम से दूसरी ओर पहुँच जाता है। ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे पाकिस्तान के सिंध इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक चाय पकौड़े वाले का देसी जुगाड़ देखकर हर कोई बोल रहा है, भाई ये बंदा तो जीनियस है। वीडियो में दिखता है कि एक दुकानदार सड़क किनारे अपनी बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े तल रहा है। कढ़ाई में तेल खूब गर्म है और पकौड़े छन छन कर तले जा रहे हैं। अभी तक तो सब नॉर्मल लगता है, ट्विस्ट तब आता है जब कैमरा थोड़ा जूम होता है। उसी कढ़ाई के अंदर गरम तेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टील का बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में चाय उबल रही है। एक ही कढ़ाई में नीचे पकौड़े तले जा रहे हैं और ऊपर रखे बर्तन में चाय पक रही है। देखने वाला पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन दुकानदार का लॉजिक एकदम साफ है। वो सीधे तेल में चाय नहीं बना रहा है, वो तेल की गर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। कढ़ाई का तेल इतना गर्म है कि उसके ऊपर रखा बर्तन अपने आप गर्म हो जाता है और उसी हीट से अंदर चाय उबलने लगती है। मतलब अलग से गैस जलाने की जरूरत ही नहीं, एक चूल्हे पर दो काम, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और जमकर इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक खेत दिखाई देता है जहां सामान्य तौर पर ट्रैक्टर से होने वाला काम ई रिक्शा की मदद से किया जा रहा है। आमतौर पर खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी को आसानी से पलट सके। लेकिन इस वीडियो में लोगों ने ई रिक्शा के साथ ऐसा जुगाड़ किया है कि वो भी खेत जोतने का काम करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक सुकून भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक रात में पहाड़ों के बीच गिटार पर धुन बजाता दिख रहा है। बिना शब्दों की ये धुन सीधे दिल को छू रही है। नेचर और म्यूजिक के इस जादू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे धुन बजती है लगता है मानो पहाड़ भी उसे सुन रहे हैं। वो म्यूजिक इतना सॉफ्ट और इमोशनल है कि सुनते ही मन एकदम शांत हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड कर जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब बात अपने भारतीय गानों और डांस की हो तो भैया दुनिया के किसी भी कोने में लोग पैर थिरकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक ऐसा ही दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक व्यस्त बाजार में एक भारतीय लड़की ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गाने पर ऐसा रंग जमाया कि वहाँ मौजूद विदेशी गोरे भी उसके साथ भांगड़ा करने पर मजबूर हो गए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। कहीं राहत कहीं आफत, लेकिन इस सैलाब के बीच कैसे जारी है मिशन जिंदगी आगे आपको दिखाएंगे। सुरंग और पुल के जरिए बद्री केदार की यात्रा होगी और सुगम, घंटों का सफर मिनटों में होगा तय। और विघ्नहर्ता के स्वागत की तैयारी में इस बार क्या है खास, आगे देखिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। टीआईटी भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब। सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी भी तरह की कोई जांच। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की बाढ़, बारिश और रेस्क्यू के साथ, क्योंकि देश में मॉनसून एक्टिव होते ही कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। खासतौर पर अगर हम उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें, वहां लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसका असर जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। और इन हालातों में जगह जगह पर लोगों को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, जिसके तहत अब तक कई जिंदगियों को बचाया जा चुका है।

0: देश में मॉनसून के फिर एक्टिव होते ही नदी नाले उफान पर आ गए हैं। चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य, नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं उफान पर बह रही नदियों का पानी पूरी रफ्तार के साथ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है, और कहीं नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। इन हालात में लोगों को बचाने के लिए जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर जम्मू से सामने आई, जहां तवी नदी का पानी अचानक बढ़ने से 3 युवक फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम फौरन एक्शन में आई और उसने युवकों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, जिसके तहत एनडीआरएफ के जवान एक बोट के सहारे उफनती हुई नदी को पार कर युवकों तक पहुंचे और उन्हें बोट पर बैठाकर किनारे पर ले आए। राज्य में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
1: इन्होंने फोन किया कि पानी आ गया और आप पुलिस को फोन करो। हमने मीडिया वालों को फोन किया था तो मीडिया वालों ने फोन कर दिया पुलिस को भी।
2: फिर ये अभी क्या एनडीआरएफ की टीम आई है?
1: हाँ आई है, वो ले आए उनको पास है।
2: कितने लोग थे ये?
1: 3 लड़के हैं ये।
3: पिछली बार भी अभी 10 दिन पहले ही हमने 4 बंदों को रेस्क्यू किया था। अभी भी हमने इनको बताया, वो उस दिन भी हमने बताया था कि आप तभी के किनारे ना घूमें क्योंकि तभी का कभी भी फ्लो बढ़ सकता है। और ये जब ये अभी प्ली ले बच्चे जो जिनको बचाया हुआ तो ये कह रहे हैं कि सुबह पानी कम था तो हम क्रॉस कर गए। तो अब यही है ना कि अगर पानी कम था तो आप ये क्रॉस कर गए हैं तो अल्टीमेटली इनको वापस लाने में तो परेशानी, अभी पानी बढ़ता जा रहा है और ये पीछे उधमपुर एरिया में अभी बारिश हुई है, ये फिर बढ़ जाएगा। तो कहीं अब भी तो हम टाइमली पहुंच गए। तो हमारा यही है कि पब्लिक, जनरल पब्लिक से यही है कि आप तभी के किनारे ना जाएं और अपने बच्चों को और अपने जो भी आपके कंसर्न है उनसे तभी के किनारे थोड़े ये रेनी सीजन में थोड़ा दूर है।
0: ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ घंटों पहले सेना के जवानों ने राजौरी में पुलिस और एसडीआरएफ के साथ मिलकर चलाया। वहां व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनों को अंजाम दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उफनते नालों और नदियों के बीच फंसे 5 मासूम बच्चों समेत कुल 11 लोगों की जान सुरक्षित बचा ली गई।
4: जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से इस समय अगर हम देखें तो इस कार्य में जुटा हुआ है कि लोग जो हैं कहीं फंसे ना, क्योंकि कई इलाकों से खबरें आई थी कि लोग बाढ़ के पानी में फंसे थे। इसलिए भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनकी टीम्स अलग अलग स्थानों पर है। खासतौर पर जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर टीम्स तैनात कर दी गई है ताकि अगर कोई बड़ी स्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके। तो टीम्स हर जगह पर रवाना कर गई है, प्रभावित क्षेत्रों में इस समय टीम्स हैं और यही प्राथमिकता है कि जो लोग इस समय बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए।
0: भारी बारिश के कारण कमोबेश ऐसा ही हाल देवभूमि उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। वहां लगातार बारिश के कारण नदी और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए तमाम राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, जिसकी बदौलत देहरादून में 7 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। बताया गया कि ये सभी लोग संतला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलते ही फौरन पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। कुछ घंटों बाद सभी लोगों को सकुशल बचा लिया गया। बारिश के कारण बने हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों और झरनों के आसपास जाने से बचें।
5: संतला देवी माता मंदिर के पास नून नदी में 7 से ज्यादा लोग फंस गए, जिनको बमुश्किल रेस्क्यू किया गया। और इसके साथ ही देहरादून के माल देवता क्षेत्र में एक लैंडस्लाइड देखने को मिला। दूसरे क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो चमोली और पौड़ी में कई जगह रास्ते भी बाधित हो गए। चमोली में मलबा आने से एक बोलेरो भी फंस गई। और नदियों की अगर हम बात करें तो लगातार रुद्रप्रयाग और चमोली में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही है।
0: उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम के शिवसागर, जोरहाट और चराई देव जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी के कारण बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। निचले इलाकों में अनेक गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ का पानी घरों और खेतों में घुस गया है, जबकि कई सड़कों और संपर्क मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ का सामना कर रहे इलाके से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, जहां उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया गया है।
6: लोग ईटानगर से ये टीम आया है और कल शाम को हम लोग चला था, आज सुबह यहाँ 4 बजे पहुँचा है। उसके पश्चात यहाँ पर हमने रेस्क्यू का काम आरंभ किया है और अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा आदमी को यहाँ से निकाल चुके हैं।
0: मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, चाहे उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हों या फिर पूर्वोत्तर के राज्य असम और मेघालय हों।
3: और हमारा अनुमान यही है, पूर्ण अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखें मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर मुख्य रूप से मेघालय में और असम में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मेघालय में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।
0: मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने सभी एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निचले और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, देहरादून से अंकित शर्मा, जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अगली खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है। चारधाम यात्रा में हजारों भक्त रोजाना बाबा केदार और बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के लिए रुद्रप्रयाग से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा सुगम, सुरक्षित और कम समय में पूरी होगी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर बन रहा 200 मीटर लंबा डबल लेन पुल अपने अंतिम चरण में है और 900 मीटर लंबी सुरंग भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इस नए रूट से यात्रियों का घंटों का सफर महज मिनटों में सिमट जाएगा। 31 अगस्त से इस पुल पर वाहनों का ट्रायल शुरू हो रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो फिर यात्रा के तीसरे चरण में तीर्थ यात्री इस नए हाईवे से सफर कर पाएंगे।

0: चारधाम यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। एक ऐसी पावन यात्रा जिसमें हर साल लाखों भक्तों का हुजूम उमड़ता है। हर आस्थावान अपनी जिंदगी में एक बार इस दिव्य और भव्य यात्रा को पूरा करना चाहता है। अब इस पावन यात्रा को पहले से ज्यादा सुगम, सुरक्षित और आसान बनाने की दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में जोड़ने का सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में दोनों हाईवे को जोड़ने के लिए बनाई जा रही 900 मीटर लंबी टनल का काम अब पूरा हो चुका है। लेकिन गुड न्यूज सिर्फ ये नहीं है, बल्कि खबर ये है कि टनल के साथ ही अलकनंदा नदी पर बन रहे 200 मीटर लंबे पुल का काम भी अब अंतिम दौर में है।
1: बद्रीनाथ एवं केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबी टनल के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 31 अगस्त के बाद इस पुल पर वाहनों का ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद पुल और टनल से वाहनों की प्रॉपर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, यह 900 मीटर लंबी टनल केदारनाथ एवं बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई है। टनल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और टनल के भीतर से वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है। टनल के ठीक सामने अलकनंदा नदी पर इस पुल का निर्माण कार्य भी लगभग अंतिम चरण में है।
0: असल में टनल का निर्माण पूरा होने के बावजूद केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ना एक पुल के बिना नामुमकिन था, क्योंकि रुद्रप्रयाग में दोनों हाईवे के बीच अलकनंदा नदी बहती है। ऐसे में 900 मीटर लंबी टनल के बाद अलकनंदा नदी को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन अब इस चुनौती को पार करने वाला पुल लगभग तैयार है। करीब 156 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये पुल जल्द ही आम जनता के लिए खोला जा सकता है, जिसके बाद श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में लगने वाले जाम से भी निजात मिल जाएगी।
2: पुल जो है वो लगभग 200 मीटर लंबा है और जो पुल से जुड़ने वाली टनल वो लगभग 900 मीटर लंबी है, और हमारा पूरा प्रयास है कि 31 अगस्त तक पुल हो जाए और उसके बाद इसकी प्रॉपर ट्रायल एंड टेस्टिंग अनलोडिंग करने के बाद ही इसको निर्माण स्कूल खुले।
0: माना जा रहा है कि आगामी 31 अगस्त तक पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद लोड टेस्ट किया जाएगा, यानी पुल पर भारी और हल्के वाहनों का ट्रायल रन शुरू होगा। फिलहाल टनल और पुल का काम पूरा होना चारधाम यात्रियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि रुद्रप्रयाग का जाम सालों से चारधाम यात्रियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। अब तक श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग शहर के बेहद सकरे बाजार से होकर गुजरना पड़ता था। पीक यात्रा सीजन में इस सकरे रास्ते पर घंटों लंबा जाम लग जाता था और यात्रियों को रुद्रप्रयाग पार करने में ही 1 से 2 घंटे और कई बार 3 घंटे तक का समय लगता था। लेकिन इस टनल और पुल के शुरू हो जाने के बाद गाड़ियां रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में लगने वाले जाम में बिना फंसे निकल सकेंगी। उन्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे जवारी बाईपास होते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए निकल जाएंगी। अभी ऋषिकेश से सोनप्रयाग यानी केदारनाथ बेस कैंप पहुंचने में 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन टनल और ब्रिज के खुलने के बाद ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। जबकि बद्रीनाथ धाम तक जाने के लिए पहले 10 से 11 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये सफर लगभग 9 घंटे में पूरा हो सकेगा, यानी सीधे तौर पर 1.5 से 2 घंटे की बचत होगी।
2: ये दोनों हाईवे श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम के जाने वाली सड़कें हैं, जो हाईवे को आपस में जोड़ जाएंगी। इससे कहीं ना कहीं शहर के भीतर जो ट्रैफिक लगता है वो ट्रैफिक नहीं लगेगा, और क्योंकि दोनों रोड्स बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका आपस में जुड़ना काफी इम्पोर्टेंट होगा तीर्थ यात्रियों के सुविधा की दृष्टि।
0: एक तरफ इस टनल और पुल से तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए भी ये किसी सौगात से कम नहीं है। फिलहाल सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि पुल के अंतिम हिस्से पर फिनिशिंग की जा रही है। सुरंग में लाइटिंग और रेलिंग का काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 31 अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा और चारधाम यात्रा पहले से ज्यादा आसान और सुगम हो जाएगी। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए बढ़ते आगे, बात गणेश उत्सव की तैयारियों की करेंगे। भले ही अभी बप्पा के आगमन में लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बप्पा के दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा पंडाल के ठीक बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में, जहां पर बप्पा के बैठने के लिए एक से बढ़कर एक भव्य और अनोखे आसन मौजूद हैं। अलग अलग डिजाइन के ये सभी आसन पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं।

0: बप्पा के स्वागत की रंगत अभी से दिखने लगी है। बाजार में गणपति उत्सव की तैयारियों की रौनक उमड़ने लगी है। गणेश चतुर्थी में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बप्पा के स्वागत का रंग मुंबई में कुछ अलग ही होता है। इसका अंदाज आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां लगभग 2 महीने पहले ही गणेश जी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर बहते झरने जैसा वाटरफॉल आसन यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से लेकर महाराजा सिंहासन और माता लक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बप्पा के इस आसन को चुन रहे हैं।
2: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
3: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे हैं। उसमें से मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा। ये 3 डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
4: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: हर साल बप्पा के स्वागत के लिए भक्त जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहे तो वो भी मुमकिन है। इस सहेली कार्यशाला में भक्त रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से बप्पा के लिए आसन तैयार कर सकते हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: जब मौका बप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स, उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं।
1: सिर्फ यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
5: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप किए जो रिसाइकलिंग भी है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकल
1: इको फ्रेंडली है,
5: छोटा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रो मटेरियल पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर चाहिए कि देख जाओ, वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ रो मटेरियल मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
5: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यूट आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगाए हुए वो टाइप के है, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगी सर।
1: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
5: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
5: साल भर हम लोग बापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबा के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
0: इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाला सारा सामान जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। इस बार देश भर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होगा। ऐसे में गणपति उत्सव की रौनक अभी से चारों तरफ दिखने लगी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
6: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बखुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि व्रत और उपवास रखने के फायदे क्या हैं और कौन सा व्रत रखने से आप अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात 8:49 तक, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 7:54 तक, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं व्रत और उपवास के बारे में। व्रत और उपवास का महत्व क्या है? देखिए, व्रत या उपवास जो रखा जाता है वो वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना होता है और आध्यात्मिक रूप से व्रत रखने से मन और आत्मा को नियंत्रित किया जाता है। ये जो अलग अलग तिथियां हैं और अलग अलग दिन हैं, ये अलग तरीके से मन पर और शरीर पर असर डालती हैं। इसको ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास रखा जाता है या व्रत रखा जाता है कि आपके मन पर इसका सही प्रभाव पड़े। विशेष तिथियां जैसे एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष, अमावस्या या विशेष दिन सोमवार, मंगलवार, रविवार, इनमें जब आप सोच समझकर व्रत उपवास रखते हैं तो शरीर और मन शुद्ध होता है, मनचाही इच्छाएं भी
आपकी पूरी होती हैं। यानी व्रत उपवास का जो नियम बनाया गया है वो इस आधार पर बनाया गया है कि अलग अलग तिथियों का, अलग अलग दिनों का आपके ऊपर अच्छा और सही प्रभाव पड़ सके। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन और भी अच्छा होगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, वैसे तो साल भर में बहुत सारे व्रत आते हैं, बहुत सारे उपवास आते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि कौन से व्रत सबसे महत्वपूर्ण हैं और इनके फायदे क्या हैं। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष और नवरात्रि के माने जाते हैं। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का या अमावस्या का व्रत रखने से हार्मोन की समस्या ठीक होती है और आपके मनोरोग, आपकी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। वर्ष में दो बार संधियां पड़ती हैं जब ऋतुओं में बड़ा परिवर्तन होता है, उस समय शरीर की धातुओं को ठीक रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नवरात्रि के व्रत का नियम बनाया गया है। वर्ष में केवल दोनों नवरात्रि का उपवास रखने से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और साल भर स्वस्थ रह सकते हैं। महीने में दो एकादशी, दो प्रदोष, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है,
तो या तो दोनों एकादशी का व्रत रखें, या दोनों प्रदोष का व्रत रखें, या एक पूर्णिमा और एक अमावस्या का व्रत रखें। और अगर हर महीने ऐसा नहीं कर पाते तो पूरी नवरात्रि में, चैत्र वाली में यानी अप्रैल वाली में, और आश्विन वाली यानी अक्टूबर वाली नवरात्रि में 9-9 दिन का अगर आप व्रत रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अपना टाल दीजिए, परिवार में शांति बनाए रखें, लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि आप कोई भी व्रत रखते हैं उसके नियम क्या हैं। देखिए, व्रत दो तरीके से रखा जाता है। एक है निर्जल व्रत, यानी जिसमें पानी की एक घूंट भी नहीं पिएंगे, और एक है फलाहारी व्रत, फल खाकर या जल पीकर व्रत रखना। सामान्यतः निर्जल व्रत जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को जल पीकर, लिक्विड लेकर या फल खाकर उपवास रखना चाहिए। देखिए, उपवास का मतलब होता है, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, किसके निकट रहना, ईश्वर के निकट रहना। तो व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में आप लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खान पान में रस वाले फल, कंद, मूल, जल, दूध या दही का सेवन करें। अब ऐसा नहीं कि कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, शामक के चावल, बाकला की दाल, ये सब मत खाइए, फिर व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि केवल नींबू पानी पीकर या फलों का लिक्विड रस पीकर व्रत रखिए और पूरा समय भगवान की पूजा में लगाइए।
शाम के समय जब आप पूजा कर लेते हैं या शाम के समय जब आप अर्घ दे लेते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फल खाना चाहिए। व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पी करके करना चाहिए, और अगर संभव हो तो अगले दिन व्रत समाप्त करने के पहले भोजन या अन्न का दान करना चाहिए, उसके बाद अनाज खा करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। अब जानते हैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, धन के लिए कौन सा व्रत अच्छा है। देखिए, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में सबसे ज्यादा अच्छा है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करें या अपने इष्ट देव की पूजा करें, नमक और अन्न का सेवन ना करें, जहां तक हो सके जल वाले आहार लिक्विड डाइट लेना चाहिए। और एकादशी के व्रत में अगर गुरु मंत्र मिला है तो अपने गुरु मंत्र का जप करें या विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, व्रत और उप

हो लेकिन उसको खा करके व्रत रखने से फायदा नहीं होगा। और जब आप कम से कम आहार ग्रहण करके उपवास रखेंगे और अपना समय पूजा उपासना में या ध्यान में पूरे दिन भर या पूरी रात भर लगाएंगे, तब आपको व्रत का असली फायदा मिलेगा, आपकी मुश्किलें, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। तो आज हमने बात की व्रत और उपवास के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है तो चांदी का एक गिलास खरीद लें, जब भी पानी पिए, जब भी लिक्विड लें, चांदी के गिलास से पिए तो अच्छा होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
0: It was to live sports action.
2: To the near side corner, to wrap around, he scores!
0: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई पड़ाव होते हैं, कई रफ्तार होती है। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, यूपी के मुख्य सचिव SP गोयल के साथ DGP राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। ओगरनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु, भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच NDRF, SDRF और सेना के जवान मुस्तैद, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने पर काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, 4 साल से 60 वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत। और शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा पहाड़ों के सावन सोमवार पर उमड़े आस्था के सैलाब की है। तो गुप्त नवरात्रि पर माँ बगलामुखी के दर्शनों को उमड़े लाखों श्रद्धालुओं की भी है।
8: उत्तराखंड के बागेश्वर के पहाड़ों के सावन के पहले सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन और जलाभिषेक किया। भक्तों ने यहां जमकर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। चमोली में भी सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। शिवालयों में सुबह से जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी थी। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन और जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस ने भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहां विशेष इंतजाम किए थे। MP के आगरमालवा जिले के माँ बगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रि के चलते भक्त बड़ी संख्या में माँ के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। रविवार को तो मंदिर में इतने श्रद्धालु आए कि आसपास और नगर भर में वाहनों का रेला लग गया। पुलिस प्रशासन ने जैसे तैसे यहां भक्तों और वाहनों की व्यवस्था को संभाला। माता के दर्शनों के लिए देश भर से लाखों भक्त पहुंचे हैं और मां के दर्शन पूजन कर रहे हैं और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में मिस टीन डीवा 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें देश भर की 37 फाइनलिस्ट ने हिस्सा लिया था। इस भव्य प्रतियोगिता में मेघालय की ऐश्वर्या मलंग ने मिस टीन अर्थ इंडिया 2026 का ताज अपने नाम कर इतिहास रच दिया। असम की स्निग्धा भुयान को मिस टीन ग्रैंड इंडिया 2026 और ओरिसा की प्रासूसी पांडा को मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज पहनाया गया। फिनाले की इन तीनों मुख्य विजेताओं को अब इस साल होने वाली प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मिस टीन अर्थ, मिस टीन ग्रैंड और मिस टीन यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आगरा में पिछले 6 दिनों से लापता पालतू तोता माऊ आखिरकार अपने परिवार के पास लौट आया। उसकी तलाश में परिवार ने पूरे शहर में होर्डिंग लगवाए थे और उसे खोज कर लाने वाले के लिए 50,000 रूपए के इनाम की घोषणा की थी। बस इसके बाद एक शख्स ने 50,000 रूपए लेकर माऊ को उसके असली मालिक को वापस लौटा दिया। माऊ के घर लौटते ही पूरा परिवार भावुक हो गया। माऊ भी घर लौट कर खुश है। परिवार ने उसकी पसंद का देसी घी का डोसा और फल खिलाकर उसका स्वागत किया। बारिश और अच्छी फसल की कामना के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बोरामपल्ली गांव में ग्रामीणों ने मेढक मेढकी की पारंपरिक शादी कराई। इस प्राचीन लोक परंपरा का मुख्य उद्देश्य वरुण देव और इंद्र देवता को प्रसन्न करना है। इस अनूठी परंपरा में पूरे गांव के लोग एकजुट होते हैं। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर मेंढकों को पूरे गांव में घुमाया जाता है। मान्यता है कि सामूहिक प्रार्थना और मेंढकों की शादी से प्रकृति प्रसन्न होती है और फिर अच्छी बारिश होती है। शादी के बाद मेंढकों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है।
6: न्यूज पथ में अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव चल रहा है। इसी कड़ी में 5वें दिन हेरा पंचमी की परंपरा निभाई गई। इस विशेष अवसर पर भगवान का आशीर्वाद लेने हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। पुरी के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव चल रहा है, जिसमें जगह जगह भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति के रंग में सराबोर दिखे।

0: उड़ीसा के पुरी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव चल रहा है। इस रथ यात्रा उत्सव में भक्ति भाव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के रथों के मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर पहुंचने के बाद 7 दिनों तक भक्तों को यहीं दर्शन का सौभाग्य मिलता है, जिसके चलते यहां बड़ी संख्या में हर दिन भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिख रही है। 5वें दिन हेरा पंचमी की परंपरा पर भी यहां भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहां अभी हर दिन कई भव्य और पारंपरिक अनुष्ठान हो रहे हैं। गुंडिचा मंदिर में आम भक्तों को आडापा दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। 5वें दिन यहां देवी लक्ष्मी के रूठने की हेरा पंचमी की परंपरा निभाई गई। इस परंपरा में मुख्य मंदिर में अकेली रह जाने के चलते माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। वे पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंचती हैं और भगवान जगन्नाथ को वापस ले जाने के लिए मनाने की रस्म करती हैं। भक्तों को दर्शन में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्त यहाँ भगवान का दर्शन कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
1: श्रृंखलित दर्शन अभी भक्त लोग कर रहे हैं। श्रद्धा वाली में गुंडिचा टेम्पल में हमारा जो अरेंजमेंट है क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, बेसिकली इनसाइड टेम्पल अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, एक आउटसाइड टेम्पल का अरेंजमेंट किया है, ट्रैफिक अरेंजमेंट किया हुआ है, सब करके हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली वी हैव ब्रीफ्ड आवर पुलिसमैन टू फैसिलिटेट द दर्शन, डिवोटी को अच्छा बिहेव करके उनको एक धाड़ी में जो है क्यू में करके एक श्रृंखलित दर्शन करने के लिए उनको ब्रीफिंग किया गया है।
0: 7 दिनों के प्रवास के बाद 8वें दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वापस अपने मुख्य मंदिर के लिए लौटेंगे। इस बहुड़ा यात्रा तक यहां दर्शन के लिए भक्तों की इसी तरह लाइन लगती रहेगी। पुरी के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता देखने को मिल रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा के 4वें दिन दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित स्कॉन मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक छाई रही। रथ यात्रा मंदिर परिसर के चारों ओर घुमाई गई, जिसमें फूल मालाओं से भक्त रथ यात्रा का स्वागत करते दिखे और वो जमकर भक्ति भाव में नाचते झूमते रहे।
2: रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्त जो है वो यहाँ पर खींच रहे हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। इस दौरान भगवान को अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं और नाचते झूमते भक्त जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं।
0: रथ यात्रा में भगवान को अलग अलग मिठाइयाँ और फलों का भोग लगाया गया और फिर प्रसाद को भक्तों में बांटा गया। रथ यात्रा में शामिल सभी भक्त पूरे भक्ति भाव से उत्सव का आनंद लेते रहे।
3: बहुत दिव्य दर्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यह तो हर साल निकलती है और ये जगन्नाथ रथ यात्रा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा शोभा यात्रा भी कहते हैं।
4: बहुत ही अच्छा लग रहा है भगवान जी के दर्शन करके, हमको सुकून मिलता है दर्शन करके, इसीलिए मंदिर आते हैं यहाँ पे।
0: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। राजगढ़ के खिचलीपुर में पुरी की तर्ज पर ही धूमधाम और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के पहले मंदिर में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का 56 भोग अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद विशाल रथ को रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक झालरों से सजे हाथों से बने रथ में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को विराजित किया गया। इसके बाद रथ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकली, जहां श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए झूमते नाचते भगवान के रथ की रस्सी खींचते हुए और रथ के आगे झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया और फिर मंदिर परिसर में इस रथ यात्रा का समापन हुआ।
5: जगन्नाथ रथ यात्रा इसमें श्रीमती राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में भगवान को मिले थे तो उन्होंने भगवान को जब द्वारका वेश में देखा तो वो लोग बहुत दुखी हो गए, तो वो चाहते थे कि भगवान को खींच के वृंदावन लेके जाएं। तो इसका जो भाव है, हम जगन्नाथ जी को द्वारका से वृंदावन लेके जा रहे हैं और इस प्रकार से भगवान बड़ी बड़ी आंखों से सभी को अपनी कृपा देते हैं।
0: बिहार में भी जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य रंग देखने को मिले। मुजफ्फरपुर में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस्कॉन मंदिर की ओर से निकाली गई इस रथ यात्रा में करीब 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान हुए और लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। पानी तक की चौक स्थित इस्कॉन मंदिर से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो शहर का भ्रमण कर मंदिर लौटी। इस दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। ढोल, मृदंग, झांझ और करताल की धुन पर हरि नाम संकीर्तन गूंजता रहा और भक्त भक्ति भाव से झूमते रहे। अब बिहार के ही बेगूसराय में निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें श्रद्धालुओं का विशाल हुजूम उमड़ा है। श्रद्धालुओं का हुजूम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को पूरे भक्ति भाव से खींचते हुए दिखे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति भाव से झूमते हुए शामिल हुए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, मृदंग और झांझ की थाप पर हरे राम हरे कृष्ण से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। रथ यात्रा के दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा कर लोगों ने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। महिला कॉलेज रोड स्थित सरयू सदन से शुरू हुई ये रथ यात्रा जीडी कॉलेज परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। बिहार से यूपी तक भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा निकाली गई। प्रयागराज में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकली, जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। हर कोई भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। रथ यात्रा की रस्सी खींचने का सौभाग्य प्राप्त होने की खुशी श्रद्धालुओं के चेहरे पर साफ झलकी।
6: जो श्रद्धालु इन पे भारी उत्साह है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ का रथ है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ आए हैं भगवान के रथ को खींचने के लिए।
0: भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं से सज्जित रथ को खींचकर भक्तों ने उनका आशीर्वाद लिया।
7: तीनों सुंदर लग रहे हैं, तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं।
8: हमारा सौभाग्य है कि हम इस रथ में शामिल है। बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस रथ में शामिल है और रस्सा खींचने का मौका मिल रहा है। जय जगन्नाथ।
7: बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है जगन्नाथ यात्रा का हिस्सा बन के। बहुत ही ज्यादा हम प्रयागराजवासी होके जगन्नाथ यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। ये इस्कॉन की सबसे बड़ी बात है और हमारे लिए इससे बड़ी भी सौभाग्य की बात है।
0: इस्कॉन की ओर से निकाली गई इस रथ यात्रा में महिला श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या रही, जो भक्ति भाव में नाचते हुए इस उत्सव की खुशी मनाती दिखी। आस्था, भक्ति और उत्साह से सराबोर इस भव्य रथ यात्रा ने प्रयागराज की सड़कों को पूरी तरह कृष्णमय बना दिया। अब महाराष्ट्र के अकोला की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा निकली तो उसमें श्रद्धालुओं का गजब का उत्साह दिखा। 31 फीट ऊंचे और करीब 5 टन वजनी रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान हुए। हजारों श्रद्धालुओं ने हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच रथ को खींचा। खास बात ये रही कि भक्तों ने भगवान से सिर्फ अपनी खुशहाली नहीं बल्कि रूठे मॉनसून की जल्द वापसी, किसानों के खेतों में हरियाली और पूरे देश को सुजलाम सुफलाम बनाने की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस 18वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह रथ यात्रा का फूल बरसा कर स्वागत किया गया और रथ को खींचने का सौभाग्य मिलने से हर भक्त का चेहरा भक्तिमय खुशी से चमकता दिखा। शहर की मुख्य सड़कों से गुजरी इस रथ यात्रा में श्रद्धालु भजन गाते हुए चलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में पहली बार डेंगू की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जापानी कंपनी ताकेडा ने इसे विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल डेंगू की रोकथाम के लिए किया जाएगा। ये वैक्सीन 4 से 60 साल तक के लोगों के लिए बनाई गई है। इसे लगवाने से पहले किसी पूर्व ब्लड टेस्ट या डेंगू स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। ये वैक्सीन 2 डोज में लगेगी, जिसे 3 महीने के अंतराल पर दिया जाएगा। ये वैक्सीन डेंगू वायरस के सभी 4 सीरोटाइप से सुरक्षित करती है और गंभीर संक्रमण तथा अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करती है। असम के शिवसागर में जलस्तर बढ़ने के चलते सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बाढ़ राहत और बचाव अभियान तेज कर दिए हैं। यहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कई नावें तैनात कर लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं और राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। अकेले शिवसागर जिले में एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने अब तक 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। शिवसागर के अलावा चराई देव और जोरहाट जिलों में भी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और भारतीय सेना अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है। बाढ़ के पानी में कई सारे बेजुबान भी फंस गए। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक गाय और भैंस बाढ़ के पानी में फंस गए, जिसके बाद गांव वालों ने रस्सी के जरिए बेजुबानों का रेस्क्यू किया। कुछ लोग रस्सी का एक सिरा पकड़े हुए किनारे पर मौजूद हैं, जबकि रस्सी का दूसरा सिरा लिए एक शख्स अपनी जान दांव पर लगाते हुए बेजुबानों के पास पहुंचता है और उनके गले में रस्सी बांध देता है, जिसके बाद लोग रस्सी खींच कर उन्हें किनारे पर खींच लेते हैं। बाढ़ बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हमारे जवान देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। यहां अचानक आई बाढ़ के बीच भारतीय सेना ने तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाया और 11 नागरिकों की जान बचाई। दरअसल तेज बारिश की वजह से उफनते नाले में लोग फंस गए थे, जिसके बाद सेना की टीम बिना देर किए मौके पर पहुंची और कठिन परिस्थितियों और तेज बहाव के बावजूद जवानों ने राहत अभियान चलाया और सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई। प्रशासन के अगले आदेश तक यात्रा स्थगित रहेगी। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है और मौसम में सुधार होने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू होगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वो धैर्य रखें और श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों से दी जाने वाली जानकारी का पालन करें। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश और जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड के चलते सुरक्षा के मद्देनजर चार धाम यात्रा को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग के रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
0: न्यूज़पत में अब बात करते हैं मौसम की। मॉनसून अब फिर अपने रंग में नजर आने लगा है। देश भर के ज्यादातर हिस्सों में बादलों ने डेरा जमा रखा है। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक कई जगह बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। इन सब के बीच बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किए गए हैं, खास करके देश के पहाड़ी हिस्सों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के मिजाज और मानसून की रफ्तार से जुड़ी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जो अनुमान जताए गए थे वो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम विभाग के अनुमान की तरह ही न सिर्फ बादलों ने डेरा जमाया बल्कि ठीक ठाक बारिश भी हुई। इस बारिश ने लोगों को उमस से बड़ी राहत दी। मॉनसून एक बार फिर यहां सक्रिय होता नजर आ रहा है। बढ़ती उमस के बीच एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। रविवार शाम से ही मौसम जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। लगातार बादलों का जो डेरा है वो आसमान में आपको जो है वो नजर आ जाएगा। और अगर आज की यानी सोमवार की अगर हम बात करें तो सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश भी देखी गई। हालांकि मौसम विभाग का पहले से अनुमान था कि मानसून वापस से जो है दिल्ली में देखा जाएगा। जिस तरीके से मानसून में एक ब्रेक सा जो है वो लग गया था, लेकिन वापस से अब बारिश जो है दिल्ली NCR में देखी जाएगी।
10: मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल बारिश होने के आसार बने हुए हैं, जिससे गर्मी से राहत रहेगी।
11: अनुमान यह है कि आज भी जो है मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है ज्यादातर क्षेत्रों में दिल्ली के, कल भी मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है और कुछ स्थानों पर हैवी रेनफॉल का भी अलर्ट जो दिल्ली के लिए जारी किया गया है। तो हम देखेंगे तो वर्षा गतिविधि बढ़ेगी, जब वर्षा गतिविधि बढ़ेगी तो साथ साथ में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट देखी जाएगी। कल 36 से 38 डिग्री के आसपास जो अधिकतम तापमान थे, हमारा अनुमान यह है कि 3-4 दिन के बाद में ये 32 डिग्री के आसपास आने की संभावना है, जो सामान्य से कम हो जाएंगे।
10: दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में तेज बारिश भी देखने को मिल रही है, जिससे नदी नाले भी उफनते नजर आ रहे हैं। खासकर देश के पहाड़ी हिस्सों में जैसे उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसका सीधा असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ा है। बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए फिलहाल इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है।
12: उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से और आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। देहरादून, टिहरी और हरिद्वार में विशेषकर रेड अलर्ट की घोषणा IMD ने की है। भारी से बहुत भारी बारिश को देखते हुए ये अलर्ट घोषित किया और उत्तराखंड के सभी स्कूलों को आज छुट्टी दी गई।
10: जम्मू कश्मीर में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते यहाँ भी नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। रजौरी और पुंछ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा से लेकर अमरनाथ यात्रा तक को रोकना पड़ा है।
13: रविवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। काफी दिनों के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही है और इस बारिश का असर अब चल रही सालाना अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ गया है। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कई दिन के दौरान मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा।
10: मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी हिस्सों में मौसम के मिजाज को देखते हुए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
11: मानसून की अभी फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं, जिससे उत्तर पश्चिम भारत, उसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है। और हमारा अनुमान यही है, पूर्वानुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है।
10: जो मानसून धीमा पड़ चुका था वो अब एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते यूपी, बिहार से लेकर देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।
11: उत्तर प्रदेश साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर मुख्य रूप से मेघालय में और असम में भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। मेघालय में अत्यधिक भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। नागालैंड में कई दिनों से लगातार वर्षा चल रही है, आज भी वहाँ वेरी हैवी यानी बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है रेड अलर्ट साथ में। तो अब देखेंगे पूरे बेल्ट में जो है रेड अलर्ट की जो है चेतावनी जारी की गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
10: मौसम विभाग ने देश के बड़े हिस्से में मॉनसून के एक्टिव रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 20 से 23 जुलाई के बीच हर जगह बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी आने वाले समय में बारिश हो सकती है।
14: जयपुर की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, जहाँ पे बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। जुलाई का महीना ये था जिसमें शुरुआत में बारिश हुई, जिसके बाद दो हफ्तों के लिए ये जो मानसून है ये लगता है कहीं ना कहीं गायब हो गया था। वहीं अब वापस से आसमान में बादल नज़र आने लग गए हैं, वापस से जो मानसून है वो वापस आता नज़र आ रहा है, मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। और ऐसे में मौसम विभाग ने 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है, और ये अलर्ट सिर्फ आज के लिए नहीं पर ये 3 दिन तक रहने वाला है।
15: मॉनसून का सिस्टम सक्रिय होने की वजह से बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तक में बारिश की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। उधर पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून के मजबूत बने रहने का अनुमान है, तो पश्चिमी तट पर कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश संभव है।
16: बात अगर हम मैदानी राज्यों की करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी लगातार बारिश का जो दौर है वो 3 दिन तक जारी रहने वाला है। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले जो है महाराष्ट्र में और कोंकण गोवा में जो स्थिति है वो लगातार गहरी बनी हुई थी, वहां पर बारिश जो है वो हद से ज्यादा जो है वो देखी जा रही थी। हालांकि वहां पर थोड़ा सा ब्रेक नजर आया है, लेकिन 3 से 4 दिन के लिए वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिया गया है। कोंकण गोवा की बात करें या फिर मध्य महाराष्ट्र की, खासतौर पर जो भी घाट वाले क्षेत्र है वहां पर भारी वर्षा की जो है चेतावनी जो है वो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। हालांकि दक्षिण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी थोड़ी सी रफ्तार जो है वो ठहर चुकी है, वहां पर बारिश गतिविधियां जो है वो इतनी ज्यादा देखी नहीं जा रही है।
15: कुल मिलाकर देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर से मेहरबान होता नजर आ रहा है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, देहरादून से अंकित शर्मा, श्रीनगर से अशरफ वानी और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
17: न्यूज पत्र आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
18: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। 20 जुलाई सोमवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 443 अंकों की गिरावट के साथ 77,708 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर्स वाला एनएसई निफ्टी 95 अंकों की गिरावट के साथ 24,238 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच सोमवार को गोल्ड की कीमतों में फिर मजबूती देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1400 रुपए चढ़कर 1,46,900 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1000 रुपए गिरकर 2,21,500 रुपए पर पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 20 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 96.44 के स्तर पर बंद हुआ।
17: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
17: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण की समीक्षा बैठक। औगनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हीरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट, प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, 4 साल से 60 वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज, टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
20: ये तस्वीरें सबका दिल जीत रही हैं। ये छोटी सी बच्ची स्कूल में अपने डेस्क पर ही सो गई और उसकी टीचर ने धीरे से उसे जगाने की कोशिश की। मशक्कत के बाद जब वो जैसे तैसे उठी, लेकिन फिर झपकी लेने लगी। बच्चे का ये मासूम सहज पल सबको लुभा रहा है और तस्वीरें देखने वाला हर शख्स बच्ची पर प्यार लुटा रहा है। दरअसल यही वो एक छोटा सा पल है जो हमें याद दिलाता है कि बच्चे रोज कितनी मेहनत करते हैं। थोड़ा सा सब्र, देखभाल और समझदारी उनके लिए बहुत मायने रखती है। छोटे बच्चों के लिए रोज सुबह जल्दी उठना और घंटों क्लासरूम में बिताना आसान नहीं होता। कभी कभी उनके छोटे से शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत होती है। अब ये मन और दिमाग को ब्लो कर देने वाली तस्वीरें देखिए। बैडमिंटन खेलने वाला ये शख्स दिव्यांग है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति दूसरे खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। खेल के लिए उसका जुनून, लगन और हिम्मत देखकर हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह रहा। वो सबको सिखा रहा है कि खेल में ना उससे कोई गेन है और ना कोई पेन है। तो जो भी इन वायरल तस्वीरों को देख रहा है, वो खिलाड़ी की जमकर तारीफ कर रहा है और उनकी विल पावर का दीवाना हो रहा है। महिलाएं भी आजकल कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदारी दे रही हैं। अब इस महिला मिस्त्री को ही देख लीजिए। उन्होंने अच्छे अच्छे पुरुष मिस्त्रियों को न सिर्फ काम में पीछे छोड़ दिया, बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक महिला भी अपने इस काम में इतनी निपुण और तेज हो सकती है। इन्हें देखकर देखने वालों को और जोश आ रहा है और ये वायरल तस्वीरें सच में प्रेरणादायक हैं और इस महिला का आत्मविश्वास दूसरी महिलाओं को भी सीख लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। सुरक्षा का सबसे सच्चा टूल है अपने डॉगेश भाई। जब वो साथ हों और साथ दे दें तो उनके आगे जेड प्लस सिक्योरिटी भी पानी भरती है। इन वायरल तस्वीरों को ही देख लीजिए। रात के वक्त जब सर पर सामान लादे चलना था तो उजाले के साथ रात में सिक्योरिटी की गारंटी इस देसी जुगाड़ से मिली। जनाब ने दो डॉगेश भाइयों के सिरों पर टॉर्च बांधी और लगे उन्हें अपने पीछे चलाने। अब भला इस देसी जुगाड़ का कोई तोड़ हो सकता है? भाई काम चाहे जो भी हो, जुगाड़ से सब आसान हो जाता है और डॉगेश भाई लोग तो है ही, उनसे अच्छी सुरक्षा भला कौन दे सकता है। माना कि इंसानी शरीर में लचीलापन जरूरी है, लेकिन कोई बॉडी देखकर उसे रबड़ ही कहने लगे तो उसे क्या कहेंगे? इन जनाब को देख लीजिए स्टेज पर, ये जो करामात दिखा रहे हैं कौन कर सकता है भला? बॉडी इनकी बिल्कुल रबड़ जैसी है और बैलेंस गजब का। जो भी देख रहा है इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह रहा और इनकी रबर जैसी लचीली बॉडी का फैन हो गया है। सोशल मीडिया पर उनकी रबर जैसी बॉडी कौतूहल का विषय बन गई है, क्योंकि स्टेज पर ऐसा जादू हर रोज देखने को नहीं मिलता।
17: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दुनिया भर में डेटिंग के लिहाज से सबसे सस्ते और महंगे शहरों के। इस मामले में हमारे देश की राजधानी दिल्ली सबसे बेहतरीन जगह है। डॉच बैंक की रिपोर्ट मैपिंग द वर्ल्ड्स प्राइसेस 2026 के मुताबिक डेटिंग कपल्स के लिए दिल्ली दुनिया का सबसे किफायती शहर। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप दिल्ली में एक बेसिक रोमांटिक डेट करना चाहते हैं तो इस पर 9,917 रुपए खर्च होंगे। इस बेसिक रोमांटिक डेट में कपल्स की कैब राइड, डिनर, दो सिनेमा टिकट, कपड़े और कुछ ड्रिंक्स को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में इसी तरह की डेट का खर्च बेंगलुरु में 10,206 रुपए और मुंबई में 11,072 रुपए बताया गया है। वहीं दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शामिल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसी तरह की डेट का खर्च करीब 45,735 रुपए हो सकता है, जो कि दिल्ली से करीब 5 गुना ज्यादा है। जेनेवा के बाद ज्यूरिख में डेट का खर्च 44,965 रुपए और तेल अवीव में 41,017 रुपए बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे महंगे शहरों में शामिल ओस्लो और कोपेनहेगन में बाहर खाना, घूमना और दूसरे खर्चे दिल्ली के मुकाबले में काफी ज्यादा होते हैं। वहीं दिल्ली कम खर्च में भी कपल्स को घूमने फिरने और साथ समय बिताने का मौका देती है और यही वजह है कि दिल्ली रोमांटिक डेट के लिए दुनिया में सबसे सस्ता शहर माना जाता है। दिल्ली सिर्फ रोमांटिक डेट के मामले में ही नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड, इंटरनेट और प्रॉपर्टी की कीमत के लिहाज से भी दुनिया के कई बड़े शहरों से सस्ती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 3 BHK घर का किराया और प्रॉपर्टी की कीमतें विदेशी शहरों के मुकाबले काफी कम है। हालांकि रिपोर्ट में दिल्ली की एक चुनौती भी सामने आई है और वो ये कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की सैलरी दुनिया के कई बड़े शहरों के लिहाज से काफी कम।
1: फिलहाल इस रिपोर्ट से दिल्ली वाले राहत महसूस कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
21: तो नहीं है, सब चीज महंगी है ही, कुछ भी खरीद लो, कुछ भी ले लो, सब चीज महंगी है ही, कहीं भी चले जाओ, होटल में चले जाओ वो भी महंगा ही है। तो ऐसा नहीं है, चीपेस्ट सिटी नहीं है, सही है, जो भी है जितना भी है ठीक है।
22: लेकिन आपको लगता है लोगों की सैलरी कम है तो उस हिसाब से भी लोग जो है वो कम बजट में डेट भी कर लेते हैं?
21: हाँ हाँ, अब कहीं भी चले जाओ, अब तो रोड पे भी खा सकते हैं खाना, तो रोड पे खाना खाना है तो रोड पे खा लो, होटल पे जाओगे तो वो महंगा ही है, इतना ही होगा बस, और क्या।
23: पता नहीं किसने सर्वे बनाया है पर ऐसा, मतलब मेरे को यहाँ पे 5 साल हो गया रहते, पर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है यहाँ पे।
22: लगता है और सैलरी कम है उस वजह से भी थोड़ा सा
23: है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली बहुत चीपेस्ट शहर है, बहुत महंगी है
24: ऐसा तो कुछ नहीं है कि चीपेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइफ स्टाइल सबका, अभी मुझे रहते थे 20 साल हो गया है, मुझे तो नहीं लगता कोई चीपेस्ट है। सही है हमारी दिल्ली जो है, देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पर भी, और तुम निकलते हो अगर घर से भी तो हमारा कितना खर्चा होता है डे टू डे लाइफ में। सो हाँ,
22: बट प्रॉपर्टी रेट्स भी जो है वो है कि बहुत सस्ते हैं यहाँ पे, सस्ते में
24: दिल्ली में प्रॉपर्टी रेट्स? नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरे को बेशक अभी कुछ महीने ही हुए हैं यहाँ पे आए हुए, पर प्रॉपर्टी रेट्स तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कम नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं किसने किया है सर्वे।
22: बट ऐसा क्या लगता है, ये भी है कि डेटिंग की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम इतना खर्चा होता है?
24: मैंने यहाँ पे डेट तो नहीं किया है, आई विल रियली नॉट लाइक टू, बट मेरे हिसाब से महंगा ही होगा यहाँ पे डेट करना तो, क्योंकि
22: प्रॉपर्टीज़ तो
24: प्रॉपर्टीज तो बहुत महंगी है। अगर आप अच्छे एरिया में जाएंगी तो वो और ज़्यादा।
22: यहाँ के ऑफिसेज इतने छोटे छोटे से हैं तो फिर प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो वो भी नहीं खरीद पा रही हैं, तो फिर आम इंसान तो कैसे खरीदेगा यहाँ पे? सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो नहीं।
24: हाँ, लोग यहाँ पे अपने खेत बेच बेच के रहते हैं यहाँ पे, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रह के तो।
22: कैपिटल में
24: रहना आसान थोड़ी है। सर्वे आई डोंट नो किसने निकाला है, लेकिन आप थोड़ा लुक अराउंड करिए। नहीं कह तो नहीं, चीपेस्ट तो नहीं है।
1: मेगा फिल्म रामायण को मिला जटायु, अमिताभ बच्चन नहीं अनुपम खेर देंगे जटायु को आवाज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर। मेगा फिल्म रामायण की कास्टिंग से जुड़ी एक नई अपडेट ने जनता को हैरान कर दिया है। ये खबर रामायणम के एक मेन किरदार जटायु को लेकर है। रावण के किरदार में यश के अलावा जटायु के किरदार में अमिताभ बच्चन का नाम लगातार सुर्खियों में था। कहा जा रहा था कि बच्चन साहब जटायु के किरदार के लिए अपनी आवाज देने वाले हैं। हालांकि अब इसे लेकर एक नया नाम सामने आया है। खबर है कि अब जटायु के किरदार के लिए अनुपम खेर अपनी आवाज देने वाले हैं। अनुपम खेर का नाम चर्चा में जरूर आया है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक इसे कन्फर्म नहीं किया है। 4,000 करोड़ की मेगा फिल्म प्रोजेक्ट रामायण इसी साल दर्शकों के सामने आने वाली है। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रथम संकल्प के नाम से फिल्म का एक ग्रैंड इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म के प्रमुख किरदार पब्लिक के सामने पहली बार एक साथ दिखे और बताया कि फिल्म में अपने रोल के बारे में वो क्या सोचते हैं। इवेंट में मौजूद खास लोगों को पहली बार फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर दिखाया गया, जो देश दुनिया के सामने 24 जुलाई को अमेरिका के सैन डियागो में होने वाले कॉमिंग कॉन इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का नया टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में सनी देओल का हमेशा की तरह दमदार अंदाज दिखाई दे रहा है। करीब 1 मिनट के इस टीजर में सनी देओल का किरदार डर और नफरत के ऊपर साहस चुनता है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। देश के विभाजन पर बेस्ड इस फिल्म में बंटवारे का अनदेखा दर्द देखने को मिलेगा। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी। बंटवारा 1947 असगर वजाहत के विश्व प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नहीं देखा वो जमियाई नहीं पर बेस्ड है, जिसका मतलब है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म जन नेता के हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग अब शुरू हो गई है। ये फिल्म 23 जुलाई को रिलीज होने वाली है। लाखों फैंस को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो अब लगभग आ ही गया। जन नेता के हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग अब लाइव है। फिल्म जन नेता सुपरस्टार थलापति विजय के शानदार फिल्मी सफर का एक ऐतिहासिक अध्याय है, क्योंकि ये बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म होगी, जिससे ये साल की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक बन गई है।
25: साउथ
1: के
10: के सुपरस्टार यश के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। उनकी बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर थ्रिलर फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का ट्रेलर 8 अगस्त को बेंगलुरु में एक भव्य इवेंट के दौरान रिलीज किया जाएगा। इसके ठीक कुछ दिन बाद यानी 26 अगस्त को ये फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज और ट्रेलर की तारीख सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गीतो मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म टॉक्सिक में नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी बसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के जबरदस्त एक्शन दृश्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्टंट एक्सपर्ट्स जेजे पेरी और अनबरेव ने तैयार किया है।
17: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर आई है। रुद्रप्रयाग जिले में बन रही टनल और पुल बनाने का काम पूरा होने के बेहद करीब पहुंच गया है, जिसके जरिए ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ा जा रहा है। इस मार्ग के शुरू होने के बाद तीर्थयात्रियों को जाम से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही सफर के समय में भी बचत होगी।

0: उत्तराखंड में चार धाम तीर्थयात्रियों का सफर और आसान होने वाला है। जल्द ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के रास्ते आपस में जुड़ने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के दुर्गम पहाड़ों में बनी ये 900 मीटर लंबी टनल चार धाम यात्रियों के लिए वरदान बनने जा रही है। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने की जिस परियोजना पर काम चल रहा है उसमें ये टनल इतिहास रचने जा रही है। दोनों हाईवे को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर पुल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 200 मीटर लंबा ये पुल अगस्त में पूरा हो जाएगा। पुल बनने के बाद चारधाम यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तक रुद्रप्रयाग बाजार में बद्रीनाथ हाईवे बेहद सकड़ा होने से आए दिन घंटों जाम लगता है, लेकिन अब टनल और पुल बनने के बाद तीर्थयात्री रुद्रप्रयाग बाजार से न होकर सीधे जवारी बाईपास होते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए आगे की यात्रा कर सकेंगे।
1: श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम को जाने वाली सड़कें हैं जो हाईवे है वो आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं शहर के भीतर जो ट्रैफिक लगता है वो ट्रैफिक नहीं लगेगा। और चूंकि दोनों रोड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इनका आपस में जुड़ना काफी इम्पोर्टेंट होगा तीर्थयात्रियों के सुविधा के दृष्टिगत पर।
0: प्रशासन के मुताबिक 31 अगस्त से इस परियोजना का ट्रायल शुरू किया जाएगा। चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मॉनसून के दौरान परियोजना के पूरा होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तीर्थयात्रियों को जाम से छुटकारा मिलने के साथ ही सफर का समय भी बचेगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नॉर्थ पोल पर मैराथन में चीन, डेनमार्क ने खिताब किए अपने नाम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नॉर्थ पोल मैराथन में चीन के शिंगशियान वोंग ने पुरुष और डेनमार्क की रीके डैम ने महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। नॉर्थ पोल मैराथन में धावकों ने 1055 मीटर के ट्रैक के 40 चक्कर लगाकर ये मैराथन पूरी की, यानी बर्फ पर लगभग ये 42 किलोमीटर की दौड़ थी। ऊबड़ खाबड़ बर्फीले ट्रैक ने दौड़ को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। रेस के दौरान तापमान शून्य के करीब दर्ज किया गया। इस मैराथन में 7 देशों के 22 धावकों ने हिस्सा लिया। चीन के शिनजियांग में रोबोट शेफ बने नजर आए। एक खास कुकिंग शो में यहाँ ह्यूमनॉइड रोबोट ने कबाब से लेकर कई स्थानीय व्यंजन बनाए। इसके लिए रोबोट ने यहाँ सिर्फ एक हफ्ते की ट्रेनिंग ली और उसके बाद ये ह्यूमनॉइड रोबोट व्यंजन बनाने में निपुण हो गए। शेफ रोबोट ने मशहूर हैंड पुल नूडल्स भी बनाकर दिखाया। AI और टच सेंसर से लैस रोबोट का ये कमाल और हुनर देखकर लोग हैरान रह गए। चीन के शंघाई में भी AI का नया कमाल देखने को मिला। यहाँ दुनिया के पहले रोबोटिक घोड़े की नुमाइश की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोबोटिक घोड़ा 1000 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये रोबोटिक घोड़ा बर्फ से पहाड़ तक दौड़ने में भी सक्षम है। दक्षिण कोरिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। साउथ कोरिया के शहर बुसान में इस बैठक से पहले शानदार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में यहाँ के पारंपरिक कलाकारों ने समारोह में समा बांध दिया। ये पहली बार है जब दक्षिण कोरिया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मेजबानी कर रहा है। क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म द ओडिसी ने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है। जहां दर्शक इसके शानदार विजुअल्स और इमोशनल कहानी की तारीफ कर रहे हैं, तो फिल्म द ओडिसी की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 17 जुलाई को ओपनिंग भी काफी जबरदस्त रही।
3: सिनेमाई पर्दे पर अभी बस 3 दिन ही तो बीते हैं। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी धमाल मचा रही है। वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी इस एपिक फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। 17 जुलाई को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज हुई द ओडिसी को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी बदौलत द ओडिसी की शुरुआत काफी शानदार रही और ये लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वही रिलीज के बाद लगातार 3 दिन मैट डेमन स्टारर द ओडिसी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखा है। तीसरे दिन यानी पहले रविवार को द ओडिसी ने 21 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन करते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ये फिल्म भारत में क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। वहीं से पहले 17 जुलाई को द ओडिसी ने 17 करोड़ 40 लाख के साथ ओपनिंग की, 18 जुलाई को 22 करोड़ का कलेक्शन, तो रविवार को 55% ऑक्यूपेंसी के साथ 21 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन कर सबको चौंका दिया। इसी के साथ फिल्म ने भारत में 61 करोड़ 30 लाख का नेट कलेक्शन और 73 करोड़ 19 लाख का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। यही नहीं, द ओडिसी साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली हॉलीवुड फिल्म भी बन गई है। इससे पहले ओपेनहाइमर ने 14 करोड़ 50 लाख के साथ ओपनिंग की थी। फिल्म में मैट डेमन के अलावा टॉम हॉलैंड, एनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन और जेंडिया के रोल को भी भारतीय ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। अपनी बेहतरीन स्टारकास्ट की बदौलत ही द ओडिसी का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल ऐसे वक्त में जारी है जब बड़े पर्दे पर अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4, आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर अल्फा और हॉलीवुड हॉरर फिल्म एविल डेड बर्न जैसी फिल्में दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं। बावजूद इसके द ओडिसी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल अपनी पकड़ बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
6: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So, you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
4: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव

0: you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
1: आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
0: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
1: जापान ओपन जीतने के बाद पीवी सिंधु चीन ओपन जीतने के लिए तैयार। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर।
2: जापान ओपन में मिली जीत से उत्साहित भारत की पीवी सिंधु मंगलवार से शुरू होने वाले चाइना ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। सिंधु लगभग दो साल में अपना पहला खिताब जीतने के बाद जबरदस्त फॉर्म में चीन लौट रही हैं। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने जापान में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फाइनल में तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची को हराया और अपने सभी मैच सीधे गेम में जीते। 2016 की चाइना ओपन चैंपियन अब इस टूर्नामेंट में भी उसी लय को बनाए रखने की कोशिश करेंगी। चीन में बुधवार से शुरू हो रहे ISSF वर्ल्ड कप में भारत की मजबूत टीम अलग अलग और मिक्स टीम इवेंट्स में हिस्सा लेगी। इस टीम में ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले जैसे बड़े नाम शामिल हैं। टीम में भाकर और कुसाले के अलावा भारत के कई टॉप शूटर्स भी शामिल हैं, जो राइफल इवेंट, पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट और 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन इवेंट में हिस्सा लेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार के बाद भारतीय क्रिकेट में घरेलू टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच आगामी दिलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर शम्स मुलानी को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। दिलीप ट्रॉफी 2026 का आयोजन 23 अगस्त से 10 सितंबर के बीच किया जाएगा। 20 साल की भारतीय पहलवान काजल ढोचक ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित सीनियर रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट 2026 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने महिलाओं के फ्रीस्टाइल 76 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर ये शानदार उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। अभी तक भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में दो रजत पदक भी जीते हैं।
1: इसी के साथ न्यूज़ पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव

0: खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
2: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
6: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल के साथ DGP राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। रोघड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच NDRF, SDRF और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।
6: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पुरी में चल रही रथ यात्रा की। रथ यात्रा के 5वें दिन आज मौसी के घर यानी माता गुंडिचा मंदिर में मेले जैसी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से हेरा पंचमी का उत्सव मनाया। हेरा पंचमी उत्सव माता लक्ष्मी के रूठने और भगवान जगन्नाथ द्वारा उनको मनाने की धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ त्यौहार है। क्या है ये कहानी, आज आपको विस्तार से बताएंगे। आपको इसके अलावा बताएंगे कि बात सावन की करेंगे। मैदानी इलाकों से पहले पहाड़ी राज्यों में सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में हजारों की तादाद में लोग जुटे और जलाभिषेक किया। पहाड़ों में सावन पहले क्यों आता है आपको बताएंगे। साथ ही साथ मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियों के तमाम रंग भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरी की रथ यात्रा से। देखिए, रथ यात्रा के 5वें दिन गुंडिचा मंदिर में हेरा पंचमी का त्यौहार मनाया गया और लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। मान्यता यह है कि भगवान की यात्रा पर जाने के बाद दुखी माता पार्वती 5वें दिन गुंडिचा मंदिर पहुंची और अपनी नाराजगी दिखाने के लिए भगवान के रथ का एक हिस्सा उन्होंने तोड़ दिया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने उन्हें मनाया और जल्द ही मंदिर वापस लौटने का भरोसा दिया। चलिए आपको दिखाते हैं पति पत्नी के प्रेम से जुड़ी अद्भुत कहानी।

0: मौसी के घर बेला है, भक्तों का रेला है, और हो भी क्यों ना, इन दिनों माता गुंडीचा के इसी मंदिर में भगवान जगन्नाथ का बसेरा है। जहाँ भगवान वहाँ धाम, जहाँ धाम वहाँ श्रद्धालु। जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर है माँ गुंडीचा का मंदिर, जहाँ देश दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा है। भगवान के दर्शन की ललक सोमवार को इसलिए भी ज्यादा रही क्योंकि हेरा पंचमी का त्योहार मनाया गया। इस त्योहार का धार्मिक महत्व तो है ही, पर उससे बढ़कर ये प्रेम और अपनापन का प्रतीक है। हेरा पंचमी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रथ यात्रा के 5वें दिन मनाया जाता है। हेरा का अर्थ होता है देखना या ढूंढना। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी अपने पति भगवान जगन्नाथ को ढूंढने और उनसे मिलने के लिए गुंडीचा मंदिर जाती हैं। नाराज माँ लक्ष्मी को भगवान मनाते हैं और वो वापस अपने मंदिर लौट जाती हैं। हेरा पंचमी की इस पूरी लीला को हेरा गोहा लीला भी कहते हैं। इस त्योहार को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हेरा पंचमी दोनों के सच्चे प्रेम और प्रेम की अद्भुत लीला से जुड़ी है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं भगवान अपनी भाई बहन के साथ मौसी के घर चले आए, मगर इसकी जानकारी माँ लक्ष्मी को नहीं थी। 5वें दिन जब उन्हें खबर हुई तो गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। फिर क्या था, देवी लक्ष्मी अपनी सेविकाओं के साथ एक पालकी में सवार होकर भगवान को खोजने और उन्हें वापस पूरी मंदिर लाने के लिए गुंडीचा मंदिर की ओर चल पड़ी। लेकिन गुंडीचा मंदिर जाकर भी जब माँ लक्ष्मी को भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने अपने सेवकों से भगवान जगन्नाथ के रथ यानी नंदी घोष का एक हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया। आदेश पूरा किया गया और इसके बाद देवी लक्ष्मी एक गुप्त रास्ते से चुपचाप अपने मंदिर लौट आईं। इस गुप्त रास्ते को पुरी में हेरा गोहिरी साही कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के प्रेम और उसमें शामिल मान मनुहार को दिखाने के लिए देवी लक्ष्मी की प्रतिमा हेरा गोसाई यानी खास पालकी में गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है और सांकेतिक तौर पर नंदी घोष रथ का एक हिस्सा तोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि रूठी हुई माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए ही भगवान ने ये भरोसा दिया कि वो जल्द ही लौट आएंगे। रूठने मनाने की लीला के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी के पास वापस आने का संकल्प करते हैं, जिसके बाद बाहुड़ा यात्रा यानी वापसी की यात्रा शुरू होती है। हेरा पंचमी की परंपरा भक्तों को भगवान के मानवीय रिश्तों से जोड़ती है, इसलिए ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं रह जाता, बल्कि इसमें आत्मीयता होती है। वैसे भी जब तक भगवान गुंडीचा मंदिर में हैं, भक्तों को ज्यादा करीब से दर्शन दे रहे हैं। 16 जुलाई से ही यानी जिस दिन रथ यात्रा की शुरुआत हुई, पुरी में श्रद्धा की ये तस्वीर जस की तस है। गर्मी और उमस जरूर है, पर हर शख्स यहाँ आनंद से भरा है। हाँ, राहत देने के लिए प्रशासन ने स्प्रिंकलर और दूसरे जरूरी इंतजाम जरूर किए हैं, तो वही CCTV कैमरों से भीड़ पर लगातार नजर रखी जा रही है।
1: टेम्पल का सेक्टर वाइज डिप्लॉयमेंट है, लोगों को बेसिकली डिसिप्लिन श्रृंखलित एंड टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लोइंग और प्रिवेंट जंपिंग फ्रॉम द बैरिकेड, वो सब करके हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली वी हैव ब्रीफ्ड आवर पुलिसमैन टू फैसिलिटेट द दर्शन, डिवोटी को अच्छा बिहेव करके उनको एक धाड़ी में जो है क्यू में करके एक श्रृंखलित दर्शन करने के लिए उनको ब्रीफिंग किया गया है। एंड अभी श्रृंखलित दर्शन महाप्रभु का चल रहा है आडप मंडप में। ट्रैफिक अरेंजमेंट जो फ्रॉम भुवनेश्वर साइड, फ्रॉम ब्रह्मगिरी साइड, फ्रॉम कोणार्क साइड जो सिटी में एंटर कर रहा है, उसका ट्रैफिक के लिए हमने मालतीपाटपुर देन तालाबनिया एंड समांग एरिया में हमने ट्रैफिक का जो डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस किया हुआ है वहाँ रख के भक्त लोग आके गुंडीचा टेम्पल पे दर्शन कर सकते हैं।
0: भगवान जब तक मौसी के घर रहते हैं, यहाँ कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में पितरों का पिंडदान और ब्राह्मण भोज करवाने का भी विशेष महत्व रहा है।
2: ये जो आड़प मंडप है, जगन्नाथ महाप्रभु जब यहाँ के रत्न सिंहासन में विराजमान करते हैं गुंडीचा वाड़ी में, तब यहाँ एक ब्राह्मण को, एक व्यक्ति को अगर भोजन करवा के दक्षिणा दिए तो वहाँ पे 1000 व्यक्ति को देने के बराबर फल मिलता है। यहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं दशरथ जी के लिए और गुंडीचा रानी के लिए और इंद्रदुम्न के लिए उनका यहाँ पे श्राद्ध किए थे, और यहाँ उनके याद में ये गुंडीचा मंदिर बनाकर यहाँ पे 9 दिन की यात्रा करते हैं और सारे जगत का कल्याण करते हैं।
0: रूठी हुई माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए भगवान ने वापसी का भरोसा तो दे दिया है, इसलिए रथ यात्रा के 5वें दिन ही दक्षिण मोड़ा परंपरा होती है। इसके तहत वापसी की यात्रा के लिए रथों को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ा जाता है। रथ यात्रा के 9वें दिन यानी 24 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा मौसी के घर से चलकर श्री मंदिर लौट आएंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, सावन आने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। 30 जुलाई से बम बम भोले का जयकारे गूंजने लग जाएंगे, लेकिन पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में सावन की एंट्री 4 दिन पहले ही हो चुकी है, क्योंकि वहां संक्रांति से ही सावन की शुरुआत होने की मान्यता है। आज सावन के पहले सोमवार को उत्तराखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और पुराने मंदिरों में जलाभिषेक किया गया। इस बीच राज्य में 4 धाम यात्रा भी जारी है, हालांकि बारिश की वजह से यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया गया है। देखिए रिपोर्ट।

0: शिव के जय घोष से शिवालय गूंजे, महादेव के मंत्रों से मन, फूल बेलपत्र दूध या जल से भोले की पूजा करने शिव भक्तों की भीड़ सोमवार को उमड़ पड़ी। लेकिन सोमवार को ऐसा खास क्या है जिसके लिए शिवालयों में इतनी भीड़? तो आपको बता दें कि ये आस्था सावन के पहले सोमवार के लिए है। वैसे मैदानी इलाकों में सावन के आने में अभी वक्त है, लेकिन पहाड़ों में या कहें कि उत्तराखंड और हिमाचल में सावन 16 जुलाई से ही शुरू हो चुका है।
1: ऐसा है सौर्य मास और चंद्र मास जो हमारे जो उत्तराखंड में है, ये सूर्य संक्रांति से जो है 16 तारीख से सावन मास प्रारंभ हो चुका है और चंद्र मास के हिसाब से जो है 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा और उस दिन से पूरे भारतवर्ष के अंदर नीचे प्लेनों में जो है सावन मास प्रारंभ हो जाएगा। तो ये उत्तराखंड का आज पहला सोमवार है और काफी भक्त लोग भगवान ज्योतिश्वर महादेव के दर्शन के लिए पधारे हैं। बोल ज्योतिश्वर भगवान की जय।
0: मैदानी इलाकों में भी सावन का इंतजार है जो 30 जुलाई को पूर्णिमा से शुरू होगा, लेकिन पहाड़ों में सावन सौर संक्रांति से शुरू होता है। तारीखों में जो फर्क है वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक बात श्रद्धा की है वो एक जैसा है। सावन के पहले सोमवार की अहमियत भी एक जैसी है।
2: पहाड़ों में आज सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में चमोली जनपद के जो पंच केदार है, चाहे बद्रीनाथ धाम में आदि केदार हो या फिर तमाम कल्पेश्वर महादेव के साथ इस समय जो जोशी मठ का ज्योतिश्वर महादेव है, जहाँ पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को दिव्य ज्योति ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पे ये कल्प जो अमर कल्प वृक्ष है, कहते हैं 2500 वर्षों से यहाँ पे ये अमर कल्प वृक्ष मौजूद है और इस मंदिर के इस ठीक इसी के नीचे यहाँ पे ज्योतिश्वर महादेव जिसकी आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पे स्थापना की थी, यहाँ पे श्रद्धालुओं की सुबह से भीड़ लगी है। तड़के सुबह से यहाँ पे श्रद्धालु लगे हैं। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही यहाँ पे जो लाइन लगी है, लंबी कतार यहाँ पे श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। हर कोई यहाँ पे पहुँचा हुआ है, हर कोई यहाँ पे इस समय शिवार्चन तमाम तरह की पूजाएं कर रहा है, जलाभिषेक, क्योंकि सावन का महीना पहाड़ों में सूर्य संक्रांति के साथ ही हो जाता है। ऐसे में हर कोई यहाँ आकर जलाभिषेक कर रहा है, अपनी अलग अलग तरीके से पूजा कर रहा है, बेलपत्री चढ़ा रहा है, अलग अलग तरह से यहाँ पे जो इस समय भक्त है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इस तरफ जो लाइन है लगातार लंबी होती जा रही है, लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई शिव धुन में इस समय, क्योंकि सावन का महीना पहाड़ों में सूर्य संक्रांति से शुरू हो जाता है। तो ऐसे में तमाम जनपद के जितने भी है, चाहे पंच केदार की बात करें, बद्रीनाथ धाम में आदि केदार या फिर जोशीमठ के ज्योतिश्वर में, श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है।
0: चमोली के आदि केदारेश्वर मंदिर में हजारों की तादाद में शिव भक्त जुटे, पवित्र जल में स्नान किया और भक्ति भाव से जलाभिषेक किया।
3: श्रावण जो है, श्रावण का पहला सोमवार है, ये लोग जो है सुबह व्रत अपना व्रत रखते हैं और जल जो है भगवान शंकर को भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे ये है गोपेश्वर महादेव जी की जो है बड़ी कृपा है कि सारी जनता जो है यहाँ पे जो है जल चढ़ा रही है और आप देख ही रहोगे कि बहुत भीड़ लगी हुई है, सुंदर चल ही रहा है श्रावण का ये पहला सोमवार।
4: संपूर्ण चमोली जनपद के साथ ही पूरे प्रदेश भर में जो गोपीनाथ मंदिर है गोपेश्वर में, ये श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है और ये भगवान शिव को अर्पित है गोपीनाथ मंदिर। तो सावन का पहला सोमवार है, आज सुबह हम यहाँ पर जलाभिषेक के लिए पहुँचे, बेलपत्री अर्पित की भगवान भोलेनाथ को और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर आत्म को शांति मिल रही है और इसके साथ ही अब अन्य शिवालयों में भी जल अर्पित करने के लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया मंदिर में सुकून मिल रहा है आकर।
0: मैदानी इलाकों में सावन बोल बम के जयकारों के साथ आता है। पहाड़ों में सावन की शुरुआत हरेला पर्व के साथ होती है जो अच्छी फसल खुशहाली और प्रकृति से जुड़ा है, लेकिन धार्मिक तौर पर ये पर्व भी भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। मैदानी इलाकों की तरह सावन के हर सोमवार को शिवालयों में लोग जलाभिषेक करते हैं। ये तस्वीर टहरी की है जहाँ प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर में पहले सोमवार को जलाभिषेक हुआ।
5: पांडवों को यहाँ पर भील धूम में दर्शन मिले और यहाँ पर अपने पूरे भेंगना ब्लॉक के घाटे की पूरी महान जनता द्वारा आज सोमवार के दिन पर भीड़ है, जिससे कि काफी श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर जल अभिषेक कराते हैं और रुद्र अभिषेक पाठ करा के और भगवान शंकर से अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विशेष पर्व पर यहाँ पर पुत्र कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मोक्ष धाम प्राप्त करने के लिए।
6: इसलिए यहाँ की बेलपत्री का नाम स्वर्ण पत्री भी कहा गया है। कई सारे भक्तों को श्रावण के मास पर 5 पत्ती 7 पत्ती और 3 पत्ती बेलपत्री प्राप्त होती है। बिल्वेश्वर महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, पुत्रदाता भी इनको कहा गया है। सावन के मास पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर माघ के महीने लोग यहाँ पर अपनी कामना के लिए, पुत्र कामना के लिए खड़े होकर के दीपदान करते हैं और पूरी रात जागरण करते हैं। आप जो यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, ये हमने स्कंद पुराण के केदारखंड से लिया है। इस पर आप भी अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं यहाँ का पूरा महात्म्य, जो यहाँ की गाथा इतिहास है। ये द्वापर युगीन बताया गया है, जिस समय द्वापर युग में पांडव यहाँ पर आए थे तो भगवान शंकर ने उनको भील रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इसका नाम बिल्वेश्वर भी है। और बेलपत्री की प्रधानता होने के कारण इसका नाम बिल्वेश्वर महादेव भी है, जो सभी की कामना को पूर्ण करने वाला भगवान आशुतोष हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी झोली भगवान अवश्य भरते हैं, इसकी महानता और प्रधानता है।
0: बागेश्वर के इस भव्य शिवालय में पूरे भक्ति भाव से सोमवार की पूजा हुई। नदी के जल से शिवलिंग का जल अभिषेक हुआ और पारंपरिक तौर तरीकों से शिव की आराधना हुई।
7: बैजनाथ की एक मान्यता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसे मंदिर हमें देखने को बहुत कम मिलते हैं। इसकी शैली के मंदिर एक केवल जागेश्वर और कटार मंदिर में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ जो भी आते हैं बड़े श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर।
8: संपूर्ण कचूर घाटी में बैजनाथ धाम का बड़ा महत्व है, खासकर इस सोमवार के पहले ये श्रावण मास के पहले सोमवार की जब हम बात करें तो दूर दराज से पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। सुबह 4 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, ये पूरा भक्ति का अभियान शुरू हो जाता है और इसमें ये दोपहर 2 बजे तक, 2 बजे के बाद तक भी यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ रहती है। तो मान्यता ये है कि सोमवार के श्रावण मास के पहले सोमवार को जलाभिषेक का विशेष महत्व है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये पूरा महीना जो है यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, पूजा पाठ होता है और शाम को यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। तो पूरे कचूर घाटी की सुख समृद्धि के लिए और वैभव के लिए ये श्रावण के महीने की अच्छी मान्यता यहाँ पर है।
9: आज श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, जो आज पहला सोमवार हमारा पहाड़ों में माना गया है। आज से ही हमारे सावन के पहला सोमवार प्रारंभ हो चुका है। आज सुबह 4 बजे से बाबा बैजनाथ धाम पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हम सुबह 4 बजे से लोगों बागों की भीड़ पड़ी हुई है और हमारा यह श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। हम हर सभी के लिए मनोकामना करेंगे कि सबकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी पूर्ण करते रहें। धन्यवाद।
0: पहाड़ों पर सावन प्रकृति के साथ गहरा जुड़ा है। इस दौरान शिव की पूजा के साथ चार धाम यात्रा भी चल रही है। हालांकि उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए चार धाम यात्रा को अस्थायी तौर पर रोका गया है। मौसम खराब है, इसलिए यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा रहा है। प्रशासन ने साफ किया है कि मार्ग सुरक्षित होने और परिस्थितियां सामान्य होने पर यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। इस बीच चारधाम यात्रा को लेकर एक गुड न्यूज मिली है। यात्रा को सुगम बनाने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना ने भी नई मंजिल हासिल कर ली। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए बनाई जा रही लगभग 900 मीटर लंबी टनल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का अंतिम चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। टनल को दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर डबल लेन मोटर पुल बनाया जा रहा है। पुल का निर्माण अंतिम चरण में है और इसे 31 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल तैयार होने के बाद उस पर वाहनों का ट्रायल किया जाएगा और अगर ट्रायल सफल रहता है तो जल्द ही इस मार्ग को आम लोगों और चारधाम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा।
10: 31 अगस्त के बाद इस पुल पर वाहनों का ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद पुल और टनल से वाहनों की प्रॉपर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं यह 900 मीटर लंबी टनल केदारनाथ एवं बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई है। टनल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और टनल के भीतर से वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है।
0: दरअसल रुद्रप्रयाग बाजार से गुजरने वाला बद्रीनाथ हाईवे काफी सकरा है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा सीजन में यहाँ अक्सर कई कई घंटों तक लंबा जाम लग जाता है। लेकिन अब 900 मीटर लंबी टनल और अलकनंदा नदी पर बन रहा डबल लेन मोटर पुल इस समस्या का स्थायी समाधान बनकर सामने आ रहा है।
11: ये दोनों हाईवे श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम की जाने वाली सड़कें हैं, जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी। इससे कहीं ना कहीं शहर के भीतर जो ट्रैफिक लगता है वो ट्रैफिक नहीं लगेगा, और क्योंकि दोनों रोड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इनका आपस में जुड़ना काफी इम्पोर्टेंट होगा तीर्थयात्रियों के सुविधा की दृष्टि से।
0: यह रास्ता शुरू होगा तो रुद्रप्रयाग शहर में ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा, चारधाम की यात्रा ज्यादा तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। स्थानीय लोगों को आवाजाही की सहूलियत देने वाला ये टनल चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होने वाला है। चमोली से कमल लेंसेलोडी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
2: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
1: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
3: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल के साथ DGP राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। ओगड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु, भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत पाने के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टेहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच NDRF, SDRF और सेना के जवान मुस्तैद, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, 4 साल से 60 वर्ष की उम्र वालों को लगेंगी 2 डोज, टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज 5वां दिन गुंडीचा मंदिर में निभाई गई हेरा पंचमी की परंपरा। पुरी में अड़पा मंडपम में दर्शन करने के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु, सुबह से ही दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी, आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। पुरी में हेरा पंचमी का विशेष महत्व, पौराणिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के क्रोधित होकर उन्होंने महाप्रभु के रथ पर किया था प्रहार। पुरी में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम, गर्मी से राहत करने के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। अकोला में जीवंत हुई जगन्नाथपुरी की सदियों पुरानी प्रसाद की मटकी परंपरा। श्रावण अमावस्या के बाद पहले सोमवार को भरी गई भगवान जगन्नाथ की प्रसाद मटकी। गढ़ के गुलगुले, मीठी रोटी, पूड़ी, गुजिया और मीठे भात से भरी गई विशेष प्रसाद की मटकी। भगवान जगन्नाथ के दर्शन और महाप्रसाद के लिए उमड़े श्रद्धालु, परंपरा, श्रद्धा और संस्कृति का अनूठा संगम। मान्यता है कि जो पुरी नहीं जा पाते उन्हें अकोला में ही मिलता है महाप्रसाद का पुण्य। चारों तरफ दिखा अद्भुत नजारा। जगन्नाथ भक्ति की सदियों पुरानी परंपरा का अच्छा टूट, पूर्वजों की विरासत को आज भी पूरे श्रद्धाभाव से निभाया जा रहा है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में निकाली गई जगन्नाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत किया। रथ यात्रा में भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। भगवान के रथ को खींचने के लिए मची होड़, हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते नजर आए। बेगूसराय में गूंजा जय जगन्नाथ, श्री राधा कुंज बिहारी मठ ने निकाली भव्य रथ यात्रा। बेगूसराय की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का सैलाब। जय जगन्नाथ के जयघोष के साथ गूंजा कोला, 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। करीब 10,000 श्रद्धालु ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया, जमकर लगाया जय जगन्नाथ के जयकारे। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत किया। रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं का जोश आए। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते झूमते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, गणपति बप्पा के आसनों से सजे बाजार, सहेली कार्यशाला में इको फ्रेंडली गणेश आसनों की धूम। बप्पा के लिए साईं रूप, महादेव, शिवलिंग और महाराज आसन बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। गणेश उत्सव से पहले मुंबई के बाजारों में दिखने लगी उत्सव की रौनक। गणेश दरबार सजाने के लिए फूल, मालाएं, लड़ी, मुकुट और आरती की थाली उपलब्ध। भक्तों के लिए तैयार है मोरिया, वक्रतुंड और मंगलमूर्ति जैसे खास सिंहासन। बप्पा के स्वागत में मुंबई का बाजार पूरी तरीके से तैयार। 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर मुंबई में उत्साह चरम पर। श्रावण के पहले सोमवार पर टेहरी के शिवालयों में उमड़ा आस्था गर्जन से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। बिलेश्वर, महादेव, बूढ़ा, केदारनाथ, ओणेश्वर, सतेश्वर और नैलेश्वर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ अपरंपार। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दुग्ध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। प्रथम केदार माने जाने वाले बिलेश्वर महादेव धाम में हजारों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पहाड़ में 16 जुलाई से तो मैदानी क्षेत्रों में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावण मास। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किए बाबा श्याम के दर्शन, देश की खुशहाली की कामना की। बागेश्वर में सावन के पहले सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। चमोली में पहाड़ों में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। शिवालयों में सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी भक्तों की कतार, हर हर महादेव के जयकारे। कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पवित्र सावन मास की पहली सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पहली सोमवारी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मंदिर प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस ने भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष बैरिकेडिंग की। आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मां बगलामुखी के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भस्म आरती के दौरान महाकाल को भांग, चंदन और सिंदूर का किया गया अर्पण। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए जय श्री राम की जयकारे। ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का भारत समेत 19 देश शामिल। भारत के राफेल, IL-78 और C-17 विमान शामिल। देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने की करेंगे अभ्यास। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन मंजूर। 4 से 7 वर्ष की उम्र वालों को लगेंगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी जांच की आवश्यकता। बारिश के चलते आज स्थगित रही वैष्णो देवी की यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह। भारी बारिश के चलते 21 और 22 जुलाई को स्थगित रहेगी अमरनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर के बेलगाम में बाढ़ बारिश के बीच सीआरपीएफ के जवान बने देवदूत। सीआरपीएफ जवानों ने रेस्क्यू करके महिला को पहुंचाया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न, पुल क्षतिग्रस्त। लगातार बारिश के कारण राजौरी के नौशेरा में मुनवार नदी उफान पर। भुज में एलओसी से सटे बाल्टी में फ्लैश फ्लड, घरों शेड और राशन की दुकानों को पहुंचा नुकसान। करगिल में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़, बड़गाम, करकीचू, चोस्कोरे, सिल्मो और संग्रह गांव में सबसे ज्यादा प्रभाव। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर। देहरादून, टिहरी और हरिद्वार में बारिश का रेड अलर्ट, अन्य जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से भूस्खलन और नदियों में उफान, प्रदेश के सभी स्कूल भी रहे बंद, 60 से ज्यादा सड़कें प्रभावित। देहरादून में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, देहरादून मसूरी नेशनल हाईवे बंद। देहरादून में बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड और केनाल रोड से सामने आई बारिश की तस्वीर। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश, पठानकोट में झमाझम बारिश की तस्वीर निकलकर सामने आई। झारखंड के धनबाद में बारिश के कारण मकान, दुकान, सड़कें और गलियां जलमग्न। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारी बारिश के कारण सड़कें बन गई सैलाब, स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों को परेशानी। असम में लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर, गुवाहाटी में तेजी से बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत, संगम नगरी में जल जमाव की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी। गाजियाबाद में हिंडन का बढ़ा जलस्तर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, 300 से ज्यादा मकान प्रभावित। मानसूनी बारिश से अचानक बदल गया अटावा के मौसम का मिजाज, बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव। धौलपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत, किसानों की फसलों के लिए वरदान बनी बारिश। जामनगर के आमरा गांव की 500 साल पुरानी अनोखी परंपरा, रोटी की दिखाकर रात बारिश को लगाया जाता है अनुमान। पटना में भारी बारिश से एनएमसीएच अस्पताल में घुस गया पानी, मरीजों को हो रही है परेशानी। एनएमसीएच अस्पताल के कई विभाग जलमग्न, ऑर्थो विभाग में दिखा सांप। मोतिहारी में नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़, कई इलाके जलमग्न। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में भर गया पानी। संतकबीरनगर में भारी बारिश से गिरा बाबा बैजूनाथ मंदिर का दीवार, बड़ा हादसा टला। श्रीनगर में सुबह सुबह जबरदस्त बारिश, सड़कों पर जल जमाव। श्रीनगर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव, रिहायशी इलाकों और दुकानों में घुस गया बाढ़ का पानी। रियासी में भारी बारिश के चलते चनाव नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में भर गया पानी। राजौरी में भारी बारिश के चलते नदी में फंसे मवेशी, लोगों ने मवेशियों का रेस्क्यू किया। प्रशासन ने लोगों से नदी में नहीं जाने की अपील की, बाढ़ वाले इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा। असम के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव बाढ़ से प्रभावित। असम में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबे। असम में बाढ़ के कई सड़कें और तटबंध को पहुंचा नुकसान। फिरोजाबाद में भारी बारिश के चलते मेडिकल कॉलेज परिसर में भर गया पानी। भारी बारिश से सड़कों पर जलजमाव, कई कारें पानी में पूरी तरीके से डूबी। फिल्म रामायण में जटायु के किरदार में नजर आएंगे अनुपम खेर, रावण के साथ करेंगे युद्ध। 8 अगस्त को बेंगलुरु में होगा फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज, 26 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। द ओडिसी का बॉक्स ऑफिस पर उठा तूफान, तीसरे दिन भी डबल डिजिट में हुई कमाई, 60 करोड़ का आंकड़ा पार। आप लोगों की तबीयत कैसी है? 60 साल के सलमान खान ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। तारक मेहता के निर्माता असित मोदी पियोगी नारायण मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट क्षेत्र में उभरते चीन का दावा, दुनिया के आधे से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट मॉडल अब चीन में हो रहे हैं विकसित। एमआईआईटी के मुताबिक चीन ने 400 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट मॉडल तैयार किए। चार पैरों वाले रोबोट की करीब 70% बिक्री चीनी कंपनियों की। इंटेलिजेंट रोबोटिक्स सेक्टर में चीन ने दुनिया में बनाई मजबूत बढ़त। चीन के बड़े उद्योगों में एआई उपयोग 30% के पार। रोबोटिक्स और एआई के दम पर चीन की टेक इंडस्ट्री ने पकड़ी तेज रफ्तार। रोबोटिक्स में चीन का वैश्विक दबदबा बढ़ा। ओपन सोर्स एआई लॉन्च मॉडल के 10 अरब से ज्यादा वैश्विक डाउनलोड्स का दावा। एआई और रोबोटिक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है चीन। दुनिया के आधे से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट प्रोडक्ट चीन में हो रहे हैं विकसित। नई ऊर्जा और बायो मेडिसिन सेक्टर में चीन की यूनिकॉर्न कंपनियों का उभार। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। एआई के ग्लोबल पार्टनर के रूप में चीन की बढ़ती भूमिका पर जोर। चीनी एआई मेडिकल समाधानों ने दुनिया भर का खींचा ध्यान। शंघाई में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के 18 सफल ऑपरेशन हुए पूरे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more. All in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover. Interested in what's going on around the world?
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
1: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ Good News Today.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर।

0: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: देखिए, सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का नया टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में सनी देओल का हमेशा की तरह दमदार अंदाज दिखाई दे रहा है। करीब एक मिनट का ये टीजर है जो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। इस टीजर में सनी देओल का किरदार डर और नफरत के ऊपर साहस चुनता हुआ नजर आता है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। देश के विभाजन पर बेस्ड इस फिल्म में बंटवारे का अनदेखा दर्द देखने को मिलेगा। फिल्म इस साल 14 अगस्त को रिलीज हो रही है।
3: जीते जी मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा।
4: एक्शन और इमोशन, साहस और बलिदान, शुरुआत से आखिर तक रोमांच से भरा बंटवारा 1947 का ये टीजर देश के बंटवारे के उस दौर की कहानी को सामने लाता है जो खौफ और दहशत से भरी है। जुल्मों सितम से भरे इस माहौल में एक शख्स ऐसा है जो बुझती हुई लौ के बीच उम्मीद बनकर खड़ा है। हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने परिवार की रक्षा के लिए डट कर खड़ा है। हमेशा की तरह सनी देओल का ये किरदार जोश और जुनून से भरा है।
3: जीते जी मरना नहीं चाहता।
4: बंटवारा 1947 का ये दूसरा टीजर है। करीब एक मिनट के इस टीजर में सनी देओल का किरदार डर और नफरत के ऊपर साहस चुनता है। एक ऐसा किरदार जो असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है। सनी देओल इस फिल्म में सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं और उनका इंटेंस अंदाज अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब दिख रहा है। टीजर में काफी इमोशनल सीन भी दिखाए गए हैं जो आपकी आंखों को नम कर सकते हैं। इमोशन के साथ टीजर में दमदार एक्शन भी देखने को मिलते हैं। इससे पहले बंटवारा 1947 का एक टीजर, मोशन पोस्टर, कैरेक्टर पोस्टर्स पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब तक रिलीज किए गए टीजर में बंटवारे के दौर की त्रासदी, साहस, बलिदान और इंसानी जज्बे की झलक देखने को मिलती है।
5: कुर्बानियां देने के बाद
4: 1947 में भारत का विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन और त्रासदियों में से एक था। अब तक कई बॉलीवुड फिल्में इस विषय पर बन भी चुकी है। अलग अलग फिल्मकारों ने किसी न किसी किताब या उपन्यास को आधार बनाकर अपने अपने नजरिए से इस ऐतिहासिक त्रासदी को पर्दे पर उतारा है। इस बार निर्देशन की कमान संभाली है राजकुमार संतोषी ने और भारत पाक विभाजन के दौरान की एक अनोखी कहानी को लेकर सामने आए हैं। बंटवारा 1947 असगर वजाहत के विश्व प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जमियाई नई पर बेस्ड है। जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जमियाई नई एक पंजाबी कहावत है जिसका मतलब है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। बंटवारा 1947 के दोनों टीजर दमदार लगते हैं। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी जैसे मंझे हुए कलाकार हैं। इंतजार अब ट्रेलर का है और 14 अगस्त का, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये फिल्म देश भर के सिनेमा घर में रिलीज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: लेकिन अफसोस, मुल्क का बंटवारा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए?

0: क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
6: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल के साथ DGP राजीव कृष्णनी की समीक्षा बैठक। गोकर्णनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच NDRF, SDRF और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं आज के विषय के बारे में। आज हम पंडित जी के साथ चर्चा करने वाले हैं कि पर्स में कौन कौन सी ऐसी आवश्यक चीजें आपको रखनी चाहिए जिससे धन का संचार लगातार आपके जीवन में बना रहे। पर्स में कौन सी पांच ऐसी जरूरी चीजें आपको रखनी चाहिए जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पंडित जी विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और साथ ही महाउपाय भी बताएंगे। आपके सवाल भी इस शो में हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अपने राशि के अनुसार अगर राशि के अनुकूल रंग का आप पर्स रखें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राशि के अनुकूल रंग का पर्स रखने से जीवन में निरंतर धन का आगमन होता रहता है।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 21 जुलाई 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात के 8:49 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:54 तक राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी कि आपके पर्स में वॉलेट में कौन कौन सी चीजें आप रख सकते हैं जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है, पैसा आपके पास आ सकता है। पर्स का किस्मत के साथ कनेक्शन क्या होता है पंडित जी, पहले वही जानते हैं आपसे।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पर्स में ऐसी कौन कौन सी चीजें रखें जिसको रखने से आपका भाग्य चमके, आपका भाग्य बेहतर हो। पर्स का आपके भाग्य के साथ क्या संबंध है? देखिए, पर्स सामान्यतः धन रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर आपका पर्स भी धन रखने का स्थान ही है, इसीलिए पर्स का प्रयोग करने में कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। अगर आप सोच समझकर पर्स रखेंगे, पर्स में वस्तुएं रखेंगे तो इससे धन का आगमन सरलता से हो पाएगा और आपको धन की कमी नहीं होगी, आपको धन का अभाव नहीं होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि अपने पर्स में 5 ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको रखना चाहिए, या 5 ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके पर्स में निरंतर धन आता रहे।
0: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले राशिफल की तरफ बढ़ते हैं और पहली 3 राशियों का हालचाल पंडित जी आपको बताएंगे। मेष, वृष और मिथुन वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से जानते हैं।
1: मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए पंडित जी से हमने प्रश्न किया था कि पर्स में कौन कौन सी आवश्यक चीजें रख सकते हैं जिससे धन की कमी आपको जीवन में कभी नहीं खलेगी, तो पर्स में पहली ऐसी कौन सी चीज रखना इंपॉर्टेंट होता है पंडित जी?
1: पर्स में पहली चीज आपको क्या अवश्य रखनी चाहिए आपको बताते हैं। देखिए, पर्स में अपने गुरु या देवी देवताओं के चित्र सामान्य स्थितियों में नहीं रखने चाहिए। आप अपने पर्स में अपने परिवार का चित्र चाहें तो रख सकते हैं और चाहें तो अपने पर्स में ओम का या स्वस्तिक का प्रतीक भी रख सकते हैं। आप अपने पर्स में लाल रंग का ओम या लाल रंग का स्वस्तिक रखें तो बहुत अच्छा होगा। जो भी चित्र या प्रतीक आप अपने पर्स में रखें वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ और सुंदर होना चाहिए। फटा हुआ चित्र रखने से आपको पैसों का नुकसान हो सकता है।
0: चलिए, पहली चीज तो पंडित जी ने आपको बता दी कि पर्स में आपको क्या नहीं रखना चाहिए, कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं और कौन सी नहीं। अब दूसरी ऐसी कौन सी चीज हमें पर्स में रखनी चाहिए जिसका फायदा हमें मिले पंडित जी?
1: देखिए, पर्स में रुपए और पैसे तो आप रखते ही हैं, वो तो उसका मुख्य काम है, लेकिन पर्स में रुपए और पैसे ठीक से रखिए। मोड़ कर, ठूंस कर, उल्टे सीधे तरीके से पैसे और रुपए मत रखिएगा। सिक्कों को नोट से अलग रखिए, रुपए अलग रखिए और सिक्के अलग रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर पर्स में आप रुपए और पैसे को सलीके से रखेंगे, मोड़ कर ठूंस कर नहीं रखेंगे तो धन का अपव्यय नहीं होगा। तो आप आराम से अपना पर्स एक दिन सेट करिए, पैसों और रुपयों को तरीके से रखिए और सिक्कों को अलग रखिए, रुपयों को अलग रखिए। अगर आप इस तरीके से अपना पर्स रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: चलिए और भी सवाल पंडित जी से जानेंगे और पूछेंगे, जिसके जवाब पंडित जी आपको देंगे। अब बारी आती है राशिफल पर वापस आने की और कर्क सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए बढ़ते हैं आप सबके प्रश्नों की तरफ। इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका भी, कोई भी परेशानी है उसका आप जवाब जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है बताइए जरा।
1: जी, आज का पहला प्रश्न अभय जी ने हमें लिखा है और अभय जी हमें मेरठ उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 सितंबर 1990, जन्म का समय शाम के 7:10, जन्म स्थान है मेरठ। अभय कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्या मेरा ये वैवाहिक जीवन चल सकेगा और आगे का जीवन मेरा कैसा रहेगा। अब है आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आपका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, कुछ समय तक शांति बनाए रखने की जरूरत अवश्य है। अक्टूबर 2026 तक शांति बनाए रखें, इसके बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। एक मोती बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का वक्त हो चला है और जानते हैं पंडित जी से ही कि आप में से कौन से दशक का है अगला सवाल।
1: जी अगला प्रश्न सावित्री जी ने हमें लिखा है और सावित्री जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 मार्च 1994, जन्म का समय सुबह के 8:15, जन्म स्थान है भागलपुर बिहार। मेल लिखती हैं पटना से, ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरी बेटी का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सावित्री जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इस समय उनका विवाह तय होने की संभावना बन रही है और साल 2027 के आरंभ तक इनका विवाह होना चाहिए, लेकिन जब भी इनका विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा ताकि इनका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। एक मोती बनवा के इनको पहनाइए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनको लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से पहली और दूसरी चीज के बारे में तो आपने समझ लिया, पर्स में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, पर्स में तीसरी ऐसी कौन सी आवश्यक चीज है जो रखने से हमें भरपूर फायदा होगा। पंडित जी,
1: तो पर्स में दो बातें कौन सी हैं महत्वपूर्ण वो आपने समझा क्या रखना है, अब पर्स में तीसरी किस बात का ध्यान रखना है, कौन सी चीज रखनी है। अपने पर्स में एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा यानी वर्ग आपको रखना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए सोने या पीतल का। इसको गंगा जल से धो करके अपने पर्स में बृहस्पतिवार को रख लीजिए और हर महीने में इसको निकाल करके गंगा जल से धो करके शुद्ध करते रहिए। अगर आप अपने पर्स में सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा रखेंगे तो आपके पर्स में स्थायी धन परमानेंट पैसा बना रहेगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है वापस राशिफल पर आने की और तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से विस्तार से जानते हैं।
1: तुला राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में शांति बनाए रखें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जानते हैं पहली दूसरी तीसरी चीज के बारे में आपने समझा, अब चौथी चीज के बारे में समझेंगे कि पर्स में ऐसी कौन सी चौथी चीज हमें रखनी चाहिए जिसका फायदा हमें मिले। पंडित जी,
1: तो पर्स में चौथी चीज क्या रखें या चौथी किस बात का ध्यान रखें? देखिए, पर्स में अगर आपको कागज रखने हैं तो बहुत थोड़े जो बड़े महत्वपूर्ण कागज हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है या एकाध कोई रसीद है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने पर्स में रख सकते हैं। पर्स में बहुत ज्यादा कागज फूस करके मत रखिए। बहुत लोगों के पर्स में पैसा नहीं होता, कागज ठूस ठूस कर पर्स में रखे रहते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप अपने पर्स में कागज रखेंगे तो इससे धन का अपव्यय होगा, धन की बर्बादी होगी। और अगर पर्स में ज्यादा कागज ठूस कर रखेंगे तो पर्स के गायब हो जाने का खतरा बना रहेगा। इसलिए पर्स में जो बहुत जरूरी कागज हैं, एकाध दो वही कागज रखिए। पर्स में अनावश्यक कागज ठूस करके इकट्ठा मत करिएगा।
0: चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि पर्स में ऐसी कौन सी पांचवी चीज हमें रखनी चाहिए जिसका एक तो हमें ख्याल भी रखना चाहिए और ऊपर से उसका फायदा भी हमें जीवन में मिले। पंडित जी,
1: पर्स में पांचवी कौन सी चीज रखें, किस बात का ध्यान रखें ताकि धन निरंतर आता रहे, धन की बर्बादी ना हो, पर्स गायब ना हो? पांचवी चीज क्या है? अपने पर्स में अपनी राशि की छोटी सी वस्तु आपको जरूर रखनी चाहिए। जो चीज आपकी राशि से संबंधित है उसका छोटा सा प्रतीक, उसका छोटा सा सिंबल आपको अपने पर्स में रखना चाहिए। आप चाहें तो अपने राशि से संबंधित रंग की कोई भी वस्तु अपने पर्स में रख सकते हैं। जैसे अगर आपकी कुंभ राशि है, मकर राशि है, तो आपका रंग है नीला या काला, तो नीले या काले रंग की छोटी सी चीज आप अपने पर्स में रख लें। अगर अपने राशि से संबंधित वस्तु आप अपने पर्स में रखेंगे तो इससे धन की प्राप्ति सरलता से होती रहेगी। और अगर आपको अपने राशि की वस्तु समझ में नहीं आ रही तो पहले ही आपको बताया है कि सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा ये आपको अपने पर्स में जरूर रखना है ताकि धन निरंतर आपके पास आता रहे।
0: और चलिए इसी के साथ बढ़ चले हैं अंतिम तीन राशियों की तरफ। पंडित जी से ही जान लेते हैं कि इनका वक्त कैसे रहने वाला है। अभी बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की।
1: मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से

0: चलाएंगे। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और दर्शकों का ही अगला सवाल लेते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि कौन सा है अगला प्रश्न। पंडित जी
0: जी, अगला प्रश्न हमें अपूर्वा ने लिखा है और अपूर्वा हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर सन 2000। जन्म का समय शाम के 6:40। जन्म स्थान है मुंबई। अपूर्वा कह रही हैं कि मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और आगे मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहती हूँ। क्या मैनेजमेंट करना मेरे लिए बेहतर होगा या मुझे टीचिंग सेक्टर के लिए कोशिश करनी चाहिए? अपूर्वा, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैनेजमेंट की शिक्षा में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, बाद में फाइनेंस में, मार्केटिंग में, अकाउंटिंग में, ऑडिट में अगर आप अपना करियर बनाएं तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का। इससे पहले आपको एक बार फिर से सूचित कर देती हूँ कि कोई भी प्रश्न है आपका भी, आप ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। तो पंडित जी, अंतिम सवाल किसका है?
0: जी, अंतिम प्रश्न हमें अनूप जी ने लिखा है और अनूप जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अक्टूबर 1994। जन्म का समय शाम के 7:00। जन्म का स्थान है बूंदी, राजस्थान। अनूप जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अनूप, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर बेहतर रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। सवाल पंडित जी ये है कि आपने तमाम चीजों के बारे में हमें बताया कि कौन सी चीजें आवश्यक हैं पर्स में रखने के लिए, जिसका किस्मत के साथ कनेक्शन है और जिसका फायदा होगा। अब ये बताइए कि पर्स खरीदते वक्त पर्स के कलर का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि इस कलर का पर्स ही हमें स्पेसिफिकली लेना चाहिए, उसका फायदा होता है?
0: जी देखिए, पर्स में कौन सी 5 चीजें आप रखें और आपको लाभ

0: हो वो तो हमने आपको बता दिया। पर्स का रंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबके लिए एक ही रंग नहीं चलेगा। एक आजकल एक फैशन चल गया है कि सब लोग हरे रंग का पर्स ले लो, हरे रंग के पर्स में पैसे आते हैं। ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली का जो धन स्थान का स्वामी ग्रह है या जो भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह है, उससे संबंधित रंग का पर्स लेने पर आपको लाभ होगा। जैसे मेष लग्न वालों को सफेद, क्रीम या पीले रंग का पर्स लेना चाहिए, वृष लग्न वालों को हरे रंग का या नीले रंग का पर्स, मिथुन लग्न वालों को सफेद रंग का या नीले रंग का पर्स, कर्क लग्न वालों को लाल, भूरा या पीले रंग का पर्स, सिंह लग्न वालों को हरे रंग का या लाल रंग का पर्स, कन्या लग्न वालों को क्रीम, गुलाबी, सफेद रंग का पर्स, तुला लग्न वालों को काला नीला पर्स भी सूट करता है। इसके अलावा ऑरेंज कलर का पर्स भी ले सकते हैं। वृश्चिक लग्न वाले पीले या सफेद रंग का पर्स इस्तेमाल करें। धनु लग्न वाले लाल रंग का, भूरे रंग का, नीले या काले रंग का पर्स इस्तेमाल करें। मकर लग्न वाले जो हैं वो काला नीला पर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रीम या वाइट शेड का पर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मकर लग्न वाले काला नीला पर्स इस्तेमाल करें या हरे रंग का पर्स इस्तेमाल करें। कुंभ लग्न वाले पीले रंग का पर्स, क्रीम कलर का, बिस्किट कलर का, लाइट ब्राउन कलर का पर्स इस्तेमाल करें। और मीन लग्न वाले लाल, भूरा या सफेद रंग का या ऑरेंज कलर का पर्स इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। यूनिवर्सली सबके लिए क्रीम और सफेद रंग का पर्स बहुत अच्छा रहता है, वो इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। और एक बात समझें कि काले रंग का पर्स इस्तेमाल करने में सावधानी रखें, क्योंकि काले रंग का पर्स हर व्यक्ति को सूट करे ये जरूरी नहीं है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अब जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 21 जुलाई को, सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका हैप्पी बर्थडे आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 21 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए वर्ष अनुकूल होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या अपने गुरु का चित्र पूजा स्थान पर रखा जा सकता है? देखिए, गुरु और आपका संबंध ईश्वर से भी ज्यादा ऊपर है। आप निश्चित रूप से अपने पूजा स्थान पर गुरु का चित्र रख सकते हैं। और आप कोई भी पूजा करने जा रहे हैं, कोई भी ध्यान करने जा रहे हैं, इसके पहले अपने गुरु की पूजा अवश्य करिएगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 21 जुलाई 2026 मंगलवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है, शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 21 जुलाई मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो आज के शो की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है, पंडित जी से जानते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है तुला। इनको बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं से बचाव होगा।
1: चलिए, तमाम उपाय और शो से जुड़े हुई जानकारियां तो पंडित जी ने आपको दे दी हैं, अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय पंडित जी क्या है।
0: जी, अगर आप मनचाही नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और मनचाही नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में काले तिल डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करिएगा और हर शनिवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करिएगा। ये उपाय लगातार 1.25 महीने तक करें, आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी।
1: तो पंडित जी, इस उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: देश में फिर से मॉनसून ने एक्टिव होते ही कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू कर दिया है और खासकर अगर हम देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत में जो राज्य हैं उनमें लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। इन हालात में जगह जगह लोगों को बचाने के लिए सेना, NDRF, SDRF और पुलिस की टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है, जिसके चलते अब तक कई जिंदगियों को बचाया जा चुका है। रिपोर्ट देखिए।

0: देश में मॉनसून के फिर एक्टिव होते ही नदी नाले उफान पर आ गए हैं। चाहे पहाड़ी राज्य हों या फिर मैदानी राज्य, नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं उफान पर बह रही नदियों का पानी पूरी रफ्तार के साथ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है, और कहीं नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। इन हालात में लोगों को बचाने के लिए जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर जम्मू से सामने आई, जहां तवी नदी का पानी अचानक बढ़ने से 3 युवक फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम फौरन एक्शन में आई और उसने युवकों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, जिसके तहत एनडीआरएफ के जवान एक बोट के सहारे उफनती हुई नदी को पार कर युवकों तक पहुंचे और उन्हें बोट पर बैठाकर किनारे पर ले आए। राज्य में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
1: इन्होंने फोन किया कि पानी आ गया और आप पुलिस को फोन करो। हमने मीडिया वालों को फोन किया था तो मीडिया वालों ने फोन कर दिया पुलिस को भी।
2: फिर ये अभी क्या एनडीआरएफ की टीम आई है?
1: हाँ आई है, वो ले आए उनको पास है।
2: कितने लोग थे ये?
1: 3 लड़के हैं ये।
3: पिछली बार भी अभी 10 दिन पहले ही हमने 4 बंदों को रेस्क्यू किया था। अभी भी हमने इनको बताया, वो उस दिन भी हमने बताया था कि आप तभी के किनारे ना घूमें क्योंकि तभी का कभी भी फ्लो बढ़ सकता है। और ये जब ये अभी प्ली ले बच्चे जो जिनको बचाया हुआ तो ये कह रहे हैं कि सुबह पानी कम था तो हम क्रॉस कर गए। तो अब यही है ना कि अगर पानी कम था तो आप ये क्रॉस कर गए हैं तो अल्टीमेटली इनको वापस लाने में तो परेशानी, अभी पानी बढ़ता जा रहा है और ये पीछे उधमपुर एरिया में अभी बारिश हुई है, ये फिर बढ़ जाएगा तो कहीं अब भी तो हम टाइमली पहुंच गए। तो हमारा यही है कि पब्लिक, जनरल पब्लिक से यही है कि आप तभी के किनारे ना जाएं और अपने बच्चों को और अपने जो भी आपके कंसर्न है उनसे तभी के किनारे थोड़े ये रेनी सीजन में थोड़ा दूर है।
0: ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ घंटों पहले सेना के जवानों ने राजौरी में पुलिस और एसडीआरएफ के साथ मिलकर चलाया। वहां व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनों को अंजाम दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उफनते नालों और नदियों के बीच फंसे 5 मासूम बच्चों समेत कुल 11 लोगों की जान सुरक्षित बचा ली गई।
4: जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से इस समय अगर हम देखें तो इस कार्य में जुटा हुआ है कि लोग जो है कहीं फंसे ना, क्योंकि कई इलाकों से खबरें आई थी कि लोग बाढ़ के पानी में फंसे थे। इसलिए भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनकी टीम्स अलग अलग स्थानों पर है। खासतौर पर जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर टीम्स तैनात कर दी गई है ताकि अगर कोई बड़ी स्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके। तो टीम्स हर जगह पर रवाना कर गई है। प्रभावित क्षेत्रों में इस समय टीम्स हैं और यही प्राथमिकता है कि जो लोग इस समय बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए।
0: भारी बारिश के कारण कमोबेश ऐसा ही हाल देवभूमि उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। वहां लगातार बारिश के कारण नदी और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए तमाम राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, जिसकी बदौलत देहरादून में 7 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। बताया गया कि ये सभी लोग संतला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलते ही फौरन पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। कुछ घंटों बाद सभी लोगों को सकुशल बचा लिया गया। बारिश के कारण बने हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी, नालों और झरनों के आसपास जाने से बचें।
5: संतला देवी माता मंदिर के पास नून नदी में 7 से ज्यादा लोग फंस गए, जिनको बमुश्किल रेस्क्यू किया गया। और इसके साथ ही देहरादून के माल देवता क्षेत्र में एक लैंडस्लाइड देखने को मिला। दूसरे क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो चमोली और पौड़ी में कई जगह रास्ते भी बाधित हो गए। चमोली में मलबा आने से एक बोलेरो भी फंस गई। और नदियों की अगर हम बात करें तो लगातार रुद्रप्रयाग और चमोली में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही है।
0: उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम के शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी के कारण बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। निचले इलाकों में अनेक गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ का पानी घरों और खेतों में घुस गया है, जबकि कई सड़कों और संपर्क मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ का सामना कर रहे इलाके से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, जहां उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया गया है।
6: हम लोग ईटानगर से ये टीम आया है और कल शाम को हम लोग चला था, आज सुबह यहाँ 4 बजे पहुँचा है। उसके पश्चात यहाँ पर हमने रेस्क्यू का काम आरंभ किया है और अभी तक लगभग 200 से ज्यादा आदमी को यहाँ से निकाल चुके।
0: मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, चाहे उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हों या फिर पूर्वोत्तर के राज्य असम और मेघालय हों।
7: और हमारा अनुमान यही है, पूर्वानुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर मुख्य रूप से मेघालय में और असम में भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है, मेघालय में अत्यधिक भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है।
0: मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने सभी एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, साथ ही निचले और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, देहरादून से अंकित शर्मा, जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: आइए बात करेंगे गणेश उत्सव की तैयारियों की। देखिए, भले ही अभी बप्पा के आगमन में लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बप्पा के दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज स्टूडे की टीम पहुंची है मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा पंडाल के ठीक बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में, जहां पर बप्पा के बैठने के लिए एक से बढ़कर एक भव्य और अनोखे आसन मौजूद है। अलग अलग डिजाइन के ये सभी आसन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।

0: बप्पा के स्वागत की रंगत अभी से दिखने लगी है। बाजार में गणपति उत्सव की तैयारियों की रौनक उमड़ने लगी है। गणेश चतुर्थी में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बप्पा के स्वागत का रंग मुंबई में कुछ अलग ही होता है। इसका अंदाज आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां लगभग 2 महीने पहले ही गणेश जी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर बहते झरने जैसा वाटरफॉल आसन यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से लेकर महाराजा सिंहासन और माता लक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे

0: क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
1: हर साल बप्पा के स्वागत के लिए भक्त जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहे तो वो भी मुमकिन है। इस सहेली कार्यशाला में भक्त रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से बप्पा के लिए आसन तैयार कर सकते हैं।
2: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी, एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
1: जब मौका बप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स, उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं।
2: सिर्फ यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
3: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप की जो रिसाइकलिंग भी है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है, रिसाइकलेबल आइटम है,
2: सारा इको फ्रेंडली है, सारे
3: पुट्टा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रोम चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर चाहिए, कि देख वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ रोम मिल सकते हैं सर।
2: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
3: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यूट आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगाए हुए वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
2: लाइटिंग्स मिलेंगे,
3: लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
2: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
3: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
2: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
3: साल भर हम लोग बापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबा के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
1: इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाला सारा सामान जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। इस बार देश भर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होगा। ऐसे में गणपति उत्सव की रौनक अभी से चारों तरफ दिखने लगी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
4: क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म द ओडिसी ने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है, जहां पर दर्शक इसके शानदार विजुअल्स और इमोशनल कहानी की तारीफ कर रहे हैं। तो फिल्म द ओडिसी की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 17 जुलाई को ओपनिंग भी काफी जबरदस्त रही।
5: सिनेमाई पर्दे पर अभी बस 3 दिन ही तो बीते हैं, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी धमाल मचा रही है। वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी इस एपिक फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। 17 जुलाई को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज हुई द ओडिसी को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी बदौलत द ओडिसी की शुरुआत काफी शानदार रही और ये लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं रिलीज के बाद लगातार 3 दिन मैट डेमन स्टारर द ओडिसी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखा है। तीसरे दिन यानी पहले रविवार को द ओडिसी ने 21 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन करते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ये फिल्म भारत में क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। वहीं इससे पहले 17 जुलाई को द ओडिसी ने 17 करोड़

0: सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
8: कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल के साथ DGP राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। ओघड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच NDRF, SDRF और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पहले कदम की। कहते हैं हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, एक कदम सैकड़ों और फिर हजारों में बदलकर मंजिल तक का सफर तय करते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है वो पहला कदम। आज दिन है उसी पहले कदम को सेलिब्रेट करने का। एक कदम जो 57 साल पहले आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद पर रखा था, और दूसरा कदम स्पेस में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर रॉकेट का। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये दोनों तस्वीरें एक लंबे सफर के पहले कदम को सेलिब्रेट करती हैं। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची थी। सोवियत संघ अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक और पहले इंसान यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर बढ़त बना चुका था। तब इसके जवाब में अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजने के महत्वाकांक्षी प्लान का आगाज किया और शुरुआत हुई अपोलो मिशन की। इसी के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स वाले अपोलो 11 मिशन को रवाना किया गया था, जो 4 दिन की यात्रा के बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। चांद पर उतरने का अंतिम चरण बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक था। लैंडिंग के समय यान का कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था और ईंधन भी तेजी से कम हो रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने सूझबूझ दिखाते हुए यान को चांद की सतह पर लैंड करवाया और मिशन कंट्रोल को संदेश भेजा, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल इज लैंडेड। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल भरी सतह पर अपना बायां पैर रखा और इतिहास रच दिया। इस मौके पर उनके कहे शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। अब वैसी ही एक विशाल छलांग भारत ने भी लगाई है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट ने मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी। आइए पहले आपको दिखाते हैं आखिर विक्रम 1 ने हमारी उम्मीदों को लेकर किस तरह अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और क्यों ये मिशन भारत की स्पेस जर्नी में एक माइलस्टोन साबित हुआ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras, and isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
3: My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about.
4: Ek Vikram wo जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और एक विक्रम ये जो अंतरिक्ष के आंगन का नवजात है, लेकिन कभी जो भारत के एक विक्रम ने कहा था वो आज दूसरे विक्रम ने सच कर दिखाया है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी क्षमता, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है विक्रम 1 ने। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के शुभ आगमन का प्रतीक बन गया है।
5: देखिए, ये मिशन आगमन है। अब आगमन को तो

0: लिफ्ट ऑफ।
1: देश में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट भी वो जिसे नाम मिला है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। विक्रम बनने इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया।
0: एंड वी हैव लिफ्ट ऑफ ऑफ विक्रम 1, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च।
1: विक्रम 1 की लॉन्चिंग का समय 18 जुलाई सुबह 11:30 पर तय था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग की गई।
2: लगभग 16:20 के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में, सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं, और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी और लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो यह एक बहुत ही सुवर्ण अवसर है भारत की स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में।
1: इसके लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। श्रीहरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक इस लॉन्चिंग के इंतजार में थे। आखिरकार फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ और सफलता पूर्वक विक्रम 1 की लॉन्चिंग हो गई। कंट्रोल रूम से लेकर व्यूइंग गैलरी तक सभी के चेहरे हिल उठे। सालों की मेहनत को मुकाम मिल रहा था। स्काई रूट के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था।
0: पेलोड फेयरिंग, वी हैव सक्सेसफुल पेलोड। दल काफी उत्साहित है इस समय, और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है, और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है।
1: विक्रम 1 लॉन्चिंग का एक एक चरण पूरा करता जा रहा था। हर दहलीज लांघने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी।
0: 50 किलोमीटर, और यहां पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है।
3: This is quite a major achievement for the nation with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well.
1: कुछ ही मिनट्स में विक्रम 1 आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कार्मन लाइन को पार कर गया। धरती और स्पेस के बीच की यह काल्पनिक रेखा अंतरिक्ष की दहलीज मानी जाती है। कार्मन लाइन लांघने के साथ ही विक्रम 1 अंतरिक्ष में दाखिल हो गया।
3: And we have reached space, guys.
0: Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation.
1: अगर विक्रम 1 अंतरिक्ष की ऊंचाई पर पहुंच रहा था, तो यूं समझिए कि श्रीहरिकोटा के स्टेशन पर जोश, खुशी और उत्साह भी लगभग उसी ऊंचाई को छू रहा था। देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था। स्काई रूट के लिए ये उपलब्धि अभूतपूर्व थी। गर्व और खुशी के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने स्काई रूट कंपनी के CEO और COO समेत पूरी टीम को फोन करके शुभकामना संदेश दिया।
4: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं, और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी, और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था।
1: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था, और अब विक्रम 1 धरती के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। विक्रम 1 ने लॉन्च से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए, और करीब 450 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।
5: ये जो विक्रम वन था ये केवल 350 kg ये एलईओ में यानी के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डाल सकता था। अभी जो विक्रम इसके बाद जो आएगा विक्रम टू वो थोड़ा ज्यादा होगा और फिर विक्रम थ्री में और ज्यादा होगा। तो ये धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और ये पूरा जो था ये इसरो ने स्काई रूट को हैंड होल्ड किया है, उनको टेक्नोलॉजी दिया है, हैंड होल्ड मतलब उनको गाइड किया है।
1: प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम वन रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मो सर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलोरास भी इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। ये माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की छोटी छोटी छवियां उकेरी गई हैं। जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए, इनका मकसद नई तकनीक को परखना, स्पेस ट्रेवल को सुरक्षित बनाना और आने वाले मिशन को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम वन स्काई रूट के 3 डेवलपमेंटल मिशन में पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काई रूट के युवा इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
6: The space sector reform what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
1: ये अपने आप में बेहद अहम है कि ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है और इसे पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया।
5: अगर आप देखें कि अमेरिका में अभी स्पेसएक्स है जो प्राइवेट कंपनी है, बोइंग है अगेन प्राइवेट कंपनी, ब्लू ओरिजिन, ऐसे कई ऐसे वो हैं और पूरे यूरोप में भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं। तो हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो एकदम सही है और इसी मार्ग पे हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि इसरो हैंडहोल्ड नहीं करेगा, अपना डेटा नहीं देगा, लेकिन अभी एकदम बदल गया। अभी इसरो ऐसे स्टार्टअप्स को हैंडहोल्ड कर रहा है।
1: आपको बता दें कि विक्रम वन में भेजे गए पेलोड के साथ ही पीएम मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी भेजा गया है जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। मातृभूमि का जय घोष करते ये शब्द भी भारतवासियों की असीम उम्मीदों की तरह आज अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये जय घोष कर रहे हैं कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां प्राइवेट कंपनी के रॉकेट अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और चलिए अब आपको विक्रम वन के बारे में बताते हैं, आखिर क्यों इस रॉकेट की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और क्या खासियत है इस रॉकेट की, उसे समझिए जरा। विक्रम वन पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना ये हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है जिससे इसकी ईंधन दक्षता काफी बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी इसमें दिया गया है। अब इसके बाद देखिए बारी आती है इसको और समझने की। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे तीन बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा होता है। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं। ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। यहां लिक्विड मॉड्यूल काम आता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम भी करता है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्टकार्ड भेजा जिस पर वंदे मातरम लिखा गया। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के बाद पीएम ने स्काईरूट की टीम को बधाई देने के लिए फोन किया तो कंपनी के सीईओ ने उन्हें ये बात बताई और तब ये भेद खुला कि आखिर क्यों अंतरिक्ष में भेजे जा रहे उस पोस्टकार्ड पर पीएम ने वंदे मातरम ही लिखा था।
8: आपका कार्ड जो आप भेजे थे that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit.
4: लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाए और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देती, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी
7: तो वंदे मातरम क्यों लिखा था प्रधानमंत्री ने, उसके दो कारण प्रधानमंत्री ने आपको बताए। अब आपको समझाते हैं विक्रम 1 और विक्रम एस में डिफरेंस क्या है, उस अंतर को आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, विशेषता मिशन का प्रकार है सब ऑर्बिटल, विक्रम एस होता है और विक्रम 1 जो है वो ऑर्बिटल होता है। ये मुख्य अंतर आपको समझा रहे हैं विक्रम एस और विक्रम 1 में। अधिकतम ऊंचाई जो होती है विक्रम एस की वो होती है 89.5 किलोमीटर और विक्रम 1 की जो ऊंचाई होती है वो होती है 450 किलोमीटर। ये बेसिक अंतर जो है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। इसके बाद केवल टेस्ट पेलोड के तौर पर इसको जाना जाता है, ये इसकी खास विशेषता है। पेलोड क्षमता कितनी होती है वो आपको समझा रहे हैं। 350 किलोग्राम तक की इसकी क्षमता होती है। सिंगल स्टेज मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका सिंगल स्टेज होता है। तीन सॉलिड स्टेज प्लस लिक्विड मॉड्यूल इसकी ये विशेषता होती है। इसके अलावा विक्रम एस और विक्रम 1 में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लीजिए। विक्रम एस जो है वो रेगुलर कंपोजिट के तौर पर काम करता है, मटेरियल जो होता है उसमें रेगुलर कंपोजिट होता है, और जो विक्रम 1 होता है उसमें कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये है इन दोनों में विशेष अंतर।

0: साल था 2020 का, जब भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले थे। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में उभरने लगे थे। इस घटना को 6 साल गुजर चुके हैं और भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में लगभग 400 स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो अपने अपने लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते आज भारत की स्पेस इकोनॉमी 8.4 बिलियन यानी लगभग 800 करोड़ की हो चुकी है। स्पेस स्टार्टअप्स की इस बार के बीच हाल के सालों में बुलबुले की तरह बेहद तेजी से एक नाम उभरा है, स्काई रूट एरोस्पेस। अपने नाम जैसा ही काम ये स्पेस स्टार्टअप पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। अंतरिक्ष के आंगन में भारत की जड़े जमाने के मिशन में स्काई रूट एरोस्पेस अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कंपनी की टकसाल से निकला है भारत का नायाब रॉकेट विक्रम 1।
1: श्रीहरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशंस लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है। स्काई रूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया।
0: स्काईरूट की शुरुआत करीब 8 साल पहले 2018 में हुई थी। स्काईरूट की स्थापना इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नागा भरत डाका और पवन कुमार चंदना ने मिलकर की थी। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण करना रहा, ताकि दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड और बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशंस दिए जा सके। हाल ही में ये कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी, यानी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया था।
2: Globally, very few companies are able to achieve it. So I think doing it from India, we're very proud, and it's a great milestone for Skyroot, for India, and also for globally as well, because the world requires more access to space.
0: क्योंकि डॉक्टर सारा भाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी, इसलिए स्काईरूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। साल 2022 में लॉन्च किया गया पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रमएस भी इसी सम्मान श्रृंखला का हिस्सा था। 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट के सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रमएस ने श्रीहरिकोटा से अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रमएस रॉकेट ने 85.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर ये बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया।
3: And in India, we have good space access solution capacity already developed by ISRO. But the commercial market of launch captured by Indian launch vehicles is very less. And now, with that objective, like now that we have good manufacturing ecosystem that can manufacture aerospace grade rockets, what private companies like us bring to the table is the design engineering and the system engineering capability, where we can build end-to-end systems and develop. So India is also well known for affordable space missions, and that cost effectiveness naturally translates to the private sector in India. So successfully building a reliable rocket from India will naturally place us as an affordable launch solution from India to the world.
0: इसके बाद अब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत के स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और नई तकनीक की शानदार मिसाल बन गया है। लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। दरअसल भारत में अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन रही हैं। इसके कई फायदे हैं। स्काईरूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बेहद सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड लॉन्चिंग विकल्प मिलेंगे। इससे देश की स्पेस इकोनॉमी और मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
4: ये जो स्पेस इकोनॉमी है और जहां तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन जैसे मैंने कहा बढ़ रहा है. जहां तक स्पेस इकोनॉमी है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए. भारत का जो योगदान है इसमें 2 या 3%. अभी ये तो ठीक नहीं क्योंकि हमारा इसरो इतना काम कर रहा है, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम मंगलयान अभी यहाँ पर चंद्रयान, फिर अभी हम स्पेस स्टेशन डालेंगे स्पेस पे, तो हम इतने आगे बढ़ रहे हैं. तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, जो मोदी जी और उनके गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना.
0: बता दें कि भारत ने भले ही अंतरिक्ष में प्राइवेट उड़ान का माइलस्टोन अब हासिल किया है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया की कई कंपनियां इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं. खासतौर पर अमेरिका में स्पेसएक्स, ब्लू ऑरिजिन और रॉकेट लैब जैसी दिग्गज प्राइवेट स्पेस कंपनियां स्पेस ट्रेवल में नए युग की शुरुआत काफी पहले कर चुकी हैं. यहाँ तक कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स तो अब दुनिया को भविष्य में स्पेस टूरिज्म का सपना भी दिखा रही है.
4: चीन कुछ 70-80 फ्लाइट्स यानी के लॉन्चेस वो करता है एक साल में, और अमेरिका तो इनके प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो स्पेसएक्स और बोइंग और ये सब करते हैं 190-180 हर साल में. और हमारे यहाँ पर इतने सारे नहीं होते, कुछ 4 या 5 होते हैं, 4-5 भी नहीं होते. हमारा अभी जो विजन है वो तो 13 सैटेलाइट्स का था इस साल में, अभी तक देखिए 1 या 2 ही हुए हैं. तो कोई नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमें और भागना पड़ेगा.
0: भले ही रास्ता लंबा है, लेकिन भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी अब उम्मीदों को पंख लगा रही है. विक्रम 1 का लॉन्च इस कामयाबी की ओर भारत का पहला कदम माना जा सकता है.
1: विक्रम 1 के ऑर्बिटल लॉन्च के साथ सिर्फ भारत में स्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन नहीं हुआ, बल्कि एक विश्वास का आगमन हुआ है कि भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान भी गढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा. कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, श्रीहरिकोटा.
5: और चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही. देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे.

0: पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्णनी की समीक्षा बैठक। गोकर्णनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई घटना पुरानी बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका होने से इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवान हाथ में बैनर लिए हुए कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का लेटेस्ट वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
4: अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि चीन की सेना ने भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। वीडियो में किसी पहाड़ी रास्ते पर हथियारबंद

0: दर कब्जा कर लिया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवानों को देखा जा सकता है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें एक बैनर नजर आया, इसमें नेपाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अगर वीडियो चीनी सेना का है तो फिर इसमें नेपाली भाषा में लिखा हुआ बैनर क्यों नजर आ रहा है, ये हमें थोड़ा अटपटा लगा। इसके अलावा सेना के जवानों के साथ कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वीडियो अगर घुसपैठ का है तो फिर इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वायरल हो रहा वीडियो चीनी घुसपैठ का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर चीनी घुसपैठ के साथ जोड़ते हुए वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस वीडियो में जानिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई। वीडियो का सच झूठ जानने के लिए इसकी तहकीकात में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम नेपाल के न्यूज़ पोर्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंचे।

0: भी देखने को मिले। यहाँ नेपाल की भाषा में दी गई जानकारी को हमने ट्रांसलेट किया। इससे पता चला कि ये तस्वीर गोरखा जितगढ़ी यात्रा की है। जितगढ़ी में बैसाख 7 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1872 में नेपाल से हारने के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की याद में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल के एक दूसरे न्यूज पोर्टल में भी इस वीडियो से संबंधित खबर देखने को मिली। इसमें वीडियो के की फ्रेम का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक नेपाली सेना की ऐतिहासिक एकीकरण यात्रा गोरखा दरबार से जीतगढ़ी तक शुरू हो गई है। रुद्रध्वज गण के गणपति बिरोध रिजाल ने बताया कि ये यात्रा बैसाख की 6 तारीख को जीतगढ़ी पहुंचेगी और अगले दिन जीत के जश्न में शामिल होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई लड़ाई में मिली जीत को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। एक और न्यूज पोर्टल में भी इस बारे में खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें भी से नेपाली सेना की यात्रा की तस्वीर बताया गया है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि ये वीडियो नेपाली सेना का है जो गोरखा से जितगढ़ी एक समारोह में शामिल होने जा रही थी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो पोस्ट कर दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर चुकी है। सरकार और सेना की तरफ से इसके दावे का खंडन किया गया है। भारतीय सेना के मुताबिक हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट देखी जिनमें आरोप लगाया गया है कि हाल ही में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं। ये रिपोर्ट गलत है, इनका कोई आधार नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन दावों को खारिज कर दिया कि चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों की ओर से सीमा पार करने की घटनाएं होती रही हैं, क्योंकि सीमा स्पष्ट रूप से तय नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजिजू ने साफ कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। सीमा तय न होने की वजह से दोनों तरफ से सीमा पार करने की घटनाएं होती रहती हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो नेपाल का है। वहां नेपाली सेना ने गोरखा से जितगढ़ी तक समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से चीन की किसी भी घुसपैठ से इनकार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी में अचानक धमाका होता है, उसे चला रहा युवक उछलकर दूर कहीं गिर जाता है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
0: इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने और धमाके की खबर अक्सर सामने आती रहती है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 66 में एक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने से एक इमारत में आग लग गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों स्कूटर ब्लास्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक चलते हुए स्कूटर में जोरदार धमाका होता है और इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटर की सीट निकलकर अलग हो जाती है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि चलती ईवी स्कूटी की बैटरी में धमाका, चालक कई फीट दूर जा गिरा। चलती हुई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक तेज धमाका होने के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया। हादसे में चालक सड़क किनारे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत चालक की मदद की। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका होने के बाद सवार आदमी हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटी की सीट निकलकर अलग हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि वीडियो भारत का नहीं है। इसके अलावा वायरल वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखने पर इसमें ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। धमाका होने से पहले ही धमाके जैसी रोशनी नजर आने लगती है और स्क्रीन पर पीला रंग नजर आता है। धमाके के बाद आदमी की बॉडी हवा में अजीब सी दिखाई देती है, मानो उसके शरीर को धमाके से नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगले ही पल बॉडी बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही है। धमाके के बाद स्कूटर अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे घूमता हुआ नजर आता है, जो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा था। धमाके के वक्त स्कूटी की सीट हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद अचानक से पेड़ों के बीच से सामने आ जाती है। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर ये दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है, ये वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो से जुड़ी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूटी में धमाका होने से कुछ सेकंड पहले ही इस पर सवार आदमी अपनी सीट से ऊपर उठ जाता है। लिहाजा ऐसे में हमने वीडियो को हाई मॉडरेशन टूल की मदद से सर्च किया। इस टूल ने फोटो के करीब 62% तक एआई से बने होने की संभावना जताई। इस टूल ने सिडान्स 2 की मदद से वीडियो के बने होने के संकेत दिए। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वीडियो के कई की फ्रेम निकाले और उन्हें दूसरे एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद से सर्च किया। हमने साइट इंजन की मदद से की फ्रेम को सर्च किया। इस टूल ने 99% तक की फ्रेम के एआई की मदद से बने होने की संभावना जताई। एआई डिटेक्शन टूल अनडिटेक्टेबल ने भी की फ्रेम को एआई की मदद से बना हुआ बताया। सर्च के दौरान हमें वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 10 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो को व्यंग के उद्देश्य से शेयर किया गया। इस अकाउंट को खंगालने पर हमने पाया कि इसके बायो में बताया गया है कि इस पेज पर एआई और वीएफएक्स से जुड़े वीडियोस शेयर किए जाते हैं। यहाँ वायरल वीडियो से मिलते जुलते ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें गाड़ियों में धमाका होते और लोगों को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। साफ है इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके का वीडियो फर्जी है। असल में वायरल हो रहे इस वीडियो को एआई की मदद से ही बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट में फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: इफ यू आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, एनबीसी स्पोर्ट्स रेडियो इज द प्लेस फॉर यू। Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक की, आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
5: सोशल मीडिया पर ये प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाई बहन के स्नेह से भरा ये मासूम पल लोगों को अपना बचपन याद दिला रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में एक स्कूल का सीन दिखाई देता है। लंच ब्रेक के दौरान कुछ छोटे छोटे बच्चे जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर बड़े आराम से खाना खाने में लगे हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसी बीच कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो जाता है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में एक भाई बहन भी बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन बहन अपने छोटे भाई का जिस तरह से ध्यान रखती है वो हर किसी को भावुक कर देता है। पहले वो खुद अपने टिफिन से एक निवाला खाती है और फिर उसी हाथ से अपने छोटे भाई को प्यार से खाना खिलाती है। भाई भी बड़े आराम से अपनी बहन के हाथ से खाना खाता रहता है। दोनों के चेहरे पर मासूमियत साफ नजर आती है और यही मासूम रिश्ता लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता, न किसी तरह की स्क्रिप्ट नजर आती है और न ही कैमरे के लिए कोई दिखावा। ऐसा लगता है जैसे स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया हो। शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को आसानी से जोड़ पा रहे हैं। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा देता है। वो खुद के लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर शिकन नहीं आने देता। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के संघर्षों को समझते हैं और उन्हें कोई खूबसूरत तोहफा देते हैं, तो वो पल बेहद खास बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी ने अपने पिता को उनके 50वें जन्मदिन पर एक चमचमाती बाइक गिफ्ट की है। इस प्यारे सरप्राइज को देखकर पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए और वीडियो देखने वाले लाखों लोग भी भावुक हो गए। अचानक मिले सरप्राइज से पिता इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया, जिसने इस पूरे प्लान को अंजाम देने में बहन की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर जुड़ी अपनी बेटी से बात की और खुशी के आंसू बहाते हुए उसे इस शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद किया।
6: हैप्पी बर्थडे डैडी।
5: सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोस खूब पसंद किए जाते हैं, जो ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने दिव्यांग कुत्ते की मदद कर लोगों की खूब तारीफ बटोरी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। इसी दौरान एक दिव्यांग कुत्ता सड़क पार करने की कोशिश करता है, लेकिन भारी ट्रैफिक की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तभी वहाँ मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की नज़र उस कुत्ते पे पड़ती है। वो बिना देर किए सड़क के बीच पहुँच जाता है और आने वाली गाड़ियों को रोकने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड्स में वाहन रुक जाते हैं और पुलिस कर्मी कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराने में मदद करता है। इसके बाद कुत्ता आराम से दूसरी ओर पहुँच जाता है। ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे पाकिस्तान के सिंध इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक चाय पकौड़े वाले का देसी जुगाड़ देखकर हर कोई बोल रहा है, भाई ये बंदा तो जीनियस है। वीडियो में दिखता है कि एक दुकानदार सड़क किनारे अपनी बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े तल रहा है। कढ़ाई में तेल खूब गर्म है और पकौड़े छन छन कर तले जा रहे हैं। अभी तक तो सब नॉर्मल लगता है, ट्विस्ट तब आता है जब कैमरा थोड़ा जूम होता है। उसी कढ़ाई के अंदर गरम तेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टील का बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में चाय उबल रही है। एक ही कढ़ाई में नीचे पकौड़े तले जा रहे हैं और ऊपर रखे बर्तन में चाय पक रही है। देखने वाला पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन दुकानदार का लॉजिक एकदम साफ है। वो सीधे तेल में चाय नहीं बना रहा है, वो तेल की गर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। कढ़ाई का तेल इतना गर्म है कि उसके ऊपर रखा बर्तन अपने आप गर्म हो जाता है और उसी हीट से अंदर चाय उबलने लगती है। मतलब अलग से गैस जलाने की जरूरत ही नहीं, एक चूल्हे पर दो काम, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और जमकर इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक खेत दिखाई देता है, जहां सामान्य तौर पर ट्रैक्टर से होने वाला काम ई रिक्शा की मदद से किया जा रहा है। आमतौर पर खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी को आसानी से पलट सके। लेकिन इस वीडियो में लोगों ने ई रिक्शा के साथ ऐसा जुगाड़ किया है कि वो भी खेत जोतने का काम करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक सुकून भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक रात में पहाड़ों के बीच गिटार पर धुन बजाता दिख रहा है। बिना शब्दों की ये धुन सीधे दिल को छू रही है। नेचर और म्यूजिक के इस जादू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे धुन बजती है, लगता है मानो पहाड़ भी उसे सुन रहे हैं। वो म्यूजिक इतना सॉफ्ट और इमोशनल है कि सुनते ही मन एकदम शांत हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड कर जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब बात अपने भारतीय गानों और डांस की हो तो भैया दुनिया के किसी भी कोने में लोग पैर थिरकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक ऐसा ही दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक व्यस्त बाजार में एक भारतीय लड़की ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गाने पर ऐसा रंग जमाया कि वहाँ मौजूद विदेशी गोरे भी उसके साथ भांगड़ा करने पर मजबूर हो गए।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: आइए बात करेंगे गणेश उत्सव की तैयारियों की। देखिए, भले ही अभी बप्पा के आगमन में लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बप्पा के दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज स्टूडियो की टीम पहुंची है मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा पंडाल के ठीक बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में, जहां पर बप्पा के बैठने के लिए एक से बढ़कर एक भव्य और अनोखे आसन मौजूद है। अलग अलग डिजाइन के ये सभी आसन पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं।

0: चुकी है। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बप्पा के स्वागत का रंग मुंबई में कुछ अलग ही होता है। इसका अंदाज आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां लगभग 2 महीने पहले ही गणेश जी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर बहते झरने जैसा वाटरफॉल आसन यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से लेकर महाराजा सिंहासन और माता लक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बप्पा के इस आसन को चुन रहे हैं।
2: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
3: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है। उसमें से मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा। ये 3 डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
4: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: हर साल बप्पा के स्वागत के लिए भक्त जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहे तो वो भी मुमकिन है। इस सहेली कार्यशाला में भक्त रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से बप्पा के लिए आसन तैयार कर सकते हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: जब मौका बप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स, उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं।
1: सिर्फ यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
5: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप किए जो रिसाइकलिंग भी है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकलेबल साइट आइटम
1: है, इको फ्रेंडली है, सारे
5: पुट्टा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रोम चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर चाहिए, कि देख वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ रोम मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
5: जैसे कि आप देख सकते फ्लावर्स में जो है

0: फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यूट आइटम्स है जो पूरा वेल्स लगाए वो टाइप के है, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
1: लाइटिंग्स
0: मिलेंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगी सर।
1: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
0: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
0: साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबाग के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
2: इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाला सारा सामान जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। इस बार देश भर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होगा। ऐसे में गणपति उत्सव की रौनक अभी से चारों तरफ दिखने लगी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल के साथ DGP राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। ओघड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच NDRF, SDRF और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पहले कदम की। कहते हैं हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, एक कदम सैकड़ों और फिर हजारों में बदलकर मंजिल तक का सफर तय करते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है वो पहला कदम। आज दिन है उसी पहले कदम को सेलिब्रेट करने का। एक कदम जो 57 साल पहले आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद पर रखा था, और दूसरा कदम स्पेस में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर रॉकेट का। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये दोनों तस्वीरें एक लंबे सफर के पहले कदम को सेलिब्रेट करती हैं। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची थी। सोवियत संघ अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक और पहले इंसान यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर बढ़त बना चुका था। तब इसके जवाब में अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजने के महत्वाकांक्षी प्लान का आगाज किया और शुरुआत हुई अपोलो मिशन की। इसी के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स वाले अपोलो 11 मिशन को रवाना किया गया था, जो 4 दिन की यात्रा के बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। चांद पर उतरने का अंतिम चरण बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक था। लैंडिंग के समय यान का कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था और ईंधन भी तेजी से कम हो रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने सूझबूझ दिखाते हुए यान को चांद की सतह पर लैंड करवाया और मिशन कंट्रोल को संदेश भेजा, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल इज लैंडेड। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल भरी सतह पर अपना बायां पैर रखा और इतिहास रच दिया। इस मौके पर उनके कहे शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। अब वैसी ही एक विशाल छलांग भारत ने भी लगाई है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट ने मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी। आइए पहले आपको दिखाते हैं आखिर विक्रम 1 ने हमारी उम्मीदों को लेकर किस तरह अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और क्यों ये मिशन भारत की स्पेस जर्नी में एक माइलस्टोन साबित हुआ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras and is in this quite something.
3: Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
4: My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about.
5: Ek Vikram wo जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और एक विक्रम ये जो अंतरिक्ष के आंगन का नवजात है, लेकिन कभी जो भारत के एक विक्रम ने कहा था वो आज दूसरे विक्रम ने सच कर दिखाया है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी क्षमता, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है विक्रम 1 ने। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के शुभ आगमन का प्रतीक बन गया है।
6: देखिए, ये मिशन आगमन है। अब आगमन को तो और आगे बढ़ते ही जाना है।

0: लिफ्ट ऑफ।
1: देश में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट भी वो जिसे नाम मिला है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर।
2: विक्रम बनने
1: इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया।
0: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch.
1: विक्रम 1 की लॉन्चिंग का समय 18 जुलाई सुबह 11:30 पर तय था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग की गई।
3: लगभग 16 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं, और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी और लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो यह एक बहुत ही सुवर्ण अवसर है भारत की स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में।
1: इसके लिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। श्री हरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक इस लॉन्चिंग के इंतजार में थे। आखिरकार फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ और सफलता पूर्वक विक्रम 1 की लॉन्चिंग हो गई। कंट्रोल रूम से लेकर व्यूइंग गैलरी तक सभी के चेहरे हिल उठे। सालों की मेहनत को मुकाम मिल रहा था। स्काई रूट के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था।
0: पेलोड फेयरिंग, वी हैव सक्सेसफुल पेलोड। दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्री हरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है।
1: विक्रम 1 लॉन्चिंग का एक एक चरण पूरा करता जा रहा था। हर दहलीज लांघने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी।
0: 50 किलोमीटर और यहां पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है।
4: This is quite a major achievement for the nation with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well.
1: कुछ ही मिनट्स में विक्रम 1 आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कार्मन लाइन को पार कर गया। धरती और स्पेस के बीच की यह काल्पनिक रेखा अंतरिक्ष की दहलीज मानी जाती है। कार्मन लाइन लांघने के साथ ही विक्रम 1 अंतरिक्ष में दाखिल हो गया।
4: एंड वी हैव रीच्ड स्पेस गाइस,
0: कांग्रेचुलेशंस, विक्रम 1 इज इन स्पेस। हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation.
1: अगर विक्रम 1 अंतरिक्ष की ऊंचाई पर पहुंच रहा था तो यूं समझिए कि श्री हरिकोटा के स्टेशन पर जोश, खुशी और उत्साह भी लगभग उसी ऊंचाई को छू रहा था। देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था। स्काई रूट के लिए ये उपलब्धि अभूतपूर्व थी। गर्व और खुशी के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने स्काई रूट कंपनी के सीईओ और सीओओ समेत पूरी टीम को फोन करके शुभकामना संदेश दिया।
5: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी, और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था।
1: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था और अब विक्रम 1 धरती के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। विक्रम 1 ने लॉन्च से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए और करीब 450 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।
6: ये जो विक्रम वन था ये केवल 350 kg ये एलईओ में यानी के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डाल सकता था। अभी जो विक्रम इसके बाद जो आएगा विक्रम टू वो थोड़ा ज्यादा होगा और फिर विक्रम थ्री में और ज्यादा होगा। तो ये धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और ये पूरा जो था ये इसरो ने स्काई रूट को हैंड होल्ड किया है, उनको टेक्नोलॉजी दिया है, हैंड होल्ड मतलब उनको गाइड किया है।
1: प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम वन रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मो सर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलोरास भी इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। ये माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की छोटी छोटी छवियां उकेरी गई हैं। जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए, इनका मकसद नई तकनीक को परखना, स्पेस ट्रेवल को सुरक्षित बनाना और आने वाले मिशंस को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम 1 स्काई रूट के 3 डेवलपमेंटल मिशंस में पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काई रूट के युवा इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
7: The space sector reform, what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very, very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
1: ये अपने आप में बेहद अहम है कि ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है और इसे पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया।
6: अगर आप देखें कि अमेरिका में अभी स्पेसएक्स है जो प्राइवेट कंपनी है, बोइंग है अगेन प्राइवेट कंपनी, ब्लू ऑरिजिन, ऐसे कई ऐसे वो हैं और पूरे यूरोप में भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं। तो हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो एकदम सही है और इसी मार्ग पे हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि इसरो हैंड होल्ड नहीं करेगा, अपना डेटा नहीं देगा। लेकिन अभी एकदम बदल गया है, अभी इसरो ऐसे स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड कर रहा है।
1: आपको बता दें कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ ही पीएम मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी भेजा गया है जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित हैं। मातृभूमि का जय घोष करते ये शब्द भी भारतवासियों की असीम उम्मीदों की तरह आज अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये जय घोष कर रहे हैं कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां प्राइवेट कंपनी के रॉकेट अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और चलिए अब आपको विक्रम 1 के बारे में बताते हैं, आखिर क्यों इस रॉकेट की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और क्या खासियत है इस रॉकेट की, उसे समझिए जरा। विक्रम 1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना ये हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है जिससे इसकी ईंधन दक्षता काफी बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी इसमें दिया गया है। अब इसके बाद देखिए बारी आती है इसको समझने की। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे तीन बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा होता है। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं। ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। यहां लिक्विड मॉड्यूल काम आता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम भी करता है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कार्ड भेजा जिस पर वंदे मातरम लिखा गया। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के बाद पीएम ने स्काई रूट की टीम को बधाई देने के लिए फोन किया तो कंपनी के सीईओ ने उन्हें ये बात बताई और तब ये भेद खुला कि आखिर क्यों अंतरिक्ष में भेजे जा रहे उस पोस्ट कार्ड पर पीएम ने वंदे मातरम ही लिखा था।
9: आपका कार्ड जो आप भेजे थे that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit.
5: लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से, और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखू, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है।
8: तो वंदे मातरम क्यों लिखा था प्रधानमंत्री ने, उसके दो कारण प्रधानमंत्री ने आपको बताए। अब आपको समझाते हैं विक्रम 1 और विक्रम एस में डिफरेंस क्या है, उस अंतर को आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए विशेषता मिशन का प्रकार है सब ऑर्बिटल, विक्रम एस होता है और विक्रम 1 जो है वो ऑर्बिटल होता है। ये मुख्य अंतर आपको समझा रहे हैं विक्रम एस और विक्रम 1 में। अधिकतम ऊंचाई जो होती है विक्रम एस की वो होती है 89.5 किलोमीटर और विक्रम 1 की जो ऊंचाई होती है वो होती है 450 किलोमीटर। ये बेसिक अंतर जो है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। इसके बाद केवल टेस्ट पेलोड के तौर पर इसको जाना जाता है, ये इसकी खास विशेषता है। पेलोड क्षमता कितनी होती है वो आपको समझा रहे हैं। 350 किलोग्राम तक की इसकी क्षमता होती है। सिंगल स्टेज मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका सिंगल स्टेज होता है। तीन सॉलिड स्टेज प्लस लिक्विड मॉड्यूल इसकी ये विशेषता होती है। इसके अलावा विक्रम एस और विक्रम 1 में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लीजिए। विक्रम एस जो है वो रेगुलर कंपोजिट के तौर पर काम करता है, मटेरियल जो होता है उसमें रेगुलर कंपोजिट होता है, और जो विक्रम 1 होता है उसमें कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये है इन दोनों में विशेष अंतर।

0: साल था 2020 का, जब भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले थे। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में उभरने लगे थे। इस घटना को 6 साल गुजर चुके हैं और भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में लगभग 400 स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो अपने अपने लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते आज भारत की स्पेस इकोनॉमी 8.4 बिलियन यानी लगभग 800 करोड़ की हो चुकी है। स्पेस स्टार्टअप्स की इस बाढ़ के बीच हाल के सालों में बुलबुले की तरह बेहद तेजी से एक नाम उभरा है, स्काई रूट एरोस्पेस। अपने नाम जैसा ही काम ये स्पेस स्टार्टअप पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। अंतरिक्ष के आंगन में भारत की जड़े जमाने के मिशन में स्काई रूट एरोस्पेस अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कंपनी की टकसाल से निकला है भारत का नायाब रॉकेट विक्रम 1।
1: श्रीहरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशंस लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है। स्काई रूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया।
0: स्काईरूट की शुरुआत करीब 8 साल पहले 2018 में हुई थी। स्काईरूट की स्थापना इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नागा भरत डाका और पवन कुमार चंदना ने मिलकर की थी। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण करना रहा, ताकि दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड और बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशंस दिए जा सके। हाल ही में ये कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी, यानी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया था।
2: Globally, very few companies are able to achieve it. So I think doing it from India, we're very proud, and it's a great milestone for Skyroot, for India, and also for globally as well, because the world requires more access to space.
0: चूंकि डॉक्टर सारा भाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी, इसलिए स्काईरूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। साल 2022 में लॉन्च किया गया पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस भी इसी सम्मान श्रृंखला का हिस्सा था। 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट के सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस ने श्रीहरिकोटा से अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रम एस रॉकेट ने 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर ये बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया।
3: And in India, we have good space access solution capacity already developed by ISRO. But the commercial market of launch captured by Indian launch vehicles is very less. And now, with that objective, like now that we have good manufacturing ecosystem that can manufacture aerospace grade rockets, what private companies like us bring to the table is the design engineering and the system engineering capability, where we can build end-to-end systems and develop. So India is also well known for affordable space missions, and that cost effectiveness naturally translates to the private sector in India. So successfully building a reliable rocket from India will naturally place us as an affordable launch solution from India to the world.
0: इसके बाद अब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत के स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और नई तकनीक की शानदार मिसाल बन गया है। लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। दरअसल भारत में अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन रही हैं। इसके कई फायदे हैं। स्काईरूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बेहद सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड लॉन्चिंग विकल्प मिलेंगे। इससे देश की स्पेस इकोनॉमी और मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
4: ये जो स्पेस इकोनॉमी है और जहां तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन जैसे मैंने कहा बढ़ रहा है। जहां तक स्पेस इकोनॉमी है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए, भारत का जो योगदान है इसमें 2 या 3%। अभी ये तो ठीक नहीं, क्योंकि हमारा इसरो इतना काम कर रहा है, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम मंगलयान, अभी यहाँ पर चंद्रयान, फिर अभी हम स्पेस स्टेशन क्या डालेंगे स्पेस पे, तो हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, जो मोदी जी और उनके गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना।
0: बता दें कि भारत ने भले ही अंतरिक्ष में प्राइवेट उड़ान का माइलस्टोन अब हासिल किया है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया की कई कंपनियां इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। खासतौर पर अमेरिका में स्पेसएक्स, ब्लू ऑरिजिन और रॉकेट लैब जैसी दिग्गज प्राइवेट स्पेस कंपनियां स्पेस ट्रेवल में नए युग की शुरुआत काफी पहले कर चुकी हैं। यहाँ तक कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स तो अब दुनिया को भविष्य में स्पेस टूरिज्म का सपना भी दिखा रही है।
4: चीन कुछ 70-80 फ्लाइट्स यानी के लॉन्चेस वो करता है एक साल में, और अमेरिका तो इनके प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो स्पेसएक्स और बोइंग और ये सब करते हैं 190-180 हर साल में, और हमारे यहाँ पर इतने सारे नहीं होते, कुछ 4 या 5 होते हैं, 4-5 भी नहीं होते। हमारा अभी जो विजन है वो तो 13 सैटेलाइट्स का था इस साल में, अभी तक देखिए 1 या 2 ही हुए हैं। तो कोई नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमें और भागना पड़ेगा।
0: भले ही रास्ता लंबा है, लेकिन भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी अब उम्मीदों को पंख लगा रही है। विक्रम 1 का लॉन्च इस कामयाबी की ओर भारत का पहला कदम माना जा सकता है।
1: विक्रम 1 के ऑर्बिटल लॉन्च के साथ सिर्फ भारत में स्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन नहीं हुआ, बल्कि एक विश्वास का आगमन हुआ है कि भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान भी गढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, श्रीहरिकोटा।
5: और चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। गोघर्णनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई घटना पुरानी बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का यही लेटेस्ट वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका होने से इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवान हाथ में बैनर लिए हुए कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का लेटेस्ट वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
4: अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि चीन की सेना ने भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। वीडियो में किसी पहाड़ी रास्ते पर हथियारबंद सैनिकों को देखा जा रहा है। कुछ सैनिकों के हाथों में बैनर और झंडे भी देखने को मिल रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 60 किलोमीटर अंदर कब्जा कर लिया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवानों को देखा जा सकता है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें एक बैनर नजर आया, इसमें नेपाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अगर वीडियो चीनी सेना का है तो फिर इसमें नेपाली भाषा में लिखा हुआ बैनर क्यों नजर आ रहा है, ये हमें थोड़ा अटपटा लगा। इसके अलावा सेना के जवानों के साथ कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वीडियो अगर घुसपैठ का है तो फिर इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वायरल हो रहा वीडियो चीनी घुसपैठ का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर चीनी घुसपैठ के साथ जोड़ते हुए वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस वीडियो में जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई। वीडियो का सच झूठ जानने के लिए इसकी तहकीकात में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम नेपाल के न्यूज़ पोर्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंचे।

0: भी देखने को मिले। यहाँ नेपाल की भाषा में दी गई जानकारी को हमने ट्रांसलेट किया। इससे पता चला कि ये तस्वीर गोरखा जितगड़ी यात्रा की है। जितगड़ी में बैसाख 7 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1872 में नेपाल से हारने के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की याद में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल के एक दूसरे न्यूज पोर्टल में भी इस वीडियो से संबंधित खबर देखने को मिली। इसमें वीडियो के की फ्रेम का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक नेपाली सेना की ऐतिहासिक एकीकरण यात्रा गोरखा दरबार से जीतगढ़ी तक शुरू हो गई है। रुद्रध्वज गण के गणपति विरोध रिजाल ने बताया कि ये यात्रा बैसाख की 6 तारीख को जीतगढ़ी पहुंचेगी और अगले दिन जीत के जश्न में शामिल होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई लड़ाई में मिली जीत को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। एक और न्यूज पोर्टल में भी इस बारे में खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें भी से नेपाली सेना की यात्रा की तस्वीर बताया गया है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि ये वीडियो नेपाली सेना का है जो गोरखा से जितगढ़ी एक समारोह में शामिल होने जा रही थी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो पोस्ट कर दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर चुकी है। सरकार और सेना की तरफ से इसके दावे का खंडन किया गया है। भारतीय सेना के मुताबिक हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट देखी जिनमें आरोप लगाया गया है कि हाल ही में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं। ये रिपोर्ट गलत है, इनका कोई आधार नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन दावों को खारिज कर दिया कि चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों की ओर से सीमा पार करने की घटनाएं होती रही हैं, क्योंकि सीमा स्पष्ट रूप से तय नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजिजू ने साफ कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। सीमा तय न होने की वजह से दोनों तरफ से सीमा पार करने की घटनाएं होती रहती हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो नेपाल का है। वहां नेपाली सेना ने गोरखा से जितगढ़ी तक समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से चीन की किसी भी घुसपैठ से इनकार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी में अचानक धमाका होता है, उसे चला रहा युवक उछलकर दूर कहीं गिर जाता है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
0: इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने और धमाके की खबर अक्सर सामने आती रहती है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 66 में एक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने से एक इमारत में आग लग गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों स्कूटर ब्लास्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक चलते हुए स्कूटर में जोरदार धमाका होता है और इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटर की सीट निकलकर अलग हो जाती है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि चलती ईवी स्कूटी की बैटरी में धमाका, चालक कई फीट दूर जा गिरा। चलती हुई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक तेज धमाका होने के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया। हादसे में चालक सड़क किनारे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत चालक की मदद की। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका होने के बाद सवार आदमी हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटी की सीट निकलकर अलग हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि वीडियो भारत का नहीं है। इसके अलावा वायरल वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखने पर इसमें ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। धमाका होने से पहले ही धमाके जैसी रोशनी नजर आने लगती है और स्क्रीन पर पीला रंग नजर आता है। धमाके के बाद आदमी की बॉडी हवा में अजीब सी दिखाई देती है, मानो उसके शरीर को धमाके से नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगले ही पल बॉडी बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही है। धमाके के बाद स्कूटर अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे घूमता हुआ नजर आता है, जो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा था। धमाके के वक्त स्कूटी की सीट हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद अचानक से पेड़ों के बीच से सामने आ जाती है। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर ये दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है, ये वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो से जुड़ी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूटी में धमाका होने से कुछ सेकंड पहले ही इस पर सवार आदमी अपनी सीट से ऊपर उठ जाता है। लिहाजा ऐसे में हमने वीडियो को हाई मॉडरेशन टूल की मदद से सर्च किया। इस टूल ने फोटो के करीब 62% तक AI से बने होने की संभावना जताई। इस टूल ने सिडांस 2 की मदद से वीडियो के बने होने के संकेत दिए। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वीडियो के कई की फ्रेम निकाले और उन्हें दूसरे AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से सर्च किया। हमने साइट इंजन की मदद से की फ्रेम को सर्च किया। इस टूल ने 99% तक की फ्रेम के AI की मदद से बने होने की संभावना जताई। AI डिटेक्शन टूल अनडिटेक्टेबल ने भी की फ्रेम को AI की मदद से बना हुआ बताया। सर्च के दौरान हमें वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 10 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो को व्यंग के उद्देश्य से शेयर किया गया। इस अकाउंट को खंगालने पर हमने पाया कि इसके बायो में बताया गया है कि इस पेज पर AI और VFX से जुड़े वीडियोस शेयर किए जाते हैं। यहाँ वायरल वीडियो से मिलते जुलते ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें गाड़ियों में धमाका होते और लोगों को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। साफ है इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके का वीडियो फर्जी है। असल में वायरल हो रहे इस वीडियो को AI की मदद से ही बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
2: सोशल मीडिया पर ये प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाई बहन के स्नेह से भरा ये मासूम पल लोगों को अपना बचपन याद दिला रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में एक स्कूल का सीन दिखाई देता है। लंच ब्रेक के दौरान कुछ छोटे छोटे बच्चे जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर बड़े आराम से खाना खाने में लगे हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसी बीच कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो जाता है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में एक भाई बहन भी बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन बहन अपने छोटे भाई का जिस तरह से ध्यान रखती है वो हर किसी को भावुक कर देता है। पहले वो खुद अपने टिफिन से एक निवाला खाती है और फिर उसी हाथ से अपने छोटे भाई को प्यार से खाना खिलाती है। भाई भी बड़े आराम से अपनी बहन के हाथ से खाना खाता रहता है। दोनों के चेहरे पर मासूमियत साफ नजर आती है और यही मासूम रिश्ता लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता, न किसी तरह की स्क्रिप्ट नजर आती है और न ही कैमरे के लिए कोई दिखावा। ऐसा लगता है जैसे स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया हो। शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को आसानी से जोड़ पा रहे हैं। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा देता है। वो खुद के लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर शिकन नहीं आने देता। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के संघर्षों को समझते हैं और उन्हें कोई खूबसूरत तोहफा देते हैं, तो वो पल बेहद खास बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी ने अपने पिता को उनके 50वें जन्मदिन पर एक चमचमाती बाइक गिफ्ट की है। इस प्यारे सरप्राइज को देखकर पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए और वीडियो देखने वाले लाखों लोग भी भावुक हो गए। अचानक मिले सरप्राइज से पिता इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया, जिसने इस पूरे प्लान को अंजाम देने में बहन की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर जुड़ी अपनी बेटी से बात की और खुशी के आंसू बहाते हुए उसे इस शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद किया।
6: हैप्पी बर्थडे डैडी।
2: सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोस खूब पसंद किए जाते हैं जो ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने दिव्यांग कुत्ते की मदद कर लोगों की खूब तारीफ बटोरी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। इसी दौरान एक दिव्यांग कुत्ता सड़क पार करने की कोशिश करता है, लेकिन भारी ट्रैफिक की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तभी वहाँ मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की नज़र उस कुत्ते पे पड़ती है। वो बिना देर किए सड़क के बीच पहुँच जाता है और आने वाली गाड़ियों को रोकने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड्स में वाहन रुक जाते हैं और पुलिस कर्मी कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराने में मदद करता है। इसके बाद कुत्ता आराम से दूसरी ओर पहुँच जाता है। ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे पाकिस्तान के सिंध इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक चाय पकौड़े वाले का देसी जुगाड़ देखकर हर कोई बोल रहा है, भाई ये बंदा तो जीनियस है। वीडियो में दिखता है कि एक दुकानदार सड़क किनारे अपनी बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े तल रहा है। कढ़ाई में तेल खूब गर्म है और पकौड़े छन छन कर तले जा रहे हैं। अभी तक तो सब नॉर्मल लगता है, ट्विस्ट तब आता है जब कैमरा थोड़ा जूम होता है। उसी कढ़ाई के अंदर गरम तेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टील का बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में चाय उबल रही है। एक ही कढ़ाई में नीचे पकौड़े तले जा रहे हैं और ऊपर रखे बर्तन में चाय पक रही है। देखने वाला पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन दुकानदार का लॉजिक एकदम साफ है। वो सीधे तेल में चाय नहीं बना रहा है, वो तेल की गर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। कढ़ाई का तेल इतना गर्म है कि उसके ऊपर रखा बर्तन अपने आप गर्म हो जाता है और उसी हीट से अंदर चाय उबलने लगती है। मतलब अलग से गैस जलाने की जरूरत ही नहीं, एक चूल्हे पर दो काम, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और जमकर इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक खेत दिखाई देता है जहां सामान्य तौर पर ट्रैक्टर से होने वाला काम ई रिक्शा की मदद से किया जा रहा है। आमतौर पर खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है,
7: क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी को आसानी से पलट सके। लेकिन इस वीडियो में लोगों ने ई रिक्शा के साथ ऐसा जुगाड़ किया है कि वो भी खेत जोतने का काम करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक सुकून भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक रात में पहाड़ों के बीच गिटार पर धुन बजाता दिख रहा है। बिना शब्दों की ये धुन सीधे दिल को छू रही है। नेचर और म्यूजिक के इस जादू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे धुन बजती है, लगता है मानो पहाड़ भी उसे सुन रहे हैं। वो म्यूजिक इतना सॉफ्ट और इमोशनल है कि सुनते ही मन एकदम शांत हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड कर जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब बात अपने भारतीय गानों और डांस की हो तो भैया दुनिया के किसी भी कोने में लोग पैर थिरकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक ऐसा ही दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक व्यस्त बाजार में एक भारतीय लड़की ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गाने पर ऐसा रंग जमाया कि वहाँ मौजूद विदेशी गोरे भी उसके साथ भांगड़ा करने पर मजबूर हो गए।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: आइए बात करेंगे गणेश उत्सव की तैयारियों की। देखिए, भले ही अभी बप्पा के आगमन में लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बप्पा के दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज स्टूडियो की टीम पहुंची है मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा पंडाल के ठीक बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में, जहां पर बप्पा के बैठने के लिए एक से बढ़कर एक भव्य और अनोखे आसन मौजूद है। अलग अलग डिजाइन के ये सभी आसन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।

0: बप्पा के स्वागत की रंगत अभी से दिखने लगी है। बाजार में गणपति उत्सव की तैयारियों की रौनक उमड़ने लगी है। गणेश चतुर्थी में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बप्पा के स्वागत का रंग मुंबई में कुछ अलग ही होता है। इसका अंदाज आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां लगभग 2 महीने पहले ही गणेश जी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन

0: हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
1: लोग यहाँ अपने प्यारे बप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर बहते झरने जैसा वाटरफॉल आसन यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से लेकर महाराजा सिंहासन और माता लक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बप्पा के इस आसन को चुन रहे हैं।
2: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए हैं।
3: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे हैं। उसमें से अच्छे लगे मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विट्ठल का है वो अच्छा लगा। ये तीन डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
4: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
1: हर साल बप्पा के स्वागत के लिए भक्त जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहे तो वो भी मुमकिन है। इस सहेली कार्यशाला में भक्त रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से बप्पा के लिए आसन तैयार कर सकते हैं।
0: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
1: जब मौका बप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यह वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे बल्कि बप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स, उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं।
0: सिर्फ यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
5: हमारे यहाँ देखो समझो, अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप किए जो रिसाइकलिंग है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकल आइटम
0: इको फ्रेंडली है, सारे
5: पुट्टा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रोम चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर्स चाहिए, कि देख वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट करना है, तो वो भी हमारे यहाँ रोमोटर मिल सकते हैं सर।
0: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
5: जैसे कि आप देख सकते फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यू आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगा है वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
0: लाइटिंग्स मिलेंगे,
5: लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
0: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
5: 25 से 27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
0: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
5: साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबाग के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
1: इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाला सारा सामान जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। इस बार देश भर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होगा। ऐसे में गणपति उत्सव की रौनक अभी से चारों तरफ दिखने लगी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: मुझे तकरीबन
2: है, पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे, पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक, ओगड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी, गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट, प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज, टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पहले कदम की। कहते हैं हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, एक कदम सैकड़ों और फिर हजारों में बदलकर मंजिल तक का सफर तय करते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है वो पहला कदम। आज दिन है उसी पहले कदम को सेलिब्रेट करने का। एक कदम जो 57 साल पहले आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद पर रखा था, और दूसरा कदम स्पेस में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर रॉकेट का। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये दोनों तस्वीरें एक लंबे सफर के पहले कदम को सेलिब्रेट करती हैं। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची थी। सोवियत संघ अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक और पहले इंसान यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर बढ़त बना चुका था। तब इसके जवाब में अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजने के महत्वाकांक्षी प्लान का आगाज किया और शुरुआत हुई अपोलो मिशन की। इसी के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स वाले अपोलो 11 मिशन को रवाना किया गया था, जो 4 दिन की यात्रा के बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। चांद पर उतरने का अंतिम चरण बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक था। लैंडिंग के समय यान का कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था और ईंधन भी तेजी से कम हो रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने सूझबूझ दिखाते हुए यान को चांद की सतह पर लैंड करवाया और मिशन कंट्रोल को संदेश भेजा, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल इज लैंडेड। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल भरी सतह पर अपना बायां पैर रखा और इतिहास रच दिया। इस मौके पर उनके कहे शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। अब वैसी ही एक विशाल छलांग भारत ने भी लगाई है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटर रॉकेट ने मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी। आइए पहले आपको दिखाते हैं आखिर विक्रम 1 ने हमारी उम्मीदों को लेकर किस तरह अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और क्यों ये मिशन भारत की स्पेस जर्नी में एक माइलस्टोन साबित हुआ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
3: My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about.
4: एक विक्रम वो जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और एक विक्रम ये जो अंतरिक्ष के आंगन का नवजात है। लेकिन कभी जो भारत के एक विक्रम ने कहा था, वो आज दूसरे विक्रम ने सच कर दिखाया है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी क्षमता, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है विक्रम 1 ने। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के शुभ आगमन का प्रतीक बन गया है।
5: देखिए, ये मिशन आगमन है। अब आगमन को तो और

0: हैव लिफ्ट ऑफ।
1: देश में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट भी वो जिसे नाम मिला है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। विक्रम बनने इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया।
0: एंड वी हैव लिफ्ट ऑफ ऑफ विक्रम 1, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च।
1: विक्रम 1 की लॉन्चिंग का समय 18 जुलाई सुबह 11:30 पर तय था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग की गई।
2: लगभग 16 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं, और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी और लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो यह एक बहुत ही सुवर्ण अवसर है भारत के स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में।
1: इसके लिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। श्री हरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक इस लॉन्चिंग के इंतजार में थे। आखिरकार फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ और सफलता पूर्वक विक्रम 1 की लॉन्चिंग हो गई। कंट्रोल रूम से लेकर व्यूइंग गैलरी तक सभी के चेहरे हिल उठे। सालों की मेहनत को मुकाम मिल रहा था। स्काई रूट के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था।
0: पेलोड फेयरिंग, वी हैव सक्सेसफुल पेलोड। दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है।
1: विक्रम 1 लॉन्चिंग का एक एक चरण पूरा करता जा रहा था। हर दहलीज लांघने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी।
0: 50 किलोमीटर और यहां पे प्रथम चरण का प्रतिक्रमण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है।
3: This is quite a major achievement for the nation with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well.
1: कुछ ही मिनट्स में विक्रम 1 आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कार्मन लाइन को पार कर गया। धरती और स्पेस के बीच की यह काल्पनिक रेखा अंतरिक्ष की दहलीज मानी जाती है। कार्मन लाइन लांघने के साथ ही विक्रम 1 अंतरिक्ष में दाखिल हो गया।
3: And we have reached space, guys.
0: Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है. And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation.
1: अगर विक्रम 1 अंतरिक्ष की ऊंचाई पर पहुंच रहा था, तो यूं समझिए कि श्री हरिकोटा के स्टेशन पर जोश, खुशी और उत्साह भी लगभग उसी ऊंचाई को छू रहा था। देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था। स्काई रूट के लिए ये उपलब्धि अभूतपूर्व थी। गर्व और खुशी के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने स्काई रूट कंपनी के CEO और COO समेत पूरी टीम को फोन करके शुभकामना संदेश दिया।
4: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन पर भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी, और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था।
1: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था और अब विक्रम 1 धरती के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। विक्रम 1 ने लॉन्च से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए और करीब 450 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।
5: ये जो विक्रम वन था ये केवल 350 kg ये एलईओ में यानी के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डाल सकता था। अभी जो विक्रम इसके बाद जो आएगा विक्रम टू वो और थोड़ा ज्यादा होगा और फिर विक्रम थ्री में और ज्यादा होगा। तो ये धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और ये पूरा जो था ये इसरो ने स्काई रूट को हैंड होल्ड किया है, उनको टेक्नोलॉजी दिया है, हैंड होल्ड मतलब उनको गाइड किया है।
1: प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम वन रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मो सर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलोरास भी इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। ये माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की छोटी छोटी छवियां उकेरी गई हैं। जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए, इनका मकसद नई तकनीक को परखना, स्पेस ट्रेवल को सुरक्षित बनाना और आने वाले मिशंस को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम 1 स्काई रूट के 3 डेवलपमेंटल मिशंस में पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काई रूट के युवा इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
6: The space sector reform what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
1: ये अपने आप में बेहद अहम है कि ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है और इसे पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया।
5: अगर आप देखें कि अमेरिका में अभी स्पेसएक्स है जो प्राइवेट कंपनी है, बोइंग है अगेन प्राइवेट कंपनी, ब्लू ओरिजिन, ऐसे कई ऐसे वो हैं और पूरे यूरोप में भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं। तो हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो एकदम सही है और इसी मार्ग पे हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि इसरो हैंडहोल्ड नहीं करेगा, अपना डेटा नहीं देगा, लेकिन अभी एकदम बदल गया है। अभी इसरो ऐसे स्टार्टअप्स को हैंडहोल्ड कर रहा है।
1: आपको बता दें कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ ही पीएम मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी भेजा गया है जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित हैं। मातृभूमि का जय घोष करते ये शब्द भी भारतवासियों की असीम उम्मीदों की तरह आज अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये जय घोष कर रहे हैं कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां प्राइवेट कंपनी के रॉकेट अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और चलिए अब आपको विक्रम 1 के बारे में बताते हैं, आखिर क्यों इस रॉकेट की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और क्या खासियत है इस रॉकेट की, उसे समझिए जरा। विक्रम 1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना ये हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है जिससे इसकी ईंधन दक्षता काफी बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी इसमें दिया गया है। अब इसके बाद देखिए बारी आती है इसको समझने की। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे तीन बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा होता है। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं। ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। यहां लिक्विड मॉड्यूल काम आता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम भी करता है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्टकार्ड भेजा जिस पर वंदे मातरम लिखा गया। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के बाद पीएम ने स्काई रूट की टीम को बधाई देने के लिए फोन किया तो कंपनी के सीईओ ने उन्हें ये बात बताई और तब ये भेद खुला कि आखिर क्यों अंतरिक्ष में भेजे जा रहे उस पोस्टकार्ड पर पीएम ने वंदे मातरम ही लिखा था।
8: आपका कार्ड जो आप भेजे थे that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit.
4: देखिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से, और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखो, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है।
7: तो वंदे मातरम क्यों लिखा था प्रधानमंत्री ने, उसके दो कारण प्रधानमंत्री ने आपको बताए। अब आपको समझाते हैं विक्रम 1 और विक्रम एस में डिफरेंस क्या है, उस अंतर को आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए विशेषता मिशन का प्रकार है सब ऑर्बिटल, विक्रम एस होता है और विक्रम 1 जो है वो ऑर्बिटल होता है। ये मुख्य अंतर आपको समझा रहे हैं विक्रम एस और विक्रम 1 में। अधिकतम ऊंचाई जो होती है विक्रम एस की वो होती है 89.5 किलोमीटर और विक्रम 1 की जो ऊंचाई होती है वो होती है 450 किलोमीटर। ये बेसिक अंतर जो है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। इसके बाद केवल टेस्ट पेलोड के तौर पर इसको जाना जाता है, ये इसकी खास विशेषता है। पेलोड क्षमता कितनी होती है वो आपको समझा रहे हैं। 350 किलोग्राम तक की इसकी क्षमता होती है। सिंगल स्टेज मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका सिंगल स्टेज होता है, तीन सॉलिड स्टेज प्लस लिक्विड मॉड्यूल इसकी ये विशेषता होती है। इसके अलावा विक्रम एस और विक्रम 1 में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लीजिए। विक्रम एस जो है वो रेगुलर कंपोजिट के तौर पर काम करता है, मटेरियल जो होता है उसमें रेगुलर कंपोजिट होता है, और जो विक्रम 1 होता है उसमें कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये है इन दोनों में विशेष अंतर।
1: वो साल था 2020 का जब भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले थे। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में उभरने लगे थे। इस घटना को 6 साल गुजर चुके हैं और भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में लगभग 400 स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो अपने अपने लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते आज भारत की स्पेस इकोनॉमी 8.4 बिलियन यानी लगभग 800 करोड़ की हो चुकी है। स्पेस स्टार्टअप्स की इस बाढ़ के बीच हाल के सालों में बुलबुले की तरह बेहद तेजी से एक नाम उभरा है, स्काई रूट एरोस्पेस। अपने नाम जैसा ही काम ये स्पेस स्टार्टअप पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। अंतरिक्ष के आंगन में भारत की जड़ें जमाने के मिशन में स्काई रूट एरोस्पेस अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कंपनी की टकसाल से निकला है भारत का नायाब रॉकेट विक्रम 1।
7: श्रीहरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशंस लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है। स्काई रूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया।
1: स्काईरूट की शुरुआत करीब 8 साल पहले 2018 में हुई थी। स्काईरूट की स्थापना इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नागा भरत डाका और पवन कुमार चंदना ने मिलकर की थी। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण करना रहा, ताकि दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड और बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशंस दिए जा सके। हाल ही में ये कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी, यानी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया था।
9: Globally, very few companies are able to achieve it. So I think doing it from India, we're very proud, and it's a great milestone for Skyroot, for India, and also for globally as well, because the world requires more access to space.
1: चूंकि डॉक्टर सारा भाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी, इसलिए स्काईरूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। साल 2022 में लॉन्च किया गया पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस भी इसी सम्मान श्रृंखला का हिस्सा था। 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट के सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस ने श्रीहरिकोटा से अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रम एस रॉकेट ने 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर ये बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया।
10: And in India, we have good space access solution capacity already developed by ISRO. But the commercial market of launch captured by Indian launch vehicles is very less. And now, with that objective, like now that we have good manufacturing ecosystem that can manufacture aerospace grade rockets, what private companies like us bring to the table is the design engineering and the system engineering capability, where we can build end-to-end systems and develop. So India is also well known for affordable space missions, and that cost effectiveness naturally translates to the private sector in India. So successfully building a reliable rocket from India will naturally place us as an affordable launch solution from India to the world.
1: Iske baad ab orbital rocket Vikram 1 ko launch kiya gaya hai, jo sirf ek rocket launch nahi hai balki ye Bharat ke space sector ki badhti taakat aur nayi technique ki shandar misal ban gaya hai. लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। दरअसल भारत में अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन रही हैं। इसके कई फायदे हैं। स्काईरूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बेहद सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड लॉन्चिंग विकल्प मिलेंगे। इससे देश की स्पेस इकोनॉमी और मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
5: ये जो स्पेस इकोनॉमी है और जहां तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन जैसे मैंने कहा बढ़ रहा है। जहां तक स्पेस इकोनॉमी है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए भारत का जो योगदान है इसमें 2-3%, अभी ये तो ठीक नहीं, क्योंकि हमारा इसरो इतना काम कर रहा है, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम मंगलयान, अभी यहाँ पर चंद्रयान, फिर अभी हम स्पेस स्टेशन डालेंगे स्पेस पे, तो हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, जो मोदी जी और उनके गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना।
1: बता दें कि भारत ने भले ही अंतरिक्ष में प्राइवेट उड़ान का माइलस्टोन अब हासिल किया है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया की कई कंपनियां इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। खासतौर पर अमेरिका में स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और रॉकेट लैब जैसी दिग्गज प्राइवेट स्पेस कंपनियां स्पेस ट्रेवल में नए युग की शुरुआत काफी पहले कर चुकी हैं। यहां तक कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स तो अब दुनिया को भविष्य में स्पेस टूरिज्म का सपना भी दिखा रही है।
5: चीन कुछ 70-80 फ्लाइट यानी के लॉन्चेस वो करता है एक साल में, और अमेरिका तो इनके प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो स्पेसएक्स और बोइंग और ये सब करते हैं 190-180 हर साल में, और हमारे यहाँ पर इतने सारे नहीं होते, कुछ चार या पांच होते हैं, चार पांच भी नहीं होते। हमारा अभी जो विजन है वो तो 13 सैटेलाइट्स का था इस साल में, अभी तक देखिए एक या दो ही हुए हैं। तो कोई नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमें और भागना पड़ेगा।
1: भले ही रास्ता लंबा है, लेकिन भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी अब उम्मीदों को पंख लगा रही है। विक्रम वन का लॉन्च इस कामयाबी की ओर भारत का पहला कदम माना जा सकता है।
7: विक्रम वन के ऑर्बिटल लॉन्च के साथ सिर्फ भारत में स्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन नहीं हुआ, बल्कि एक विश्वास का आगमन हुआ है कि भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान भी गढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, श्रीहरिकोटा।
11: और चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
1: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
0: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
3: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। ओगड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई घटना पुरानी बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का यही लेटेस्ट वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका होने से इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवान हाथ में बैनर लिए हुए कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का लेटेस्ट वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
3: अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि चीन की सेना ने भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। वीडियो में किसी पहाड़ी रास्ते पर हथियारबंद सैनिकों को देखा जा रहा है। कुछ सैनिकों के हाथों में बैनर और झंडे भी देखने को मिल रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 60 किलोमीटर अंदर कब्जा कर लिया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवानों को देखा जा सकता है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें एक बैनर नजर आया, इसमें नेपाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अगर वीडियो चीनी सेना का है तो फिर इसमें नेपाली भाषा में लिखा हुआ बैनर क्यों नजर आ रहा है, ये हमें थोड़ा अटपटा लगा। इसके अलावा सेना के जवानों के साथ कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वीडियो अगर घुसपैठ का है तो फिर इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वायरल हो रहा वीडियो चीनी घुसपैठ का है, तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर चीनी घुसपैठ के साथ जोड़ते हुए वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है इस वीडियो में जानिए।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई, वीडियो का सच झूठ जानने के लिए इसकी तहकीकात में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम नेपाल के न्यूज़ पोर्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंचे।

0: भी देखने को मिले। यहाँ नेपाल की भाषा में दी गई जानकारी को हमने ट्रांसलेट किया। इससे पता चला कि ये तस्वीर गोरखा जितगड़ी यात्रा की है। जितगड़ी में बैसाख 7 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1872 में नेपाल से हारने के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की याद में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल के एक दूसरे न्यूज पोर्टल में भी इस वीडियो से संबंधित खबर देखने को मिली। इसमें वीडियो के की फ्रेम का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक नेपाली सेना की ऐतिहासिक एकीकरण यात्रा गोरखा दरबार से जीतगढ़ी तक शुरू हो गई है। रुद्रध्वज गण के गणपति विरोध रिजाल ने बताया कि ये यात्रा बैसाख की 6 तारीख को जीतगढ़ी पहुँचेगी और अगले दिन जीत के जश्न में शामिल होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई लड़ाई में मिली जीत को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। एक और न्यूज पोर्टल में भी इस बारे में खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें भी से नेपाली सेना की यात्रा की तस्वीर बताया गया है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि ये वीडियो नेपाली सेना का है जो गोरखा से जितगढ़ी एक समारोह में शामिल होने जा रही थी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो पोस्ट कर दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर चुकी है। सरकार और सेना की तरफ से इसके दावे का खंडन किया गया है। भारतीय सेना के मुताबिक हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट देखी जिनमें आरोप लगाया गया है कि हाल ही में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं। ये रिपोर्ट गलत है, इनका कोई आधार नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन दावों को खारिज कर दिया कि चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों की ओर से सीमा पार करने की घटनाएं होती रही हैं, क्योंकि सीमा स्पष्ट रूप से तय नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजिजू ने साफ कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। सीमा तय न होने की वजह से दोनों तरफ से सीमा पार करने की घटनाएं होती रहती हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो नेपाल का है। वहां नेपाली सेना ने गोरखा से जितगढ़ी तक समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से चीन की किसी भी घुसपैठ से इनकार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी में अचानक धमाका होता है, उसे चला रहा युवक उछलकर दूर कहीं गिर जाता है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
0: इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने और धमाके की खबर अक्सर सामने आती रहती है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 66 में एक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने से एक इमारत में आग लग गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों स्कूटर ब्लास्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक चलते हुए स्कूटर में जोरदार धमाका होता है और इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटर की सीट निकलकर अलग हो जाती है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि चलती ईवी स्कूटी की बैटरी में धमाका, चालक कई फीट दूर जा गिरा। चलती हुई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक तेज धमाका होने के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया। हादसे में चालक सड़क किनारे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत चालक की मदद की। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका होने के बाद सवार आदमी हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटी की सीट निकलकर अलग हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि वीडियो भारत का नहीं है। इसके अलावा वायरल वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखने पर इसमें ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। धमाका होने से पहले ही धमाके जैसी रोशनी नजर आने लगती है और स्क्रीन पर पीला रंग नजर आता है। धमाके के बाद आदमी की बॉडी हवा में अजीब सी दिखाई देती है, मानो उसके शरीर को धमाके से नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगले ही पल बॉडी बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही है। धमाके के बाद स्कूटर अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे घूमता हुआ नजर आता है, जो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा था। धमाके के वक्त स्कूटी की सीट हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद अचानक से पेड़ों के बीच से सामने आ जाती है। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर ये दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है, ये वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो से जुड़ी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूटी में धमाका होने से कुछ सेकंड पहले ही इस पर सवार आदमी अपनी सीट से ऊपर उठ जाता है। लिहाजा ऐसे में हमने वीडियो को हाई मॉडरेशन टूल की मदद से सर्च किया। इस टूल ने फोटो के करीब 62% तक एआई से बने होने की संभावना जताई। इस टूल ने सिडांस 2 की मदद से वीडियो के बने होने के संकेत दिए। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वीडियो के कई की फ्रेम निकाले और उन्हें दूसरे एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद से सर्च किया। हमने साइट इंजन की मदद से की फ्रेम को सर्च किया। इस टूल ने 99% तक की फ्रेम के एआई की मदद से बने होने की संभावना जताई। एआई डिटेक्शन टूल अनडिटेक्टेबल ने भी की फ्रेम को एआई की मदद से बना हुआ बताया। सर्च के दौरान हमें वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 10 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो को व्यंग के उद्देश्य से शेयर किया गया। इस अकाउंट को खंगालने पर हमने पाया कि इसके बायो में बताया गया है कि इस पेज पर एआई और वीएफएक्स से जुड़े वीडियोस शेयर किए जाते हैं। यहाँ वायरल वीडियो से मिलते जुलते ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें गाड़ियों में धमाका होते और लोगों को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। साफ है इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके का वीडियो फर्जी है। असल में वायरल हो रहे इस वीडियो को एआई की मदद से ही बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्चर में फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्चर की आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
4: सोशल मीडिया पर ये प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाई बहन के स्नेह से भरा ये मासूम पल लोगों को अपना बचपन याद दिला रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में एक स्कूल का सीन दिखाई देता है। लंच ब्रेक के दौरान कुछ छोटे छोटे बच्चे जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर बड़े आराम से खाना खाने में लगे हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसी बीच कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो जाता है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में एक भाई बहन भी बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन बहन अपने छोटे भाई का जिस तरह से ध्यान रखती है वो हर किसी को भावुक कर देता है। पहले वो खुद अपने टिफिन से एक निवाला खाती है और फिर उसी हाथ से अपने छोटे भाई को प्यार से खाना खिलाती है। भाई भी बड़े आराम से अपनी बहन के हाथ से खाना खाता रहता है। दोनों के चेहरे पर मासूमियत साफ नजर आती है और यही मासूम रिश्ता लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता। ना किसी तरह की स्क्रिप्ट नजर आती है और ना ही कैमरे के लिए कोई दिखावा। ऐसा लगता है जैसे स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया हो। शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को आसानी से जोड़ पा रहे हैं। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा देता है, वो खुद के लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर शिकन नहीं आने देता। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के संघर्षों को समझते हैं और उन्हें कोई खूबसूरत तोहफा देते हैं, तो वो पल बेहद खास बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी ने अपने पिता को उनके 50वें जन्मदिन पर एक चमचमाती बाइक गिफ्ट की है। इस प्यारे सरप्राइज को देखकर पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए और वीडियो देखने वाले लाखों लोग भी भावुक हो गए। अचानक मिले सरप्राइज से पिता इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया, जिसने इस पूरे प्लान को अंजाम देने में बहन की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर जुड़ी अपनी बेटी से बात की और खुशी के आंसू बहाते हुए उसे इस शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद किया।
5: हैप्पी बर्थडे डैडी।
4: सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोस खूब पसंद किए जाते हैं, जो ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने दिव्यांग कुत्ते की मदद कर लोगों की खूब तारीफ बटोरी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। इसी दौरान एक दिव्यांग कुत्ता सड़क पार करने की कोशिश करता है, लेकिन भारी ट्रैफिक की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तभी वहाँ मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की नज़र उस कुत्ते पे पड़ती है। वो बिना देर किए सड़क के बीच पहुँच जाता है और आने वाली गाड़ियों को रोकने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड्स में वाहन रुक जाते हैं और पुलिस कर्मी कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराने में मदद करता है। इसके बाद कुत्ता आराम से दूसरी ओर पहुँच जाता है। ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे पाकिस्तान के सिंध इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक चाय पकौड़े वाले का देसी जुगाड़ देखकर हर कोई बोल रहा है, भाई ये बंदा तो जीनियस है। वीडियो में दिखता है कि एक दुकानदार सड़क किनारे अपनी बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े तल रहा है। कढ़ाई में तेल खूब गर्म है और पकौड़े छन छन कर तले जा रहे हैं। अभी तक तो सब नॉर्मल लगता है, ट्विस्ट तब आता है जब कैमरा थोड़ा जूम होता है। उसी कढ़ाई के अंदर गरम तेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टील का बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में चाय उबल रही है। एक ही कढ़ाई में नीचे पकौड़े तले जा रहे हैं और ऊपर रखे बर्तन में चाय पक रही है। देखने वाला पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन दुकानदार का लॉजिक एकदम साफ है। वो सीधे तेल में चाय नहीं बना रहा है, वो तेल की गर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। कढ़ाई का तेल इतना गर्म है कि उसके ऊपर रखा बर्तन अपने आप गर्म हो जाता है और उसी हीट से अंदर चाय उबलने लगती है। मतलब अलग से गैस जलाने की जरूरत ही नहीं, एक चूल्हे पर दो काम, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और जमकर इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक खेत दिखाई देता है, जहां सामान्य तौर पर ट्रैक्टर से होने वाला काम ई रिक्शा की मदद से किया जा रहा है। आमतौर पर खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी को आसानी से पलट सके। लेकिन इस वीडियो में लोगों ने ई रिक्शा के साथ ऐसा जुगाड़ किया है कि वो भी खेत जोतने का काम करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक सुकून भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक रात में पहाड़ों के बीच गिटार पर धुन बजाता दिख रहा है। बिना शब्दों की ये धुन सीधे दिल को छू रही है। नेचर और म्यूजिक के इस जादू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे धुन बजती है, लगता है मानो पहाड़ भी उसे सुन रहे हैं। वो म्यूजिक इतना सॉफ्ट और इमोशनल है कि सुनते ही मन एकदम शांत हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड कर जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब बात अपने भारतीय गानों और डांस की हो तो भैया दुनिया के किसी भी कोने में लोग पैर थिरकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक ऐसा ही दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक व्यस्त बाजार में
6: एक भारतीय लड़की ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गाने पर ऐसा रंग जमाया कि वहां मौजूद विदेशी गोरे भी उसके साथ भांगड़ा करने पर मजबूर हो गए।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: आइए बात करेंगे गणेश उत्सव की तैयारियों की। देखिए, भले ही अभी बप्पा के आगमन में लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बप्पा के दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज स्टूडियो की टीम पहुंची है मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा पंडाल के ठीक बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में, जहां पर बप्पा के बैठने के लिए एक से बढ़कर एक भव्य और अनोखे आसन मौजूद है। अलग अलग डिजाइन के ये सभी आसन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।

0: बप्पा के स्वागत की रंगत अभी से दिखने लगी है। बाजार में गणपति उत्सव की तैयारियों की रौनक उमड़ने लगी है। गणेश चतुर्थी में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बप्पा के स्वागत का रंग मुंबई में कुछ अलग ही होता है। इसका अंदाज आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां लगभग 2 महीने पहले ही गणेश जी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा

0: बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
1: लोग यहाँ अपने प्यारे बप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर बहते झरने जैसा वाटरफॉल आसन यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से लेकर महाराजा सिंहासन और माता लक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बप्पा के इस आसन को चुन रहे हैं।
2: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए हैं।
3: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है। उसमें से अच्छे लगे मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विट्ठल का है वो अच्छा लगा। ये तीन डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
4: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
1: हर साल बप्पा के स्वागत के लिए भक्त जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहे तो वो भी मुमकिन है। इस सहेली कार्यशाला में भक्त रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से बप्पा के लिए आसन तैयार कर सकते हैं।
0: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
1: जब मौका बप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यह वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे बल्कि बप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स, उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं।
0: सिर्फ यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
5: हमारे यहाँ देखो समझो, अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप किए जो रिसाइकलिंग है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकल आइटम
0: इको फ्रेंडली है, सारी
5: पुट्टा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। ये जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रोम चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर्स चाहिए, कि देख वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट करना है, तो वो भी हमारे यहाँ रोमोटर मिल सकते हैं सर।
0: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
5: जैसे कि आप देख सकते फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यू आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगा है वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
0: लाइटिंग्स मिलेंगे,
5: लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
0: अच्छा खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
5: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
0: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
5: साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबाग के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
1: इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाला सारा सामान जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। इस बार देश भर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होगा। ऐसे में गणपति उत्सव की रौनक अभी से चारों तरफ दिखने लगी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। ओगड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टेहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।

0: आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पहले कदम की। कहते हैं हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, एक कदम सैकड़ों और फिर हजारों में बदलकर मंजिल तक का सफर तय करते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है वो पहला कदम। आज दिन है उसी पहले कदम को सेलिब्रेट करने का। एक कदम जो 57 साल पहले आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद पर रखा था, और दूसरा कदम स्पेस में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर रॉकेट का। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये दोनों तस्वीरें एक लंबे सफर के पहले कदम को सेलिब्रेट करती हैं। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची थी। सोवियत संघ अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक और पहले इंसान यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर बढ़त बना चुका था। तब इसके जवाब में अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजने के महत्वाकांक्षी प्लान का आगाज किया और शुरुआत हुई अपोलो मिशन की। इसी के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स वाले अपोलो 11 मिशन को रवाना किया गया था, जो 4 दिन की यात्रा के बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। चांद पर उतरने का अंतिम चरण बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक था। लैंडिंग के समय यान का कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था और ईंधन भी तेजी से कम हो रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने सूझबूझ दिखाते हुए यान को चांद की सतह पर लैंड करवाया और मिशन कंट्रोल को संदेश भेजा, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल इज लैंडेड। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल भरी सतह पर अपना बायां पैर रखा और इतिहास रच दिया। इस मौके पर उनके कहे शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। अब वैसी ही एक विशाल छलांग भारत ने भी लगाई है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट ने मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी। आइए पहले आपको दिखाते हैं आखिर विक्रम 1 ने हमारी उम्मीदों को लेकर किस तरह अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और क्यों ये मिशन भारत की स्पेस जर्नी में एक माइलस्टोन साबित हुआ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
3: My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about.
4: एक विक्रम वो जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और एक विक्रम ये जो अंतरिक्ष के आंगन का नवजात है। लेकिन कभी जो भारत के एक विक्रम ने कहा था, वो आज दूसरे विक्रम ने सच कर दिखाया है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी क्षमता, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है विक्रम 1 ने। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के शुभ आगमन का प्रतीक बन गया है।
5: देखिए ये मिशन आगमन है, अब आगमन को तो और

0: देश में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट भी वो जिसे नाम मिला है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया।
1: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch.
0: विक्रम 1 की लॉन्चिंग का समय 18 जुलाई सुबह 11:30 पर तय था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग की गई।
2: लगभग 16 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं, और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी और लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो यह एक बहुत ही सुवर्ण अवसर है भारत की स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में।
0: इसके लिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। श्री हरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक इस लॉन्चिंग के इंतजार में थे। आखिरकार फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ और सफलता पूर्वक विक्रम 1 की लॉन्चिंग हो गई। कंट्रोल रूम से लेकर व्यूइंग गैलरी तक सभी के चेहरे हिल उठे। सालों की मेहनत को मुकाम मिल रहा था। स्काई रूट के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: पेलोड फेयरिंग, वी हैव सक्सेसफुल पेलोड। दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्री हरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है।
0: विक्रम 1 लॉन्चिंग का एक एक चरण पूरा करता जा रहा था। हर दहलीज लांघने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी।
1: 50 किलोमीटर और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है।
3: This is quite a major achievement for the nation with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well.
0: कुछ ही मिनट्स में विक्रम 1 आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कार्मन लाइन को पार कर गया। धरती और स्पेस के बीच की यह काल्पनिक रेखा अंतरिक्ष की दहलीज मानी जाती है। कार्मन लाइन लांघने के साथ ही विक्रम 1 अंतरिक्ष में दाखिल हो गया।
3: And we have reached space, guys.
1: Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation.
0: अगर विक्रम 1 अंतरिक्ष की ऊंचाई पर पहुंच रहा था, तो यूं समझिए कि श्री हरिकोटा के स्टेशन पर जोश, खुशी और उत्साह भी लगभग उसी ऊंचाई को छू रहा था। देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था। स्काई रूट के लिए ये उपलब्धि अभूतपूर्व थी। गर्व और खुशी के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने स्काई रूट कंपनी के CEO और COO समेत पूरी टीम को फोन करके शुभकामना संदेश दिया।
4: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन पर भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी, और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था।
0: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था और अब विक्रम 1 धरती के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। विक्रम 1 ने लॉन्च से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए और करीब 450 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।
5: ये जो विक्रम वन था ये केवल 350 kg ये एलईओ में यानी के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डाल सकता था। अभी जो विक्रम इसके बाद जो आएगा विक्रम टू वो और थोड़ा ज्यादा होगा और फिर विक्रम थ्री में और ज्यादा होगा। तो ये धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और ये पूरा जो था ये इसरो ने स्काई रूट को हैंड होल्ड किया है, उनको टेक्नोलॉजी दिया है, हैंड होल्ड मतलब उनको गाइड किया है।
0: प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम वन रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मो सर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलोरास भी इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। ये माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की छोटी छोटी छवियां उकेरी गई हैं। जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए, इनका मकसद नई तकनीक को परखना, स्पेस ट्रेवल को सुरक्षित बनाना और आने वाले मिशन्स को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम 1 स्काई रूट के 3 डेवलपमेंटल मिशन्स में पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काई रूट के युवा इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
6: The space sector reform what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
0: ये अपने आप में बेहद अहम है कि ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है और इसे पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया।
5: अगर आप देखें कि अमेरिका में अभी स्पेसएक्स है जो प्राइवेट कंपनी है, बोइंग है अगेन प्राइवेट कंपनी, ब्लू ओरिजिन, ऐसे कई ऐसे वो हैं और पूरे यूरोप में भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं। तो हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो एकदम सही है और इसी मार्ग पे हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि इसरो हैंड होल्ड नहीं करेगा, अपना डेटा नहीं देगा। लेकिन अभी एकदम बदल गया है, अभी इसरो ऐसे स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड कर रहा है।
0: आपको बता दें कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ ही पीएम मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी भेजा गया है जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। मातृभूमि का जय घोष करते ये शब्द भी भारतवासियों की असीम उम्मीदों की तरह आज अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये जय घोष कर रहे हैं कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां प्राइवेट कंपनी के रॉकेट अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और चलिए अब आपको विक्रम 1 के बारे में बताते हैं, आखिर क्यों इस रॉकेट की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और क्या खासियत है इस रॉकेट की, उसे समझिए जरा। विक्रम 1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना ये हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है जिससे इसकी ईंधन दक्षता काफी बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी इसमें दिया गया है। अब इसके बाद देखिए बारी आती है इसको और समझने की। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे तीन बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा होता है। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं। ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। यहाँ लिक्विड मॉड्यूल काम आता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम भी करता है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्टकार्ड भेजा जिस पर वंदे मातरम लिखा गया। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के बाद पीएम ने स्काई रूट की टीम को बधाई देने के लिए फोन किया तो कंपनी के सीईओ ने उन्हें ये बात बताई और तब ये भेद खुला कि आखिर क्यों अंतरिक्ष में भेजे जा रहे उस पोस्टकार्ड पर पीएम ने वंदे मातरम ही लिखा था।
8: आपका कार्ड जो आप भेजे थे that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit.
4: लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिससे देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देती, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखो, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं, और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है।
7: तो वंदे मातरम क्यों लिखा था प्रधानमंत्री ने, उसके दो कारण प्रधानमंत्री ने आपको बताए। अब आपको समझाते हैं विक्रम 1 और विक्रम एस में डिफरेंस क्या है, उस अंतर को आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए विशेषता मिशन का प्रकार है सब ऑर्बिटल, विक्रम एस होता है और विक्रम 1 जो है वो ऑर्बिटल होता है। ये मुख्य अंतर आपको समझा रहे हैं विक्रम एस और विक्रम 1 में। अधिकतम ऊंचाई जो होती है विक्रम एस की वो होती है 89.5 किलोमीटर और विक्रम 1 की जो ऊंचाई होती है वो होती है 450 किलोमीटर। ये बेसिक अंतर जो है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। इसके बाद केवल टेस्ट पेलोड के तौर पर इसको जाना जाता है, ये इसकी खास विशेषता है। पेलोड क्षमता कितनी होती है वो आपको समझा रहे हैं। 350 किलोग्राम तक की इसकी क्षमता होती है। सिंगल स्टेज मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका सिंगल स्टेज होता है। तीन सॉलिड स्टेज प्लस लिक्विड मॉड्यूल इसकी ये विशेषता होती है। इसके अलावा विक्रम एस और विक्रम 1 में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लीजिए। विक्रम एस जो है वो रेगुलर कंपोजिट के तौर पर काम करता है, मटेरियल जो होता है उसमें रेगुलर कंपोजिट होता है, और जो विक्रम 1 होता है उसमें कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये है इन दोनों में विशेष अंतर।
0: वो साल था 2020 का जब भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले थे। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में उभरने लगे थे। इस घटना को 6 साल गुजर चुके हैं और भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में लगभग 400 स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो अपने अपने लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते आज भारत की स्पेस इकोनॉमी 8.4 बिलियन यानी लगभग 800 करोड़ की हो चुकी है। स्पेस स्टार्टअप्स की इस बाढ़ के बीच हाल के सालों में बुलबुले की तरह बेहद तेजी से एक नाम उभरा है, स्काई रूट एरोस्पेस। अपने नाम जैसा ही काम ये स्पेस स्टार्टअप पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। अंतरिक्ष के आंगन में भारत की जड़ें जमाने के मिशन में स्काई रूट एरोस्पेस अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कंपनी की टकसाल से निकला है भारत का नायाब रॉकेट विक्रम 1।
9: श्री हरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशंस लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है। स्काई रूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया।
0: स्काईरूट की शुरुआत करीब 8 साल पहले 2018 में हुई थी। स्काईरूट की स्थापना इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नागा भरत डाका और पवन कुमार चंदना ने मिलकर की थी। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण करना रहा, ताकि दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड और बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशंस दिए जा सके। हाल ही में ये कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी, यानी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया था।
10: Globally, very few companies are able to achieve it. So I think doing it from India, we're very proud, and it's a great milestone for Skyroot, for India, and also for globally as well, because the world requires more access to space.
0: चूंकि डॉक्टर सारा भाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी, इसलिए स्काईरूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। साल 2022 में लॉन्च किया गया पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस भी इसी सम्मान श्रृंखला का हिस्सा था। 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट के सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस ने श्री हरिकोटा से अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रम एस रॉकेट ने 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर ये बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया।
11: And in India, we have good space access solution capacity already developed by ISRO. But the commercial market of launch captured by Indian launch vehicles is very less. And now, with that objective, like now that we have good manufacturing ecosystem that can manufacture aerospace grade rockets, what private companies like us bring to the table is the design engineering and the system engineering capability, where we can build end-to-end systems and develop. So India is also well known for affordable space missions, and that cost effectiveness naturally translates to the private sector in India. So successfully building a reliable rocket from India will naturally place us as an affordable launch solution from India to the world.
0: Iske baad ab orbital rocket Vikram 1 ko launch kiya gaya hai, jo sirf ek rocket launch nahi hai balki ye Bharat ke space sector ki badhti taakat aur nayi technique ki shandar misal ban gaya hai. लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। दरअसल भारत में अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन रही हैं। इसके कई फायदे हैं। स्काईरूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बेहद सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड लॉन्चिंग विकल्प मिलेंगे। इससे देश की स्पेस इकोनॉमी और मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
5: ये जो स्पेस इकोनॉमी है और जहां तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन जैसे मैंने कहा बढ़ रहा है। जहां तक स्पेस इकोनॉमी है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए भारत का जो योगदान है इसमें 2-3% अभी ये तो ठीक नहीं, क्योंकि हमारा इसरो इतना काम कर रहा है, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम मंगलयान, अभी यहाँ पर चंद्रयान, फिर अभी हम स्पेस स्टेशन डालेंगे स्पेस पे, तो हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, जो मोदी जी और उनके गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना।
0: बता दें कि भारत ने भले ही अंतरिक्ष में प्राइवेट उड़ान का माइलस्टोन अब हासिल किया है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया की कई कंपनियां इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। खास तौर पर अमेरिका में स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और रॉकेट लैब जैसी दिग्गज प्राइवेट स्पेस कंपनियां स्पेस ट्रेवल में नए युग की शुरुआत काफी पहले कर चुकी हैं। यहां तक कि एलन मस्क की स्पेसएक्स तो अब दुनिया को भविष्य में स्पेस टूरिज्म का सपना भी दिखा रही है।
5: चीन कुछ 70-80 फ्लाइट्स यानी के लॉन्चेस वो करता है एक साल में, और अमेरिका तो इनके प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो स्पेसएक्स और बोइंग और ये सब करते हैं 190-180 हर साल में, और हमारे यहाँ पर इतने सारे नहीं होते, कुछ 4 या 5 होते हैं, 4-5 भी नहीं होते। हमारा अभी जो विजन है वो तो 13 सैटेलाइट्स का था इस साल में, अभी तक देखिए 1 या 2 ही हुए हैं। तो कोई नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमें और भागना पड़ेगा।
0: भले ही रास्ता लंबा है, लेकिन भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी अब उम्मीदों को पंख लगा रही है। विक्रम 1 का लॉन्च इस कामयाबी की ओर भारत का पहला कदम माना जा सकता है।
9: विक्रम 1 के ऑर्बिटल लॉन्च के साथ सिर्फ भारत में स्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन नहीं हुआ, बल्कि एक विश्वास का आगमन हुआ है कि भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान भी गढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, श्रीहरिकोटा।
7: और चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
1: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
0: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: गुड़ने चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। गोकर्णनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई घटना पुरानी बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका होने से इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवान हाथ में बैनर लिए हुए कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का लेटेस्ट वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
5: अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि चीन की सेना ने भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। वीडियो में किसी पहाड़ी रास्ते पर हथियारबंद सैनिकों को देखा जा रहा है। कुछ सैनिकों के

0: दर कब्जा कर लिया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवानों को देखा जा सकता है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें एक बैनर नजर आया, इसमें नेपाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अगर वीडियो चीनी सेना का है तो फिर इसमें नेपाली भाषा में लिखा हुआ बैनर क्यों नजर आ रहा है, ये हमें थोड़ा अटपटा लगा। इसके अलावा सेना के जवानों के साथ कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वीडियो अगर घुसपैठ का है तो फिर इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वायरल हो रहा वीडियो चीनी घुसपैठ का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर चीनी घुसपैठ के साथ जोड़ते हुए वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस वीडियो में जानिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई, वीडियो का सच झूठ जानने के लिए इसकी तहकीकात में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम नेपाल के न्यूज पोर्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंचे, जहां पर 10 अप्रैल 2026 को नेपाली सेना की यात्रा से संबंधित जानकारी को पोस्ट किया गया था। इससे वीडियो के की फ्रेम भी देखने को मिले। यहां नेपाल की भाषा में दी गई जानकारी को हमने ट्रांसलेट किया। इससे पता चला कि ये तस्वीर गोरखा जितगढ़ी यात्रा की है। जितगढ़ी में बैसाख 7 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1872 में नेपाल से हारने के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की याद में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल के एक दूसरे न्यूज पोर्टल में भी इस वीडियो से संबंधित खबर देखने को मिली। इसमें वीडियो के की फ्रेम का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक नेपाली सेना की ऐतिहासिक एकीकरण यात्रा गोरखा दरबार से जीतगढ़ी तक शुरू हो गई है। रुद्रध्वज गण के गणपति विरोध रिजाल ने बताया कि ये यात्रा बैसाख की 6 तारीख को जितगढ़ी पहुंचेगी और अगले दिन जीत के जश्न में शामिल होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई लड़ाई में मिली जीत को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। एक और न्यूज पोर्टल में भी इस बारे में खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें भी से नेपाली सेना की यात्रा की तस्वीर बताया गया है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि ये वीडियो नेपाली सेना का है जो गोरखा से जितगढ़ी एक समारोह में शामिल होने जा रही थी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो पोस्ट कर दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर चुकी है। सरकार और सेना की तरफ से इसके दावे का खंडन किया गया है। भारतीय सेना के मुताबिक हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी जिनमें आरोप लगाया गया है कि हाल ही में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं। ये रिपोर्ट गलत है, इनका कोई आधार नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन दावों को खारिज कर दिया कि चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों की ओर से सीमा पार करने की घटनाएं होती रही हैं, क्योंकि सीमा स्पष्ट रूप से तय नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजिजू ने साफ कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, सीमा तय न होने की वजह से दोनों तरफ से सीमा पार करने की घटनाएं होती रहती हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो नेपाल का है। वहाँ नेपाली सेना ने गोरखा से जितगढ़ी तक समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से चीन की किसी भी घुसपैठ से इनकार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी में अचानक धमाका होता है, उसे चला रहा युवक उछलकर दूर कहीं गिर जाता है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
0: इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने और धमाके की खबर अक्सर सामने आती रहती है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 66 में एक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने से एक इमारत में आग लग गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों स्कूटर ब्लास्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक चलते हुए स्कूटर में जोरदार धमाका होता है और इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटर की सीट निकलकर अलग हो जाती है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि चलती ईवी स्कूटी की बैटरी में धमाका, चालक कई फीट दूर जा गिरा। चलती हुई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक तेज धमाका होने के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया। हादसे में चालक सड़क किनारे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत चालक की मदद की। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका होने के बाद सवार आदमी हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटी की सीट निकलकर अलग हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि वीडियो भारत का नहीं है। इसके अलावा वायरल वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखने पर इसमें ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। धमाका होने से पहले ही धमाके जैसी रोशनी नजर आने लगती है और स्क्रीन पर पीला रंग नजर आता है। धमाके के बाद आदमी की बॉडी हवा में अजीब से दिखाई देती है, मानो उसके शरीर को धमाके से नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगले ही पल बॉडी बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही है। धमाके के बाद स्कूटर अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे घूमता हुआ नजर आता है, जो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा था। धमाके के वक्त स्कूटी की सीट हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद अचानक से पेड़ों के बीच से सामने आ जाती है। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर ये दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है, ये वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो से जुड़ी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूटी में धमाका होने से कुछ सेकंड पहले ही इस पर सवार आदमी अपनी सीट से ऊपर उठ जाता है। लिहाजा ऐसे में हमने वीडियो को हाई मॉडरेशन टूल की मदद से सर्च किया। इस टूल ने फोटो के करीब 62% तक AI से बने होने की संभावना जताई। इस टूल ने सिडान्स 2 की मदद से वीडियो के बने होने के संकेत दिए। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वीडियो के कई की फ्रेम निकाले और उन्हें दूसरे AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से सर्च किया। हमने साइट इंजन की मदद से की फ्रेम को सर्च किया। इस टूल ने 99% तक की फ्रेम के AI की मदद से बने होने की संभावना जताई। AI डिटेक्शन टूल अनडिटेक्टेबल ने भी की फ्रेम को AI की मदद से बना हुआ बताया। सर्च के दौरान हमें वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 10 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो को व्यंग के उद्देश्य से शेयर किया गया। इस अकाउंट को खंगालने पर हमने पाया कि इसके बायो में बताया गया है कि इस पेज पर AI और VFX से जुड़े वीडियोस शेयर किए जाते हैं। यहाँ वायरल वीडियो से मिलते जुलते ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं। जिनमें गाड़ियों में धमाका होते और लोगों को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। साफ है इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके का वीडियो फर्जी है। असल में वायरल हो रहे इस वीडियो को एआई की मदद से ही बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature? Today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
5: सोशल मीडिया पर ये प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाई बहन के स्नेह से भरा ये मासूम पल लोगों को अपना बचपन याद दिला रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में एक स्कूल का सीन दिखाई देता है। लंच ब्रेक के दौरान कुछ छोटे छोटे बच्चे जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर बड़े आराम से खाना खाने में लगे हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसी बीच कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो जाता है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में एक भाई बहन भी बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन बहन अपने छोटे भाई का जिस तरह से ध्यान रखती है वो हर किसी को भावुक कर देता है। पहले वो खुद अपने टिफिन से एक निवाला खाती है और फिर उसी हाथ से अपने छोटे भाई को प्यार से खाना खिलाती है। भाई भी बड़े आराम से अपनी बहन के हाथ से खाना खाता रहता है। दोनों के चेहरे पर मासूमियत साफ नजर आती है और यही मासूम रिश्ता लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता, न किसी तरह की स्क्रिप्ट नजर आती है और न ही कैमरे के लिए कोई दिखावा। ऐसा लगता है जैसे स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया हो। शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को आसानी से जोड़ पा रहे हैं। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा देता है। वो खुद के लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर शिकन नहीं आने देता। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के संघर्षों को समझते हैं और उन्हें कोई खूबसूरत तोहफा देते हैं, तो वो पल बेहद खास बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी ने अपने पिता को उनके 50वें जन्मदिन पर एक चमचमाती बाइक गिफ्ट की है। इस प्यारे सरप्राइज को देखकर पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए और वीडियो देखने वाले लाखों लोग भी भावुक हो गए। अचानक मिले सरप्राइज से पिता इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया, जिसने इस पूरे प्लान को अंजाम देने में बहन की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर जुड़ी अपनी बेटी से बात की और खुशी के आंसू बहाते हुए उसे इस शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद किया।
6: हैप्पी बर्थडे डैडी।
5: सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोस खूब पसंद किए जाते हैं जो ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने दिव्यांग कुत्ते की मदद कर लोगों की खूब तारीफ बटोरी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। इसी दौरान एक दिव्यांग कुत्ता सड़क पार करने की कोशिश करता है, लेकिन भारी ट्रैफिक की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तभी वहाँ मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की नज़र उस कुत्ते पे पड़ती है। वो बिना देर किए सड़क के बीच पहुँच जाता है और आने वाली गाड़ियों को रोकने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड्स में वाहन रुक जाते हैं और पुलिस कर्मी कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराने में मदद करता है। इसके बाद कुत्ता आराम से दूसरी ओर पहुँच जाता है। ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे पाकिस्तान के सिंध इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक चाय पकौड़े वाले का देसी जुगाड़ देखकर हर कोई बोल रहा है, भाई ये बंदा तो जीनियस है। वीडियो में दिखता है कि एक दुकानदार सड़क किनारे अपनी बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े तल रहा है। कढ़ाई में तेल खूब गर्म है और पकौड़े छन छन कर तले जा रहे हैं। अभी तक तो सब नॉर्मल लगता है। ट्विस्ट तब आता है जब कैमरा थोड़ा जूम होता है। उसी कढ़ाई के अंदर गर्म तेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टील का बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में चाय उबल रही है। एक ही कढ़ाई में नीचे पकौड़े तले जा रहे हैं और ऊपर रखे बर्तन में चाय पक रही है। देखने वाला पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन दुकानदार का लॉजिक एकदम साफ है। वो सीधे तेल में चाय नहीं बना रहा है, वो तेल की गर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। कढ़ाई का तेल इतना गर्म है कि उसके ऊपर रखा बर्तन अपने आप गर्म हो जाता है और उसी हीट से अंदर चाय उबलने लगती है। मतलब अलग से गैस जलाने की जरूरत ही नहीं, एक चूल्हे पर दो काम, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और जमकर इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक खेत दिखाई देता है जहां सामान्य तौर पर ट्रैक्टर से होने वाला काम ई रिक्शा की मदद से किया जा रहा है। आमतौर पर खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी को आसानी से पलट सके। लेकिन इस वीडियो में लोगों ने ई रिक्शा के साथ ऐसा जुगाड़ किया है कि वो भी खेत जोतने का काम करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक सुकून भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक रात में पहाड़ों के बीच गिटार पर धुन बजाता दिख रहा है। बिना शब्दों की ये धुन सीधे दिल को छू रही है। नेचर और म्यूजिक के इस जादू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जैसे वैसे धुन बजती है लगता है मानो पहाड़ भी उसे सुन रहे हैं। वो म्यूजिक इतना सॉफ्ट और इमोशनल है कि सुनते ही मन एकदम शांत हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड कर जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब बात अपने भारतीय गानों और डांस की हो तो भैया दुनिया के किसी भी कोने में लोग पैर थिरकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक ऐसा ही दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक व्यस्त बाजार में एक भारतीय लड़की ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गाने पर ऐसा रंग जमाया कि वहाँ मौजूद विदेशी गोरे भी उसके साथ भांगड़ा करने पर मजबूर हो गए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: आइए बात करेंगे गणेश उत्सव की तैयारियों की। देखिए, भले ही अभी बप्पा के आगमन में लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बप्पा के दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज स्टूडियो की टीम पहुंची है मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा पंडाल के ठीक बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में, जहां पर बप्पा के बैठने के लिए एक से बढ़कर एक भव्य और अनोखे आसन मौजूद है। अलग अलग डिजाइन के ये सभी आसन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।

0: बप्पा के स्वागत की रंगत अभी से दिखने लगी है। बाजार में गणपति उत्सव की तैयारियों की रौनक उमड़ने लगी है। गणेश चतुर्थी में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बप्पा के स्वागत का रंग मुंबई में कुछ अलग ही होता है। इसका अंदाज आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां लगभग 2 महीने पहले ही गणेश जी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए, लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर बहते झरने जैसा वाटरफॉल आसन यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से लेकर महाराजा सिंहासन और माता लक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बप्पा के इस आसन को चुन रहे हैं।
2: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
3: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है।

0: के लिए भक्त जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहे तो वो भी मुमकिन है। इस सहेली कार्यशाला में भक्त रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से बप्पा के लिए आसन तैयार कर सकते हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी, एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: जब मौका बप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स, उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं।
1: सिर्फ यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
2: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप की जो रिसाइकलिंग भी है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकल आइटम
1: इको फ्रेंडली है, सारे
2: पुट्टा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रोम चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर चाहिए, कि देख वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ रोम मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
2: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यूट आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगाए हुए वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
1: लाइटिंग्स मिलेंगे,
2: लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
1: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
2: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
2: साल भर हम लोग बापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबा के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
0: इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात है, यहाँ मिलने वाला सारा सामान जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। इस बार देश भर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होगा। ऐसे में गणपति उत्सव की रौनक अभी से चारों तरफ दिखने लगी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। ओगड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी।

का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पहले कदम की। कहते हैं हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, एक कदम सैकड़ों और फिर हजारों में बदलकर मंजिल तक का सफर तय करते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है वो पहला कदम। आज दिन है उसी पहले कदम को सेलिब्रेट करने का। एक कदम जो 57 साल पहले आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद पर रखा था, और दूसरा कदम स्पेस में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर रॉकेट का। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये दोनों तस्वीरें एक लंबे सफर के पहले कदम को सेलिब्रेट करती हैं। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची थी। सोवियत संघ अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक और पहले इंसान यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर बढ़त बना चुका था। तब इसके जवाब में अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजने के महत्वाकांक्षी प्लान का आगाज किया और शुरुआत हुई अपोलो मिशन की। इसी के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स वाले अपोलो 11 मिशन को रवाना किया गया था, जो 4 दिन की यात्रा के बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। चांद पर उतरने का अंतिम चरण बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक था। लैंडिंग के समय यान का कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था और ईंधन भी तेजी से कम हो रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने सूझबूझ दिखाते हुए यान को चांद की सतह पर लैंड करवाया और मिशन कंट्रोल को संदेश भेजा, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल इज लैंडेड। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल भरी सतह पर अपना बायां पैर रखा और इतिहास रच दिया। इस मौके पर उनके कहे शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। अब वैसी ही एक विशाल छलांग भारत ने भी लगाई है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट ने मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी। आइए पहले आपको दिखाते हैं आखिर विक्रम 1 ने हमारी उम्मीदों को लेकर किस तरह अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और क्यों ये मिशन भारत की स्पेस जर्नी में एक माइलस्टोन साबित हुआ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
3: My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about.
4: एक विक्रम वो जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और एक विक्रम ये जो अंतरिक्ष के आंगन का नवजात है। लेकिन कभी जो भारत के एक विक्रम ने कहा था, वो आज दूसरे विक्रम ने सच कर दिखाया है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी क्षमता, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है विक्रम 1 ने। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के शुभ आगमन का प्रतीक बन गया है।
5: देखिए, ये मिशन आगमन है। अब आगमन को तो और

0: have liftoff.
1: देश में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया. रॉकेट भी वो जिसे नाम मिला है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर.
2: विक्रम बनने
1: इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है. श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया.
0: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch.
1: Vikram 1 की लॉन्चिंग का समय 18 जुलाई सुबह 11:30 पर तय था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग की गई.
3: लगभग 16 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं, और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी और लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं. तो यह एक बहुत ही सुवर्ण अवसर है भारत की स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में.
1: इसके लिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी. श्री हरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक इस लॉन्चिंग के इंतजार में थे. आखिरकार फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ और सफलता पूर्वक विक्रम 1 की लॉन्चिंग हो गई. कंट्रोल रूम से लेकर व्यूइंग गैलरी तक सभी के चेहरे खिल उठे. सालों की मेहनत को मुकाम मिल रहा था. स्काई रूट के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था.
0: पेलोड फेयरिंग, वी हैव सक्सेसफुल पेलोड.
4: दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्री हरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है.
1: विक्रम 1 लॉन्चिंग का एक एक चरण पूरा करता जा रहा था. हर दहलीज लांघने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी.
0: 50 किलोमीटर
4: और यहां पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है.
5: दिस इज क्वाइट अ मेजर अचीवमेंट फॉर द नेशन विद द व्हीकल सक्सेसफुली सेपरेटिंग स्टेज 1 एंड द इग्निशन ऑफ स्टेज 2 एज वेल.
1: कुछ ही मिनट्स में विक्रम 1 आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कार्मन लाइन को पार कर गया. धरती और स्पेस के बीच की यह काल्पनिक रेखा अंतरिक्ष की दहलीज मानी जाती है. कार्मन लाइन लांघने के साथ ही विक्रम 1 अंतरिक्ष में दाखिल हो गया.
5: एंड वी हैव रीच्ड स्पेस गाइस.
4: कांग्रेचुलेशन, विक्रम 1 इज इन स्पेस. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है.
0: And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation.
1: अगर विक्रम 1 अंतरिक्ष की ऊंचाई पर पहुंच रहा था तो यूं समझिए कि श्री हरिकोटा के स्टेशन पर जोश, खुशी और उत्साह भी लगभग उसी ऊंचाई को छू रहा था. देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था. स्काई रूट के लिए ये उपलब्धि अभूतपूर्व थी. गर्व और खुशी के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने स्काई रूट कंपनी के सीईओ और सीओओ समेत पूरी टीम को फोन करके शुभकामना संदेश दिया.
6: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई. और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी. और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था.
1: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था और अब विक्रम 1 धरती के ऑर्बिट में पहुंच चुका है. विक्रम 1 ने लॉन्च से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए और करीब 450 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया.
7: ये जो विक्रम वन था ये केवल 350 kg ये एलईओ में यानी के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डाल सकता था। अभी जो विक्रम इसके बाद जो आएगा विक्रम टू वो और थोड़ा ज्यादा होगा और फिर विक्रम थ्री में और ज्यादा होगा। तो ये धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और ये पूरा जो था ये इसरो ने स्काई रूट को हैंड होल्ड किया है, उनको टेक्नोलॉजी दिया है, हैंड होल्ड मतलब उनको गाइड किया है।
1: प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम वन रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मो सर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलोरास भी इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति, कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। ये माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की छोटी छोटी छवियां उकेरी गई हैं। जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए, इनका मकसद नई तकनीक को परखना, स्पेस ट्रेवल को सुरक्षित बनाना और आने वाले मिशंस को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम 1 स्काई रूट के 3 डेवलपमेंटल मिशंस में पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काई रूट के युवा इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
8: The space sector reform what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
1: ये अपने आप में बेहद अहम है कि ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है और इसे पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया।
7: अगर आप देखें कि अमेरिका में अभी स्पेसएक्स है जो प्राइवेट कंपनी है, बोइंग है अगेन प्राइवेट कंपनी, ब्लू ऑरिजिन, ऐसे कई ऐसे वो हैं और पूरे यूरोप में भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं। तो हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो एकदम सही है और इसी मार्ग पे हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि इसरो हैंड होल्ड नहीं करेगा, अपना डेटा नहीं देगा। लेकिन अभी एकदम बदल गया है, अभी इसरो ऐसे स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड कर रहा है।
1: आपको बता दें कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ ही पीएम मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी भेजा गया है जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित हैं। मातृभूमि का जय घोष करते ये शब्द भी भारतवासियों की असीम उम्मीदों की तरह आज अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये जय घोष कर रहे हैं कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां प्राइवेट कंपनी के रॉकेट अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: और चलिए अब आपको विक्रम 1 के बारे में बताते हैं। आखिर क्यों इस रॉकेट की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और क्या खासियत है इस रॉकेट की, उसे समझिए जरा। विक्रम 1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना ये हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है जिससे इसकी ईंधन दक्षता काफी बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी इसमें दिया गया है। अब इसके बाद देखिए बारी आती है इसको और समझने की। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे तीन बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा होता है। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं। ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। यहां लिक्विड मॉड्यूल काम आता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम भी करता है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्टकार्ड भेजा जिस पर वंदे मातरम लिखा गया। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के बाद पीएम ने स्काई रूट की टीम को बधाई देने के लिए फोन किया तो कंपनी के सीईओ ने उन्हें ये बात बताई और तब ये भेद खुला कि आखिर क्यों अंतरिक्ष में भेजे जा रहे उस पोस्टकार्ड पर पीएम ने वंदे मातरम ही लिखा था।
10: आपका कार्ड जो आप भेजे थे that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit.
6: देखिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं तो एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से, और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है।
9: तो वंदे मातरम क्यों लिखा था प्रधानमंत्री ने, उसके दो कारण प्रधानमंत्री ने आपको बताए। अब आपको समझाते हैं विक्रम 1 और विक्रम एस में डिफरेंस क्या है, उस अंतर को आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए विशेषता मिशन का प्रकार है सब ऑर्बिटल, विक्रम एस होता है और विक्रम 1 जो है वो ऑर्बिटल होता है। ये मुख्य अंतर आपको समझा रहे हैं विक्रम एस और विक्रम 1 में। अधिकतम ऊंचाई जो होती है विक्रम एस की वो होती है 89.5 किलोमीटर और विक्रम 1 की जो ऊंचाई होती है वो होती है 450 किलोमीटर। ये बेसिक अंतर जो है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। इसके बाद केवल टेस्ट पेलोड के तौर पर इसको जाना जाता है, ये इसकी खास विशेषता है। पेलोड क्षमता कितनी होती है वो आपको समझा रहे हैं। 350 किलोग्राम तक की इसकी क्षमता होती है। सिंगल स्टेज मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका सिंगल स्टेज होता है। तीन सॉलिड स्टेज प्लस लिक्विड मॉड्यूल इसकी ये विशेषता होती है। इसके अलावा विक्रम एस और विक्रम 1 में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लीजिए। विक्रम एस जो है वो रेगुलर कंपोजिट के तौर पर काम करता है, मटेरियल जो होता है उसमें रेगुलर कंपोजिट होता है, और जो विक्रम 1 होता है उसमें कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये है इन दोनों में विशेष अंतर।

0: साल था 2020 का, जब भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले थे। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में उभरने लगे थे। इस घटना को 6 साल गुजर चुके हैं और भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में लगभग 400 स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो अपने अपने लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते आज भारत की स्पेस इकोनॉमी 8.4 बिलियन यानी लगभग 800 करोड़ की हो चुकी है। स्पेस स्टार्टअप्स की इस बाढ़ के बीच हाल के सालों में बुलबुले की तरह बेहद तेजी से एक नाम उभरा है, स्काई रूट एरोस्पेस। अपने नाम जैसा ही काम ये स्पेस स्टार्टअप पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। अंतरिक्ष के आंगन में भारत की जड़े जमाने के मिशन में स्काई रूट एरोस्पेस अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कंपनी की टकसाल से निकला है भारत का नायाब रॉकेट विक्रम 1।
1: श्रीहरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशन्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है। स्काई रूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया।
0: स्काईरूट की शुरुआत करीब 8 साल पहले 2018 में हुई थी। स्काईरूट की स्थापना इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नागा भरत डाका और पवन कुमार चंदना ने मिलकर की थी। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण करना रहा, ताकि दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड और बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशंस दिए जा सके। हाल ही में ये कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी, यानी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया था।
2: Globally, very few companies are able to achieve it. So I think doing it from India, we're very proud, and it's a great milestone for Skyroot, for India, and also for globally as well, because the world requires more access to space.
0: चूंकि डॉक्टर साराभाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी, इसलिए स्काईरूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। साल 2022 में लॉन्च किया गया पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस भी इसी सम्मान श्रृंखला का हिस्सा था। 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट के सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस ने श्रीहरिकोटा से अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रम एस रॉकेट ने 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर ये बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया।
3: And in India, we have good space access solution capacity already developed by ISRO, but the commercial market of launch captured by Indian launch vehicles is very less. And now, with that objective, like now that we have good manufacturing ecosystem that can manufacture aerospace grade rockets, what private companies like us bring to the table is the design engineering and the system engineering capability, where we can build end to end systems and develop. So. India is also well known for affordable space missions, and that cost effectiveness naturally translates to the private sector in India. So successfully building a reliable rocket from India will naturally place us as an affordable launch solution from India to the world.
0: इसके बाद अब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत के स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और नई तकनीक की शानदार मिसाल बन गया है। लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। दरअसल भारत में अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन रही हैं। इसके कई फायदे हैं। स्काईरूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बेहद सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड लॉन्चिंग विकल्प मिलेंगे। इससे देश की स्पेस इकोनॉमी और मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
4: ये जो स्पेस इकोनॉमी है और जहां तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन जैसे मैंने कहा बढ़ रहा है। जहां तक स्पेस इकोनॉमी है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए, भारत का जो योगदान है इसमें 2 या 3%। अभी ये तो ठीक नहीं, क्योंकि हमारा इसरो इतना काम कर रहा है, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम मंगलयान, अभी यहाँ पर चंद्रयान, फिर अभी हम स्पेस स्टेशन डालेंगे स्पेस पे, तो हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, जो मोदी जी और उनके गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना।
0: बता दें कि भारत ने भले ही अंतरिक्ष में प्राइवेट उड़ान का माइलस्टोन अब हासिल किया है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया की कई कंपनियां इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। खासतौर पर अमेरिका में स्पेसएक्स, ब्लू ऑरिजिन और रॉकेट लैब जैसी दिग्गज प्राइवेट स्पेस कंपनियां स्पेस ट्रेवल में नए युग की शुरुआत काफी पहले कर चुकी हैं। यहां तक कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स तो अब दुनिया को भविष्य में स्पेस टूरिज्म का सपना भी दिखा रही है।
4: चीन कुछ 70-80 फ्लाइट यानी के लॉन्चेस वो करता है एक साल में, और अमेरिका तो इनके प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो स्पेसएक्स और बोइंग और ये सब करते हैं 190-180 हर साल में, और हमारे यहाँ पर इतने सारे नहीं होते, कुछ 4 या 5 होते हैं, 4-5 भी नहीं होते। हमारा अभी जो विजन है वो तो 13 सैटेलाइट्स का था इस साल में, अभी तक देखिए 1 या 2 ही हुए हैं। तो कोई नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमें और भागना पड़ेगा।
0: भले ही रास्ता लंबा है, लेकिन भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी अब उम्मीदों को पंख लगा रही है। विक्रम वन का लॉन्च इस कामयाबी की ओर भारत का पहला कदम माना जा सकता है।
1: विक्रम वन के ऑर्बिटल लॉन्च के साथ सिर्फ भारत में स्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन नहीं हुआ, बल्कि एक विश्वास का आगमन हुआ है कि भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान भी गढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, श्रीहरिकोटा।
5: और चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। ओगड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की